एफएम बैंड 102.3 MHz पर हम आकाशवाणी के हिसार केंद्र से बोल रहे हैं। आज मंगलवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ माह की 26वीं तिथि, तदनुसार 16 जून 2026। इस समय सुबह के 5:58:54 हुए हैं। आरंभ होती है हमारी आज की प्रातःकालीन प्रसारण सभा।

हम आकाशवाणी के हिसार केंद्र से बोल रहे हैं, FM बैंड 102.3 MHz पर। अब से थोड़ी देर में सुनेंगे हिंदी में समाचार विविध भारती से, और उसके तुरंत बाद होगा वंदन वार।

समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आज फ्रांस के एवियों पहुंचेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों उनका स्वागत करेंगे। प्रधानमंत्री सम्मेलन के विशेष सत्र में हिस्सा लेंगे। इस दौरान नई साझेदारियों की तलाश और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को फिर मजबूत करने पर चर्चा होगी। सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री कैनेडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री केर स्टारमर और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। इसके बाद वे राष्ट्रपति मैक्रों द्वारा आयोजित रात्रिभोज में शामिल होंगे। फ्रांस के एवियों शहर में 52वां G7 शिखर सम्मेलन शुरू हो गया है। सम्मेलन में विश्व की अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं के नेता प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों पर चर्चा कर रहे हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों से निपटने के लिए मिलकर काम करने के विषय में रात्रिभोज का आयोजन किया। 3 दिन के सम्मेलन में वैश्विक असंतुलन को कम करने, बड़े भू राजनीतिक संकटों से निपटने, बच्चों से जुड़े

0: मुद्दों और संगठित अपराध तथा अवैध धन के प्रवाह को रोकने पर चर्चा होने की संभावना है। भारत और स्लोवाकिया ने अपने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फीत्सो की वार्ता के बाद प्रवासन, डिजिटल प्रौद्योगिकी और रक्षा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में 11 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग आपसी विश्वास और रणनीतिक सामंजस्य का प्रमाण है।
1: टेक्नोलॉजी हमारी भावी साझेदारी का महत्वपूर्ण स्तंभ है। डिजिटल टेक्नोलॉजी पर आज किए गए एमओयू इसे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में सहयोग की नई संभावनाएं बनेगी। मुझे खुशी है कि स्लोवाकिया की एक यूनिवर्सिटी में एआई के विषय पर इंडिया चेयर स्थापित की जा रही है। एआई मानवता की सेवा और प्रगति का सशक्त माध्यम बने, यही हमारी साचा सोच है।
0: स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके लिए स्लोवाकिया की सरकार और जनता का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि यह भारत के 140 करोड़ लोगों और भारत स्लोवाकिया की मजबूत मित्रता का सम्मान है। पश्चिम एशिया में तनाव कम होने की आशा बढ़ गई है। अमेरिका और ईरान लगभग 4 महीने से जारी संघर्ष को समाप्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण समझौते की रूपरेखा पर सहमत हो गए हैं। दोनों देशों ने समझौते पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से हस्ताक्षर होने की पुष्टि की है, जबकि औपचारिक हस्ताक्षर समारोह शुक्रवार को स्विट्जरलैंड के जिनेवा में होगा। समझौते के तहत होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलने, समुद्री यातायात को बहाल करने और ईरान के परमाणु कार्यक्रम सहित अन्य मुद्दों पर 60 दिन की वार्ता शुरू करने का रास्ता साफ होने की उम्मीद है। संघ लोक सेवा आयोग ने इस वर्ष की सिविल सेवा परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिया है। इस वर्ष लगभग 1000 रिक्तियों के लिए 13000 से अधिक उम्मीदवारों का चयन सिविल सेवा मुख्य परीक्षा के लिए किया गया है। उम्मीदवार आयोग की वेबसाइट upsc.gov.in पर परिणाम देख सकते हैं। अंक, कट ऑफ और उत्तर कुंजी अंतिम परिणाम घोषित होने के बाद वेबसाइट पर जारी की जाएगी। फीफा विश्व कप में बड़ा उलटफेर करते हुए काबो वर्डे की टीम ने प्रबल दावेदार स्पेन को 0-0 से बराबरी पर रोक दिया। पहली बार विश्व कप खेल रही काबो वर्डे के गोलकीपर वोजिन्हा ने शानदार खेल दिखाया और स्पेन को गोल करने का कोई अवसर नहीं दिया। काबो वर्डे करीब 5 लाख आबादी वाला छोटा सा द्वीपीय देश है। इस परिणाम को टूर्नामेंट में अब तक का सबसे बड़ा उलटफेर माना जा रहा है। उधर दांबुला में एक दिवसीय क्रिकेट की त्रिकोणीय श्रृंखला के रोमांचक मुकाबले में श्रीलंका ए ने भारत ए को सुपर ओवर में 7 रन से हरा दिया। भारत ए ने विपराज निगम और सूर्यांश शेडगे के अर्धशतकों की मदद से 265 रन बनाए। श्रीलंका ए ने भी 50 ओवर में 265 रन बनाए। सुपर ओवर में श्रीलंका ए ने 16 रन बनाए, जबकि भारत ए 9 रन ही बना सका। अब फाइनल में पहुंचने के लिए भारत ए को बुधवार को अफगानिस्तान ए पर जीत दर्ज करनी होगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये है विविध भारती।
3: वंदन भार।

आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदनवार। आइए सबसे पहले सुनते हैं आज का चिंतन। विद्वानों का कथन है, इंसान की सोच ही उसे बड़ा बनाती है। ये था आज का चिंतन। और आइए अब सुनते हैं भक्ति संगीत।

ಪಗ ಪೈ ಜನಿ ಛನ ನನ ನನ ನನ ನನ ಛ

हम विविध भारती से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है आज प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों का झरोखा। अब से कुछ ही पलों में यानी 6:35 पर सुनिए श्री रामचरितमानस पाठ का भाग 221। छह बजकर 45 पर संगीत सरिता में इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला गजतत वाद्य। कलाकार हैं डॉक्टर प्रकाश महाडिक। सुनिए इस श्रृंखला का पांचवा भाग। प्रस्तुति है चारुबाला खरे की। 7 सुनिए भूले बिसरे गीत। 7:30 पर हमें राही प्यार के। 8:15 पर त्रिवेणी। आलेख और स्वर है ममता सिंह का। प्रस्तुति अनुश्री पाठक की। 8:30 पर सुनिए चित्रलोक कार्यक्रम। 9:30 पर आज के फनकार कार्यक्रम केंद्रित होगा संगीतकार गायक हेमंत कुमार पर। सुनिए इसका पुनः प्रसारण रात 9:30 पर। प्रस्तुति है रमेश गोखले की। सुबह 10 पिटारा में सुनिए सेहत नामा जीवन शैली और योग। योग शिक्षक शारदा अग्रवाल से राजेंद्र त्रिपाठी की बातचीत। प्रस्तुति है जुबैर खान की। 11 सुनिए रंग तरंग कार्यक्रम। 12:05 से सजेगी यादों की महफिल। दोपहर 1 से गुनगुनाइए सुरीला सफर में। 2:30 पर सदाबहार नगमे। सुनिए सखी सहेली कार्यक्रम। 4 पिटारा में सेल्यूलॉयड के सितारे में सुनिए अभिनेत्री वहीदा रहमान से कमल शर्मा की बातचीत का दूसरा भाग। प्रस्तुति है कल्पना शेट्टी की। 5:30 पर सुनिए तराने नए पुराने। छह बजकर 35 पर सुनिए संध्या रंजन। 7 सुनिए जयमाला कार्यक्रम। 7:45 पर इंद्रधनुष के अंतर्गत सुनिए पॉप एक्सप्रेस। 8 हवा महल में सुनिए झलकी जीभ की तपस्या। लेखन है डॉक्टर कुमारी का। निर्देशन है स्वतंत्र कुमार ओझा का। 8:15 पर सुनिए रात्रि चित्रलोक। 9 सुनिए आपके लिए कार्यक्रम। रात 10 छाया गीत कार्यक्रम पेश होगा। आलेख और स्वर है ममता सिंह का। प्रस्तुति राघवेंद्र नेगी की। 10:30 पर सुनिए ढलती जाए रात। ये था आज प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों का झरोखा।

श्री राम को अयोध्या लौटा लाने के अपने विनीत आग्रह को त्याग कर भरत ने निर्णय प्रभु पर छोड़ दिया। अग्रज के प्रति अपनी भक्ति तथा निष्ठा की दुहाई देते हुए उन्होंने कहा, गुरु और स्वामी का स्नेह पाकर मेरा क्षोभ मिट गया है, मन में अब कोई संदेह नहीं रहा। दया निधान अब वही कीजिए जिससे दास के लिए आपके चित्त में किसी प्रकार का क्षोभ न हो। सेवक का हित इसी में है कि वो समस्त सुख और लोभ छोड़कर स्वामी की सेवा करे। हे नाथ, आपके लौटने में सबका स्वार्थ है, किंतु आपकी आज्ञा के पालन में ही सबका कल्याण है। भरत की विनय ये थी कि यदि स्वामी चाहें तो अकेले भरत वनवास करें, अथवा लक्ष्मण तथा शत्रुघ्न को अयोध्या लौटाकर भरत श्री राम की सेवा में वनगमन करें, अथवा श्री राम तथा सीता अयोध्या लौट जाएं और बाकी तीनों भाई वन को जाएं। इन सभी विकल्पों में भरत अपना ही स्वार्थ होना बताते हैं, क्योंकि उनके अनुसार न तो उन्हें नीति का ज्ञान है और न धर्म का। इसी समय सभा स्थल पर राजा जनक के दूत पहुंचते हैं, जिनसे ये समाचार मिला कि स्वयं राजा जनक वहां पहुंच रहे हैं।

0: अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस पाठ का भाग 200।
1: अभी आप सुन रहे थे विविध भारती के प्रसारण एफएम एंड 102.3 मेगाहर्ट्ज पर। हम आकाशवाणी के हिसार केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, समय है कार्यक्रम विवरण का। ये जानिए आज और कल हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में। पहले बात आज के प्रसारणों की। आज सुबह 7:10 पर आप सुनेंगे आकाशवाणी हिसार से प्रसारित कार्यक्रम लोक रंग, जो हरियाणवी गीतों पर आधारित होगा। सुप्रभात, इस कार्यक्रम का समय होगा सुबह 7:40। 8:00 आप सुनेंगे समाचार प्रभात आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। विविध भारती के प्रसारण हम लेकर आएंगे आपके लिए 8:15 से 10:00 तक, जिसमें 9:00 आप सुनेंगे भारत की गूंज, 9:30 आज के फनकार। आकाशवाणी के हिसार केंद्र से हमारा अपना कार्यक्रम नमस्ते हिसार सुनिएगा सुबह 10:00। 11:00 प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी का अगला भाग आप सुन सकेंगे। 11:30 एक बार फिर आनंद लीजिएगा विविध भारती के प्रसारणों का। 12:00 यादों की महफिल और 1:05 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।

दोपहर 2 बजे हिंदी समाचार होंगे विविध भारती से। 2:30 पर विविध भारती से ही सुनिएगा सदाबहार नगमे फिल्मी गीत। 3 बजे सखी सहेली और 4 बजे आप सुनेंगे हेलो फरमाइश। आज शाम 5 बजे आकाशवाणी के हिसार केंद्र से हम लेकर आएंगे ईमेल पर आधारित कार्यक्रम ई फरमाइश, रहिएगा हमारे साथ। शाम 6 बजे हिंदी समाचार होंगे। 6:10 पर प्रादेशिक समाचार प्रसारित होंगे। भक्ति संगीत कार्यक्रम का समय रहेगा शाम 6:20। युवा उमंग कार्यक्रम आप सुन पाएंगे आज शाम 6:30 पर। 7 बजे किसान वाणी कार्यक्रम प्रसारित होगा। 7:30 बजे महारे गांव कार्यक्रम आप सुन सकेंगे और 8 बजे सुनिएगा लोकमंच।

आज रात 8:30 पर खुला आकाश के अंतर्गत सुनेगा यादों के झरोखे से राष्ट्रीय हिंदी समाचार होंगे 8:45 पर। 9 बजे से 10 बजे तक आप आनंद ले सकेंगे विविध भारती के प्रसारणों का। 10 बजे सुनेगा व्हाट्सएप पर आधारित कार्यक्रम संदेश आपके गीत हमारे, और सभा के अंत में 11 बजे आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार, और उसके बाद भारत सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर स्पेशल प्रोग्राम सीरीज का अगला भाग आप सुन सकेंगे।

कल की सभा का आगाज होगा 5:55 पर। 6 बजे होंगे हिंदी में समाचार। 6:05 पर विविध भारती से ही आप सुनेंगे वंदन वार कार्यक्रम। 6:55 पर संस्कृत समाचार होंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। 7 बजे हिंदी में समाचार और 7:05 पर आप सुनेंगे अंग्रेजी में समाचार। हरियाणवी गीतों का कार्यक्रम लोकरंग आप सुन पाएंगे कल सुबह 7:10 पर और सुप्रभात होगा 7:40 पर।

कल 8 बजे समाचार प्रभात होगा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। 8:15 पर अंग्रेजी समाचार आप सुन सकेंगे। 8:30 बजे से विविध भारती के कार्यक्रमों का लुत्फ उठा

आइएगा। 10 बजे सुनिएगा नमस्ते हिसार कार्यक्रम आकाशवाणी के हिसार केंद्र से। 11 बजे विविध भारती से रंग तरंग होगा। 12 बजे यादों की महफिल। 1:05 पर हिंदी प्रादेशिक समाचार प्रसारित होंगे। 1:10 पर विविध भारती की गीतमाला आप सुनेंगे। 2 बजे हिंदी समाचार होंगे विविध भारती से। 2:30 बजे सुनेगा विविध भारती से सदाबहार नगमे फिल्मी गीत। 3 बजे सखी सहेली और 4 बजे आज के फनकार। कल शाम 5 बजे सदाबहार गीतों का कार्यक्रम होगा ओल्ड इज गोल्ड। 6 बजे हिंदी समाचार कार्यक्रम रूपरेखा 6:05 पर प्रादेशिक समाचार 6:10 पर भक्ति संगीत सुनेगा 6:20 पर। युवाओं का कार्यक्रम युवा उमंग हम लेकर आएंगे आपके लिए कल शाम 6:30 पर। खेती किसाना सेती ये कार्यक्रम आप सुन सकेंगे कल शाम 7 बजे 7:10 पर। भारत सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर स्पेशल प्रोग्राम सीरीज का अगला भाग आप सुन सकेंगे। 7:45 का वक्त रहेगा कार्यक्रम हमारे गांव का। 8 बजे प्रसारित होंगे फिल्मी गीत। 8:30 बजे सुनेगा कार्यक्रम हरियाणा के गलियारे से। 8:45 का समय रहेगा राष्ट्रीय हिंदी समाचारों का। 9 बजे सुनेगा विविध भारती से आपके लिए चित्रलोक कार्यक्रम और 10 बजे व्हाट्सएप के बहाने फिल्मी तराने ये कार्यक्रम हम आपके लिए लेकर आएंगे। सभा के अंत में 11 बजे सुनेगा हिंदी और अंग्रेजी में समाचार।

0: अभी आप कार्यक्रम रूपरेखा सुन रहे थे एफएम बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज पर। हम आकाशवाणी के हिसार केंद्र से बोल रहे हैं।
1: अलग दुनिया होती है,
2: चकरकची चाचो चकलोरम गंडो वंडो लकरकटम।
1: और यदि आपको चाहिए इस दुनिया में एंट्री तो ढूंढिए अपने भीतर छुपे बच्चे को।
3: एरोप्लेन एरोप्लेन अप इन द स्काई, वेयर आर यू गोइंग? फ्लाइंग सो हाई, ओवर द माउंटेन, ओवर द सी। एरोप्लेन एरोप्लेन प्लीज टेक मी।
0: बचपन की मुस्कुराहटों और गुदगुदाहटों से भरा कार्यक्रम बाल सभा,
1: हर रविवार सुबह 10:30 पर,
0: सिर्फ आकाशवाणी हिसार 102.3 एफएम पर।
4: अर्ज किया है, रांझे ने हीर को कबूतर से खत भिजवाया, रांझे ने हीर को कबूतर से खत भिजवाया, और एक जैसी छतों को देख कबूतर ने खत गलत पते पर गिराया। कबूतर की गलती ने बेचारे रांझे को सरे बाजार बहुत पिटवाया। तब हीर ने रांझे को समझाया,
5: अरे बुद्धू, मैसेज ही भेजना था तो ईमेल से क्यों नहीं भिजवाया?
1: RADIOHISAR यानी रेडियो हिसार @gmail.com पर।
0: आप भी भेजिए अपने मैसेज ईमेल के माध्यम से अपनी पसंद के गाने सुनने के लिए कार्यक्रम ई फरमाइश में,
1: हर मंगलवार शाम 5 बजे,
0: सिर्फ आकाशवाणी हिसार 102.3 एफएम पर। हिंदुस्तान जमीन है सितारों की,
6: अगर तुम्हारी आरजू एक कमीज है तो सारी जिंदगी इसी तरह जब्त करना होगा।
1: एक से बढ़कर एक उम्दा फनकारों की,
0: कोई साहित्य में सर्वश्रेष्ठ है,
7: न था कुछ तो खुदा था, कुछ ना होता तो खुदा होता,
1: तो कोई विज्ञान में अद्वितीय,
8: विल बी रिमेम्बर्ड एज अ ग्रेट साइंटिस्ट सेड थॉमस अल्वा एडिसन,
0: कोई कला में उत्कृष्ट है,
1: तो कोई संगीत का शिरोमणि,
0: किंतु कोई है जो इन सब को ले आया है आपके लिए, आपके घर में, आपके बेहद करीब।
1: कार्यक्रम एक शख्सियत,
0: हर सोमवार शाम 5 बजे,
1: सिर्फ आकाशवाणी हिसार 102.3 एफएम पर।

0: देश के हर कोने से आती है ये आवाज। हेलो, आपके दिल की धड़कन और आपके मन का सुकून भला कौन? जी हाँ, हेलो हिसार, आपका अपना फोन इन फरमाइशी प्रोग्राम। अब आप पूछेंगे कि तो नंबर है 01662297827।
1: आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। अथ वार्ताः। भारत स्लोवाकिया देशयोः सम्बन्धः समग्र सहभागित्वेन संवर्धितः अस्ति। ब्रातिस्लावा नगरे प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना तस्य स्लोवाकिया समकक्षीयेण रॉबर्ट फिको इत्यनेन सह वार्तालापस्यानन्तरं श्रम प्रवास डिजिटल तन्त्रज्ञान रक्षादिषु प्रमुखेषु क्षेत्रेषु सहकारं वर्धयितुं उभौ पक्षौ समग्र एकादश सन्धिपत्रेषु हस्ताक्षरितवन्तौ। पश्चात् संयुक्त वार्ताहर सम्मेलनं संबोधयन् श्रीमोदी अवदत् यत् सम्बन्धानां उन्नतिः सह विश्वासानां प्राथमिकतानां भविष्यस्य च प्रतीकः अस्ति। कस्यापि भारतीय प्रधानमन्त्रिणः यूरोपीय राष्ट्रस्य प्रथमायां यात्रायां श्रीमोदी अवदत् यत् उभौ देशौ रक्षाक्षेत्रे सन्धिपत्रे हस्ताक्षरं कृतवन्तौ।
2: एआई का भविष्य केवल इनोवेशन से नहीं बल्कि ट्रस्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी और ह्यूमन डिग्निटी पर आधारित होना चाहिए। रक्षा सहयोग हमारे गहरे आपसी विश्वास और स्ट्रेटेजिक कन्वर्जेंस का प्रमाण है। इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में हमने लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया। इससे ज्वाइंट डेवलपमेंट, ज्वाइंट प्रोडक्शन और डिफेंस इंडस्ट्री के बीच सहयोग को नई गति मिलेगी।
1: स्लोवाकिया देशस्य राष्ट्रपतिना पीटर पेलेग्रेनी इत्यनेन स्लोवाकिया देशस्य सर्वोच्चं प्रशासकीय सम्मानं द ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास इति प्रधानमन्त्रिणं श्रीमोदिनं प्रदत्तम्। श्रीमोदी स्लोवाकिया देशस्य राष्ट्रपत्ये सर्वकाराय नागरिकेभ्यश्च विशिष्ट सम्मानाय कृतज्ञतां प्रकटितवान्। द्वयोः राष्ट्रयोः यात्रायाः तृतीये चरणे G7 शिखर सम्मेलने भागग्रहणाय प्रधानमन्त्री श्रीमोदी अद्य फ्रांस देशस्य एवियन नगरं सम्प्राप्स्यति। तस्य आगमनावधौ फ्रांस देशस्य राष्ट्रपतिना इमैनुअल मैक्रों इत्यनेन औपचारिकरूपेण तस्य स्वागतं क्रियते। द्विपञ्चाशत्तमं G7 शिखर सम्मेलनं ह्यः एवियन नगरे समारब्धम्, यत्र विश्वस्य प्रमुखानां अर्थव्यवस्थानां नेतारः प्रमुखेषु वैश्विक समाह्वानेषु विचार विनिमयं कुर्वन्ति। राष्ट्रपतिः मैक्रों वर्यः प्रमुख अन्तर्राष्ट्रिय समाह्वानान् निवारणाय संयुक्तरूपेण कार्याचरणस्य विषये कार्यरात्रिभोजस्य आयोजनम् अकरोत्। ततः पूर्वं सः अमेरिका देशस्य राष्ट्रपतिना डोनाल्ड ट्रम्प, यूके देशस्य प्रधानमन्त्री कीर स्टार्मर इत्यादिभिः नेतृभिः सह G7 देशानां नेतृणाम् औपचारिकरूपेण स्वागतं विहितवान्। यूरोपीय आयोगस्य अध्यक्षा उर्सुला फोन डेर लेयेन, यूरोपीय परिषदः अध्यक्षः एंटोनियो कोस्टा च शिखर सम्मेलने भागं भजन्ति। केन्द्रीय वाणिज्य उद्योग मन्त्री पीयूष गोयलः ह्यः फ्रांस देशे मोनाको देशस्य राज्यमन्त्रिणा क्रिस्टोफ मिरमेंड, विदेश कार्य सहकार मन्त्रिणा इजाबेल बेरो आमादेई, वित्त अर्थव्यवस्था मन्त्रिणा फेडरिक कोटालोर्डा इत्येतैः सह मेलनं कृतवान्। सामाजिकान्तर्जालीये पटले श्रीगोयलः अवदत् यत् द्वैपाक्षिकव्यापारं सुदृढं कर्तुं नूतनान् निवेशावसरान् अन्वेष्टुं भारत मोनाको देशयोः मध्ये उपवेशनम् आर्थिक सहकारं सुदृढं कर्तुं च केन्द्रितम् आसीत्। संघलोक सेवा आयोगेन UPSC इत्यनेन अस्य वर्षस्य लोकसेवा प्राथमिक परीक्षायाः परिणामाः घोषिताः। UPSC ह्यः सूचितवान् यत् अस्मिन् वर्षे 1,000+ रिक्तस्थानेषु लोकसेवा मुख्यपरीक्षायाः कृते आहत्य 13,000+ अभ्यर्थिनः

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आज फ्रांस के एविया पहुंचेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति मैनुअल मैक्रों उनका स्वागत करेंगे। प्रधानमंत्री सम्मेलन के विशेष सत्र में हिस्सा लेंगे। इस दौरान नई साझेदारियों की तलाश और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को फिर मजबूत करने पर चर्चा होगी। सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। इसके बाद वे राष्ट्रपति मैक्रों द्वारा आयोजित रात्रि भोज में शामिल होंगे। फ्रांस के एवियन शहर में 52वां G7 शिखर सम्मेलन शुरू हो गया है। सम्मेलन में विश्व की अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं के नेता प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों पर चर्चा कर रहे हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों से निपटने के लिए मिलकर काम करने के विषय पर रात्रि भोज का आयोजन किया। 3 दिन के सम्मेलन में वैश्विक असंतुलन को कम करने, बड़े भू राजनीतिक संकटों से निपटने, बच्चों से जुड़े मुद्दों और संगठित अपराध तथा अवैध धन के प्रभाव को रोकने पर चर्चा होने की संभावना है। भारत और स्लोवाकिया ने अपने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिट्सो की वार्ता के बाद प्रवासन, डिजिटल प्रौद्योगिकी और रक्षा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में 11 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग आपसी विश्वास और रणनीतिक सामंजस्य का प्रमाण है।
1: टेक्नोलॉजी हमारी भावी साझेदारी का महत्वपूर्ण स्तंभ है। डिजिटल टेक्नोलॉजी पर आज किए गए MOU इसे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में सहयोग की नई संभावनाएं बनेगी। मुझे खुशी है कि स्लोवाकिया की एक यूनिवर्सिटी में AI के विषय पर इंडिया चेयर स्थापित की जा रही है। AI मानवता की सेवा और प्रगति का सशक्त माध्यम बने, यही हमारी साचा सोच है।
0: स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके लिए स्लोवाकिया की सरकार और जनता का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि ये भारत के 140 करोड़ लोगों और भारत स्लोवाकिया की मजबूत मित्रता का सम्मान है। पश्चिम एशिया में तनाव कम होने की आशा बढ़ गई है। अमेरिका और ईरान लगभग 4 महीने से जारी संघर्ष को समाप्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण समझौते की रूपरेखा पर सहमत हो गए हैं। दोनों देशों ने समझौते पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से हस्ताक्षर होने की पुष्टि की है, जबकि औपचारिक हस्ताक्षर समारोह शुक्रवार को स्विट्जरलैंड के जिनेवा में होगा। समझौते के तहत होर्मुज जल डमरू मध्य को फिर से खोलने, समुद्री यातायात बहाल करने और ईरान के परमाणु कार्यक्रम सहित अन्य मुद्दों पर 60 दिन की वार्ता शुरू करने का रास्ता साफ होने की उम्मीद है। केंद्र ने नीट UG पुनर्परीक्षा के लिए सभी राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्रीय एजेंसियों को सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करने का निर्देश दिया है। उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने नीट UG पुनर्परीक्षा के लिए विद्यार्थियों की सुविधा, सुरक्षा व्यवस्था और परीक्षा प्रक्रिया की निष्पक्षता के संबंध में राज्य सरकारों की तैयारियों की समीक्षा की। गृह सचिव ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से विद्यार्थियों की सुगम यात्रा सुनिश्चित करने की अपील की। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष ने पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया। संघ लोक सेवा आयोग ने इस वर्ष की सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। इस वर्ष लगभग 1000 रिक्तियों के लिए 13000 से अधिक उम्मीदवारों का चयन सिविल सेवा मुख्य परीक्षा के लिए किया गया है। उम्मीदवार आयोग की वेबसाइट upsc.gov.in पर परिणाम देख सकते हैं। अंक कट ऑफ और उत्तर कुंजी अंतिम परिणाम घोषित होने के बाद वेबसाइट पर जारी की जाएगी। फीफा विश्व कप में काबो वर्डे की टीम ने प्रबल दावेदार स्पेन को 0-0 से बराबरी पर रोक दिया। पहली बार विश्व कप खेल रही काबो वर्डे के गोलकीपर वोजिन्हा ने शानदार खेल दिखाया और स्पेन को गोल करने का कोई अवसर नहीं दिया। कार्बो काडो करीब 5 लाख आबादी

वाला छोटा सा द्वीपीय देश है। इस परिणाम को टूर्नामेंट में अब तक का सबसे बड़ा उलटफेर माना जा रहा है। दामुला में एक दिवसीय क्रिकेट की त्रिकोणीय श्रृंखला के रोमांचक मैच में श्रीलंका ए ने भारत ए को सुपर ओवर में 7 रन से हरा दिया। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: Wirth. Marking its historic first appearance at the World Cup, produced an extraordinary performance to secure a 0-0 draw with global heavyweight Spain. Meanwhile, Saudi Arabia and Uruguay drew 1-1 in their opening match of Group H in Miami Stadium in the US this morning. And that is the end of this news bulletin.
1: अभी आप आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचार सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का हिसार केंद्र है। हम FM बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी के हिसार केंद्र से बोल रहे हैं। अब वक्त हो गया है हरियाणवी गीतों पर आधारित कार्यक्रम लोकरंग, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं आजाद सिंह दुहन।

0: नई सुबह, नए सवेरे की शुरुआत, आकाशवाणी सार कार्यक्रम लोक रंग के साथ। आज के लोक रंग के कलाकार हैं फूल कुमार बेलरखावे साथी। कार्यक्रम की शुरुआत में या रागनी
1: आई सू सत्य

0: सुन रहे हैं कार्यक्रम हरियाणवी लोक रंग आकाशवाणी के एसआर केंद्र से। ये कार्यक्रम आप न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी सुन सके हैं।
1: बेटी बहू ठिकाने अच्छी।

0: हरियाणवी लोक रंग हर रोज सुबह 7:10 पे प्रसारित करा जाए।
1: मैं पतिव्रता

0: ये है कार्यक्रम की आखिरी पेशकश। आज के लोकरंग के कलाकार हैं फूल कुमार बेलरखा वे साथी।
1: बोलना सच उठे मेरे।

ये सुना भाइयों, आज आपने हरियाणवी लोक रंग कार्यक्रम के तहत हरियाणवी गीत संगीत, इसी के साथ आज का हरियाणवी लोक रंग कार्यक्रम समाप्त हुआ। सारे बहन भैया ने राम राम।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम लोकरंग। ये आकाशवाणी का हिसार केंद्र है। हम एफएम बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी के हिसार केंद्र से बोल रहे हैं। अब प्रस्तुत है हमारा दैनिक कार्यक्रम सुप्रभात।

कार्यक्रम सुप्रभात में मैं सोनू अमरवाल आप सभी का स्वागत करता हूं। इस कार्यक्रम का आप बेसब्री के साथ इंतजार करते हैं, तो हाजिर हूं इस विशेष अंक में। हल्की सुबह की छांव, चहचहाते पक्षियों की आवाज और सुबह की नई उमंग जोश के साथ आपके दैनिक कार्यक्रम सुप्रभात में मैं आपका रेडियो दोस्त आपका दिल से अभिनंदन और स्वागत करता हूं। ईश्वर वंदना से जुड़ा हमारा ये कार्यक्रम आप श्रोताओं को दिल से सुकून तो देता ही होगा। ईश्वर वंदना सही मायने में उस परम शक्ति के प्रति आभार व्यक्त करने का तरीका है जिसने हमें यह जीवन, प्रकृति और जीने के साधन दिए हैं। कृतज्ञता की यह भावना मनुष्य को जीवन के प्रति अधिक आशावादी बनाती है।

आइए अब जानते हैं मौसम का हाल। मौसम का हाल कुछ इस प्रकार रहेगा। आज हिसार और उसके आसपास स्थानों में अधिकतम तापमान 36 से 42 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है। वहीं न्यूनतम तापमान 30 से 32 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद की जा रही है। आसमान की स्थिति, सुबह से दोपहर तक कई स्थानों पर बरसात की संभावना जताई गई है और उसके बाद मौसम साफ और सुहाना रहने की उम्मीद है, जो कि हमारे हृदय को सुकून देगा। वहीं आज पश्चिमी दिशा से 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के साथ हवाएं चल सकती है। तो ये तो थी मौसम से जुड़ी जानकारी।

आइए अब जानते हैं सुविचार। सफलता कभी अंतिम नहीं होती और असफलता कभी घातक नहीं होती। आगे बढ़ते रहने का साहस ही सबसे महत्वपूर्ण होता है। यह सुविचार हमें जीवन का एक महत्वपूर्ण सत्य बताता है। यदि हमें सफलता मिल जाती है तो हमें घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि सफलता स्थायी नहीं होती। उसी प्रकार यदि हम असफलता मिलती है तो हमें निराश होकर हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि असफलता भी हमेशा के लिए नहीं रहती। जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। जो व्यक्ति सफलता में विनम्र और असफलता में धैर्यवान रहता है, वही आगे चलकर बड़ी उपलब्धियां प्राप्त करता है। यकीन मानिए, किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए सबसे आवश्यक गुण है लगातार प्रयास करने का साहस। यदि हम गिरकर भी उठते रहें और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें, तो एक दिन सफलता अवश्य हमारे कदम चूमती है। इसलिए हमें सफलता से अहंकारी नहीं बनना चाहिए और असफलता से निराश नहीं होना चाहिए। दृढ़ संकल्प, निरंतर प्रयास और साहसी जीवन में वास्तविक सफलता की कुंजी है। और इसी को मद्देनजर रखते हुए मुझे दो पंक्तियां ध्यान आ रही है। हार और जीत तो जीवन का हिस्सा है, लेकिन जो हर परिस्थिति में आगे बढ़ता रहता है, वही सच्चा विजेता कहलाता है।

0: श्रोताओं, हमारे धार्मिक ग्रंथ हमारे नियम होते हैं, इन्हें पाठ करके न सिर्फ आत्मिक शांति मिलती है बल्कि मनोबल भी बढ़ता है। आइए सुनते हैं आपके प्रिय उद्घोषक और चहेती उद्घोषक ऋतु कौशिक जी से रामचरितमानस।
1: सुनि मृदु गूढ़ रुचिर बर रचना, कृपा सिंधु बोले मृदु बचना। जो कछ रुचि तुम्हरे मन माही, मैं सो दीन सब संशय नाही। अर्थात कोमल गूढ़ और मनोहर श्रेष्ठ वाक्य रचना सुनकर कृपा के समुद्र भगवान कोमल वचन बोले, तुम्हारे मन में जो कुछ इच्छा है वो सब मैंने तुमको दिया, इसमें कोई संदेह मत समझना। मातु विवेक अलौकिक तोरे, कबहू न मिटे ही अनुग्रह मोरे। बंदी चरण मनु कहे बहोरी, अवर एक बिनती प्रभु मोरी। अर्थात हे माता, मेरी कृपा से तुम्हारा अलौकिक ज्ञान कभी नष्ट नहीं होगा। तब मनु ने भगवान के चरणों की वंदना करके फिर कहा, हे प्रभु, मेरी एक विनती और है। सुत विषयिक तव पदरति हो, मोहि बड़ मूढ़ कहे किन को। मन बिनु फन जिमे जल बिनु मीना, मम जीवन तिमे तुम्ह ही अधीना। इसका अर्थ है, आपके चरणों में मेरी वैसी ही प्रीति हो जैसी पुत्र के लिए पिता की होती है, चाहे मुझे कोई बड़ा भारी मूर्ख ही क्यों ना कहे। जैसे मणि के बिना सांप और जल के बिना मछली, वैसे ही मेरा जीवन आपके अधीन रहे। असबरु मागि चरण गही रहेउ, एव मस्तु करुणानिधि कहेउ। अब तुम मम अनुशासन मानी, बसहु जाई सुरपति रज धानी। ऐसा वर मांग कर राजा भगवान के चरण पकड़े रह गए। तब दया के निधान भगवान ने कहा, ऐसा ही हो, अब तुम मेरी आज्ञा मानकर देवराज इंद्र की राजधानी में जाकर वास करो। तह करी भोग विशाल तात, गए कछुकाल पुनि होई हु अवध भूसाल। तब मैं होब तुम्हार सुती।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुप्रभात। अब वक्त हो गया इस कार्यक्रम में प्रेरक कहानी की ओर बढ़ने का। कहानी दो दीपक। एक गांव में एक बुजुर्ग व्यक्ति के घर में दो दीपक थे। पहला दीपक नया और चमकदार था, जबकि दूसरा पुराना और साधारण था। एक दिन नए दीपक ने पुराने दीपक से कहा, तुम इतने पुराने हो गए हो, अब तुम्हारी कोई कीमत नहीं रही। पुराना दीपक मुस्कुराया और चुप रहा। उसी रात गांव में तेज आंधी और बारिश आई। बिजली चली गई और चारों ओर अंधेरा छा गया। बुजुर्ग ने दोनों दीपकों को जलाने की कोशिश की। नया दीपक दिखने में सुंदर था, लेकिन उसकी बाती ठीक नहीं थी, इसलिए वह जल्दी बुझ गया। पुराना दीपक लगातार जलता रहा और पूरे घर को रोशनी देता रहा। यह देखकर नया दीपक शर्मिंदा हो गया। उसने पुराने दीपक से कहा, आज मुझे समझ में आया कि किसी की असली कीमत उसके बाहरी रूप से नहीं, अपितु उसके गुणों और उपयोगिता से होती है। पुराने दीपक ने कहा, बेटा चमक दमक कुछ समय के लिए होती है, लेकिन अनुभव, धैर्य और सेवा का मूल्य हमेशा बना रहता है। अतः इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि किसी व्यक्ति का मूल्य उसके रूप, उम्र या दिखावे से नहीं, बल्कि उसके चरित्र, अनुभव और कर्मों से होता है। हमें कभी भी किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए, हमेशा दूसरों के गुणों का सम्मान करना चाहिए।

श्रोताओं, इस सुप्रभात कार्यक्रम में आज आपका दिन मंगलमय हो, क्योंकि इस कार्यक्रम में हमने आपको जिस तरह की कहानियां और अपने ये जो गीत सुनाए, आपको सुनकर आनंद आया होगा। और आप हमारा ये कार्यक्रम हर दिन सुनते हैं, और आपकी कोई भी प्रतिक्रिया या सुझाव हो तो हमारे आकाशवाणी हिसार केंद्र के जो हमारे तमाम प्लेटफॉर्म है वहां जाकर अपने सुझाव भी प्रस्तुत कर सकते हैं। तो आपको यह कार्यक्रम आशा करते हैं कि पसंद आया होगा, और आप आकाशवाणी केंद्र हिसार के साथ यूं ही जुड़े रहिए। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुप्रभात, ये आकाशवाणी का हिसार केंद्र है, एफएम बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। हम आकाशवाणी के हिसार केंद्र से बोल रहे हैं। आइए अब आपको लिए चलते हैं

0: आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। और अब मुख्य समाचार। स्लोवाकिया ने प्रधानमंत्री मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस के एवियों में G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। कनाडा और ब्रिटेन के प्रधानमंत्रियों तथा संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। सरकार ने डीजल और विमान ईंधन पर निर्यात शुल्क बढ़ाया। पेट्रोल पर निर्यात शुल्क में कोई परिवर्तन नहीं। भारतीय जलपोत दिशा 62,370 मीट्रिक टन LNG के साथ हॉर्मुज जल डमरू मध्य से सुरक्षित निकला। दक्षिणी कैलिफोर्निया में अमरीकी वायुसेना ठिकाने पर B-52 बम वर्षक विमान हादसे में 8 लोग मारे गए। और फुटबॉल में फीफा विश्व कप में बड़ा उलटफेर करते हुए केप वर्दे की टीम ने स्पेन को 0-0 से बराबरी पर रोका। बेल्जियम और मिस्र का मैच भी 1-1 से ड्रॉ। और अब समाचार विस्तार से। स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके लिए स्लोवाकिया की सरकार और जनता का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि ये भारत के 140 करोड़ लोगों और भारत स्लोवाकिया की मजबूत मित्रता का सम्मान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्लोवाकिया यात्रा संपन्न हो गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री मोदी की स्लोवाकिया यात्रा कई मायनों में बहुत महत्वपूर्ण रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आज फ्रांस के एवियों पहुंचेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों उनका स्वागत करेंगे। प्रधानमंत्री सम्मेलन के विशेष सत्र में हिस्सा लेंगे। इस दौरान नई साझेदारियों की तलाश और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को फिर मजबूत करने पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के निमंत्रण पर फ्रांस की यात्रा पर हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि G7 शिखर सम्मेलन में भारत की ये 13वीं और प्रधानमंत्री मोदी की लगातार 7वीं भागीदारी है।
1: G7 देशों के लिए भारत का बढ़ता महत्व अब केवल रणनीतिक और कूटनीतिक स्तर तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आर्थिक और तकनीकी साझेदारियों में भी दिखाई दे रहा है। हाल ही में संपन्न भारत यूरोपीय संघ व्यापार समझौता, नीस में आयोजित भारत इनोवेट्स कार्यक्रम और पेरिस में होने वाले विवोटेक में भारत आधिकारिक AI साझेदार देश के रूप में भागीदारी इसकी स्पष्ट मिसाल है। इससे पता चलता है कि G7 देश भारत को केवल एक बड़े बाजार के रूप में नहीं, बल्कि प्रौद्योगिकी, नवाचार, विनिर्माण और मजबूत आपूर्ति श्रृंखलाओं के क्षेत्र में एक विश्वसनीय साझेदार के रूप में देख रहे हैं। गौरतलब है कि फ्रांस की G7 अध्यक्षता कई प्रमुख प्राथमिकताएं, जिनमें वैश्विक असंतुलन को कम करना, अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी को मजबूत बनाना और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जिम्मेदार उपयोग शामिल है, भारत की क्षमताओं और प्राथमिकताओं के साथ काफी हद तक मेल खाती है। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवियो फ्रांस।
0: फ्रांस के एवियो शहर में 52वां G7 शिखर सम्मेलन शुरू हो गया है। सम्मेलन में विश्व की अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं के नेता प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों पर चर्चा कर रहे हैं। 3 दिन के सम्मेलन में वैश्विक असंतुलन को कम करने, बड़े भू राजनीतिक संकटों से निपटने, बच्चों से जुड़े मुद्दों और संगठित अपराध तथा अवैध धन के प्रवाह को रोकने पर चर्चा होने की संभावना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल X

0: @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने अपनी नवीनतम समीक्षा में डीजल और विमान ईंधन ATF के निर्यात पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क SAED में वृद्धि की है। डीजल पर निर्यात शुल्क 13.05 रुपये प्रति लीटर से बढ़ाकर 14 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है। वहीं ATF निर्यात पर शुल्क 9.05 रुपये प्रति लीटर से बढ़ाकर 12.05 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है। ये वृद्धि आज से लागू हो गई है। पेट्रोल पर निर्यात शुल्क में कोई बदलाव नहीं किया गया है। तरल प्राकृतिक गैस में ले जा रहा टैंकर दिशा ने हुरमुज जल डमरू मध्य को सुरक्षित रूप से पार कर दिया है। पश्चिम एशिया में युद्ध शुरू होने के बाद से इस जलमार्ग को पार करने वाला ये पहला भारतीय LNG टैंकर है। इस टैंकर में 62,370 मीट्रिक टन LNG है और भारतीय शिपिंग निगम के अंतर्गत कंसोर्टियम यास का प्रबंधक है। अमरीका और ईरान के बीच प्रारंभिक युद्ध विराम समझौते की घोषणा के बाद से ये हुरमुज जल डमरू मध्य को पार करने वाले पहले वाणिज्यिक हाजों में से एक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत के आधार पर भारत में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के विकास के जन कल्याण के नाम से विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज बात आतंकवाद से निपटने के लिए सरकार की शून्य सहिष्णुता नीति की।
1: पिछले वर्ष 6 और 7 मई की मध्य रात्रि को भारतीय सेना द्वारा चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर ने पूरी दुनिया को यह स्पष्ट संदेश दिया कि भारत युद्ध नहीं चाहता, लेकिन आतंकवाद को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर ने यह स्पष्ट किया कि यदि आतंकवाद किसी देश की नीति का हिस्सा बनेगा तो उसका सीधा और सशक्त जवाब दिया जाएगा। इस ऑपरेशन के जरिए भारतीय सेना ने लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे आतंकवादी संगठनों के ठिकानों को निशाना बनाते हुए पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में स्थित 9 प्रमुख आतंकवादी लॉन्च पैडों को नष्ट कर दिया। इस अभियान में 100 से अधिक आतंकवादी मारे गए। वहीं 9 और 10 मई को भारत ने इतिहास रचते हुए परमाणु हथियार युक्त किसी देश के 11 एयरबेसों पर एक ही अभियान में प्रहार करने वाला पहला राष्ट्र बनने का गौरव प्राप्त किया। इस कार्रवाई के परिणाम स्वरूप पाकिस्तान वायुसेना के लगभग 20% बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में जम्मू कश्मीर में 15वीं कोर के पूर्व कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल KJS ढिल्लों ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सरकारी एजेंसी की खुफिया क्षमता और समन्वय की सराहना की।
2: इंडिया फ्रॉम द पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ,
3: भारत ने मजबूत स्थिति में होने के बावजूद जिम्मेदार लोकतंत्र और परमाणु संपन्न देश होने के नाते उनकी इस अपील को स्वीकार कर लिया। इस तरह ऑपरेशन सिंदूर ने आतंकी देश को कड़ा सबक सिखाया कि भारत पर किसी भी आतंकी कृत्य को बख्शा नहीं जाएगा।
2: नो टेररिस्ट एक्ट इन इंडिया वुड गो अनपनिश्ड।
1: वहीं 7 पड़ोसी देशों से लगी 15,000 किलोमीटर से अधिक लंबी सीमा की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भारत आज नेशन फर्स्ट के सिद्धांत पर आधारित प्रभावी विदेश नीति का पालन कर रहा है। सिलचर के प्रोफेसर अनूप कुमार डे ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि
4: 263 में से ज्यादातर हिस्सों में इंटरनेशनल जो बॉर्डर है बांग्लादेश के साथ फेंसिंग हो गया है, उसके कारण ना केवल वहां से जो अनुप्रवेश है उसमें रोक लगी है, उसके साथ साथ वहां से जो इलीगल ट्रेड होता था वो भी बंद हुआ है।
1: नरेंद्र मोदी सरकार आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति को अपनाकर देश की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: अमेरिका में दक्षिणी कैलिफोर्निया के मोजावे स्थित अमेरिकी वायुसेना के अड्डे से उड़ान भरने के तुरंत बाद B-52 बम वर्षक विमान कल रात दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें सवार सभी 8 लोगों की मौत हो गई। सोशल मीडिया पर अमेरिकी सेना ने बताया कि एडवर्स वायुसेना अड्डे पर स्थानीय समय अनुसार सुबह लगभग 11:20 पर विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने की सूचना मिलने के बाद आपातकालीन दल मौके पर पहुंच गया। इसके बाद हवाई अड्डे को बंद कर दिया गया और आने वाले विमानों का मार्ग बदल दिया गया। पश्चिम एशिया में तनाव कम होने की आशा बढ़ गई है। अमेरिका और ईरान लगभग 4 महीने से जारी संघर्ष को समाप्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण समझौते की रूपरेखा पर सहमत हो गए हैं। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
5: अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते की रूपरेखा की घोषणा से पश्चिम एशिया में उम्मीद की नई किरण जगी है। क्षेत्र के देशों ने लंबे समय से जारी तनाव को कम करने की इस पहल का स्वागत किया है। औपचारिक रूप से इस समझौते पर शुक्रवार को स्विट्जरलैंड में हस्ताक्षर किए जाएंगे। समझौते में हुरमुज जल डमरू मध्य को फिर खोलने और वार्ता जारी रहने तक युद्ध विराम बढ़ाने का प्रस्ताव है। इस घटनाक्रम का असर तेल बाजार पर भी दिखा है।

0: स्थिति में सुधार की उम्मीद के बीच तेल की कीमतों में गिरावट आई है। समझौते की घोषणा के बावजूद पूरा विवरण जारी नहीं किया गया है, इसलिए प्रतिबंधों में ढील ईरान के परमाणु कार्यक्रम और होर्मुज जलडमरू मध्य में नौ वहन नियमों पर दोनों पक्षों के बीच मतभेद अभी भी कायम है। ऐसे में इसराइल लेबनान सीमा की स्थिति इस समझौते की सफलता की अहम कसौटी बन सकती है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
1: फीफा विश्व कप में केप वर्डे की टीम ने प्रबल दावेदार स्पेन को 0-0 से बराबरी पर रोक दिया। पहली बार विश्व कप खेल रही केप वर्डे के गोलकीपर वोजिन्ना ने शानदार खेल दिखाए और स्पेन को गोल करने का कोई अवसर नहीं दिया। इस परिणाम को टूर्नामेंट में अब तक का सबसे बड़ा उलटफेर माना जा रहा है। बेल्जियम और मिस्र का मैच भी 1-1 से ड्रॉ रहा। ग्रुप एच में सऊदी अरब और उरुग्वे का मैच 1-1 से बराबरी पर छूटा। केंद्र ने नीट यूजी पुनर्परीक्षा के लिए सभी राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्रीय एजेंसियों को सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करने का निर्देश दिया है। केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक में यह फैसला किया गया। बैठक में राज्य सरकारों की तैयारियों की समीक्षा की गई। गृह सचिव ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से विद्यार्थियों की सुगम यात्रा सुनिश्चित करने की अपील की। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष ने पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया। संघ लोक सेवा आयोग ने इस वर्ष की सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। इस वर्ष लगभग 1000 रिक्तियों के लिए 13000 से अधिक उम्मीदवारों का चयन सिविल सेवा मुख्य परीक्षा के लिए किया गया है। उम्मीदवार आयोग की वेबसाइट upsc.gov.in पर परिणाम देख सकते हैं। अंक, कट ऑफ और उत्तर कुंजी अंतिम परिणाम घोषित होने के बाद वेबसाइट पर जारी की जाएगी। अमेरिका में भारत के राजदूत विनय मोहन क्वात्रा ने शिकागो स्थित भारतीय दूतावास में स्वामी विवेकानंद की आदमकद प्रतिमा का अनावरण किया। श्री क्वात्रा ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वे स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा का अनावरण करके गर्व का अनुभव कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्वामी विवेकानंद ने हम सभी के लिए सेवा और समरसता के जीवन का कालजयी संदेश दिया। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने सिंगापुर के नेशनल यूनिवर्सिटी NUS को अमरावती में वैश्विक शिक्षा केंद्र के रूप में विकसित करने उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय शाखा स्थापित करने के लिए आमंत्रित किया है, ताकि अमरावती को वैश्विक शिक्षा केंद्र के रूप में विकसित किया जा सके। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
2: धन्यवाद फरहत। अमेरिका ईरान के बीच 107 दिन से जारी युद्ध को समाप्त करने और होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलने पर सहमति बनने का समाचार आज सभी समाचार पत्रों ने अपने पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। दैनिक जागरण लिखता है, अमेरिका ईरान में समझौता, होर्मुज से निकलने लगे जहाज। जनसत्ता की सुर्खी है, स्विट्जरलैंड में 19 को समझौते पर किए जाएंगे हस्ताक्षर। ट्रंप ने नाकेबंदी खत्म करने की मंजूरी दी। प्रधानमंत्री मोदी ने समझौते का स्वागत किया। अमर उजाला के शब्द हैं, भारत के लिए बड़ी राहत, तेल आपूर्ति सुधरेगी, घटेगी महंगाई। 1000 किलोमीटर मार करने वाली स्वदेशी क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण, राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है। पत्र लिखता है, स्वदेशी माणिक टर्बोफैन इंजन का इस्तेमाल, सभी मानक पूरे किए। वैष्णो देवी के तीर्थ स्थान पर इस बार पिछला रिकॉर्ड टूटने के आसार, श्रद्धालुओं की संख्या 1 करोड़ होने के पार होने की उम्मीद, देशबंधु की खबर है। वीर अर्जुन ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करते हुए महिला किसानों की तस्वीर प्रकाशित की है। पत्र लिखता है, किसानों की किस्मत बदल देगा जेवर हवाई अड्डा। वाणिज्यिक उड़ानें शुरू, पहली उड़ान से लखनऊ पहुंचे जमीन देने वाले किसान। मॉनसून लापता, सैटेलाइट तस्वीरों में गायब हुए बादल, दैनिक भास्कर की खबर है। पत्र लिखता है, देश में 4 से 15 जून के बीच 64% कम बारिश दर्ज हुई। लोकसत्य ने अपने संपादकीय पन्ने पर भारत में पिछले कुछ वर्षों में सड़क दुर्घटनाओं में हो रही बढ़ोतरी पर लेख प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है, हर दिन सड़क हादसों में 500 जिंदगी खाक। लेखक ने विश्लेषण दिया है कि दुर्घटनाओं को रोकने के लिए ट्रैफिक पुलिस के स्टाफ और लापरवाह वाहन चालकों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने के साथ साथ लोगों द्वारा वाहन चलाने में सावधानी बरतने की जरूरत है। लेटे लेटे मोबाइल चलाना, जवानी में दे रहा बुढ़ापे का दर्द। 18 से 45 आयु वर्ग के 5400 युवाओं पर किए गए सर्वेक्षण में हुआ खुलासा। टेक्ने सिंड्रोम से गर्दन दर्द, अकड़न, कंधों में तनाव, सिर दर्द जैसी समस्याएं हो रही हैं, हिंदुस्तान की खबर है।
1: धन्यवाद जया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। स्लोवाकिया ने प्रधानमंत्री मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस के व्योम में G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। कनाडा और ब्रिटेन के प्रधानमंत्रियों तथा

संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। सरकार ने डीजल और विमान ईंधन पर निर्यात शुल्क बढ़ाया, पेट्रोल पर निर्यात शुल्क में कोई परिवर्तन नहीं। भारतीय जलपोत दिशा 62,370 मीट्रिक टन एलएनजी के साथ हुरमुज जल डमरू मध्य से सुरक्षित निकला। दक्षिणी कैलिफोर्निया में अमरीकी वायुसेना ठिकाने पर B-52 बम वर्षक विमान हादसे में 8 लोग मारे गए। और फुटबॉल में फीफा विश्व कप में बड़ा उलटफेर करते हुए केप वर्डे की टीम ने स्पेन को 0-0 से बराबरी पर रोका। बेल्जियम और मिस्र का मैच भी 1-1 से ड्रॉ। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

ज्यादा होने लगा है। जंगलों पेड़ों की कटाई चरम पर है। पेड़ों की कटाई के वक्त शायद हमारा ध्यान इस ओर नहीं जाता कि एक दिन काटे गए ये वृक्ष हमसे बदला लेंगे। इनकी कटाई से धरती मां रुष्ट होंगी और अब धरती का कोप हम लगातार देख रहे हैं। चलिए इस बरस थोड़ी कोशिश करें इन बातों को नियमित रूप से अमल करने की।

ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन के कारण पूरी विश्व में पानी की कमी हो रही है और साथ ही जल प्रदूषण का खतरा भी सर उठा रहा है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2013 को अंतर्राष्ट्रीय जल सहयोग वर्ष घोषित किया था, जिसके तहत सभी देशों को जल आपूर्ति हो सके इसका प्रयास किया गया। खेती में पानी की जरूरत बहुत ज्यादा होती है। अब तो बहुत सारे देशों और प्रांतों में ये भी ध्यान रखा जाता है कि ऐसे बीजों का प्रयोग किया जाए जिससे कम जल में ज्यादा उत्पादन किया जा सके। इन सब बातों के मूल में है जल, यानी पानी कीमती है, ये घट रहा है, इसे बचाएं, पानी की हिफाजत करें।

दोस्तों, झीलों, नदियों और समुद्र के पानी लगातार प्रदूषित हो रहे हैं। जल प्रदूषण जल में रहने वाले जीवों, पादपों और संपूर्ण जैविक तंत्र के लिए विनाशकारी है। जल प्रदूषण के कारण क्या हैं, ये हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है। नदियों में जानवरों या इंसानों की मृत काया को यूं ही प्रवाहित कर देना, इसके अलावा औद्योगिक कचरा को नदियों, जलाशयों में फेंक देना, इससे बहुत बड़े स्तर पर जल प्रदूषण होता है। ये प्रदूषित जल हमारे घरों में रिसाइकल के बाद पीने के काम आता है। प्रदूषित जल पीना स्वास्थ्य के लिए बेहद हानिकारक है, ये हम सब जानते हैं।

नमस्कार, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस जोशीले गाने के साथ, भाग मिल्खा भाग फिल्म से। सिद्धार्थ महादेवन के बोल, माफ कीजिएगा, सिद्धार्थ महादेवन की आवाज में बोल है प्रसून जोशी के, संगीत शंकर एहसान लॉय का।

0: धरती के सीने पर पांव रखना चाहा। सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
1: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।

desire.

बंगिस्तान फिल्म से सुन रहे थे आप ये गाना सोना मोहापात्रा अभिषेक नैलवाल और शादाब फरीदी की आवाजों में, पुनीत कृष्णा के बोल थे और म्यूजिक राम संपत का। चित्रलोक कार्यक्रम के बाकी गाने इस अंतराल के बाद।

आप सुन रहे हैं चित्रलोक कार्यक्रम। आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं बॉलीवुड में द डिस्को किंग कहे जाने वाले पद्म भूषण से सम्मानित लेजेंडरी एक्टर मिथुन चक्रवर्ती का बर्थडे।

0: डिस्को डांसर इस फिल्म से सुन रहे थे आप ये गाना पार्वती खान की आवाज में अंजान के बोल और संगीत बप्पी लहरी का। अलका याग्निक और सोनू निगम की आवाज में आप सुन रहे हैं लकी नो टाइम फॉर लव। इस फिल्म से ये गाना समीर के बोल है और संगीत है अन्नान सामी का।
1: चोरी चोरी चुपके से आके मेरी आंखों में समा जा, धीरे धीरे सपनों की सुनी सुनी दुनिया।

0: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पर मेहनत किया।
0: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।

वसुंधरा दास, केके और शान के साथ लॉय मेंडोसा की आवाजों को आप सुनेंगे कल हो ना हो फिल्म्स में। जावेद अख्तर के बोल, शंकर एहसान लॉय का म्यूजिक।

धुरंधर द रिवेंज इस फिल्म से आप सुन रहे थे ये गाना। इस गाने को गाया था जैस्मिन सैंडलाज ने और इस गाने में रैप किया था रिबेल ने। इस गाने की लिरिक्स लिखी है जैस्मिन सैंडलाज ने और रिबेल, म्यूजिक है शाश्वत सचदेव का।

0: सिद्धार्थ बसरूर और प्रिया सरैया की आवाज में सुन रहे थे आप ये गाना। इस गाने को लिखा था प्रिया सरैया ने, इसके म्यूजिक तैयार किया है सचिन जिगर ने और फिल्म है अ जेंटलमैन।
1: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
2: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
1: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
0: चित्रलोक कार्यक्रम के बाकी गाने सुनिए इस अंतराल के बाद।

चित्रलोक कार्यक्रम का अगला गाना बयां कर रहा है लाइफ की एक ऐसी फिलॉसफी जो बनाएगी आपके हर दिन को खास। शान और अनुष्का मनचंदाना की आवाज में गोलमाल 3 फिल्म से कुमार के बोल म्यूजिक है प्रीतम का।

ये है विविध भारती। आज के फनकार कार्यक्रम आप सुनेंगे कुछ ही पलों के बाद।

0: धरती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: म्यूजिक थेरेपी की संगीत से बीमारों का इलाज भी होता था।
0: संगीतकार नौशाद।
1: अब उस्तादों ने कहा है, पंडितों ने लिखा है कि जितने शार्प नोट हैं वो इंसान में चुस्ती पैदा करते हैं। तो जैसे देखिए सूरज की पहली किरण फूटती, राग में एक शार्प नोट शुरू होता है, ललित का मध्यम शार्प लगती है कि अब इंसान को उठना है, मुंह हाथ धोना है, काम पड़ा। तो जैसे जैसे सूरज चढ़ता जाएगा एक एक शार्प नोट, जैसे सूर्य अस्त होने लगता है एक एक कोमल जोर शर्मिल होना शुरू होता है। तो ये देखिए बड़ी भारी साइंस है। अगर कोई फिल्म में गाना वाना बना लिया, लोगों को पसंद आ गया, तो कोई कमाल नहीं हुआ। ये तो इतना बड़ा साइंस है कि सोचो तो ये लगता है कि अभी है, हमको तो जर्रा भी हमारे पास नहीं है।
0: ऐसी अद्भुत यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

आज के फनकार कार्यक्रम में आज बातें एक ऐसे गायक, संगीतकार और निर्माता की, जिनके बारे में सलील चौधरी ने कहा था, अगर ईश्वर किसी आवाज में गाते तो वो हेमंत कुमार की आवाज में ही गाते।

0: जी हाँ, आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित है गायक, संगीतकार और निर्माता हेमंत कुमार पर।
1: देखिए वो काली काली बदलिया, जुल्फ की घटा चुरा न ले कहीं, चोरी चोरी आके शोक।

हेमंत कुमार का जन्म 16 जून 1920 को हुआ था बनारस में। ये जानकर आपको हैरत हो सकती है कि हेमंत कुमार का ताल्लुक बनारस से रहा था। उनके पिता वहां काम किया करते थे। बाद में उनका परिवार कोलकाता चला गया था, लेकिन बनारस से ताल्लुक होने का एक बहुत बड़ा फायदा हेमंत कुमार को किस गाने में मिला, याद है आपको? फिल्म मुनीम जी का ये गाना सुनिए। किस बनारसी अदा के साथ हेमंत कुमार ने इस गाने को

हाँ, तो मैं कह रहा था कि हेमंत कुमार का जन्म तो भले बनारस में हुआ था, लेकिन उनका परिवार बाद में चला गया कोलकाता। कोलकाता में हेमंत कुमार को संगीत का शौक लगा और वहां उनकी संगीत की शिक्षा दीक्षा चलने लगी। 12वीं की परीक्षा देने के बाद हेमंत कुमार बंगाल टेक्निकल इंस्टीट्यूट जादवपुर आ गए और इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने लगे। इंजीनियरिंग की पढ़ाई में उनका मन नहीं लगता था, इसलिए वो संगीत की ओर बढ़ गए। हालांकि माता पिता ने इसका घना विरोध किया, लेकिन उन्होंने संगीत की अपनी रुचि को छोड़ा नहीं। बीच में एक दौर ऐसा आया जब उन्होंने लिखने की तरफ भी अपने कदम बढ़ाए। जानी मानी बांग्ला पत्रिका देश में उन्होंने अपनी कहानी प्रकाशित करवाई। सन 1930 के दशक के आखिर में वो संगीत की दुनिया में चले आए। सन 1935 में हेमंत कुमार मुखोपाध्याय ने कोलकाता के आकाशवाणी केंद्र पर अपना पहला बांग्ला गीत रिकॉर्ड करवाया। हेमंत कुमार ने उस्ताद फैयाज खां और फणीभूषण गांगुली से भी संगीत की तालीम ली थी। सन 1937 में हेमंत कुमार का पहला ग्रामोफोन रिकॉर्ड आया कोलंबिया के बैनर तले। इसके बाद हेमंत कुमार की ख्याति बढ़ती चली गई। सन 1941 हेमंत कुमार ने पहली बार फिल्मों में गाया। ये बांग्ला फिल्म थी निमाई संन्यास और इसके संगीतकार थे हरि प्रसन्न दास। हेमंत कुमार ने अपने पहले हिंदी गीत रिकॉर्ड करवाए फिल्म इरादा में सन 1944 में। इस फिल्म के संगीतकार थे पंडित अमरनाथ और गाने लिखे थे अजीज काश्मीरी ने। हेमंत कुमार रवींद्र संगीत के विशेषज्ञ माने जाते थे। सन 1944 में बांग्ला फिल्म प्रिय बंधावी के लिए उन्होंने रवींद्र संगीत रिकॉर्ड किया था पहली बार। बतौर संगीतकार हेमंत कुमार की पहली फिल्म थी अभियात्री। ये बांग्ला फिल्म सन 1947 में आई थी।

1940 के दशक के मध्य में हेमंत कुमार इप्टा में शामिल हो गए और वो जननाट्य करने लगे। यहाँ सलील चौधरी भी उनके साथ शामिल थे। सन 1943 में बंगाल में पड़े अकाल के दौरान जन जागृति का काम किया इप्टा ने, और सन 1947 में हेमंत कुमार ने अपना गैर फिल्मी गीत रिकॉर्ड किया गनेर बंधु, जिसमें संगीत सलील चौधरी का था। हेमंत कुमार इस दौर में बांग्ला फिल्मों में संगीत दे रहे थे। इनमें से कई फिल्मों के निर्देशक हेमेन गुप्ता थे। कुछ समय बाद हेमेन गुप्ता मुंबई फिल्म जगत में पैर जमाने के लिए चले आए और इसके बाद उन्हें मिली फिल्मिस्तान की फिल्म आनंद मठ। फिल्म आनंद मठ का निर्देशन करते समय हेमेन गुप्ता ने कोलकाता से हेमंत कुमार को भी मुंबई बुला लिया। इस तरह से मुंबई में हेमंत कुमार की पहली फिल्म बनी सन 1952 में आई आनंद।

इसी फिल्म में हेमंत कुमार ने लता मंगेशकर की आवाज में रिकॉर्ड किया वंदे मातरम। आनंद मठ ने मुंबई में हेमंत कुमार के पैर जमा दिए। इसके बाद उन्होंने फिल्मिस्तान की फिल्म की

इसी दौरान बतौर प्लेबैक सिंगर हेमंत कुमार की ख्याति बढ़ती चली जा रही थी। देवानंद की फिल्म जाल में सचिन देव बर्मन ने हेमंत कुमार से ये गाना गवाया।

के बाद आई घर नंबर 44, फिर देवानंद के लिए हेमंत कुमार ने ये शरारती गीत गाया फिल्म 16 साल के लिए।

50 के दशक तक हेमंत कुमार एक प्रसिद्ध गायक और संगीतकार बन चुके थे। सन 1954 हेमंत कुमार के करियर की नई ऊंचाई फिल्म नागिन। फिल्म नागिन के सभी गाने बेहद लोकप्रिय हुए।

सन 1955 में हेमंत कुमार को मिला सर्वश्रेष्ठ संगीतकार का पहला फिल्म फेयर पुरस्कार फिल्म नागिन के लिए। 1950 के दशक के आखिर में हेमंत कुमार ने अपना बैनर शुरू किया हेमंता बेला प्रोडक्शंस, और इस बैनर के तले उन्होंने बनाई फिल्म नील आकाशेर नीचे। ये फिल्म सन 1959 में आई थी और इसके निर्देशक थे मृणाल सेन। इस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार हासिल हुआ था। इसके तकरीबन 10 साल बाद हेमंत कुमार ने एक नया प्रोडक्शन हाउस खोला। इस बार उन्होंने नाम रखा गीतांजलि प्रोडक्शंस। हिंदी सिनेमा के इतिहास की कुछ बेमिसाल फिल्में दी गीतांजलि ने, जैसे 20 साल बाद, कोहरा, बीवी और मकान, फरार, राहगीर और खामोशी, जिसका गुलजार का लिखा ये गीत दिल की गहराई में उतर जाता है।

हेमंत कुमार के गाने सीधे दिल की गहराइयों में उतरते हैं। उनकी आवाज में एक गंभीरता है, दूसरी तरफ उनकी आवाज में एक शोखी भी नजर आती है। कुछ खास गानों में यूं लगता है जैसे कोई दार्शनिक नदी के किनारे अपना

आज भी हेमंत कुमार को सुनने वालों की कमी नहीं है। हेमंतदा की आवाज विविध भारती ही नहीं दुनिया भर के रेडियो चैनलों पर गूंजती है और लोग उनकी आवाज को याद करते हैं, उन्हें नमन करते हैं। हेमंत कुमार बतौर संगीतकार बड़े ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं। यहां हम आपके लिए लेकर आए हैं बतौर संगीतकार उनकी कुछ निराली रचनाएं।

0: फिल्म मिस मैरी साल 1957, किशोर कुमार का ये मजाहिया गाना।
1: गाना न आया, बजाना न आया,

0: बनाना न।
1: 26 सितंबर 1989, 69 साल की उम्र में कोलकाता में हेमंत कुमार मुखोपाध्याय ने आखिरी सांस ली। रह गई उनकी आवाज, उनका दिया हुआ संगीत और उनकी बनाई हुई

0: आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था गायक, संगीतकार और निर्माता हेमंत कुमार पर। शोध, आलेख और स्वर यूनुस खान, संपादन और प्रस्तुति रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

अभी आप सुन रहे थे विविध भारती के प्रसारण FM बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी का हिसार केंद्र है। श्रोताओं, अब वक्त है कार्यक्रम नमस्ते हिसार का।

0: नमस्कार श्रोताओं, वो मिट्टी जहां संस्कार बोलते हैं, वो हवा जहां इतिहास सांस लेता है, और वो लोग जिनके दिलों में हरियाणा धड़कता है। आज का ये मंच, आज की ये शाम समर्पित है आप सबके नाम। ये केवल एक शहर नहीं, ये शौर्य है, संस्कार है, संस्कृति है, जहां परंपरा आधुनिकता से हाथ मिलाती है और हर मुस्कान में अपनापन बसता है। इसी गौरव को नमन करते हुए आप सबका स्वागत है कार्यक्रम नमस्ते हिसार में। आज हमारे साथ कुछ नए लोग जुड़े हैं और हम आशा करते हैं कि आप उन्हें भी उतना ही स्नेह देंगे जितना हमें देते हैं। तो आज के इस कार्यक्रम में सबसे पहले मैं जोड़ती हूँ पंकज बिंदाल को।
1: नमस्कार श्रोताओं, अभी आप सुनेंगे नमस्ते हिसार। सबसे पहले शुरू करते हैं हम अपने शहर के हाल से। आज की पहली खबर की शुरुआत शहर को मिलने जा रही सौगात से। जी हाँ, लक्ष्मीबाई चौक से टाउन पार्क तक दिल्ली रोड बनाया जाएगा 6 लेन। शहर को जाम से मुक्ति दिलाने और यातायात व्यवस्था को सुव्यवस्थित बनाने के लिए सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। शहर के लक्ष्मीबाई चौक से टाउन पार्क की मौजूदा 4 लेन सड़क को अब 6 लेन में बदला जाएगा। बीएनडर विभाग के इस प्रोजेक्ट को मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने प्रशासनिक मंजूरी दे दी है। इस पूरे प्रोजेक्ट पर

करीब 30 करोड़ 8 लाख रुपए खर्च होने की उम्मीद है। वर्तमान में यह रोड 7 मीटर चौड़ा है। 6 लेन होने के साथ इसकी चौड़ाई 10 मीटर हो जाएगी। यह रोड डाबड़ा पुल से उतरकर टाउन पार्क से लक्ष्मीबाई चौक तक पहले फेज में 6 लेन होगा और दूसरे फेज में बीकानेर चौक से सिरसा चुंगी तक होगा। दोस्तों, 6 लेन बनने से शहरवासियों को यातायात सुगम होगा, उनके समय की और ईंधन की बचत होगी और शहरी विकास की गतिविधियों को भी रफ्तार मिलेगी।

चलिए अब रुख करते हैं हमारी दूसरी खबर की ओर। AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता। जी हाँ, आज के तकनीकी नवाचार के दौर में AI जीवन के हर पहलू को छू रहा है। शिक्षा विभाग ने शिक्षण की गुणवत्ता में सुधार लाने के उद्देश्य से AI आधारित गुरु मित्र ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप के माध्यम से शिक्षक बेहतर पाठ योजनाएं तैयार कर सकेंगे, साथ ही मूल्यांकन, शैक्षणिक कंटेंट और कक्षा प्रबंधन से जुड़े कार्यों में भी उन्हें काफ़ी सहायता मिलेगी। विभाग ने सरकारी स्कूलों के सभी शिक्षकों को गुरु मित्र ऐप डाउनलोड करने के निर्देश दे दिए हैं। ऐप के माध्यम से शिक्षक किसी भी विषय का चयन कर विद्यार्थियों के स्तर के अनुसार अनुकूलित पाठ योजनाएँ तैयार कर सकेंगे।

दोस्तों, अब बात करते हैं मौसम के हाल की। जून के इस महीने में बीच बीच में हो रही बारिश ने शहरवासियों को तपती गर्मी से निजात दी है। कल हुई बारिश ने मौसम को सुहाना बना दिया है। अगर हम बात करें आने वाले दिनों के मौसम की, तो मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक बिखराव वाली हल्की बारिश होने की उम्मीद जताई है।

0: बच्चों की एक अलग दुनिया होती है। और यदि आपको चाहिए इस दुनिया में एंट्री तो ढूंढिए अपने भीतर छुपे बच्चे को।
1: एरोप्लेन एरोप्लेन अप इन द स्काई, वेयर आर यू गोइंग? फ्लाइंग सो हाई ओवर द माउंटेन ओवर द सी, एरोप्लेन एरोप्लेन प्लीज टेक मी।
2: बचपन की मुस्कुराहटों और गुदगुदाहटों से भरा कार्यक्रम बाल सभा
0: हर रविवार सुबह 10:30 पर
2: सिर्फ आकाशवाणी हिसार 102.3 FM पर।
3: अर्ज किया है, रांझे ने हीर को कबूतर से खत भिजवाया। रांझे ने हीर को कबूतर से खत भिजवाया और एक जैसी छतों को देख कबूतर ने खत गलत पते पर गिराया। कबूतर की गलती ने बेचारे रांझे को सरे बाजार बहुत पिटवाया। तब हीर ने रांझे को समझाया,
4: अरे बुद्धू, मैसेज ही भेजना था तो ईमेल से क्यों नहीं भिजवाया?
5: RADIOHISAR यानी रेडियो

0: radiohisar@gmail.com पर।
1: आप भी भेजिए अपने मैसेज ईमेल के माध्यम से अपनी पसंद के गाने सुनने के लिए कार्यक्रम ई फरमाइश में
0: हर मंगलवार शाम 5 बजे
1: सिर्फ आकाशवाणी हिसार 102.3 FM पर। हिंदुस्तान जमीन है सितारों की।
2: अगर तुम्हारी आरजू एक कमीज है तो सारी जिंदगी इसी तरह जब्त करना होगा।
0: एक से बढ़कर एक उम्दा फनकारों की।
1: कोई साहित्य में सर्वश्रेष्ठ है?
3: न था कुछ तो खुदा था, कुछ ना होता तो खुदा होता।
0: तो कोई विज्ञान में अद्वितीय है?
4: Will he be remembered as a great scientist, say it, like Thomas Alva Edison?
1: कोई कला में उत्कृष्ट है?
5: भागमशाय।
0: तो कोई संगीत का शिरोमणि?
1: किंतु कोई है जो इन सब को ले आया है आपके लिए, आपके घर में, आपके बेहद करीब।
0: कार्यक्रम एक शख्सियत
1: हर सोमवार शाम 5 बजे
0: सिर्फ आकाशवाणी हिसार 102.3 FM पर।
6: श्रोताओं नमस्ते, हिसार में एक बार फिर आपका स्वागत है। चलिए अब बढ़ते हैं कार्यक्रम के उस सेगमेंट की ओर जिसमें हम आपसे पूछते हैं सामान्य ज्ञान पर आधारित दो प्रश्न। हम आज आपसे दो प्रश्न पूछेंगे। हमारा आज का पहला प्रश्न है, अशोक चक्र पाने वाली प्रथम महिला कौन है? मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, अशोक चक्र पाने वाली प्रथम महिला कौन है? हमारा दूसरा प्रश्न रहेगा, भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? एक बार फिर रिपीट करेंगे, भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो श्रोताओं उठाइए अपना फ़ोन और इन सवालों को सही जवाब भेज दीजिए हमें हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर। हमारा नंबर है 9729253272। नंबर एक बार फिर सुन लीजिए, 9729253272। जब तक आप हमें इन सवालों के सही जवाब भेजते हैं तब तक लीजिए इस प्यारे से गाने का आनंद।

0: श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं, जो श्रोता इन सवालों का सबसे पहले सही जवाब देता है तो हम उनका नाम प्रसारित करते हैं। तो सही सवालों के जवाब के साथ लिख भेजिए अपनी पसंद का गीत। तब तक मैं आपको लिए चलता हूँ नीलम जी की ओर।
1: नमस्ते हिसार में आपकी रेडियो साथी नीलम का सभी श्रोताओं को सादर नमस्कार। श्रोता, जैसा कि आप जानते हैं, भारत देश में भिन्न भिन्न प्रकार की संस्कृति पाई जाती है। भारत की संस्कृति वो गंगा है जिसमें डुबकी लगाते ही मन पवित्र हो जाता है। विविधता में एकता का मतलब अलग अलग रीति रिवाज, पहनावा, खान पान सब यहाँ देखने को मिलता है। भारत की संस्कृति की बात करते हुए आज हम बात करते हैं भारतीय पहनावे की और भारतीय खान पान की। श्रोताओं, पहनावा केवल शरीर ढकने का साधन नहीं, बल्कि यह संस्कृति, परंपरा, मौसम, अवसर और क्षेत्रीय पहचान को दर्शाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं पुरुषों के पहनावे की। धोती प्राचीन और धार्मिक अवसरों पर पहनी जाती है। कुर्ता पाजामा रोजमर्रा और त्योहारों में प्रचलित है। शेरवानी अचकन विवाह और विशेष समारोह में प्रचलित है। पगड़ी पगड़ी जो सम्मान, प्रतिष्ठा और परंपरा का प्रतीक है। श्रोताओं, इसके बाद हम बात करते हैं महिलाओं के पारंपरिक पहनावे की। सबसे भारत का सबसे प्राचीन और सुंदर वस्त्र है साड़ी। बनारसी, कांजीवरम, पैठणी जैसी क्षेत्रीय साड़ियाँ हर क्षेत्र में अपने अपने हिसाब से प्रचलित हैं। सलवार कमीज, लहंगा चोली उत्तर और पश्चिम भारत में लोकप्रिय है। घाघरा राजस्थान और गुजरात में प्रचलित है और आभूषण में चूड़ी, बिंदी, पायल, नथ, मंगलसूत्र इत्यादि। पंजाब में फुलकारी सलवार और कमीज प्रचलित है। राजस्थान में रंगीन घाघरा और ओढ़नी। दक्षिण भारत की बात करें तो वहां पर साड़ियां प्रचलित हैं। वहां की साड़ियां सादी किंतु भव्य साड़ियां होती हैं। उत्तर पूर्वी भारत में हथकरघा वस्त्र प्रचलित हैं। भारत का पहनावा सादगी, सौंदर्य, संस्कार का अद्भुत संगम है। श्रोताओं, बातों का सिलसिला जारी रहेगा। सुनते हैं एक प्यारा सा नगमा।

0: मैं माँ बनने वाली हूँ, बस यही चाहती हूँ कि मेरा बच्चा स्वस्थ हो।
1: स्वस्थ बच्चे के लिए गर्भावस्था में HIV और सिफिलिस की जांच करवाना बहुत जरूरी है।
0: क्या ये जांच उपलब्ध है?
2: जी हाँ, सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में HIV और सिफिलिस की जांच तथा उपचार निःशुल्क उपलब्ध है। समय पर जांच और उपचार से माँ और बच्चे दोनों को सुरक्षित रखा जा सकता है।
3: याद रखें, HIV और सिफिलिस का समय पर पता लगने से संक्रमण को बच्चे तक पहुंचने से रोका जा सकता है।
2: गर्भावस्था में HIV और सिफिलिस की जांच अवश्य करवाएं। स्वस्थ माँ, स्वस्थ शिशु, स्वस्थ परिवार।
3: अधिक जानकारी के लिए राष्ट्रीय टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन नंबर 1097 पर कॉल करें या अपने नजदीकी ICTC केंद्र से संपर्क करें।
4: हरियाणा स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।
5: दादी, कौन सा प्लांट है?
6: टेंजरीन, बहुत मीठा होता है, तोड़ना नहीं है।
7: फ्री फॉरेन ट्रिप, क्लिक ऑन द लिंक, अभी करता हूँ।
5: दादी रुको, लिंक में क्लिक मत करना।
7: क्यों?
5: ये SMS स्कैम है, क्लिक करोगे तो आपके बैंक डिटेल्स होंगे चोरी।
7: ओह, थैंक्स गप्पू, बचा लिया। ये देख, तेरी समझदारी का फल।
8: RBI कहता है स्मार्ट बनो, कूल रहो।
9: नमस्ते हिसार में आपका फिर से स्वागत है, आपकी रेडियो दोस्त नीलम के साथ। श्रोताओं, हम बात कर रहे थे भारत की संस्कृति में पहनावे और भारत के खान पान की। तो अब बात करते हैं हम भारत के खान पान की। भारतीय खान पान दुनिया भर में अपनी विविधता, स्वाद और स्वास्थ्य लाभ के लिए प्रसिद्ध है। भोजन को ईश्वर का प्रसाद माना जाता है। खाने से पहले हाथ धोना, प्रार्थना करना, पत्तल या थाली में बैठकर खाने की परंपरा है भारत में। भारत में शाकाहार की परंपरा बहुत मजबूत है। दाल, सब्जी, चावल, रोटी, दही, ये सब भोजन यहाँ प्रचलित है। कई क्षेत्रों में मांस मछली का भी प्रचलन है। उत्तर भारत में रोटी

पराठा, दाल मखनी, सब्जियां। दक्षिण भारत में इडली, डोसा, सांबर, चावल ये सब प्रचलित है। पश्चिमी भारत में ढोकला, थेपला, दाल भाटी इत्यादि प्रचलित है। पूर्व भारत में चावल, मछली, मिठाइयाँ। उत्तर भारत में सादा, पौष्टिक और स्थानीय भोजन। मसालों की बात करें तो हल्दी, अदरक, जीरा, धनिया भोजन को एक अत्यंत स्वादिष्ट स्वाद देते हैं। भोजन को औषधि माना जाता है। ऋतु के अनुसार भी खान पान भारत में प्रचलित है। त्योहारों में भी भिन्न भिन्न प्रकार के भोजन बनाए जाते हैं। होली में गुजिया, विवाहों में विशेष भोजन, व्रत में सात्विक भोजन। भारतीय खान पान स्वास्थ्य और संस्कार का संतुलन है। भारतीय पहनावा और खान पान हमारी संस्कृति की आत्मा है। ये हमारी जड़ों को हमसे जोड़ते हैं और दुनिया में भारत की एक विशेष और अलग पहचान बनाते हैं। श्रोताओं, बातों का सिलसिला आपके साथ यूं ही बरकरार रहेगा। सुन लेते हैं एक प्यारा सा नगमा।

आप सभी श्रोताओं के प्रश्नों के जवाब आने शुरू हो चुके हैं। इससे पहले कि हम आप लोगों के नाम पढ़े, मैं आपको इन दोनों प्रश्नों के सही जवाब बता देता हूँ। हमारा पहला सवाल था, अशोक चक्र पाने वाली प्रथम महिला कौन थी? इसका सही जवाब है नीरजा भनोट। हमारा दूसरा प्रश्न था, भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? इसका उत्तर है 8 अक्टूबर। और इस कड़ी में काफ़ी सारे श्रोताओं के सही जवाब आए हैं। ये हमारे लिखने वाले श्रोता है भोला कॉलोनी घरोंडा से, विजेंद्र कुमार जयजान, कांता रानी, गुंजन, साहिल और वाणी जयजान, गांव कलाना, तहसील बादरा, जिला हनुमानगढ़, राजस्थान से विक्रम कड़वासरा, सचिन, योगेश, स्थित और युद्धो कड़वासरा। अगले हमारे श्रोता है गांव हंडीखेड़ा, जिला सिरसा, हरियाणा से राधेश्याम शर्मा, इंदिरा शर्मा और सार्थक शर्मा। ये हमारे श्रोता रहेंगे पल्लवी कालड़ा, पटेल नगर, हिसार से। अगले हमारे श्रोता है गांव जीवरा, हिसार से वीरेंद्र भ्यान, सुरेंद्र भ्यान, शमशेर और मनोज भ्यान। और अगले हमारे श्रोता है गांव नलोई, तहसील शिवानी मंडी से सज्जन कुमार जांगड़ा, राजबाला।

राधेश्याम शर्मा, इंदिरा शर्मा और सार्थक शर्मा, ये हमारे श्रोता रहेंगे पल्लवी कालड़ा पटेल नगर हिसार से। अगले हमारे श्रोता है गांव जीवरा हिसार से वीरेंद्र भ्यान, सुरेंद्र भ्यान, शमशेर और मनोज भ्यान। और अगले हमारे श्रोता है गांव नलोई तहसील शिवानी मंडी से सज्जन कुमार जांगड़ा, राजबाला।

0: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं नमस्ते हिसार। आगे के सेगमेंट के लिए मैं आपको सोनू अमरवाल जी के साथ जोड़ूंगी।
1: श्रोताओं, कार्यक्रम नमस्ते हिसार में आज हम बात करते हैं मिथुन चक्रवर्ती जी की, क्योंकि भारत के एक प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता है और केंद्र हिसार से हम उनके इस जन्म दिवस के ऊपर उनको ढेर सारी शुभकामनाएं प्रेषित कर रहे हैं। मिथुन चक्रवर्ती हिंदी सिनेमा के दिग्गज अभिनेता हैं। उन्हें डिस्को डांसर के रूप में खासी लोकप्रियता मिली। 3 बार के राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता मिथुन दाह ने 350 से ज्यादा फिल्मों में अभिनय किया है और 2024 में उन्हें देश के तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण से नवाजा गया है। आइए उनके मुख्य जीवन परिचय के बारे में कुछ जानते हैं। मूल नाम गोरंगा चक्रवर्ती, जन्म तिथि 16 जून 1950 और उनका जन्म स्थान कोलकाता पश्चिम बंगाल में। उनके अगर एजुकेशन की बात की जाए तो फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे में इन्होंने अपनी पढ़ाई की। फिल्मी करियर, पहली फिल्म मृग्या 1976 जिसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पहला राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। सफलता 1982 में रिलीज हुई फिल्म डिस्को डांसर ने उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुपरस्टार बना दिया। लोकप्रिय फिल्मों की बात करें तो वांटेड, जागीर, जाल, कमांडो और वक्त की आवाज। सम्मान और पुरस्कार, 3 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, मृग्या, तहादेर कथा, स्वामी विवेकानंद, भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित 2024 में। राजनीतिक सफर की बात की जाए तो राज्यसभा सांसद के रूप में 2014 से 16 तक राज्यसभा सदस्य रहे। उन्हें सफर और डिस्को डांसर से पद्म भूषण तक की उनकी गौरवशाली यात्रा के बारे में और उनको डेडिकेटेड करते हैं ये गीत उनके जन्म दिवस पर।

श्रोताओं, कार्यक्रम नमस्ते हिसार में एक बार फिर आप सभी का पुनः अभिनंदन है। इस कार्यक्रम में हर रोज बात करते हैं खास दिन की, उसी कड़ी में आज हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक पोषण दिवस की। हर साल 16 जून को मनाया जाता है। यह दिन उन 20 करोड़ से अधिक प्रवासी श्रमिकों के योगदान को सम्मान देने और मान्यता देने के लिए समर्पित है, जो विदेशों में कड़ी मेहनत करके अपने परिवारों को आर्थिक मदद भेजते हैं। इस दिवस के मुख्य पहलू उद्देश्य प्रवासी कामगारों द्वारा अपने परिवारों की भलाई, शिक्षा, स्वास्थ्य और अपने मूल देशों के सतत विकास में किए गए वित्तीय योगदान को पहचानना है। इस दिवस की शुरुआत पहली बार 2008 में अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष द्वारा की गई थी। इसके बाद संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इसे आधिकारिक मान्यता दी। आर्थिक महत्व, विदेशों में काम कर रहे भारतीयों सहित अन्य देशों के लाखों प्रवासी अपने घर पैसे भेजकर न केवल अपने परिवारों का जीवन स्तर सुधारते हैं, बल्कि अपने देश की अर्थव्यवस्था में भी महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। यह पैसा ग्रामीण विकास और गरीबी अभियान में एक बड़ा उत्प्रेरक माना जाता है।

तो दोस्तों इसी के साथ आज के नमस्ते हिसार से विदा लेने का समय आ गया है। उम्मीद है ये पल आपके दिन को बेहतर बनाएंगे, आपके मन में नई ऊर्जा भरेंगे। फिर मुलाकात होगी नई सुबह, नई बातों और नए एहसास के साथ। तब तक याद रखिए, आप सुन रहे हैं नमस्ते हिसार। ऐसे ही जुड़े रहिए आकाशवाणी हिसार से।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नमस्ते हिसार, एफएम बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का हिसार केंद्र है। लीजिए श्रोताओं, अब प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी का अगला भाग।

0: यह है धमधा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि ओशिका, आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल जी ने। इन्होंने पर्यावरण संदेश भेजा है, लिखते हैं,
1: आज जल पेट्रोल डीजल बचाओगे कल बहुत सुख पाओगे।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतने खूबसूरत पर्यावरण संदेश के लिए। अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो ग्राम नागर कोहरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जामुन देवी साहू, समीक्षा बेबी आराध्या साहू लिखते हैं,
1: आदरणीय अजीत सर जी, विमलेश मैम जी, सब प्रेम नमस्ते। इस हफ्ते ये भी जानिए मैं फूलों की जानकारी से हमारा हर पल महक उठा। बहुत सुंदर जानकारी थी। नव तपा की इस चिलचिलाती गर्मी में इन फूलों की जानकारी ने हमें शीतलता प्रदान की। प्रोग्राम की शानदार, मस्त, मनभावन, लाजवाब प्रस्तुति के लिए NCERT की पूरी टीम को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं एवं साधुवाद। आपकी इस अथक मेहनत को हम दिल से नमन करते हैं।
0: आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें प्रोत्साहित करने वाले इतने सुंदर संदेश के लिए। अगला संदेश हमें मिला है रानीगांव नगरी छत्तीसगढ़ से अखिलेश कुमार साहू, चित्ररेखा साहू और शुभम सेजल साहू।
1: बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिंपल देवांगन।
0: और कस्बा बराड़ा जिला अंबाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका और मन्नत।
1: और भटीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता और कमला देवी गुप्ता।
0: आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके संदेश श्रोताओं हमें हमेशा प्रोत्साहित करते हैं। इसी तरह से भेजते रहिए संदेश और जुड़े रहिए उमंग कार्यक्रम के साथ।
1: स्वागत है आप सबका श्रृंखला ये भी जानिए कि अगली कड़ी में। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं कि इस श्रृंखला की कड़ियों में हम लेकर आते हैं देश विदेश की रोचक जानकारियाँ,
0: इतिहास, भूगोल, विज्ञान, साहित्य और अनेकानेक विषयों की जानकारियाँ।
1: आशा है आपको वे जरूर पसंद आती होंगी। तो अजीत जी, क्या विषय रहेगा हमारा इस सप्ताह की चर्चा का?
0: विमलेश जी, इस सप्ताह हमारी चर्चा होगी भारत की अनूठी और खूबसूरत झीलों के बारे में।
1: जी अजीत जी, बहुत अच्छा विचार है। तो श्रोताओं, इस सप्ताह हम आपको उमंग कार्यक्रम के माध्यम से लेकर चलेंगे भारत की सुंदर झीलों तक और लेंगे उनकी रोचक जानकारियाँ। लेकिन आइए सबसे पहले जानते हैं कि झील किसे कहते हैं या इसकी सामान्य परिभाषा क्या है।
0: श्रोताओं, सामान्य भाषा में कहें तो धरती के किसी गड्ढे नुमा भाग में चारों ओर से घिरा हुआ स्थिर जल का संग्रह झील कहलाता है। यहाँ का पानी खारा और मीठा दोनों हो सकता है। वैसे कई झीलों में जलधाराएं भी गिरती हैं। लेकिन श्रोताओं, एक प्रश्न और उठता है कि चारों ओर से भूमि से घिरा हुआ जल का संग्रह ये तालाब भी तो हो सकता है, तो तालाब और झील में अंतर क्या है? जी, आपको बताते हैं। तकनीकी रूप से तालाब और झील अलग अलग हैं। सबसे पहली बात, झील का आकार सामान्यतः बहुत बड़ा होता है जबकि तालाब का अपेक्षाकृत बहुत छोटा। झील की गहराई बहुत अधिक होती है जबकि तालाब की अपेक्षाकृत कम। झील का निर्माण अधिकतर, यदि आप ध्यान दें, तो प्राकृतिक होता है जबकि अधिकांश तालाब मानव निर्मित होते हैं। तो श्रोताओं, ये थी सामान्य जानकारी झील की। आज हम चर्चा करेंगे भारत की एक अनोखी झील के बारे में। इसका नाम है लोकटक झील। ये भारत के मणिपुर राज्य की राजधानी इम्फाल से करीब 50 किलोमीटर की दूरी पर मोयरंग में स्थित है। श्रोताओं, आपको बता दें कि लोकटक झील पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। झीलें तो बहुत हैं हमारे देश में, लेकिन आइए जानते हैं जरा कि इस झील में ऐसी कौन सी बात है जो इसे दूसरी झीलों से अलग बनाती है। तो आपको बता दें श्रोताओं, लोकटक झील को तैरते हुए द्वीपों वाली झील कहा जाता है। अब आप कहेंगे कि तैरती हुई झील का क्या मतलब? तो आपको बताते हैं कि इस झील पर मिट्टी, पौधों और ऑर्गेनिक चीजों से निर्मित घने दलदली समूह हैं जो तैरते हुए द्वीपों की तरह दिखाई देते हैं, जिन्हें हम फुमदी कहते हैं। सचमुच ये बड़ी अनूठी बात है। और श्रोताओं, एक बात और आपको बता दें कि इस झील में दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है जिसका नाम है केबुल लामजाओ। लेकिन एक प्रश्न श्रोताओं मन में आता है और मुझे लगता है कि ये भी आपको बहुत रोचक लगेगा कि आखिर ये द्वीप तैरते कैसे हैं। जी, इसके बारे में थोड़ी जानकारी आपको दे दें। एक बड़ी दिलचस्प बात है, इम्फाल हवाई अड्डे पर उतरने वाले अधिकांश यात्री विमान लोकटक झील के ऊपर से ही गुजरते हैं। विमान की खिड़की से झील साफ साफ दिखाई देती है और ऊपर से देखने पर ऐसा लगता है जैसे झील पर बहुत सारी गोल गोल सी दिखने वाली आकृतियां हैं। तो अब आप पूछेंगे कि ये आकृतियां क्या हैं? तो आपको बताते हैं, जैसा कि हमने पहले भी बताया, इन्हें स्थानीय भाषा में फुमदी कहा जाता है। ये इतने मजबूत होते हैं कि इन पर लोग झोपड़ियां बनाकर रहते हैं। और हाँ श्रोताओं, इन झोपड़ियों में उनके पालतू जानवर भी रहते हैं। यहाँ रहकर लोग छोटी मोटी खेती भी करते हैं और मछलियां पकड़ते हैं। आपको एक बात और बता दें कि लोकटक झील को देखने के लिए देश विदेश से लोग आते हैं। वे आसपास की सुंदरता को देखते हैं और बोटिंग करते हैं। जी हाँ श्रोताओं, लोकटक झील सैलानियों के आकर्षण का केंद्र तो है ही। कहा जाता है कि मणिपुर में यदि लोकटक झील नहीं देखी तो फिर कुछ नहीं देखा। आपको बता दें, लोकटक झील जैव विविधता से भरी

0: हुई है। यहाँ लगभग 233 जलीय पौधों की प्रजातियां पाई जाती हैं। तो श्रोताओं, कभी यदि आप इस क्षेत्र में आए तो अक्सर दुकानों में, होटलों पर और सामुदायिक स्थानों में आपको हिरण की तस्वीर देखने को मिल जाएगी। जी हाँ, इसे संगाई हिरण कहते हैं। इसे नाचने वाला हिरण भी कहा जाता है। ये दुर्लभ हिरण यही मिलता है और ये मणिपुर का राजकीय पशु है। लोकटक झील के आसपास ये बहुत अधिक संख्या में पाए जाते हैं। तो श्रोताओं, आज की चर्चा को समाप्त करने से पहले आपको बता दें कि लोकटक झील मणिपुर की जान है, क्योंकि विद्युत उत्पादन से लेकर जलापूर्ति और हजारों लोगों की आजीविका का ये मुख्य आधार है। तो यदि कभी आपको इम्फाल जाना हो तो अपनी घूमने की सूची में सबसे ऊपर रखिए लोकटक झील। सचमुच यहाँ फुंगी से बने हुए तैरते द्वीपों को जब आप देखेंगे तो सचमुच आश्चर्य में पड़ जाएंगे। तो श्रोताओं, ये थी हमारी आज की जानकारी भारत की प्रसिद्ध अनूठी लोकटक झील की। अब आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। प्रश्न है, लोकटक झील में तैरते द्वीप किस चीज से बने हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए, लोकटक झील में तैरते हुए द्वीप किस चीज से बने हैं? हाँ, आप अपना उत्तर और संदेश हमारे ईमेल पर भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in। आप हमारा IBS नंबर भी नोट कर दें, 8800440559। और हाँ, आप हमें यानी CIET NCERT को इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी फॉलो कर सकते हैं। इससे आपको हमारी शैक्षिक गतिविधियों की अद्यतन जानकारी मिलती रहेगी। तो अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो आइए सुनते हैं आज का सबसे पहला कार्यक्रम, वो आखिरी पत्ता।
1: साथियों नमस्कार।
2: नमस्कार साथियों,
1: आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं कक्षा 9 की अंग्रेजी की पूरक पाठ्य पुस्तक मोमेंट्स के एक पाठ की कथा नाट्य प्रस्तुति। शीर्षक है द लास्ट लीफ, यानी आखिरी पत्ता।
2: ये कहानी प्रसिद्ध अमेरिकी कहानीकार ओ हेनरी द्वारा 1905 में लिखी गई थी। ओ हेनरी का पूरा नाम था ओलिवर हेनरी। तो आइए सुनते हैं ये कथा नाट्य प्रस्तुति।
1: अमेरिका की राजधानी है वॉशिंगटन। इसी शहर का एक बहुत सुंदर कस्बा है जो ग्रीनविच विलेज के नाम से जाना जाता है। प्राकृतिक रूप से ये बहुत ही रमणीक और सुरम्य गांव है, इसीलिए इस गांव में अक्सर बहुत से चित्रकार आया करते थे
2: ताकि यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता को वो अपने कैनवस पर उतार सकें और दुनिया के सामने ग्रीनविच गांव की खूबसूरती का नजारा पेश कर सकें। इसी ग्रीनविच गांव में एक दिन दो लड़कियां रहने के लिए आईं। वो दोनों चित्रकार थीं और वो भी वहां के सौंदर्य को अपने कैनवस पर उतारना चाहती थीं। एक थी कैलिफोर्निया से और एक थी मेन से।
1: इन लड़कियों में से एक का नाम था जॉन्सी और दूसरी का नाम था सू। दोनों साथ साथ रहने लगी और उन्होंने चित्रकारी शुरू कर दी।
3: अरे जॉन्सी, तुम इतनी सुबह सुबह अपना पेंट ब्रश और कैनवस लेकर कहाँ चल दी?
4: ओ सू, ग्रीनविच के सुहाने सूर्योदय को अपने कैनवस पर उतारने जो है।
3: अरे हाँ, तो चलते हैं और यहाँ की सुंदरता को घर लेकर आते हैं, वो भी अपने अपने कैनवस पर।
4: यस।
2: साथियों, वो मिली तो थी वसंत के महीने में, लेकिन धीरे धीरे शरद ऋतु शुरू हो गई और अब भयंकर सर्दी का मौसम था। उस भयंकर शरद ऋतु में अचानक एक अजनबी ने ग्रीनविच गांव में प्रवेश किया और उसने अपने ठंडे हाथों से लोगों को छूना शुरू किया। उस अजनबी को डॉक्टरों ने नाम दिया था मिस्टर निमोनिया। उसके ठंडे स्पर्श में राहत नहीं थी बल्कि मौत थी। अब ये महामारी बन गई थी दोस्तों। बहुत से लोग गंभीर रूप से बीमार पड़ गए थे, जिनमें एक जॉन्सी भी थी। वो गंभीर रूप से बीमार थी और दिन प्रतिदिन कमजोर होती जा रही थी।
1: उसकी मित्र सू उसकी बहुत सेवा करती थी।

0: मुश्किल से उसने किसी डॉक्टर से संपर्क किया और दवाओं का इंतजाम किया। एक दिन जब डॉक्टर उसे देखने आया तो उसने नोट किया कि जॉन्सी उससे ठीक से बात भी नहीं कर रही है, बस हां हूं कर रही है। डॉक्टर ने एक खास बात नोटिस की कि जॉन्सी बस खिड़की की ओर लगातार देखती जा रही थी।
1: साथियों, डॉक्टर ने उधर भी देखा लेकिन उसे कुछ समझ में नहीं आया। उसने सू से कहा,
2: सू
3: जी,
2: जॉन्सी तुम्हारी दोस्त है।
3: जी हाँ
2: भाई, मुझसे तो वो ठीक से बात नहीं कर रही, जरा उससे पूछकर मालूम करो कि उसे ऐसी क्या तकलीफ है।
3: जी डॉक्टर साहब।
2: और वो क्यों हमेशा खिड़की की तरफ देखती रहती है?
3: मैं पूछती हूँ।
0: दूसरे दिन सू ने गौर से देखा तो उसे समझ में आया कि जॉन्सी अपनी बड़ी बड़ी आंखों से खिड़की के बाहर किसी चीज को घूरते हुए कुछ बुदबुदा रही है।
1: वो धीरे से उसके पास गई और सुनने की कोशिश करने लगी।
4: 15, 40
3: क्या?
0: थोड़ी देर के लिए वो चुप रही, फिर उसने गिना, लेकिन इस बार उसने कुछ जल्दी में गिना, जैसे कुछ जल्दी जल्दी घटित हो रहा हो।
4: 13, 12, 11 ओह
3: जॉन्सी,
4: अब सब कुछ जल्दी जल्दी हो रहा है सू।
1: सू ने जॉन्सी को झकझोरा और पूछा,
4: क्या गिन रही हो? 11, 10, 9 ओह, उस दिन वो करीब 100 थे, लेकिन सू, अब वो बहुत कम हो गए।
3: क्या कम हो गए हैं?
4: पहले मुझे गिनने में मुश्किल होती थी, लेकिन हाँ, अब मैं इन्हें गिन सकती हूँ, आसानी से गिन सकती हूँ सू।
0: सू ने फिर से बाहर देखा। खिड़की के सामने बस एक आईवी क्रीपर का पेड़ था जो पतझड़ की मार से बहुत बुरी हालत में था, लगभग अधमरा सा, बस कुछ पीली पत्तियां दिखाई दे रही थी। सू ने उसे दोबारा झकझोरा और पूछा,
3: जॉन्सी, उस दिन क्या 100 थे जब कम हो गए हैं? तुम क्या गिन रही हो?
4: 6, 9, 6, 5, 4 ओह
3: जॉन्सी, तुम्हें क्या हो गया है? मुझे डर लगने लगा है, खिड़की में तो कुछ नहीं है, तुम क्या गिन रही हो? उधर नहीं, मेरी तरफ देखो जॉन्सी। मेरी तरफ देखो
4: सू, ओनली 4 ओह, अब सिर्फ 3 बचे हैं।
3: क्या 3 बचे हैं? What's 3 dear?
4: 3 पत्तियां।
3: पत्तियां?
4: हाँ, खिड़की के पास जो आईवी क्रीपर का पेड़ है ना सू,
3: हाँ हाँ,
4: मैं उसकी पत्तियां गिन रही हूँ। मुझे लगता है,
3: क्या लगता है?
4: यही कि बस अब 3 पत्तियां बची हैं, और जिस दिन आखिरी पत्ता गिर जाएगा ना, उस दिन
3: क्या जॉन्सी?
4: उस दिन मेरी मौत हो जाएगी सू।
3: ओह नो, ये क्या कह रही हो तुम जॉन्सी? ऐसा कुछ नहीं है, ये तुम्हारा भ्रम है।
4: नहीं, ये तय है सू कि उस दिन मेरी मौत हो जाएगी सू।
3: हाँ
4: सू, अब सिर्फ 3 पत्तियां बची हैं, ज्यादा समय नहीं है मेरे पास सू।
3: ओ जॉन्सी,
0: साथियों, सू ने उसे बहुत समझाया। उसी दिन डॉक्टर भी आ गए। डॉक्टर ने भी बहुत समझाया, सारे तर्क दिए, लेकिन जॉन्सी मानने को तैयार नहीं थी।
1: अचानक उस दिन कुछ अजीब सा हुआ। एक बूढ़ा व्यक्ति जॉन्सी को देखने आया। सभी उस बूढ़े व्यक्ति को सनकी और लगभग पागल

0: समझते थे।
1: उस व्यक्ति का नाम था मिस्टर बेयरमैन। वो बहुत दिनों से ग्रीनविच गांव में रह रहे थे।
0: वो चित्रकार थे। बहुत बार उन्होंने चित्रकारी में असफलता देखी थी और लोगों का मजाक भी सहा था। वो घर घर घूमकर हमेशा लोगों से कहा करते थे,
2: मैं अपनी चित्रकारी से एक मास्टरपीस बनाना चाहता हूँ जो अब तक नहीं बना पाया, लेकिन बनाऊंगा जरूर।
1: लोग उसे देखते ही उससे कतराने लगते थे। लोग उस पर हंसते और कहते, देखो मास्टरपीस वाला बुड्ढा आ रहा है। जब वो जॉन्सी को देखने के लिए आए तो सू ने उन्हें बताया कि वो किस वजह से पत्ते गिन रही है।
0: इतने में जॉन्सी ने अपनी दुर्बल आवाज में फिर से गिना,
3: अब सिर्फ दो पत्तियां ही बची हैं।
1: मिस्टर बेयरमैन ने बड़ी खामोशी से सू को देखा और एक लंबी सांस लेने के बाद गंभीरता से कहा,
2: जॉन्सी अभी मैं जा रहा हूं, लेकिन देखना तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं जल्दी ही तुम्हें देखने आऊंगा।
1: इतना कहकर तेज कदमों से मिस्टर बेयरमैन वहां से चले गए।
0: अब मात्र दो पत्तियां ही बची थी। दूसरे दिन की शाम एक पत्ता और गिर गया। सुबह हुई तो जॉन्सी ने देखा अब सिर्फ एक ही पत्ता बचा हुआ है। उसका दिल धक धक कर रहा था। वो सोचने लगी,
3: ओह, आखिरी पत्ता, अब शायद

0: 来。
1: साथियों, जॉन्सी खिड़की की ओर देखती रही और इस तरह पूरा दिन बीत गया, पर वो आखिरी पत्ता अभी भी वहीं था। हैरत की बात तो ये कि दूसरा दिन भी बीत गया पर पत्ता वहीं का वहीं था। जॉन्सी खिड़की की ओर टकटकी लगाए बैठी रही और इस दौरान बर्फबारी के साथ पतझड़ के मौसम की बारिश शुरू हो गई। साए साए आंधी चलने लगी। रात भर रुक रुक कर बारिश होती या बर्फ गिरती।
2: जैसे ही सुबह हुई, जॉन्सी ने सू से कहा,
3: सू, मेरी दोस्त।
4: हाँ जॉन्सी।
3: जरा वो खिड़की खोल दे, मैं देखना चाहती हूँ कि वो आखिरी पत्ता वहाँ है या नहीं। खोल जरा खिड़की सू।
1: सू की तो मानो रूह ही कांप गई थी। कांपते हुए हाथों से डरते डरते सू ने खिड़की खोली। जॉन्सी ने खिड़की की ओर देखा, लेकिन आश्चर्य, वो पत्ता अभी भी गिरा नहीं था। सुहानी सुबह थी, मंद मंद हवा चल रही थी, आकाश मानो पूरी तरह से धुला हुआ था, चमकता हुआ सूरज निकल आया था। वो आखिरी पत्ता हवा में कांपता हुआ अभी भी वहीं का वहीं था। फिर अचानक जॉन्सी को कुछ हुआ और उसने सू को बुलाया और कहने लगी,
3: सू।
4: हाँ जॉन्सी।
3: सू, ऐसा लगने लगा है कि मुझे नई जिंदगी मिलेगी। मैं नहीं मरूंगी।
4: हाँ बिल्कुल,
3: अब मैं नहीं मरूंगी सू।
4: बिल्कुल जॉन्सी।
3: हाँ, इसलिए ये पत्ता नहीं गिरा।
4: पत्ता?
3: हाँ, मेरी सोच अच्छी नहीं थी जो मैंने अपनी मृत्यु के बारे में सोचा। देखो ना, वो पत्ता अभी भी वही है।
4: हाँ हाँ, मैंने देखा, मैंने देखा जॉन्सी, मैंने देखा।
3: देखो, अब वो वहीं पर है। अभी वो नहीं गिरा सू।
4: हाँ जॉन्सी, वो वहीं पर है, वहीं पर है।
3: हाँ हाँ।
2: दो दिन और बीत गए, वो पत्ता वहीं का वहीं था। जॉन्सी अब ठीक होने लगी थी। डॉक्टर ने आकर उसे चेक किया और कहा,
5: गुड, थैंक गॉड, अब इसकी तबीयत अच्छी हो गई है, ये लड़ाई जीत जाएगी।
2: जॉन्सी मुस्कुराई और उसने खिड़की की ओर देखा। वो आखिरी पत्ता वही था, पर डॉक्टर के जाने के बाद सू ने कहा,
4: जॉन्सी, कैसा महसूस कर रही हो?
3: बेहतर।
4: ये लो, कॉफी पियो।
3: थैंक यू
4: जॉन्सी। एक बुरी खबर भी है।
3: क्या हुआ?
4: वो मिस्टर बेरमन, उनकी कल अस्पताल में मौत हो गई।
3: कौन बेरमन? वही बुरे कलाकार?
4: हाँ।
3: ओह, जो मुझे उस दिन देखने आए थे?
4: हाँ वही।
3: ओह, जो कहते थे मैं मास्टरपीस बनाऊंगा, वही ना?
4: हाँ वही मिस्टर बेरमन।
3: ओह गॉड,
4: उनकी हालत दरअसल उसे बहुत खराब हो गई थी जब तुमने वो आखिरी पत्ता देखा था। जॉन्सी, मैं तुम्हें एक राज की बात बताना चाहती हूँ।

0: क्या
1: क्या कभी तुम्हें ये ख्याल नहीं आया कि सारे पत्ते इस पतझड़ में गिर गए, पर वो आखिरी पत्ता
0: क्यों नहीं गिरा?
1: हाँ,
0: क्यों नहीं गिरा? आखिर क्या हो सकता है सू?
2: जॉन्सी सोच में पड़ गई। फिर सू ने कहा,
1: जॉन्सी, जिस दिन वो आखिरी पत्ता बचा था ना, उसके दूसरे दिन किसी ने मिस्टर बैरमन को हमारी ही खिड़की के पास बहुत बुरी हालत में पाया। उनके जूतों में बर्फ भरी हुई थी और उनके पेंच ब्रश और कैनवस इसी आईवी क्रीपर पेड़ के पास पड़े पाए गए थे, जहां वो रात भर पेंटिंग करते रहे।
0: पेंटिंग?
1: हाँ।
0: कैसी पेंटिंग?
1: जो पत्ता तुम देख रही हो वो कुछ और नहीं लेकिन मिस्टर बैरमैन की पेंटिंग है, जो उन्होंने आखिरी पत्ते के गिरने के बाद उस कड़कड़ाती सर्दी वाली रात में उस पेड़ पर चिपका दी थी।
0: ओह, तो वो पेंटिंग है?
1: हाँ।
0: असली पत्ता नहीं है?
1: नहीं।
0: लेकिन सू, कितना असली लग रहा है।
1: हाँ जॉन्सी, बिल्कुल असली है ना मास्टरपीस?
0: हाँ सू, मास्टरपीस। वो कहा करते थे कि मैं कभी ना कभी मास्टरपीस बनाऊंगा, और सू, उन्होंने बना दिया।
1: हाँ जॉन्सी,
0: आखिर बना दिया उन्होंने मास्टरपीस सू।
1: हाँ, उन्होंने बना दिया।
0: उन्होंने बचा दिया मुझे, उन्होंने मेरी जान बचा ली सू, बचा लिया उन्होंने मुझे, उन्होंने मरने से बचा लिया मुझे सू।
1: हाँ
0: मास्टरपीस।
1: हाँ
0: मास्टरपीस, वो आखिरी पत्ता, वो आखिरी पत्ता।
3: डबडबाई आंखों से जॉन्सी ने एक बार फिर से खिड़की के बाहर देखा। वो आखिरी पत्ता वही था जो अब मास्टरपीस बन गया था।
2: ग्रीनिच गांव के कलाकार एक एक करके आ रहे थे और उस आखिरी पत्ते को विस्मय और श्रद्धा से निहार रहे थे। जॉन्सी और सू की आंखों से कृतज्ञता के आंसू बह रहे थे, मानो वे अश्रु अविरल बहकर उस बूढ़े कलाकार को श्रद्धांजलि दे रहे हो।
4: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वो आखिरी

0: सोशल मीडिया पर कभी ऐसी सामग्री न भेजें जिससे किसी की भावना को चोट लगे। छानबीन किए बिना और सत्यता की जांच किए बिना किसी भी सूचना को शेयर न करें। सावधान रहें और जिम्मेदार नागरिक बनें। NCERT द्वारा जनहित में जारी।
1: और अब इसी के साथ

0: हमारा आज का उमंग प्रसारण यहीं पर समाप्त होता है, तो अब अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार। उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी का अगला भाग। एफएम बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का हिसार केंद्र है। लीजिए श्रोताओं, अब आनंद लीजिए एक बार फिर विविध भारती के प्रसारणों का।

0: किशोर कुमार, मुकेश, मोहम्मद रफी, लता मंगेशकर की आवाजों में गीत अभी आप सुन रहे थे अमर अकबर एंथनी फिल्म से। आनंद बख्शी ने इसे लिखा था और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।
1: एक जानी माने पेंटर जो अपने कैनवस और ब्रश से रचते हैं एक जादुई दुनिया, एक सम्मोहक यात्रा।
2: हमारे देश के प्रमुख चित्रकार जगदीश स्वामीनाथन, उन्होंने आदिवासी कला को भी समकालीन कला की तरह रखा था और सारे आदिवासी कलाकारों से भी मिलना जुलना और फिर गांव जाना उसने बहुत मदद करी एक मनुष्य के देखने को समझने में।
1: कुछ बातें जो इतनी दिलचस्प हैं कि आप खो जाएं।
2: मैंने ये सोचना शुरू किया कि मेरे चित्र में ऐसा क्या है जो मनुष्य को संबोधित है।
1: जाने माने पेंटर अखिलेश से एक बातचीत।
2: जितना ज्यादा समय आप अपने काम को देंगे उतना ज्यादा आप उसके बारे में सीख सकते हैं, जान सकते हैं।
1: आज के मेहमान 24 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रंग तरंग और लीजिए सुनिए अब ये गीत बरसात की रात फिल्म से।

0: बरसात की रात से कवाली अभी आप सुन रहे थे मन्ना डे, आशा भोसले, सुधा मल्होत्रा और साथियों की आवाजों में। साहिर लुधियानवी ने इसे लिखा और रोशन का संगीत था।
1: तेरा ख्याल मेरे दिल से जा नहीं सकता, तमाम उम्र मैं तुझको

मेरी दीवानगी तू ही तो है। काश तुझे खबर होती ये जिंदगी तुझ बिन हर लम्हा मुझे तड़पाती है। मैं क्या करूं जिंदगी से भागकर कहां जाऊं।

0: दीवाना एल्बम से आप सुन रहे थे सोनू निगम को। फैज अनवर ने इस गीत को लिखा था और साजिद वाजिद का संगीत था।
1: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
2: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं,

0: मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
1: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है। पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
2: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रंग तरंग।

आलिशाज लव नोट, ये एल्बम से आप अभी ये गीत सुन रहे थे। आलिशा की आवाज में और साथ दिया था बाबुल सुप्रियो ने। संदीप चौटा ने संगीत दिया, नितिन रायकवार ने इसे लिखा।

तलत अजीज की आवाज में ये रचना अभी आप सुन रहे थे। इब्राहिम अश्क ने इसे लिखा, असद अली का संगीत था। इसके साथ ही आज का ये रंग तरंग कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है।

0: यह है विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। फ्रांस के एवियन शहर में 52वां G7 शिखर सम्मेलन शुरू हो गया है। सम्मेलन में विश्व की अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं के नेता प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों पर चर्चा कर रहे हैं। 3 दिन के इस सम्मेलन में वैश्विक असंतुलन को कम करने, बड़े भू राजनीतिक संकटों से निपटने, बच्चों से जुड़े मुद्दों और संगठित अपराध तथा अवैध धन के प्रवाह को रोकने पर चर्चा होने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आज दोपहर पहुंचेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों उनका स्वागत करेंगे। प्रधानमंत्री सम्मेलन के विशेष सत्र में हिस्सा लेंगे। इस दौरान नई साझेदारियों की तलाश और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को फिर सुदृढ़ करने पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के निमंत्रण पर फ्रांस की यात्रा पर हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि G7 शिखर सम्मेलन में भारत की ये 13वीं और प्रधानमंत्री मोदी की लगातार 7वीं भागीदारी है।
2: G7 देशों के लिए भारत का बढ़ता महत्व अब केवल रणनीतिक और कूटनीतिक स्तर तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आर्थिक और तकनीकी साझेदारियों में भी दिखाई दे रहा है। हाल ही में संपन्न भारत यूरोपीय संघ व्यापार समझौता, नीस में आयोजित भारत इनोवेट्स कार्यक्रम और पेरिस में होने वाले विवोटेक में भारत आधिकारिक AI साझेदार देश के रूप में भागीदारी इसकी स्पष्ट मिसाल है। इससे पता चलता है कि G7 देश भारत को केवल एक बड़े बाजार के रूप में नहीं, बल्कि प्रौद्योगिकी, नवाचार, विनिर्माण और मजबूत आपूर्ति श्रृंखलाओं के क्षेत्र में एक विश्वसनीय साझेदार के रूप में देख रहे हैं। गौरतलब है कि फ्रांस की G7 अध्यक्षता कई प्रमुख प्राथमिकताएं, जिनमें वैश्विक असंतुलन को कम करना, अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी को मजबूत बनाना और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जिम्मेदार उपयोग शामिल है, भारत की क्षमताओं और प्राथमिकताओं के साथ काफी हद तक मेल खाती हैं। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवियो फ्रांस।
1: इससे पहले स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से सम्मानित किया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने बताया है कि आगामी नीट UG पुनर्परीक्षा के लिए पिछले 24 घंटों में 10 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने अपने प्रवेश पत्र डाउनलोड कर लिए हैं। पुनर्परीक्षा 21 जून को होगी। इस बीच पारदर्शिता बढ़ाने और पेपर लीक की आशंकाओं को समाप्त करने के लिए सरकार ने 22 जून तक टेलीग्राम ऐप पर ऑनलाइन संदेश भेजने पर रोक लगा दी है। NTA ने कहा है कि ये प्रतिबंध नीट पुनर्परीक्षा के दिन और उसके तुरंत बाद तक लागू रहेगा। एजेंसी ने कहा कि टेलीग्राम को 30 तारीख तक पहले से

0: पोस्ट किए गए संदेशों को संपादित करने की सुविधा को भी बंद करने का निर्देश दिया गया है। भारत ने आगाह किया है कि अगर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का विस्तार केवल अस्थायी सदस्यता तक ही सीमित रखा गया तो इसमें सुधार के प्रयास नाकाम हो सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि हरीश पर्वतानेनी ने सुरक्षा परिषद में सुधारों पर अंतर सरकारी विचार विमर्श बैठक में ये बात कही। श्री पर्वतानेनी ने कहा कि वीटो का अधिकार रखने वाले 5 स्थायी सदस्यों चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और अमरीका के निर्णय लेने के तौर तरीकों में बदलाव की भी आवश्यकता है। ओमान के तट पर हुई एक दुखद समुद्री घटना के बाद एमटी सिटेबेलो जहाज के चालक दल के 21 भारतीय सदस्य सुरक्षित घर लौट आए हैं। ओमान के मस्कट स्थित भारतीय दूतावास ने आज बताया कि राजदूत ने बचाए गए चालक दल के सदस्यों से उनके प्रस्थान से पहले मुलाकात की, उन्हें शुभकामनाएं दी और इस कठिन परिस्थिति में उनके धैर्य और दृढ़ता की सराहना की। दूतावास ने विदेशों में भारतीय नागरिकों के कल्याण और सुरक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। नागालैंड में आज से जनगणना 2027 का पहला चरण शुरू हो रहा है। मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने नागरिकों से स्वगणना प्रक्रिया में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने को कहा है। स्वगणना की सुविधा 30 जून तक उपलब्ध रहेगी। घर घर जाकर जानकारी जुटाने का काम अगले महीने की 1 जुलाई से 30 जुलाई तक किया जाएगा। आज सुबह के सत्र में घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में मामूली तेजी देखी गई। नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार सेंसेक्स 318 अंक बढ़कर 76582 और निफ्टी 66 अंक बढ़कर 23920 पर था। भारत ने न्यूजीलैंड में महिला एफआईएच हॉकी नेशंस कप के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। पूल ए के दूसरे मैच में भारत ने जापान को 2-1 से हराया। इस जीत के साथ भारत 6 अंकों के साथ पूल ए में शीर्ष पर पहुंच गया है। पुरुष हॉकी में नीदरलैंड में एफआईएच हॉकी प्रो लीग में कल भारत का सामना जर्मनी से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये है विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम यादों की महफिल।

विजय और साथियों की आवाजों में ये गीत अभी आप सुन रहे थे। डिस्को डांसर फिल्म का नाम था अनजान में, से लिखा बप्पी लहरी का संगीत था। और आज इस प्रोग्राम में यादों की महफिल में आपको सुनवा रहे हैं अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती पर फिल्माए गीत, उनकी फिल्मों से गीत। आज उनका जन्मदिन है और विविध भारती परिवार की ओर से अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं।

0: गुलामी फिल्म से ये गीत अभी आप सुन रहे थे, गुलजार ने इसे लिखा था। लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार की आवाजों में ये गीत अभी आपने सुना। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज है।
1: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
2: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
1: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम यादों की महफिल।

कुमार सानू और सुजाता गोस्वामी की आवाजों में ये गीत अभी आप सुन रहे थे। फूल और अंगार फिल्म का नाम था। रानी मलिक ने इसे लिखा और अनु मलिक का संगीत।

फिल्म गोलमाल 3 से ये गीत अभी आप सुन रहे थे सुदेश भोसले की आवाज में, कुमार ने इसे लिखा था और अमर मोहिते का संगीत था। आप सुन रहे हैं इस वक्त यादों की महफिल विविध भारती से।

बैनी दयाल, श्रेया घोषाल, ए आर रहमान की आवाज में ये गीत अभी आप सुन रहे थे युवराज फिल्म से। माफ कीजिए, श्रेया घोषाल की आवाज में ये गीत अभी आप सुन रहे थे। गुलजार ने इसे लिखा था और ए आर रहमान का संगीत था।

लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार की आवाजों में ये गीत अभी आप सुन रहे थे, प्यार झुकता नहीं फिल्म का नाम। एसएच बिहारी ने इसे लिखा था, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज थी।

फिल्म गुरु से ये गीत अभी आप सुन रहे थे एआर रहमान और चिन्मयी की आवाजों में गुलजार ने इसे लिखा। एआर रहमान का संगीत था। आज यादों की महफिल में अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती अभिनीत फिल्मों से चुनिंदा गीत हमने आपको सुनवाए। इसके साथ ही ये प्रोग्राम संपन्न होता है।

0: श्रोताओं, बहुत बहुत स्वागत आप सबका। प्रोग्राम है सुरीला सफर। मैं हूं अनुराधा, आज आपके इस सफर में आपके संग। जैसे कि आप सब जानते ही हैं कि इस प्रोग्राम में हमारी तरफ से एक इबारत या टेक्स्ट पोस्ट किया जाता है, जिसमें से आपको शब्द चुनने होते हैं और साथ ही साथ उन शब्दों से कौन से गीत आज इस प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं ये बताना है। तो ये तो आप बखूबी करते हैं और लंबी लिस्ट मुझ तक पहुंच चुकी है, बहुत सारे गीत आ चुके हैं कि कौन कौन से होंगे। और आपको बता दें कि एक गीत की फरमाइश, या यूं कहें कि एक गीत को पहचाना है आपने बहुत अच्छे तरीके से, और हो सकता है उसी गीत से हमारी आज के इस प्रोग्राम की शुरुआत हो। देखते हैं आपकी ये लिस्ट और हमारी लिस्ट गीतों की कितनी मेल खाती है। साथ ही साथ उन श्रोताओं के लिए जिन्होंने अभी अभी ट्यून इन किया है, उनके लिए इबारत एक बार फिर से पढ़ देते हैं। तो इबारत कुछ इस प्रकार है, कभी कभी यूं ही जिंदगी में मोहब्बत किसी अजनबी हसीना से मिल जाती है और दिल वीरान राहों पर ख्वाबों की रानी बनकर खिल जाता है। तुम्हारी याद में लिखे खतों के पन्नों पर हजारों रंग के नजारे उधर आते हैं जब तुम्हारे दो नयन मुस्कुराते हैं। मेरा दिल का चैन भी लौट आता है, ये जुल्फे रेशमी जाने कैसी खुशबू बिखेर जाती है। तुमने दिल को ऐसे चुरा लिया है कि सांसें भी तुम्हारा नाम गुनगुनाती है। बिगड़ जाए जब कोई बात, तेरा हाथ मेरे हाथ में हो अगर, तो शाम क्या हर रात फिर से सवेरा बन जाए। कतरा कतरा कर चलो हम एक कहानी में ढल जाए। तो इबारत एक बार फिर से आपके सामने पढ़ दी है, और चलिए शुरुआत करते हैं इस गीत के साथ जिसका सबसे ज्यादा जिक्र मैसेजेस में आया है।
1: अभी आप विविध भारती के प्रसारण सुन रहे थे आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से FM एंड 102.3 मेगाहर्ट्ज पर। यह आकाशवाणी का हिसार केंद्र है। अब से कुछ ही देर बाद आप सुनेंगे आकाशवाणी के चंडीगढ़ केंद्र से प्रादेशिक समाचार।

0: प्रादेशिक समाचार सुनिए। हरियाणा विधानसभा परिसर में आज सुबह 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में योग प्रोटोकॉल प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, विधानसभा अध्यक्ष हरविंद्र कल्याण, विधायकों, योग आयोग के अध्यक्ष योगाचार्य डॉ. जयदीप आर्य, उपाध्यक्ष डॉ. रोशन लाल व हरियाणा विधानसभा के अधिकारियों और कर्मचारियों ने योगाभ्यास किया। इस अवसर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से भारत की सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक विरासत योग को पूरे विश्व ने अपनाया है और सभी इससे लाभान्वित भय हो रहे हैं।
1: देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, योग का प्रस्ताव जब दुनिया के सामने रखा तो दुनिया ने भारत की इस पहल को खुले दिल से स्वागत किया। जब ये प्रस्ताव यूएनओ के अंदर आया तो 170 देशों ने इसका खुल करके समर्थन किया। ये भारत की सांस्कृतिक शक्ति का सम्मान था। हम सबको गर्व है कि पूरी दुनिया आज इस योग से जुड़ी है। यह अपने आप में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है।
0: हरियाणा के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कृष्ण कुमार बेदी ने कल जींद जिले के नरवाना में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की करोड़ों रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास किया। इस अवसर पर उन्होंने जल जीवन मिशन के तहत लगभग 70 लाख रुपए की लागत से निर्मित अत्याधुनिक जल परीक्षण प्रयोगशाला का उद्घाटन किया तथा 3 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बनने वाले जन स्वास्थ्य विभाग के नए कार्यालय भवन का शिलान्यास किया। श्री कृष्ण कुमार बेदी ने कहा कि प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में जनहित एवं विकास कार्यों की प्राथमिकता देते हुए निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हर घर तक स्वच्छ एवं सुरक्षित पेयजल पहुंचाने के संकल्प को धरातल पर उतारा गया है। अब इस जल की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए उपमंडल स्तरीय आधुनिक जल परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना की है। उन्होंने कहा कि आधुनिक तकनीक और उन्नत उपकरणों से सुसज्जित यह प्रयोगशाला क्षेत्र के लोगों को बेहतर एवं त्वरित सेवाएं उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। प्रयोगशाला में स्वच्छ कार्य वातावरण, आधुनिक सुरक्षा प्रबंध तथा कर्मचारियों के लिए बेहतर प्रशिक्षण सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई हैं। इससे जल गुणवत्ता की जांच अधिक सटीक, पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से की जा सकेगी। 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में पलवल में आयुष विभाग द्वारा आगरा चौक से नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंडोर स्टेडियम तक योग मैराथन का आयोजन किया गया। एसडीएम भूपेंद्र सिंह ने योग मैराथन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मैराथन में स्काउट्स एवं गाइड सहित विभिन्न सामाजिक एवं शैक्षणिक संस्थाओं के सदस्यों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। जिला आयुष अधिकारी डॉ. हमीदुल्ला ने कहा कि योग मैराथन का मकसद लोगों को योग के प्रति जागरूक करना है।
2: दरअसल का उद्देश्य यही है कि जागरूकता हमारे के अंदर आए, हम स्वस्थ रहे, हमारी जीवन शैली में बदलाव आएगा और सारे अपने काम ठीक से कर पाएंगे। सरकार का यही उद्देश्य है कि सारे लोग इसमें शामिल होकर के एक प्रेरणा लें और स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं।
0: अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में अंबाला में भी आयुष विभाग द्वारा सुबह योग मैराथन का आयोजन किया गया। जिला आयुर्वेदिक अधिकारी डॉ. संजय राजपाल ने बताया कि योग मैराथन सुबह 6 बजे पुलिस लाइन ग्राउंड से शुरू हुई, रैली जेल मार्ग, हर्बल पार्क और पुलिस चौकी के सामने से होकर पुनः पुलिस लाइन मैदान में संपन्न हुई। मैराथन में अंबाला के एसडीएम तथा अन्य प्रशासनिक अधिकारियों और करीब 350 विद्यार्थियों ने भाग लिया। चंडीगढ़ के सबसे पुराने और व्यस्त बाजारों में शामिल सेक्टर 19 सी की मार्केट के कारोबारियों ने बाजार में बेहतर निगरानी के लिए पुलिस कंट्रोल रूम से सीधे जुड़े हाईटेक सीसीटीवी कैमरे लगाने, नियमित पुलिस गश्त बढ़ाने तथा व्यस्त कारोबारी समय में अतिरिक्त पुलिस बल और पीसीआर तैनात करने की मांग की है। स्थानीय पुलिस अधिकारियों द्वारा कारोबारियों के साथ की गई बैठक के दौरान क्षेत्र में कानून व्यवस्था एवं सुरक्षा संबंधी कई मुद्दों को पुलिस अधिकारियों के समक्ष रखा गया। व्यापारियों के अनुसार बाजार के पीछे स्थित क्षेत्र और सार्वजनिक शौचालय के आसपास नियमित निगरानी की मांग की गई है। व्यापारियों का कहना है कि यहां कुछ लोग शराब के सेवन और जुए जैसी गतिविधियों में लिप्त रहते हैं, जिससे बाजार का माहौल प्रभावित होता है तथा ग्राहकों और परिवारों के आने जाने में असुविधा होती है। मार्केट कमेटी ने कब्जों और अवैध रेड़ी फड़ी विक्रेताओं की समस्या भी उठाई। इसी के साथ समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: Thank you. अभी आप सुन रहे थे हिंदी प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के चंडीगढ़ केंद्र से। FM एंड 102.3 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का हिसार केंद्र है। लीजिए श्रोताओं, एक बार फिर आनंद ले सकते हैं आप विविध भारती के प्रसारणों का।
4: भावनाएं उतरती है, यादों के रंग इतने गहरे होते हैं कि हर पन्ना एक नई तस्वीर बन जाता है। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि एक प्रेमी जब प्रेमिका से मिलता है तो एक इत्तेफाक ही होता है, क्योंकि नजर में तो बहुत आते हैं, अब जो नजरों को भा जाए बस मोहब्बत वहीं पर कबूल कर ली जाती।

बहुत अच्छा, बिल्कुल ऐसा ही होता है। और मोहब्बत ना हो तो फिर जिंदगी के रंग फीके लगने लगते हैं। हमारे एक श्रोता कहते हैं कि आप तो हमसे सवाल काफी पूछती हैं, हालांकि हमने अभी सवाल पूछना शुरू नहीं किया आज के इस प्रोग्राम में, लेकिन वो कहते हैं कि वो हमसे एक सवाल पूछना चाहते हैं कि आज की इबारत में सबसे अच्छा शब्द हमें क्या लगता है, तो वो भी हम आपको जल्द बताएंगे। फिलहाल ये गीत।

फिल्म कन्यादान से ये गीत अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी की आवाज में, और नीरज ने इस गीत को लिखा था, शंकर जयकिशन की तर्ज थी। साथ ही खतों की बात हुई, पत्रों की बात हुई इस गीत में, तो मैं ये पूछना चाहूंगी कि आपने पत्र लिखने की जो आदत है उसे रखी है या नहीं रखी है, क्योंकि आजकल जो डिजिटल

हो गया है हर तरफ, तो वहां पर टेक्नोलॉजी को यूज करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या वो पुराने जमाने की खुशबू, वो खत लिखना, वो पत्र भेजना, क्या अभी तक भी ऐसा होता है? तो चलिए आप मुझे बताइए कि पिछली बार आपने खत, पत्र या एक प्यारा सा जन्मदिन पर या किसी ऐसे मौके पर किसी को प्यारा से अपने हाथ से लिखा खत, कुछ पंक्तियां कब लिखी? मोबाइल पर नहीं, एसएमएस पर नहीं, व्हाट्सएप पर नहीं, लेकिन आपने एक डायरी पर किसी को लिखकर कब पत्र दिया और क्या लिखा? वो लिखना अपने आप के लिए भी हो सकता है। हमारे श्रोता कहते हैं कि प्रेम वो भावना है जिसमें किसी व्यक्ति, वस्तु, प्रकृति या ईश्वर के प्रति स्नेह, समर्पण, विश्वास, सम्मान और निस्वार्थ अपनापन होता है। प्रेम में स्वार्थ कम और दूसरे के सुख की चिंता अधिक होती है। जी हाँ, हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि मेरे 12 गीतों की लिखी इबारत में तीसरे नंबर का लिखा हुआ गीत अभी अभी हमने शामिल किया कन्यादान फिल्म से। और हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि देखते हैं कि कौन सी लिस्ट जो है हमारी पूरी होती है गीतों की, उन्होंने एक लिस्ट बना ली, तो वो तो जरूर देखते हैं कि मेल खाती है कि नहीं खाती। लेकिन साथ ही साथ आप मुझे बताइए कि आपने पिछली बार किसे प्यार भरी पाती लिखी है? साथ ही ये जो अगला गीत अभी आप सुनेंगे, उस गीत को कौन से फिल्म से लिया गया है और उसमें कौन अभिनेता और अभिनेत्री है जिस पर ये गीत फिल्माया गया है, मुझे जल्दी से लिख भेजिए। मैं इंतजार कर रही हूं आपका मैसेजेस पर।

मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजों में गीत अभी आप सुन रहे थे और बिल्कुल सही जवाब दिया बहुत सारे श्रोताओं ने कि स्वयंवर फिल्म से इस गीत को लिखा लिया गया है और शशि कपूर मौसमी चैटर्जी पर फिल्माया ये गीत बहुत ही खूबसूरत और बहुत सारे सही जवाब मिले हमें इसके लिए। साथ ही साथ खतों की बात जहां चल रही है वहां पर भी बहुत सारे हमें मैसेजेस मिले हैं। पोस्ट कार्ड अंतर्देशीय पर पत्र पर नहीं लेकिन व्हाट्सएप पर अगर किसी से बात नहीं हो रही है तो खत के रूप में ही उसे लिख देती हूँ, वो भी पढ़कर समझकर वैसे ही लिख देते हैं, फुर्सत नहीं है बात करने की तो मुझे यही अच्छा लगता है। हमारे दूसरे श्रोता लिखते हैं कि आज की इबारत हमारी सगाई से पहले और सगाई के बाद के यादगार पलों पर बिल्कुल फिट बैठती है क्योंकि सगाई से पहले मेरी होने वाली धर्मपत्नी मेरे लिए अजनबी हसीना ही तो थी जो वास्तव में मेरे दिल के वीरान राहों पर सपनों की रानी बनकर खिल जाती है। अरे वाह, आपने हमारी इबारत का इस्तेमाल करके कुछ शब्दों को चुनकर बहुत ही खूबसूरत मैसेज हम तक पहुंचाया है। हमारे एक और श्रोता कहते हैं कि डिजिटल दौर में जहां संदेश एक पल में पहुंच जाते हैं वहां खत लिखने का सुख कहीं पीछे छूट गया है, लेकिन आज जब मैंने विविध भारती के फरमाइशी कार्यक्रम के लिए अपने हाथों से खत लिखा तो लगा जैसे समय कुछ देर के लिए ठहर गया हो। कागज पर उतरते शब्दों के साथ पुरानी यादें भी लौट आई, वो डाकिये का इंतजार, लिफाफे की खुशबू और अपने पन से भरे अक्षर। क्या बात है, बिल्कुल सही। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि पारिवारिक जिम्मेदारी कुछ इस तरह रही कि कभी प्यार में खत लिखने और पैगाम भेजने का समय नहीं मिला। शादी हो गई, श्रीमती जी बन गई और अब उस मुकाम पर है उम्र के कि इसकी नौबत ही नहीं आ रही है। क्या जमाना था, खत के इंतजार में दिन गंवाते थे और आज कुछ सेकंड में खत मोबाइल पर आ जाता है। बिल्कुल। हमारे एक और श्रोता कहते हैं कि आज की इबारत में सबसे खूबसूरत शब्द उन्हें खुशबू लगता है, ये पहले प्यार की खुशबू। जी हाँ, हमारे एक और श्रोता कहते हैं कि हमारी वाली हसीना तो कहती है चाय बना रहे तो हमें भी पिला देना। क्या बात है, क्या बात है, ये प्यार मिठास नोकझोंक यही तो जिंदगी का फलसफा है और यही जिंदगी में रंग भरता है। चलिए हमारे गीतों की लिस्ट पर पहुंचते हैं जो अगला गीत

भी आपको सुनवाने जा रही हूँ वो है कभी कभी फिल्म से। अब ये तो मैंने आपको बता दिया, अब सवाल ये है कि इस फिल्म में अमिताभ बच्चन और शशि कपूर हैं, ये आप जानते हैं, लेकिन उन दोनों का प्रोफेशन क्या होता है, वो काम क्या करते हैं, ये आपको हमें बताना है इस फिल्म में। इस फिल्म में जो कैरेक्टर, जो किरदार वो निभा रहे हैं, वो काम क्या करते हैं, प्रोफेशन क्या है, वो हमें बताइए।

0: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
1: परेशान हूँ मैं।
0: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
2: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी GI प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
0: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रो एंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
2: अगर आप टाइम पे नहीं सो खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
0: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 29 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सुरीला सफर। और इस संदेश से पहले जो गीत अभी आपने सुना वो कभी कभी फिल्म से था, लता मंगेशकर मुकेश की आवाजों में और साहिर लुधियानवी ने इसे लिखा, खयाम का संगीत था। और इसके बारे में हमने एक सवाल आपसे पूछा था, सवाल याद है ना? सवाल ये था कि अमिताभ बच्चन और शशि कपूर जो इस फिल्म में जिस किरदार में हैं उनका प्रोफेशन क्या है, वो काम क्या करते हैं। तो हम तक कुछ मैसेजेस पहुंचे हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि कवि शायर का काम करते हैं, वो शायर हैं, लिखते हैं, लेखक हैं। और साथ ही एक और श्रोता ने हमारे लिखा है कि प्रोफेशन तो याद नहीं है लेकिन मेरा ऑल टाइम फेवरेट गीत है तो सुनने में ध्यान है। एक और श्रोता हमारे जवाब देते हैं इस सवाल का कि अमिताभ बच्चन कवि थे और शशि कपूर एक अमीर व्यापारी। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि फिल्म कभी कभी में अमिताभ बच्चन एक शायर होते हैं जो शायरी कविताएं लिखते हैं, बाद में वो दूसरे कार्य यानी कि कंस्ट्रक्शन में शिफ्ट हो जाते हैं और ऋषि कपूर साहब बाद में उन्हीं के कंस्ट्रक्शन में कार्य करते हैं, क्या ये सही है? थोड़ा थोड़ा सही है लेकिन आधा कह सकते हैं कतरा कतरा सही है और कतरा कतरा पूरी तरह से सही नहीं है। तो इस बारे में और आपके संदेशों का इंतजार रहेगा कि दरअसल उन दोनों का प्रोफेशन इस फिल्म में क्या है, मुझे लिख भेजिए। साथ ही एक और श्रोता है जो हमें लिखते हैं कि खत लिखना जिसमें वो जज्बात, वो प्यार इजहार आजकल के फोन या सामने कहे जाने से नहीं आते हैं, एक एक शब्द पढ़ने से जो सिहरन, जो रोमांच होता है वो कहीं भी नहीं मिलता। हमारे एक श्रोता कहते हैं कि वैसे तो जिन गीतों को नहीं सोचा था वो अगर बजने लग जाएं तो उसका आनंद ही कुछ और होता है। बिल्कुल सही बात। तो आप मुझे लिख लीजिए कभी कभी में अमिताभ बच्चन और शशि कपूर के किरदारों का क्या प्रोफेशन है, क्या काम वो करते हैं उस फिल्म में। और साथ ही हम बढ़ते हैं अपने अगले गीत की तरफ।

आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजों में ये गीत यादों की बारात से अभी आप सुन रहे थे। मजरू सुल्तानपुरी ने से लिखा था, आर डी बर्मन की तर्ज थी। तो व्यवसाय पर, अमिताभ बच्चन और शशि कपूर के व्यवसाय पर बहुत सारी बातें आई हैं यहाँ पर, बहुत सारे संदेश आए हैं कि उनका क्या प्रोफेशन था, वो क्या काम करते थे। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि कभी कभी मैं अमिताभ व्यवसायी हैं और शशि कपूर सिविल इंजीनियर। एक और श्रोता लिखते हैं कि अमिताभ बच्चन उसमें शायर और लेखक बने हैं और शशि कपूर आर्किटेक्ट बने हैं। एक और श्रोता हमारे लिखते हैं कि कभी कभी फिल्म में अमिताभ बच्चन एक कवि के रूप में होते हैं, बाद में वो अपने पिताजी का बिजनेस संभालते हैं, कोयले की खदान का काम संभालते हैं और वहीं शशि कपूर इंजीनियर या आर्किटेक्ट होते हैं। अभी भी पूरा जवाब नहीं मिल पाया है। मेरे ख्याल से और मैसेजेस आने देते हैं इस बारे में, क्योंकि ये बड़ा रोचक होता जा रहा है। जी हाँ, पहले वो शायर होते हैं लेकिन बाद में अपने पिताजी का बिजनेस संभालते हैं और सिविल इंजीनियर का काम करते हैं, और साथ ही साथ जो शशि कपूर होते हैं वो आर्किटेक्ट होते हैं, यानी कि वो नक्शे बनाते हैं मकानों के ताकि वो घर बन सके, और अमिताभ बच्चन सिविल इंजीनियर का काम करते हैं जहां पर वो कोशिश करते हैं कि उन नक्शों के अनुसार बिल्डिंग, घर, इस तरह के प्रोजेक्ट।

को पूरा कर पाए, ऐसा ही कुछ। पत्रों की बात चली थी तो हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि जब वे पाठशाला में पढ़ते थे तब खत लिखने का बड़ा शौक था, सभी रिश्तेदारों को खूबसूरत खत लिखा करते थे। बाद में उन्होंने एक टेक्निकल इंस्टीट्यूट में पढ़ने के लिए आए वो, और वहां उनकी एक टीचर से दोस्ती हो गई, और उसके बाद बहुत लंबा चौड़ा ये मैसेज है, वहां पर भी वो खूबसूरत खत लिखते थे। तो ये जो खत लिखने का सिलसिला है वो बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही प्रेरणादायक बातें भी लिखते थे, तो ऐसा उनका खतों का सिलसिला चलता रहा। उनके खत आज भी इनके लिए यादगार विरासत की तरह है।

लता मंगेशकर की आवाज में गीत बसेरा फिल्म से अभी आप सुन रहे थे। गुलजार ने इसे लिखा और आर डी बर्मन की तर्ज थी। हमारे श्रोता लिखते हैं कि खत तो हमने बहुत लिखे हैं पर अब नहीं लिखते, और काफी दिनों के बाद अभी 15 दिन पहले ही मनचाहे गीत के लिए विविध भारती में पत्र लिखा, अभी तक शामिल नहीं हुआ। बिल्कुल शामिल होगा, आप बस खत लिखते रहिए, हमें बहुत अच्छा लगता है। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं उस गीत के बारे में, चुरा लिया है तुमने जो दिल को। इस गीत के स्टार्टिंग में कांच के ग्लास पे जो संगीत इजाद किया गया है आर डी बर्मन द्वारा, वो काबिले तारीफ है, और वो भी अक्सर किचन में कांच के बर्तनों पर ऐसी किसी धुन की तलाश में रहते हैं और बहुत मजा आता है। ये गीत उन्होंने जहन में सोचा था, ऐसा उन्होंने लिखा है। जी हाँ, यादों की बारात जिस सिनेमा हॉल में देखी थी वो सिनेमा हॉल टूटकर मॉल में परिवर्तित हो गया है, और अब तो वक्त अलग है, लेकिन उस वक्त 160 रुपए में फिल्म देखी थी। आज 160 रुपए का टिकट आया था, इतने सस्ते में उन्होंने ये फिल्म देखी थी। जी हाँ, वक्त बदलता है बहुत कुछ। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि उनकी धर्मपत्नी ने उन्हें कॉल किया है ऑफिस में और कहा है कि ये आप जो मैसेजेस लिख रहे हैं, संदेश लिख रहे हैं, वो मुझ तक पहुंच रहे हैं, क्योंकि दोनों ही इस वक्त ये प्रोग्राम सुन रहे हैं, फैमिली मेंबर्स की तरह बन गए हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छा लगता है जब परिवार के सभी सदस्य इस प्रोग्राम को, विविध भारती को सुनते हैं। जी हाँ, फिलहाल आते हमारे अगले सवाल पर। गीत तो मैं आपको जरूर सुनवाऊंगी, लेकिन अभी जो गीत आपने सुना बसेरा फिल्म से, जहां पर सवेरा हो बसेरा वही है। बसेरा मतलब घर, लेकिन इसका अगर दूसरा मतलब देखा जाए तो जहां आपको सुकून मिलता है, जहां आपका दिल आनंदित हो जाता है और मन बसता हो। तो ऐसी कौन सी जगह है जहां आपका मन बसता है? जरूरी नहीं कि वो घर ही हो सकता है, कोई जगह, कोई ऐसी जगह जहां आप जाकर एकदम आनंदित हो जाते हो, या आपको वो सुकून मिलता हो, या कोई ऐसी जगह जहां आप घूम कर आए हो, या कोई पुरानी याद, जहां पर भी आपको लगता है कि वो आपका बसेरा है, मुझे लिख भेजिए। इंतजार रहेगा आपके संदेशों का। फिलहाल ये अगला गीत, इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं।

के शर्म से झुक जाएंगी जो ये आंखें शर्म से झुक जाएंगी सारी बातें यहीं बस रुक जाएंगी चुप रहना ये अफसाना कोई इनको ना बतलाना।

मोहम्मद रफी को आप सुन रहे थे। इस गीत में दो रास्ते फिल्म का नाम था। आनंद बख्शी ने इस गीत को लिखा था और तर्ज थी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की। हमारे श्रोता लिखते हैं कि खत लिखने का वो जमाना बड़ा ही खूबसूरत था। किसी के खत का इंतजार ऐसा होता था जैसे कि किसान बेसब्री से बारिश का इंतजार करता हो। वो मनचाहा खत मिलने पर खुशी का ठिकाना नहीं रहता था, मानो हमने बहुत बड़ी फतेह हासिल कर ली हो। काश वो खत लिखने का जमाना दोबारा लौट आए। फिलहाल आप अपने लिए खत लिख सकते हैं, अपने जो करीबी हैं उनके लिए लिख सकते हैं, और विविध भारती तो है ही आपके खतों के इंतजार में। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि उन्होंने आखिरी खत कब लिखा ये याद नहीं, लेकिन बहुत सालों पहले पिताजी को खत लिखा था और अभी तक संभाल के रखा है, और पत्नी को लिखे सारे पत्र भी पिछले कई कई सालों से उन्होंने सुरक्षित रखे हुए हैं। हमारे एक श्रोता कहते हैं कि जब भी वो कोरे कागज पर स्याही बिखेरती हैं तो उन्हें एक अजीब सा सुकून मिलता है, एक ठहराव महसूस होता है। खत लिखते समय भागती हुई दुनिया जैसे रुक जाती है। हर एक शब्द को चुनना और उसे कागज पर उतारना एक ध्यान की तरह महसूस होता है। अपनी उंगलियों से पेन को पकड़कर कागज पर दबाना अंदर के उमड़ते हुए जज्बात को एक आकार देता है। जी हाँ, बिल्कुल। हमारे एक और श्रोता कहते हैं कि 11-12 गीतों की लिखी इबारत में से पांचवें नंबर पर ये जो गीत है रेशमी जुल्फें, ये शामिल हुआ है, इन्हें अच्छा लग रहा है। हमारे एक और श्रोता कहते हैं कि लाखों पुराने रखे हुए खतों की दराज जब भी खुलती है तो उनकी पीली पड़ चुकी रंगत और खुशबू पुराने दौर में ले जाती है।

उन्हें दोबारा पढ़ना बीते वक्त के किसी अजीज शख्स को दोबारा से गले मिलने जैसा लगता है, किसी खास व्यक्ति के गले मिलने जैसा लगता है उन्हें। हाँ जी बिल्कुल। साथ ही हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि इंसान पशु पक्षी के रात्रि को आराम के रहने के स्थान को बसेरा कहते हैं, और एक श्रोता लिखते हैं कि भोपाल की झील के किनारे बसेरा है उनका, जहां उनकी सारी यादें ताजा होती है और उन्हें भोपाल सिटी से बहुत प्रेम है।

ये सुरास को आप सुन रहे थे। इस गीत में छोटी सी बात फिल्म का नाम है और साथ ही दिया था आशा भोसले ने इस गीत में। हमारे श्रोताओं ने बहुत सारा बसेरा बताया है कि जहां जहां उन्हें अच्छा लगता है। हमारे श्रोता कहते हैं कि जहां पूरे परिवार को एक साथ एक दिल से आत्मिक संतोष और शांति मिलती है वहीं पर बसेरा होता है। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि खत के नाम पर बहुत से वाकई याद आ रहे हैं पर क्या लिखें और क्या ना लिखें। जी हाँ, फिलहाल इजाजत चाहेंगे आपसे इस प्रोग्राम में मैं अनुराधा, जिसने आज इस सफर में आपका साथ दिया। फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए, आप बने रहें विविध भारती के संग।

आज त्रिवेणी की धाराएं मिल रही हैं जल और जल प्रदूषण पर। दोस्तों, विकास और तकनीक के इस युग में औद्योगिकीकरण बढ़ा है और शहरीकरण भी खूब हुआ है। वाहनों की तादाद खूब बढ़ी है जिससे जीवाश्म ईंधन का प्रयोग ज्यादा होने लगा है। जंगलों पेड़ों की कटाई चरम पर है। पेड़ों की कटाई के वक्त शायद हमारा ध्यान इस ओर नहीं जाता कि एक दिन काटे गए ये वृक्ष हमसे बदला लेंगे। इनकी कटाई से धरती माँ रुष्ट होंगी और अब धरती का कोप हम लगातार देख रहे हैं। चलिए इस बरस थोड़ी कोशिश करें इन बातों को नियमित रूप से अमल करें।

दोस्तों, ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन के कारण पूरे विश्व में पानी की कमी हो रही है और साथ ही जल प्रदूषण का खतरा भी सर उठा रहा है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2013 को अंतर्राष्ट्रीय जल सहयोग वर्ष घोषित किया था, जिसके तहत सभी देशों को जल आपूर्ति हो सके इसका प्रयास किया गया। खेती में पानी की जरूरत बहुत ज्यादा होती है। अब तो बहुत सारे देशों और प्रांतों में ये भी ध्यान रखा जाता है कि ऐसे बीजों का प्रयोग किया जाए जिससे कम जल में ज्यादा उत्पादन किया जा सके। इन सब बातों के मूल में है जल, यानी पानी कीमती है, ये घट रहा है, इसे बचाएं, पानी की हिफाजत करें।

दोस्तों, झीलों, नदियों और समुद्र के पानी लगातार प्रदूषित हो रहे हैं। जल प्रदूषण जल में रहने वाले जीवों, पादपों और संपूर्ण जैविक तंत्र के लिए विनाशकारी है। जल प्रदूषण के कारण क्या है, ये हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है। नदियों में जानवरों या इंसानों की मृत काया को यूं ही प्रवाहित कर देना, इसके अलावा औद्योगिक कचरा को नदियों, जलाशयों में फेंक देना, इससे बहुत बड़े स्तर पर जल प्रदूषण होता है। ये प्रदूषित जल हमारे घरों में रिसाइकल के बाद पीने के काम आता है। प्रदूषित जल पीना स्वास्थ्य के लिए बेहद हानिकारक है, ये हम सब जानते हैं।

0: ये है विविध भारती देश की सुरीली धड़कन। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम फ्रांस के एवियन में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रातिस्लावा में वाराणसी केंद्रित प्रदर्शनी की सराहना की। संबंधों को मजबूत करने में कला और संस्कृति की भूमिका पर बल दिया। नीट यूजी पुनर्परीक्षा से पहले सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टेलीग्राम पर 22 जून तक प्रतिबंध लगाया। संदेश संपादन सुविधा 30 जून तक रहेगी बंद। सर्वोच्च न्यायालय ने पहचान प्रमाण पत्र के रूप में केवल आधार कार्ड के उपयोग की याचिका पर केंद्र और राज्यों से जवाब मांगा। भारत ने कहा, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का विस्तार केवल अस्थायी सदस्यता तक ही सीमित रखने पर सुधार के प्रयास नाकाम हो सकते हैं। और भारत ने महिला FIH नेशंस कप हॉकी टूर्नामेंट में जापान को हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। अब समाचार विस्तार से। फ्रांस के एवियन शहर में 52वां G7 शिखर सम्मेलन शुरू हो गया है। सम्मेलन में विश्व की अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं के नेता प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों पर चर्चा कर रहे हैं। 3 दिन के इस सम्मेलन में वैश्विक असंतुलन को कम करने, बड़े भू राजनीतिक संकटों से निपटने, बच्चों से जुड़े मुद्दों और संगठित अपराध तथा अवैध धन के प्रवाह को रोकने पर चर्चा होने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आज एवियन पहुंचेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों उनका स्वागत करेंगे। प्रधानमंत्री सम्मेलन के विशेष सत्र में हिस्सा लेंगे। सत्र का विषय है नई भागीदारी बनाना और अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता पुनर्स्थापित करना। सत्र में G7 देशों, भागीदार देशों के नेता, विश्व बैंक और अफ्रीका विकास बैंक के प्रतिनिधि शामिल होंगे। शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री का काफी व्यस्त कार्यक्रम रहेगा। वे कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहियान के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। रात्रि में वे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों द्वारा आयोजित भोज में शामिल होंगे। सम्मेलन के दौरान कल प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ बैठक प्रस्तावित है। दोनों नेताओं के बीच विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग पर व्यापक चर्चा होने की संभावना है। और अधिक जानकारी के लिए अब चलते हैं एवियन में मौजूद हमारे संवाददाता अंकित कुमार के पास। जी अंकित, G7 के कई देश वर्तमान में धीमी विकास दर और आबादी से जुड़ी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। इन देशों की विनिर्माण, नवाचार और सेवा क्षेत्र में भारत के साथ साझेदारी नए अवसरों की खोज में किस तरह सहायता कर सकती है?
2: जी जागृति, आपने वैश्विक परिदृश्य में आ रहे जिन बदलाव की बात की है वो बिल्कुल सही है। देखिए, अगर हम आज के डेट में G7 देशों की अर्थव्यवस्थाओं पर नजर डालें तो उनमें से कई ऐसे देश है जो अपनी वृद्ध होती आबादी और श्रमिकों की भारी कमी से जूझ रहे हैं। ऐसे में भारत के साथ साझेदारी उनके लिए काफी नेचुरल है और उनका बहुत सीधा फायदा उनको मिलता है। एक तो भारत के पास एक विशाल युवा और कुशल प्रतिभाओं का समूह है जो वैश्विक तकनीक और सेवा क्षेत्र का अभिन्न हिस्सा बन रहे हैं। लेकिन जागृति, यह साझेदारी केवल मानव पूंजी तक ही सीमित नहीं है। जैसा कि हाल में अपनाए गए भारत फ्रांस नवाचार रोडमैप को आप देखें, उससे साफ रेखांकित होता है कि G7 देश अब भारत को केवल एक विशाल उपभोक्ता बाजार के रूप में नहीं देखते हैं, बल्कि भारत एक अहम और विश्वसनीय भागीदार के रूप में उभरा है। जागृति
1: अंकित, आज के दौर में जैसे जैसे AI आर्थिक विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण होता जा रहा है, भारत में मौजूदा डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचा समावेशी AI डेवलपमेंट के लिए किस तरह से

0: हो सकता है।
1: बिल्कुल जागृति, देखिए डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे यानी DPI और कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी AI का एक साथ आना वास्तव में समावेशी विकास के लिए एक बहुत बड़ा

0: जी जागृति।
1: धन्यवाद अंकित इस तमाम जानकारी के लिए। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि स्लोवाकिया की उनकी यात्रा से दोनों देशों के बीच संबंध और मजबूत होंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कल स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा स्थित राष्ट्रपति भवन में वाराणसी केंद्रित प्रदर्शनी में कहा कि कला और संस्कृति में लोगों को करीब लाने की शक्ति है। इस प्रदर्शनी में स्लोवाकिया के कलाकारों की कृतियां भी शामिल थी। प्रधानमंत्री मोदी ने इसे ब्रातिस्लावा से बनारस का जुड़ाव बताते हुए स्लोवाकिया के कलाकारों द्वारा वाराणसी की रचनात्मक प्रस्तुति की सराहना की। स्लोवाकिया यात्रा के समापन पर श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि दोनों देशों के बीच मजबूत व्यापारिक संबंधों से युवाओं को बहुत लाभ होगा। उन्होंने स्लोवाकिया की सरकार और वहां के लोगों से मिले स्नेह के लिए आभार व्यक्त किया तथा स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फित्सो को धन्यवाद दिया। ब्रातिस्लावा में श्री फित्सो ने प्रधानमंत्री मोदी को विदा किया। स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से भी सम्मानित किया। इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री बुधवार शाम पेरिस पहुंचेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार की सुबह प्रमुख वैश्विक कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। इन बैठकों का सिलसिला दोपहर तक जारी रहने की संभावना है। इसके बाद प्रधानमंत्री यूरोप के प्रमुख प्रौद्योगिकी और नवाचार आयोजनों में से एक विवाटेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे और वहां संबोधन करेंगे। शाम को प्रधानमंत्री भारतीय समुदाय के एक विशेष कार्यक्रम में शामिल होंगे और प्रवासी भारतीयों से संवाद करेंगे। कार्यक्रम में भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करने वाली सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी आयोजित की जाएगी। यह आयोजन भारत और फ्रांस के बीच जन से जन संबंधों को और मजबूत बनाने में सहायक होगा। महेश सोपड़े, आकाशवाणी समाचार, पेरिस, फ्रांस।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने बताया है कि आगामी नीट यूजी पुनर्परीक्षा के लिए पिछले 24 घंटों में 10 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने अपने प्रवेश पत्र डाउनलोड कर लिए हैं। पुनर्परीक्षा 21 जून को होगी। इस बीच पारदर्शिता बढ़ाने और पेपर लीक की आशंकाओं को समाप्त करने के लिए सरकार ने 22 जून तक टेलीग्राम एप्लीकेशन पर ऑनलाइन संदेश भेजने पर रोक लगा दी है। एनटीए ने कहा कि ये प्रतिबंध नीट पुनर्परीक्षा के दिन और उसके तुरंत बाद तक लागू रहेगा। एजेंसी ने कहा कि टेलीग्राम को 30 तारीख तक पहले से पोस्ट किए गए संदेशों को संपादित करने की सुविधा को भी बंद करने का निर्देश दिया गया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि विविध संस्कृतियों और भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद विश्व की सबसे बड़ी आबादी वाला भारत स्वतंत्रता के बाद बढ़ती जनभागीदारी से विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र बनकर उभरा है। नई दिल्ली में आयोजित विकसित भारत युवा संसद के प्रतिभागियों से बातचीत में उन्होंने कहा कि 50 लाख से अधिक युवा आज युवा संसद से जुड़े हुए हैं।
3: कैसे हम विकसित भारत के संकल्प को पूरा कर सकते हैं, इसके लिए युवा संसद के माध्यम से तर्क संवाद की संस्कृति को बढ़ाने का एक कार्यक्रम आयोजित किया और निश्चित रूप से आज 50 लाख से ज्यादा युवा संसद से जुड़े। अलग अलग राज्यों के अंदर युवाओं ने उस राज्य के विकसित और विकसित के साथ भारत विकसित के सपनों को साकार करने के लिए अपने विचार रखे।
1: सरकार ने औषधि नियम 1945 में संशोधन अधिसूचित किया है। इसमें गांव में कफ सिरप की बिक्री पर दी गई छूट वापस ले ली गई है। अब गांव में कफ सिरप की बिक्री और वितरण केवल विधिवत लाइसेंस प्राप्त फार्मेसियों के माध्यम से ही किया जाएगा। एक रिपोर्ट।
4: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी कर कहा है कि औषधि नियमों के अनुसूची के में दवाओं के वर्ग शीर्षक के अंतर्गत शामिल सिरप शब्द को हटा दिया गया है। सिरप शब्द हटाए जाने के बाद अब खांसी के सिरप को इस छूट का लाभ नहीं मिलेगा। इससे पहले 1000 से कम आबादी वाले ग्रामीण क्षेत्रों में खांसी के सिरप की बिक्री को लाइसेंस संबंधी प्रावधानों से छूट मिली हुई थी। यह संशोधन सिरप आधारित औषधियों पर नियामकीय निगरानी को और सुदृढ़ करने तथा छूट संबंधी व्यवस्था को वर्तमान जन स्वास्थ्य और सुरक्षा आवश्यकताओं के रूप बनाने के उद्देश्य से किया गया है। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उस खबर का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया था कि E20 ईंधन के इस्तेमाल से वाहन बीमा दावों को खारिज किया जा सकता है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने बताया कि ये दावा निराधार है। पत्र सूचना कार्यालय ने स्पष्ट किया है कि E20 ईंधन के इस्तेमाल के बावजूद मोटर बीमा पॉलिसियां वैध रहती हैं।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि पिछले दशक में देश भर में बुनियादी ढांचे में सुधार का काम रिकॉर्ड स्तर पर हुआ है। सोशल मीडिया पर MyGov की एक पोस्ट साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि सरकार विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए अगली पीढ़ी की अवसंरचना तैयार करने के लिए प्रतिबद्ध है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र और राज्यों से एक याचिका पर जवाब मांगा है। इसमें आरोप लगाया गया है कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा जारी आधार कार्ड का दुरुपयोग नागरिकता, निवास स्थान और आवासीय पते के प्रमाण के रूप में किया जा रहा है। याचिका में ये निर्देश देने की मांग की गई है कि इसका उपयोग केवल पहचान सत्यापन तक ही सीमित रखा जाए। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति वी मोहन्ना की पीठ ने केंद्र और सभी राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों को नोटिस जारी किया। याचिका में तर्क दिया गया है कि फॉर्म 6 के तहत मौजूदा सत्यापन तंत्र अपर्याप्त है और इसके तहत उचित सहायक दस्तावेज के बिना भी व्यक्तियों को चुनावी डेटाबेस में शामिल किया जा सकता है। भारत ने आगाह किया है कि अगर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का विस्तार केवल अस्थायी सदस्यता तक ही सीमित रखा गया तो इसमें सुधार के प्रयास नाकाम हो सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि हरीश पर्वतानेनी ने सुरक्षा परिषद में सुधारों पर अंतर सरकारी विचार विमर्श बैठक में ये बात कही।
1: UNSC reform would be grossly inadequate.
2: यदि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार सिर्फ अस्थायी सदस्य देशों के विस्तार तक ही सीमित रहता है तो ये सुधार अधूरे और नाकाम साबित होंगे। इससे मौजूदा 5 स्थायी सदस्यों की निर्णय लेने की शक्ति संरचना में कोई बुनियादी बदलाव नहीं आएगा। सुरक्षा परिषद और सदस्य देश लंबे समय से सार्थक सुधारों का इंतजार कर रहे हैं।
0: ओमान के तट पर हुई दुखद समुद्री घटना के बाद एमटी सेटेबेलो जहाज के चालक दल के 21 भारतीय सदस्य सुरक्षित घर लौट आए हैं। ओमान के मस्कट स्थित भारतीय दूतावास ने आज ये जानकारी दी। पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण उत्पन्न वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच घरेलू विकास और आर्थिक स्थिरता को मजबूत करने के लिए देश की राजकोषीय नीति में बदलाव आ रहा है। स्टैंडर्ड एंड पुअर्स की रिपोर्ट के अनुसार भारत का जोखिम प्रबंधन दृष्टिकोण तात्कालिक आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने से हटकर दीर्घकालिक रणनीतिक स्थिरता की ओर अग्रसर है। आज दोपहर के सत्र में घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक लगभग आधा प्रतिशत की बढ़त के साथ कारोबार कर रहे थे। ताजा समाचार के अनुसार सेंसेक्स 475 अंक बढ़कर 76,740 पर और निफ्टी 115 अंक बढ़कर 23,970 पर पहुंच गया। महिला हॉकी में भारत ने न्यूजीलैंड में आयोजित FIH हॉकी नेशंस कप के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। पूल ए के अपने दूसरे मैच में भारत ने जापान को 2-1 से हराया। इस जीत के साथ भारत 6 अंकों के साथ पूल ए में शीर्ष पर पहुंच गया है। बृहस्पतिवार को भारत का अगला मुकाबला उरुग्वे से होगा। पुरुष हॉकी में नीदरलैंड्स में आयोजित FIH हॉकी प्रो लीग में कल भारत का सामना जर्मनी से होगा। आकाशवाणी चेन्नई आज अपनी स्थापना की 88वीं वर्षगांठ मना रहा है। AIR चेन्नई ने राज्य भर में लाखों लोगों तक पहुंचने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, हिमालय की तराई वाले पश्चिम बंगाल और सिक्किम में रविवार तक कुछ स्थानों पर तेज से बहुत तेज बारिश का अनुमान लगाया है। विभाग ने तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में शुक्रवार तक भारी बारिश की संभावना व्यक्त की है। मौसम विभाग ने बताया कि आज दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, आंतरिक कर्नाटक, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में बिजली गिरने और 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से तेज हवाओं के साथ गरज के साथ बारिश की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम फ्रांस के एवियन में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रातिस्लावा में वाराणसी केंद्रित प्रदर्शनी की सराहना की। संबंधों को मजबूत करने में कला और संस्कृति की भूमिका पर दिया बल। नीट यूजी पुनर्परीक्षा से पहले सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टेलीग्राम पर 22 जून तक प्रतिबंध लगाया। सर्वोच्च न्यायालय ने पहचान प्रमाण पत्र के रूप में केवल आधार कार्ड के उपयोग की याचिका पर केंद्र और राज्यों से जवाब मांगा और भारत ने महिला FIH नेशंस कप हॉकी टूर्नामेंट में जापान को हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त

0: हुआ नमस्कार।
1: ये है विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। नीचे प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

0: ये नजर लौट कर फिर आएगी। आप सुन रहे थे आशा भोसले को इस गीत में, मेरे सनम फिल्म का नाम था। मजरूह सुल्तानपुरी ने इसे लिखा, ओपी नैयर का संगीत।
1: एक जानी मानी पेंटर जो अपने कैनवस

0: और ब्रश से रचते हैं एक जादुई दुनिया, एक सम्मोहक यात्रा।
1: हमारे देश के प्रमुख चित्रकार जगदीश स्वामीनाथन, उन्होंने आदिवासी कला को भी समकालीन कला की तरह रखा था और सारे आदिवासी कलाकारों से भी मिलना जुलना और फिर गांव जाना उसने बहुत मदद करी एक मनुष्य के देखने को समझने में।
0: कुछ बातें जो इतनी दिलचस्प हैं कि आप खो जाएं।
1: मैंने ये सोचना शुरू किया कि मेरे चित्र में ऐसा क्या है जो मनुष्य को संबोधित है।
0: जाने माने पेंटर अखिलेश से एक बातचीत।
1: जितना ज्यादा समय आप अपने काम को देंगे उतना ज्यादा आप उसके बारे में सीख सकते हैं, जान सकते हैं।
0: आज के मेहमान 24 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार।
3: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सदाबहार नगमे।

गंगा की लहरें, ये था फिल्म का नाम। लता मंगेशकर, किशोर कुमार की आवाजों में गीत अभी आप सुन रहे थे। चित्रगुप्त ने संगीत दिया था और मजरू सुल्तानपुरी ने इसे लिखा।

0: मोहम्मद रफी की आवाज में गीत अभी आप सुन रहे थे। फिल्म थी जंगली, हसरत जयपुरी ने इसे लिखा शंकर जयकिशन की तर्ज।
1: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
2: परेशान हूं मैं।
1: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
3: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी जीआई प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
1: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रो एंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
3: अगर आप टाइम पे नहीं सो, खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
1: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 29 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सदाबहार नगमे।

मोहम्मद रफी की आवाज में गीत अभी आप सुन रहे थे संगम फिल्म से, हसरत जयपुरी ने से लिखा और शंकर जयकिशन की तर्ज थी। और अब लीजिए सुनिए आज के इस प्रोग्राम की आखिरी पेशकश, आपको सुनवा रहे हैं गीत मोहम्मद रफी की आवाज में, आई मिलन की बेला फिल्म का नाम है, हसरत जयपुरी ने से लिखा, शंकर जयकिशन की तर्ज।

0: सखी सहेली कार्यक्रम सखी सहेली में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मंदाकिनी जोशी और मेरे साथ है
1: आरती श्रीवास्तव।
0: आप सभी को हमारा
1: नमस्कार।
0: नमस्कार, कैसी हो आरती?
1: बिल्कुल ठीक है। बस इस गर्मी में जितने ठीक हो सकते हैं उतने ठीक है।
0: बिल्कुल सही कहा, इस गर्मी में हम जितने अपने आप को अच्छा रख सकते हैं उतना हमें रख लेना चाहिए, वरना तो तबीयत खराब होती, देर भी नहीं लगती।
1: बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि इस समय बहुत ज्यादा गर्मी की वजह से, पसीने की वजह से ना बहुत परेशानियां हो रही है। अपना बहुत सारा ध्यान रखिए, अच्छा ध्यान रखिए।
0: हाँ बिल्कुल, ध्यान रखना है, खाने पीने का ध्यान रखना है, अपने पढ़ने का ध्यान रखना है, सोने का, कब सोते हो कब उठते हो,
1: और कोशिश करिए
0: सब चीजों का हमें ध्यान रखना है। और ऐसे में कोशिश ये करनी है कि ज्यादा से ज्यादा आप घर पर रहें, क्योंकि कॉलेज जाना है, ऑफिस जाना है, वो तो है ही। इसके अलावा फालतू बाजार में जो घूमने की हमारी आदत होती है वो हमें थोड़ा बदलनी है।
1: बहुत जरूरी हो तो ही आप घर से बाहर निकलिए और पूरे चीजों के साथ निकलिए, यानी कि अपने अच्छे से अपना सिर ढक के निकलिए। एक गीला कोई कपड़ा है उसको अपने सर पे रखिए, या इस तरीके की चीजें आप करके, और पानी की बॉटल जरूर लेके जाइए, इस तरीके का आप लेके चलिए, तो जिससे कि आपको गर्मी से बहुत ज्यादा परेशानी ना हो, तबीयत ना खराब हो।
0: और घर पर बैठकर पढ़िए ना, सबसे अच्छी बात है कि दिन हो या रात हो या शाम हो, अगर हमने पढ़ने की आदत डाल ली है ना आरती, तो पढ़ना जो है वो एक बेहद शानदार आदत है। और ये जो किताबें हैं वो हमारे ज्ञान तो खैर बढ़ाती ही है, इसके अलावा हमें नई दुनिया में ले जाती है और हमारा तनाव कम कर देती है और हमारे मन को सुकून देती है।
1: बिल्कुल, और हमारा शब्द भंडार भी बढ़ा देती है। और जितना हम किताबों से जान सकते हैं ना, उतना मोबाइल में देख के, या फिर बाहर इतना ज्यादा इतनी गर्मी है, इतनी परेशानी है, तो वहां बाहर जाके अपनी तबीयत खराब करने से बेहतर है हम घर में रह के थोड़ा अच्छा साहित्य पढ़ें, या जो भी हमारा इंटरेस्ट है हम उसको पढ़ें, जिससे कि हमें अच्छा लगेगा।
0: खासतौर से गर्मी को कोसने से अच्छा है कि हम पढ़े, कहानी पढ़ सकते हैं, उपन्यास पढ़ सकते हैं, आत्मकथाएं पढ़े, जीवनी पढ़े,
1: पढ़ के थोड़ा बहुत उसको लिखने की कोशिश करें कि आपने क्या सीखा, या क्या आपको उसमें अच्छा लगा, उस चीज को आप थोड़ा सा नोट्स बनाना शुरू करें, देखिए आपकी खुद की एक किताब तैयार हो जाएगी।
0: बिल्कुल सही कहा। और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स तो हमें कितने मिल गए हैं आजकल, बस उसका उपयोग करना हमें आना चाहिए और हमें सीखना भी चाहिए। तो चलिए बताइए आज क्या क्या कार्यक्रम आप लेकर आए हैं।
1: आज हम लेके आए हैं मानसिक मजबूती आपको किस तरीके से अजय बना देती है। अजय मतलब ये, आप अगर देखिए मन के जीते जीत होती है, अगर आपको आपका मन आपका मजबूत है ना, आप उससे नहीं

0: डिग सकते हैं अगर, तो फिर आपको कोई भी हरा नहीं सकता।
1: सबसे बड़ी बात है हमारा मन कितना सशक्त है, अगर मन के हारे हारे, अगर मन हार गया तो फिर हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल, तो हम इसके ऊपर कुछ चर्चा करेंगे। आप भी बताइए किस तरीके से आप अपने
1: मन को सशक्त बनाते हैं, हमारे श्रोता बता सकते हैं हमारी
0: किस तरह से। अगर कोई आपको कहीं पे ना कहने का मौका आता है तो आप उसको पूरी अपने शक्ति से ना कह पाते हैं या फिर हिचकिचा जाते हैं।
1: और कई बार क्या होता है आपके घर परिवार में भी जो है बहुत सारी बातें होती है पति पत्नी के बीच में, ऐसी में कई बार स्त्रियां जो है मन कच्चा कर लेती है कि अरे भाई आज तो पतिदेव ने ऐसे डांट दिया, आज तो सास ने ऐसे कह दिया, ससुर ने ऐसे कह दिया। तो आप अपने मन को कितना मजबूत बनाती है और डटकर इन चीजों का, इन समस्याओं का मुकाबला कैसे करती है, बताइए अपने जीवन से जुड़े कुछ पहलू।
0: बिल्कुल, और आज हम मुहावरों के दिन में बात करेंगे, दूर के ढोल सुहावे।
1: ये तो होता है,
0: अक्सर होता है ना हम लोगों की दूसरे को सामने देख के हम कहते हैं कि अरे ये कितना अच्छा, ये तो कितनी अच्छी जॉब कर रहा है या कितना अच्छा काम कर रहा है, लेकिन हम उसके पीछे का संघर्ष नहीं जान पाते कि किस तरह से वो वहां तक पहुंचा।
1: बिल्कुल, उसकी जिंदगी में क्या क्या घटा, कैसे घटा, उसने कैसे उसका मुकाबला किया, इन सब बातों को नहीं जानते हम, केवल जो सामने हमें दिख रहा है वही हमें सच्चा लगता है।
0: जी, तो बिल्कुल उसके बारे में बात करेंगे।
1: ये भी बताएं कि इनकी जिंदगी में दूर के ढोल
0: किस तरीके इसको समझते हैं, अपना नजरिया बताएं। और साथ ही हम बात करेंगे सखी विशेष के अंतर्गत, आज हम मेघा मलिक जी के बारे में बात करेंगे।
1: क्या बात है,
0: जो है डिजाइनर पीपल की संस्थापक, और हल्की फुल्की बातें भी कुछ करेंगे ना।
1: हाँ हाँ बिल्कुल, हल्की फुल्की बातें तो जिंदगी में बहुत जरूरी है,
0: जबकि विषय जो है ना वो हल्की फुल्का नहीं है, बहुत ही ज्यादा डेंजरस विषय है।
1: आपने कंट्रास्ट कर दिया है, बातें हल्की फुल्की नहीं है,
0: अक्सर
1: विषय रखा है
0: हो जाती है
1: घरेलू बजट, बाप रे,
0: जिसपे अक्सर तकरार हो जाती है पूरे घर में, मतलब एक राय कोई नहीं हो पाता इस विषय।
1: बिल्कुल सही कहा, इसके लिए जो पता है जो गृहिणी है ना वो सबसे ज्यादा परेशान हो जाती है।
0: बिल्कुल, और आज एक महत्वपूर्ण दिवस भी है जिसके बारे में हम बात करेंगे, वो है अंतर्राष्ट्रीय परिवार प्रेक्षण दिवस, तो उसके बारे में हम कुछ बात करेंगे।
1: ठीक है, तो हमारे श्रोता भी लिखे और अभी हम सुन लेते हैं गीत।
0: जी

0: हाँ, तो आरती बहुत ही सुंदर कव्वाली अभी हमने हमारी सखियों को सुनाई है। उम्मीद करते हैं इस दोपहरी में उन्हें अच्छा भी लगा होगा।
1: बिल्कुल, थोड़ा सा एक ताजगी आ गई होगी,
0: थोड़ा सा एक्टिव हो गई होंगी ये सुनकर, है ना।
1: बिल्कुल।
0: तो आज हम बहुत सारे दिवस भी मना रहे हैं, जिसमें एक है अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस।
1: जी, तो इस अंतर्राष्ट्रीय परिवार प्रेक्षण दिवस को हम क्यों मनाते हैं, इसको जान लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम जान लेते हैं इसका अर्थ क्या होता है।
0: हाँ हाँ,
1: तो जब कोई व्यक्ति अपने घर परिवार से दूर रहकर काम करता है और अपनी कमाई का एक हिस्सा परिवार को बाहर से भेजता है, तो उसे प्रेक्षण या रेमिटेंस कहा जाता है।
0: हाँ बिल्कुल, ये परिवार को भेजा गया धन केवल आर्थिक सहायता नहीं होता आरती, बल्कि उसमें प्रेम, जिम्मेदारी और परिवार के प्रति समर्पण की भावना भी शामिल होती है। और हर वर्ष आज के दिन मनाए जाने वाले इस दिवस की शुरुआत इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट यानी IFAD ने की थी।
1: जी, और इस दिवस की शुरुआत वर्ष 2015 में हुई। इसका उद्देश्य दुनिया भर में काम करने वाले जो प्रवासी श्रमिक हैं, वो अपने परिवारों को उनके द्वारा भेजे जाने वाले धन के महत्व को पहचान देना और उनके योगदान को सम्मानित करना था।
0: हाँ, बाद में यूनाइटेड नेशंस ने भी इस पहल को समर्थन दिया और जिससे इसे वैश्विक स्तर पर व्यापक पहचान मिली। ये दिन उन करोड़ों लोगों को सम्मान देने के लिए चुना गया है जो घर से दूर रहकर अपने परिवारों की आर्थिक सुरक्षा और

0: बेहतर भविष्य के लिए मेहनत करते हैं।
1: बिल्कुल, और जैसा कि हम जानते ही हैं कि हर दिवस किसी न किसी बड़े उद्देश्य को ध्यान में रखकर ही मनाया जाता है, और इस दिवस का उद्देश्य है प्रवासी श्रमिकों के योगदान को सम्मान देना, परिवारों और समुदायों के विकास में रेमिटेंस की भूमिका को उजागर करना,
0: हाँ, और सुरक्षित धन प्रेषण सेवाओं को बढ़ावा देना, गरीबी उन्मूलन और सतत विकास लक्ष्यों में रेमिटेंस के योगदान को रेखांकित करना भी इसका खास उद्देश्य है। और आज दुनिया भर में करोड़ों प्रवासी श्रमिक नियमित रूप से अपने परिवारों को धन भेजते हैं।
1: जी, और ये धन केवल परिवारों की दैनिक जरूरतों को ही पूरा नहीं करता, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास और छोटे व्यवसायों में निवेश का भी आधार बनता है। इसीलिए इस प्रेषण को या रेमिटेंस को कई देशों की अर्थव्यवस्था और सामाजिक विकास का महत्वपूर्ण स्तंभ भी माना जाता है।
0: बिल्कुल, और अंतर्राष्ट्रीय परिवार प्रेषण दिवस हमें ये भी याद दिलाता है आरती कि भेजी गई हर राशि के साथ जुड़ी होती है उम्मीदें, है ना, रिश्ते और बेहतर भविष्य की कामनाएं। देखो, जब हमें कोई धन भेजता है, पैसा भेजता है हमारे जीविकोपार्जन के लिए, हमारी जरूरतों के लिए, तो सोचिए हमारी फीलिंग्स कैसी होती हैं।
1: बिल्कुल,
0: हमारे परिवार में भी जब हम स्टूडेंट लाइफ में बाहर पढ़ने गए और हमारे माता पिता ने हमारे लिए पैसे भेजे, तो कितनी कितनी खुशी होती
1: होती कि ना, कि अब चलो ये जरूरतें हमारी
0: हम पूरी कर लेंगे, है ना।
1: बिल्कुल,
0: तो कितने उन लोगों को उसकी उम्मीदें जुड़ी होती हैं, और अपने घर परिवार से दूर रहकर अपनों के सपनों को पूरा करने वाले हर प्रवासी श्रमिक को इतनी मेहनत करके अपने परिवार का जो पोषण कर रहा है उसके प्रति भी हमें सैल्यूट करना चाहिए।
1: बिल्कुल बिल्कुल, हम बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं ऐसे लोगों को।
0: बिल्कुल,
1: तो चलते चल के एक सुनते हैं गीत ना।

0: तो आरती महीना तो जून का है।
1: जी हाँ, पसीना भी बहुत आ रहा है।
0: बिल्कुल सही कहा, और इसी जून के महीने में हमें ध्यान रखना है कि हमें किस तरह से अपने आप को बचाए रखना है,
1: पसीने से भी बचा के रखना
0: है। तो हमारे श्रोता लिखते हैं, कुछ लोगों ने लिखा भी है, बताओ क्या क्या लिखा है।
1: बिल्कुल बिल्कुल बताइए।
0: ये लिखते हैं कि ये दिन उन मजदूरों के लिए है जो अपने परिवार से दूर रहकर कमाई के लिए बाहर जाते हैं। ये दिन उनके त्याग के प्रति सोचने पर हमें मजबूर करता है कि किस तरह से अपने परिवार से दूर रहकर दुखी हैं, लेकिन फिर भी कमाने के लिए उन्हें अपने परिवार से दूर जाना पड़ रहा है। और ये दिन उनका सम्मान देने, उनके त्याग के बारे में थोड़ा सा सोचने पर ध्यान देने के लिए मनाया जाता है।
1: बिल्कुल। और एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि प्रतिवर्ष ये दिन इस दिन मनाया जाता है 16 जून को, और ये दिन विदेशों में काम कर रहे प्रवासियों द्वारा अपने मूल देश में रहने वाले परिवारों को भेजे आने वाली धनराशि यानी कि रेमिटेंस और उनके वित्तीय योगदान को मान्यता देने और सम्मानित करने को लेकर समर्पित है। और ये दिन 20 करोड़ से अधिक प्रवासी कामगारों के त्याग और प्रयास को सराहता है जो दूर रहकर भी अपने लगभग 80 करोड़ परिवार के सदस्यों की आजीविका और भविष्य का निर्माण करते हैं। और इसका उद्देश्य जो है वो भेजने की जो रेमिटेंस भेजने की लागत को कम करना और प्रवासियों को बैंकिंग तथा सुरक्षित औपचारिक माध्यमों के उपयोग के लिए प्रोत्साहित करना है।
0: बिल्कुल। वही एक श्रोता ने लिखा है कि प्रवासियों द्वारा अपने परिवार और मूल देशों के सतत विकास में किए गए महत्वपूर्ण वित्तीय योगदान को मान्यता देना आज के दिन का उद्देश्य है। और प्रवासियों द्वारा भेजा गया धन लाखों परिवारों के लिए शिक्षा, चिकित्सा, आवास और आजीविका का एक मुख्य आधार है। और दिवस पहली बार 2015 में अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष द्वारा घोषित किया गया था, जिसे संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा भी मान्यता प्राप्त है। बिल्कुल सही कहा आपने, और बहुत अच्छे विचार हमारे श्रोताओं ने साझा किए हमारे साथ। और आरती, और देखा आपने कि जब हम बात कर रहे हैं कि किस तरह से लोग जो है अपने परिवारों के लिए मेहनत करते हैं, है ना, मशक्कत करते हैं और उनके लिए धन जुटाते हैं, दूर रहकर भी अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं, सोचिए कितना मानसिक रूप से मजबूत हो जाते होंगे वो लोग, और कितना शारीरिक रूप से अपने आप को मजबूत बना के रखते होंगे, है ना।
1: और बहुत जरूरी भी है, अगर हम दिमाग से अपने दिमाग का संतुलन बना के चलेंगे और छोटी छोटी जो परिस्थितियां हमारे सामने आ जाती हैं उनसे घबराने के बजाय उनका सामना करेंगे तो बिल्कुल भी, क्योंकि ना बहुत सी चीजें होती हैं जो हमारे सामने आती है, क्योंकि भाई जीवन है, उसमें कठिनाइयां तो आपके सामने आएंगी। आप ये नहीं कह सकते कि नहीं हमें अलग चलना है या हमारा जीवन बिल्कुल सुखी सुखी क्यों नहीं है, है ना, या उसकी तरह क्यों नहीं। जो सामने वाला जिसको देख के आप कह रहे हैं ना, उसके जीवन में भी कठिनाइयां होंगी, आपको जरूरी नहीं आपको पता हो उसकी,
0: आपने उसकी डार्क साइड देखी नहीं ना, आपने खाली उसका सामने जो जिस तरह से हंसना बोलना और हमें लगता है कितना सुखी जीवन है, कितना मस्त बंदा है ये, लेकिन उसके पीछे का जो संघर्ष है, पीछे के जो दुख है, पीछे की जो कहानियां है, वो हम नहीं जान पाते हैं।
1: बिल्कुल। इसी को लेकर छोटी सी कहानी आपको बताऊंगी कि देखिए चील जो होती है ना, कितना बड़ा पक्षी होता है ना, और उस तक पहुंचने की कोई सोचता भी नहीं कोई पक्षी, क्योंकि सब डरते हैं उससे, लेकिन एक पक्षी है जो उसको परेशान करता है, वह कौआ। वो जर उसको चोच मार कर परेशान करने की कोशिशें करता रहता है, लेकिन वो क्या करता है पता है, वो उस ध्यान नहीं देता उसकी तरफ, क्योंकि वो अपनी एनर्जी है जो है ना वो उस तक उस पर वेस्ट नहीं, उस पर बिल्कुल भी जाया नहीं करता, वो अपनी उड़ान के ऊपर ऊंचा कर देता है, वो इतना ऊंचा उठ जाता है
0: कि कौआ
1: कौआ वहां तक पहुंच ही नहीं पाता। तो वो मतलब उससे जूझा नहीं, उससे उसने कोई बात नहीं करी, उसके ऊपर अपनी
0: डिस्टर्ब नहीं हुआ, अपना संतुलन नहीं बिगाड़ा,
1: नहीं किसी को देखे, बस उसने अपनी उड़ान को इतना ऊंचा कर लिया कि वो उस तक पहुंच ही नहीं पाया।
0: बिल्कुल सही कहा आपने कि आपको जो है अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं जिंदगी में आगे बढ़ रहे हैं तो तंग करने वाले, परेशान करने वाले, है ना, बहुत लोग मिलेंगे, लेकिन आपको अपना लक्ष्य बनाए रखना चाहिए कि नहीं, आपकी उड़ान चील जैसी होनी चाहिए, कि आपको इतना ऊंचा उड़ना है कि कौवा खुद ब खुद अपनी उड़ान हटा ले, है ना।
1: बिल्कुल, वो हार मान के अपने आप ही हट जाए।
0: हाँ, ये होना चाहिए और होता भी है। कुछ लोग जो महान बने हैं उन्होंने ऐसे ही तो महानता अर्जित नहीं की ना भारती। तो जीवन में हर नई चुनौतियों को, हर नए संघर्ष को, हर नई परिस्थितियों को जो है वो हमें वो हमारा इंतजार कर रही होती है, और कुछ लोग छोटी सी कठिनाई से, छोटी सी बातों से, छोटे से दुख से टूट जाते हैं, जबकि कुछ लोग बड़ी से बड़ी समस्या का सामना भी मुस्कुराकर कर लेते हैं। तो इन दोनों के बीच का जो अंतर है केवल परिस्थितियों का नहीं है, बल्कि

0: मानसिक मजबूती का होता है।
1: बिल्कुल, और मानसिक मजबूती व्यक्ति को विपरीत परिस्थितियों में भी संतुलित रहने, सही निर्णय लेने और आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। ये किसी जादू की, ये मतलब किसी जादू की तरह नहीं आती कि एकदम से किसी ने आपको मंत्र पढ़ दिया और आपने एकदम
0: आपके पास जादू की छड़ी आई, आपने गोल गोल घुमाया, खुल जा सिम सिम और ताला खुल गया।
1: बिल्कुल, ये ऐसा कुछ नहीं होता ऐसा, बल्कि अनुभवों, धैर्य और सकारात्मक सोच से विकसित होती है। प्रतिस्पर्धा, तनाव, अपेक्षाएं और तेज रफ्तार जीवन कई बार मन को विचलित कर सकते हैं।
0: हाँ बिल्कुल, और मानसिक मजबूती का अर्थ ये नहीं है कि व्यक्ति कभी दुखी ना हो या उसकी आंखों में आंसू नहीं आते। इसका जो मतलब है वो ये, दुख, निराशा और कठिनाइयों के बीच भी हम

0: आपने गोल गोल घुमाया, खुल जा सिम सिम और ताला खुल गया।
1: बिल्कुल, ये ऐसा कुछ नहीं होता ऐसा, बल्कि अनुभवों, धैर्य और सकारात्मक सोच से विकसित होती है। प्रतिस्पर्धा, तनाव, अपेक्षाएं और तेज रफ्तार जीवन कई बार मन को विचलित कर सकते हैं।
0: हाँ बिल्कुल, और मानसिक मजबूती का अर्थ ये नहीं है कि व्यक्ति कभी दुखी न हो या उसकी आंखों में आंसू नहीं आते। इसका जो मतलब है वो ये, दुख, निराशा और कठिनाइयों के बीच भी हम

0: हैं, वास्तविकता हमेशा बाहरी रूप से अलग होती है।
1: बिल्कुल।
0: और वही एक श्रोता कहते हैं कि दूर के ढोल सुहावने ही होते हैं, हमारी आदत होती है कि दूसरों को देखकर हम आह भरते हैं कि काश हमारी जिंदगी भी दूसरों की तरह आरामदायक होती, पर जब करीब जाकर उनकी असलियत पता चलती है तो लगता है कि भाई हम जैसे हैं
1: वैसे ही हैं। जी, तो बहुत सी चीजें जो हमें दूर से तो वो लगती है, जैसे हमारी श्रोताएं जो लिखती हैं कि दूर के दोस्त सुहाने होते हैं और नजदीक बजे तो जैसे आपने बताया भी इनके बारे में, तो इन्होंने बताया कि किस किस तरह से कठिनाइयां और कमियां हमारे सामने आती हैं उस चीज के लिए लिखे, तो बहुत से जो श्रोता है हमारे इसी चीज को लिख रहे हैं, तो बहुत ही अच्छी बात है।
0: लेकिन यहाँ मैं ये कहना चाहूंगी आरती कि दूर से आरती और मंदाकिनी जैसी सखियां भी बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन यकीनन पास आने पर भी वो अच्छी लगेगी।
1: ऐसा नहीं है कि आपको निराशा हाथ लगी है, आप बिल्कुल हमसे मिली तो हम आपको और बहुत अच्छी तरह से आपसे बात करेंगे
0: जैसे हम अभी आपको लग रहे हैं।
1: जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।

0: हाँ, तो अब हम बात कर लेते हैं कि किस तरह से बजट पे तकरार होती है। तो इस पर हमारे श्रोता ने लिखा है, श्रोता में लिखते हैं कि मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि घर के सभी सदस्यों में, खास करके पति पत्नी में, इस बात पर तकरार होती ही है, परंतु स्वयं मैंने धर्म पत्नी और बच्चों को शुरू में ही बैठा कर समझा दिया था कि बेटियों बेटियां और बेटे सभी टॉप कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ रहे थे जिनके खर्चे बहुत ज्यादा है, इसलिए कोई भी अननेसेसरी खर्चे हम में से कोई नहीं करेगा ताकि घर का बजट ना बिगड़े। और माता रानी की कृपा रही कि सभी ने माना और आज तक इस बात पर सभी कायम है, तकरार होने की नौबत ही नहीं आई।
1: ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप समझदारी से चले, आपके बच्चे भी समझदार निकले कि इस बात पर तकरार नहीं होती है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आम मध्यम वर्गीय परिवार की कहानी है घरेलू बजट पर तकरार होना। जब घर चलाने वाले अतिरिक्त पैसे की मांग करें तो कमाने वाले के मुंह से निकलता है, अरे अभी तो इतना पैसा हो जाता था, पर अब क्या कारण है, मतलब इतने पैसे देता था उसमें तो काम निकल आता था। और भी पता चलता है कि विवाद सामने आ गया। विवाद का मुख्य कारण लगातार बढ़ती महंगाई, रसोई के सामान, दूध गैस के बढ़ते जो दाम है, घर की भौतिक वस्तुएं, फ्लैट, बच्चों की शिक्षा, ईएमआई, ये सभी जो है मध्यम वर्गीय परिवारों के मासिक खर्चों में जो है भारी वृद्धि हुई है। सभी बातों से सीमित आय और बढ़ते खर्चों के बीच तालमेल न बैठने से घर में तनाव और बहस की स्थिति पैदा हो जाती है।
0: जी, और एक श्रोता जो लिखते हैं कि घरेलू बजट किसी भी परिवार की आर्थिक व्यवस्था की रीढ़ होता है। परिवार की आय और खर्चों के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए बजट बनाना बहुत आवश्यक है, लेकिन कई बार यही बजट परिवार के सदस्यों के बीच तकरार का कारण बन जाता है। सीमित आय और बढ़ती महंगाई के कारण जब सभी इच्छाओं को पूरा करना संभव नहीं होता तब मतभेद पैदा होने लगते हैं। यदि परिवार के सदस्य मिल बैठकर आय, खर्च और बजट की योजनाएं बनाएं तथा एक दूसरे की

0: जरूरतों को समझें तो अधिकांश समस्याओं का समाधान आसानी से हो सकता है।
1: हाँ बिल्कुल सही कहा। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि घरेलू बजट किसी भी परिवार की आर्थिक व्यवस्था की रीढ़ होता है। परिवार की आय और खर्चों के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए बजट बनाना बहुत जरूरी है, लेकिन कई बार यही बजट परिवार के सदस्यों के बीच तकरार का कारण बन जाता है। सीमित आय और बढ़ती महंगाई के कारण जब सभी इच्छाएं पूरी करना संभव नहीं होता तो मतभेद पैदा होते हैं। परिवार के सदस्यों के बीच में क्या होता है, आपस में तनाव।
0: देखिए आपका एक आप श्रोता का हम लोगों ने दो दो बार उसको उनको पढ़ लिया।
1: हाँ।
0: उनको इतना ज्यादा उनका बढ़िया उन्होंने इस चीज को लिखा तरीके समझा के, क्योंकि बजट की जो चीजें होती है ना
1: बिल्कुल
0: वो यही चीजें होती है। हर घर की समस्या ही यही है जो कि मतलब जब भी बजट बनाने बैठते हैं ना तो सबकी अपनी अपनी इच्छाएं होती है,
1: बिल्कुल
0: है ना, और सबको लगता है हमारी हमारी बात पूरी की जाए, हमारी बात पूरी की, और इसी बात पे मतभेद पैदा होने शुरू हो जाते हैं परिवार में।
1: बिल्कुल सही कहा, मतभेद नहीं होने चाहिए, है ना
0: जी बिल्कुल।

0: तो आरती अब हम अपने श्रोताओं से ये इल्तिजा करते हैं कि उनकी नजरें इनायत बनी रहे,
1: हम पे अपनी कृपा बनाए रखिए।
0: तो वही अब जो है सखी सहेली कार्यक्रम का वक्त खत्म हो चला है और इस कार्यक्रम से अब मंदाकिनी जोशी
1: और आरती श्रीवास्तव को दीजिए अनुमति। नमस्कार।
0: इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

दोस्तों नमस्कार। सेल्यूलॉइड के सितारे इस कार्यक्रम में सेल्यूलॉइड के आसमान से पिछले सप्ताह एक सितारा नहीं बल्कि एक चांद उतरा था, 14वीं का चांद।

0: चौदहवीं का चांद यानी अभिनेत्री वहीदा रहमान ने विविध भारती के स्टूडियोज को और सेल्यूलॉइड के सितारे कार्यक्रम को जगमग रोशन कर दिया था। बातों का सिलसिला कुछ इस तरह चला कि हमें प्रोग्राम के वक्त का अंदाजा ही नहीं रहा, इसलिए इस हफ्ते भी वहीदा जी विविध भारती के इस कार्यक्रम को रोशन कर रही हैं और बातें वहीं से शुरू कर रही हैं जहां पिछले सप्ताह छूट गई थीं। वहीदा जी से बातें कर रहे हैं कमल शर्मा।
1: वहीदा जी, गोल्डी साहब का भी जिक्र आया था, फिर अधूरा रह गया। गोल्डी साहब का शुमार बहुत ही टैलेंटेड डायरेक्टर्स में से होता है और उन्होंने बड़ी कामयाब फिल्में बनाई और आपने भी उनके साथ में काम किया। एक निर्देशक के रूप में, डायरेक्टर के रूप में आपने उनमें क्या खूबियां पाए?
2: वो भी काफी इंटेलिजेंट डायरेक्टर थे।
1: कैसा था उनका काम करने का स्टाइल जो था?
2: वेरी इजी टू वर्क विथ। गाइड में पहले पहले शुरू शुरू में क्या होता था, अगर डायरेक्टर को कोई सजेशन दे, मेरा एक्सपीरियंस है दूसरे आर्टिस्टों का, आई डोंट नो, तो उतना वो लाइक नहीं करते थे। खासकर वो दिमाग में उस वक्त तो ज्यादा ही था, अभी भी है थोड़ा बहुत, कि एक तो लड़की के क्या सजेशन लेना चाहिए ना, दैट काइंड ऑफ थिंग। तो गोल्डी में ये बात नहीं थी। तो कभी कभी मैं कहती ये ऐसा क्यों हो रहा है, ये मुझे नहीं ठीक लग रहा है, तो हाँ या ना नहीं कहते थे मगर उस चीज को ले लेते थे। फिर चुपके से उसको करा के मैं कह रही मैंने जो कहा वो ही किया ना आपने, तो कहते हाँ तो सही सजेशन था, इसके लिए मैंने किया, यू नो। सो वो बात बड़ी अच्छी थी और गाइड का ट्रीटमेंट उनका बहुत ही बढ़िया और अच्छा था। खासकर गाइड का एक सीन था जहां मैं मुझसे छल किए जाए परफॉर्म करने से पहले बैक स्टेज पता चलता है कि राजू इज बीन अरेस्टेड फॉर फोर्जरी, और उसके या उससे पहले मार्को आते हैं, अपनी किताब प्रिंट हो चुकी है, तो वो राजू को कहते मुझे अंदर जाना है, मिलना है, जाने नहीं देते, तो वो मना करते हैं। अगर मैंने सोचा अगर आज की फिल्म होती तो जरूर एक वहां फाइट होनी थी बिटवीन राजू एंड मार्को, तो उसको इतना डिसेंटली और इतना डिग्निफाइड मैनर में उसको ट्रीट किया। वो खाली सिर्फ टाइट, थोड़ा टाइट करते हैं मार्को की और ठीक करके कोट करते नहीं आप नहीं मिल सकते, मैं किताब दे दूंगा, आप जाइए। वो मुझे वो सीन बहुत अच्छा लगा, छोटा सा सीन था मगर बहुत अच्छा लगा, और उसमें दोनों का यू नो अंडरस्टैंडिंग ऑफ कैरेक्टर्स बहुत ही खूबसूरत, ही वाज वेरी गुड डायरेक्टर।
1: लेकिन वो जो गाना है मुझसे छल किए जाए, ये तो जरूर हम सुनाना चाहेंगे।

0: वेदा जी, लिविंग लेजेंड में शुमार होता है दिलीप कुमार साहब का, और उनके साथ में भी आपने बहुत काम किया, बहुत एक से बढ़कर एक फिल्मों में काम किया। खास उससे मुझे यहाँ दिल दिया दर्द दिया याद आ रही है फिल्म, वोदरिंग हाइट्स से मेरे खास से इंस्पायर्ड थी वो फिल्म। दिलीप साहब के बारे में कुछ बताइए।
1: दिलीप साहब के साथ पहली फिल्म थी मेरी दिल दिया दर्द लिया, और फिर उन्होंने मुझे ये किताब दी थी वुदरिंग हाइट्स के, इसको पढ़िए, इससे हमने इंस्पायर करके बना रहे। और मुझसे गलती हो गई, जब किताब पढ़ चुकी मैं एक बार सेट पे गई तो दिलीप साहब ने कोई और असिस्टेंट ने पूछा कैसी लगी आपको ये किताब, वही है तो हम बना रहे। तो मैंने गलती से कह दिया जी साहब किताब से और फिल्म से कोई ताल्लुक नहीं है। बोले क्या बात कर रही हैं आप, उसी से तो हम आइडिया लेके बना रहे हैं, मतलब इंस्पिरेशन के साथ। मैंने कहा वुदरिंग हाइट्स में कहानी का जोर शो होता है जब कैथरीन मर जाती है, उसके प्यार में जो इनका बुरा हाल होता है, यहाँ तो ये रूपा जी जो है अंत तक चली है और मिल भी जाती है, इनमें तो कहाँ से। तो बोले नहीं नहीं वेदा जी आप बहुत मीम मेक निकालते हैं, अब नहीं उसी से लेते हैं। तो अब पता नहीं दिलीप साहब को सही लगा कि नहीं लगा, आई डोंट नो, बट ही वॉज वेरी नाइस एंड कोऑपरेटिव। और दिलीप साहब की एक बड़ी अच्छी बात थी, अपना शॉट होने के बाद अगर उस वो शॉट में खुद है या ना तो वो दूसरे आर्टिस्ट का देखते रहते थे कि सही हो रहा है कि नहीं। अगर उनको लगता था कि नहीं सही हो तो चुपके से आके कह देते भाई इसको आप ऐसे ऐसे करें तो नहीं अच्छा होगा, इसको इस तरह करते हैं।
0: आपको कहा?
1: हाँ हाँ क्यों नहीं, सबको कहते थे। दिल दिया दर लिया, उसके बाद कौन सी थी आदमी, राम और श्याम, इसमें
0: कोई खास सीन याद आता है जिसमें उन्होंने कहा कि
1: राम और श्याम में एक लाइट सीन था, तो मैं अपने फादर को जाके कह रही हूँ कि एक आदमी मिला और ऐसे हुआ वैसे हुआ, वो गाड़ी जूम करके जाती, वो होता है ये होता है, बोले बोले बोले जा रही हूँ। तो मैंने, हम कोडेकनाल में थे होटल में, मैंने कहा साहब डायलॉग दे दीजिए, सीन दे दीजिए, याद करना नहीं तो आउटडोर में टाइम वेस्ट होगा। और मुझे बहुत ये लगता था कि प्रिपेयर्ड होना चाहिए। तो कहने लगे नहीं आपको याद करने की जरूरत नहीं। मैंने कहा क्यों, आपने कहा इतना लंबा सीन है। तो मेरी आदत थी यू नो मेरे हाथ बहुत चला के बात करती हूँ और साउंड्स निकालती हूँ जैसे उनके, तो जो जो आप बोलती हैं उसको मैंने नोट किया है, आपको वही करना है। मगर

0: इस वक्त मैं क्या बोलती, मुझे क्या पता। तो बोले एक रफली देख लीजिए, मैं कल दे दूंगा या नहीं तो आज रात को दूंगा मैं सीन। तो फिर भी मैं बड़ी काफी नर्वस थी कि भाई दे दीजिए याद करने डाल रहा हूँ। तो मैं कहूँ पढ़ती रही, तो मैंने कहा कि ये क्या है भाई, जूम करके गाड़ी चली गई। तो बोले मैंने आपसे से सुना है वो लफ्ज। मैंने कहा कब, तो आपको याद नहीं होगा, हम नोट करते रहते हैं आर्टिस्ट कब क्या से बिहेव करता है, तो इसमें आपको ज्यादा तकलीफ करने की जरूरत नहीं है। तो आप अपने खुल के जैसे आप भूल जाइए कि आप ये कैरेक्टर हैं, थोड़ी देर के लिए आप सोच लीजिए मैं बहिदा ही हूँ, हम कैमरा ऑन कर देंगे, सिर्फ थोड़े जो कनेक्टेड जॉइंट के डायलॉग्स हैं वो याद रखे, बाकी आप अपना कीजिए। मैंने कहा अच्छी बात है।
1: आदमी भी थोड़ी सी अलग तरह की फिल्म थी, टफ सा करेक्टर है, इसमें भी बड़ा चैलेंजिंग रोल था क्योंकि ट्रायंगल था, लव ट्रायंगल था आदमी का। इसका कोई गाना सुना दिया जाए
0: आदमी का, वो जो उनके एक्सीडेंट के बाद एक गाना होता है
1: आज पुरानी राहों से कोई मुझे आवाज नहीं थी।
0: हाँ।

0: तो अपने समकालीन जो आर्टिस्ट रही आपकी, जो समकालीन अभिनेत्रियां रही, उनमें आपको कौन बहुत पसंद थी?
1: मेरे से पहले जो थे, मतलब मेरे से सीनियर, उसमें मुझे गीता बाली जी बहुत अच्छे लगते थे, फिर नरगिस जी, और मीना जी का क्या था, उनके एक जैसे रोल होने लगे थे, एक टाइप की पर्सनालिटी हो गई थी, हालांकि उनकी जो स्क्रीन प्रेजेंस जो थी वो बहुत ही बढ़िया थी, इट वाज वेरी कैरिस्मेटिक, उनको देखो तो दिल का

0: तो कहीं नजर इधर उधर नहीं जाते थे, उन्हीं को देखते रहिए। बड़ी ग्रेट फिल्म, आई मीन पर्सनैलिटी थी उनकी। उसके बाद हमारे मेरे साथ के वक्त मैं कहूँ साधना बहुत अच्छे थे, और माला सिन्हा, नंदा, यानी कि नंदा मेरी फ्रेंड है मगर उनकी अपनी एक पर्सनैलिटी थी, बड़ा स्वीट सा चेहरा था।
1: अच्छा, क्रिटिक के रूप में कभी अपनी फिल्मों को देखा आपने कि भाई ये सीन ऐसे हो जाना चाहिए था कभी?
0: हाँ, वो तो इसीलिए मैं अपनी फिल्में देखती नहीं हूँ, क्योंकि जब मैं देखती हूँ तो ओहो इसको, इस सीन को और बेटर गाइड में खुद मैं इतने नुक्स निकालती हूँ कि ओहो हो ये क्या किया मैंने, इससे तो ऐसे करना चाहिए था, बेहतर होता था सीन। सो फिर मजा ही नहीं आता मुझे, जब तक मैं बिल्कुल बोर होके टीवी लगाऊं मेरी फिल्म हो तो चलो वक्त गुजारने के लिए देख लेती, मैं कहती अभी जाने दो, हो चुका अभी मैं क्रिटिसाइज करके क्या फायदा, तो वरना मैं उतना एंजॉय नहीं करती अपनी फिल्म।
1: टीवी की अगर बात करें तो उसमें आज का सिनेमा भी मौजूद है घर में ही, और पुरानी फिल्में भी आती हैं, तो नई फिल्में भी आप देखती होंगी। जब आप उन दोनों को कंपेयर करती हैं, उनका कंपैरिजन करती हैं, तो क्या महसूस होता है आपको?
0: नहीं देखिए, लेटली एक दो साल से कुछ बहुत ही अच्छा दौर आया है जो हर किस्म की फिल्म बन रही है, मेनली शायद ये मल्टीप्लेक्सेस जो शुरू हो गए हैं, एक थिएटर में हर किस्म की फिल्म चल सकती है, चलती है, मगर थोड़े अरसे पहले कुछ ज्यादा ही वायलेंट पे बेस्ड होती थी, और कहानियां रट्टी पट्टी एक ही के दो भाई हैं बिछड़ गए बचपन में, माँ होती है एक अच्छी, नेचुरली माँ तो अच्छी होना चाहिए, फिर जो अच्छा लड़का है माँ के साथ रह जाता है, नो इट वाज वेरी बोरिंग। अभी थोड़ी वैरायटी आ गई है और बोल्ड सब्जेक्ट्स, और आजकल के जो आर्टिस्ट हैं मेल और फीमेल वो हर किस्म का रोल करने के लिए तैयार हो गए हैं जो हमारे जमाने में नहीं होते थे।
1: आपका एक बेटा है, एक बेटी है, क्या नाम है उनके?
0: वो सब बड़े शर्माते हैं, क्यों कहते हैं आप क्यों हमारा वो करते हैं, एक लड़का एक लड़की हो बस।
1: वो फिल्में देख ले आपकी?
0: मेरी फिल्में इतनी नहीं देखते हैं, कभी देखी नहीं उन्होंने। मेरी लड़की और लड़के ने कनाडा में ग्रेजुएशन किया, टोरंटो में, तो वहाँ मेरी लड़की ने फिल्म स्टडीज की, तो फिर एक बार वापस जो हिंदुस्तान आई तो कहने लगी जो प्यासा में ऐसी है प्यासा में, मैंने कहा बेटा आपने प्यासा कब देखी, आपको तो अच्छे नहीं लगती थी हमारी मेरी फिल्में देखना, तो बोले टोरंटो में देखी। ओ मैंने कहा अच्छा थिएटर में लगी थी प्यासा, तो बोले नहीं कॉलेज में देखी, मैंने कहा कॉलेज में प्यासा कैसे दिखाई गई, तो कहने लगे वहां के आर्काइव में प्यासा रखी हुई है। मेरे ख्याल से गुरुदत्त जी की एक दो फिल्में हैं, तो आई फेल्ट वेरी प्राउड कि वाह क्या बात है, तो उसने कहा मैंने प्यासा देखी है। अब वो ख्वाहिश जाहिर कर रही है और दोनों बच्चे मेरे कि हम अब आपके साहब बीबी और गुलाम देखना चाहते हैं।
1: तो यहाँ प्यासा का भी जिक्र आया है और हाँ। साहब बीबी गुलाम का भी आया है। हाँ। साहब बीबी गुलाम का तो इन दोनों में से कोई किसी एक फिल्म का गाना और हो जाए उसमें।
0: प्यासा का वो है ये दुनिया में, हाँ नहीं जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यारों को प्यार मिला,
1: हेमंत कुमार साहब की।
0: हाँ, हेमंत कुमार साहब की आवाज, वो बहुत अच्छा था।

0: आदमी तो बहुत इतने बुरे मतलब यू नो इज टू हेट हिम ऑन द स्क्रीन मगर उतने जेंटलमैन थे लाइफ में बहुत ही शरीफ और उनकी एक अजीब बात थी उन्होंने मुझे कहा मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ सुन के कि उन्होंने जिंदगी में कभी कोई फल नहीं खाया वो फल खा नहीं सकते क्योंकि फल की खुशबू से तक उनको मतली आती थी मैंने कहा अच्छा पहली बार सुना मैंने वैसे इट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग और जोक्स बहुत क्रैक किया करते थे इट वॉज अच्छा लगता था
1: लेकिन उन्होंने कामयाबी का फल अच्छा
0: बिल्कुल
1: आपकी फिल्मों की अगर हम बात करें तो मुझे दो तीन फिल्में और बहुत याद आती हैं रुला भी देती हैं उसमें एक मास्टरपीस है आपकी एक और फिल्म तीसरी कसम शैलेंद्र साहब उससे जुड़े हुए थे जिनकी बड़ी दर्दनाक फिर उसके साथ में जो घटना ट्रेजेडी हुई उसके साथ में वो भी राज कपूर साहब आपके उसमें नायक थे और मेरे खास बासु भट्टाचार्य साहब ने उसको डायरेक्ट किया था उसके बारे में जरूर बताइए उस फिल्म के बारे में एक तो उसमें वो पूरी कमाल की वो फिल्म आज भी उसको जितनी बार देखा जाए ऐसे मन ही नहीं भरता उस फिल्म को
0: उसकी बड़ी सिंपल कहानी थी बड़ी सिंपल स्वीट पिक्चर थी मगर उसकी फिलॉसफी बहुत डीप थी उनके गानों में भी सिंपल वर्ड थे मगर उसकी मीनिंग उसकी फिलॉसफी में बहुत डेप्थ थी और आप मानोगे नहीं आधी से ज्यादा फिल्म बनी थी बिना मतलब एक सीन में मैं और राजी हैं तो मैं नहीं हूं या नहीं तो राजी नहीं है तो डायरेक्टर ने बड़ी मुश्किल से ये नहीं क्योंकि वो बहुत देर से आते थे
1: अच्छा।
0: सेट्स पे और वो बहुत मसरूफ थे अपने संगम बन रही थी उसके बाद हाँ संगम बन रही थी उस वक्त वो इतने ज्यादा उसमें जुड़े हुए थे मसरूफ थे तो इसको उन्होंने इतनी तवज्जो नहीं दी उन्होंने इसलिए की क्योंकि शैलेंद्र उनके दोस्त थे और वो उसके प्रोड्यूसर थे बड़ी मुश्किल होती थी मगर देख के फिल्म मुझे खुद ताज्जुब होता था कैसी बनी फिल्म क्योंकि कई दफा सीन्स में एक बैक शॉट ले लिया कंबाइंड उसके बाद मेरे क्लोजअप हो रहे और मेरे से बैक शॉट ले लिया तो उसके बाद राज साहब के क्लोजअप हो रहे मगर सीन टोटली ऑन द स्क्रीन एक सीन होता था तो वही वैसे हालात में फिल्म बनी और फिर वो मॉस्को फिल्म फेस्टिवल में ऑफिशियल एंट्री थी उसके लिए हम साथ गए थे मैं और राज जी और वाकई में मैंने देखा राज जी यूज्ड टू गेट मॉब्ड इन मॉस्को लिटरली राजू राजू राजू यू नो बहुत और जो जो रशियन था वो उनके पूरे गाने एक क्या 420 और फिल्मों के गाने आवारा के सब गाते थे
1: वेदा जी इस फिल्म में नौटंकी वाली का एक किरदार किया था और म्यूजिक भी उसमें काफी कुछ उसी तरह का था शंकर जयकिशन साहब का संगीत था इस फिल्म में क्या आपको संतुष्टि वाली भूमिका निभा करके तीसरी कसम की अगर मैं बात करूं
0: हाँ मुझे अच्छा लगा था क्योंकि वो भी एक डिफरेंट कैरेक्टर था यू नो और सिंपल एंड वेरी स्वीट उससे वो फिल्म कभी भी देखो बोर नहीं लगती है यू नो अच्छी लगती है दिल को छूती है
1: कुछ चीजें ऐसी कि जैसे सेल्यूलॉइड पर पोएट्री उसी तरह की वो फिल्म है उसमें भी गाने बहुत अच्छे थे एक गाना उस फिल्म का हम जरूर सुनाए
0: सजन रे झूठ मत बोलो खुदा के पास जाना है न हाथी है न घोड़ा है हमें तो पैदल ही जाना है

0: बासु भट्टाचार्य, उन्होंने हालांकि बड़ी ऑफ बीट फिल्में बनाई, समानांतर सिनेमा से भी उनका नाम जोड़ा जाता था, पैरेलल सिनेमा से, और इस फिल्म में उनके साथ में काम करने का मौका मिला आपको। बिमल रॉय साहब के साथ में उनका लंबा एसोसिएशन रहा, उनको कैसा निर्देशक पाया आपने?
1: पहले उनको समझना जरा मुश्किल था, क्योंकि वो नेचुरली उनकी पहली फिल्म थी तो वो बड़े टेंस रहते थे, और फिर अक्सर उनको उनका कैमरामैन के साथ ये नोकझोंक हो जाती थी छटपट। और फिर एक बार राजनी का वहीदा जी ये क्या हो रहा है, कुछ मेरी समझ में नहीं आ रहा, तो मैंने उनसे कहा तो वो बेचारे नए हैं तो आप उनको बता दीजिए कि जो गलत हो रहा है। तो कहने लगे नहीं, मेरा ये प्रिंसिपल है, जब मैं एक्टर बनता हूँ मैं सिर्फ एक्टर रहता हूँ। मैंने कहा मैं मानती हूँ, मगर आप इतने पुराने डायरेक्टर हैं, बेचारा वो नया है, उसकी मदद करो, फिर मुझे क्यों कह रहे हैं? तो बोले कोई तो चाहिए ना कंप्लेन करने के लिए। तो मैंने कहा आपको क्या मैं ही मिली जो आप मुझे कंप्लेन क्यों कर रहे हैं? उससे मैं और परेशान हो रही हूँ कि आपको लग रहा है गलत तो है, तो क्या करें। तो ऑन द होल जब फाइनली फिल्म बनी तो बहुत अच्छी बनी थी, तो हमने कहा वेल ठीक हो गई, यू नो।
0: वेदा जी, आपने सत्यजीत रे साहब की भी किसी फिल्म में काम किया, कौन सी फिल्म थी वो?
1: अभिजान।
0: अभिजान बंगला आपको
1: नहीं, उसमें इतनी ज्यादा शुद्ध बंगाली बोलने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उन्होंने कहा ये बिहारी लड़की है, टूटी फूटी बंगाली और भोजपुरी जबान बोलती है, तो उसमें कोई मुश्किल नहीं होगी आपको। तो मगर जब उसका ऑफर आया मुझे बहुत बेहद खुशी हुई और ताज्जुब भी हुआ।
0: उसके पहले आपने उनकी कोई फिल्म देखी थी सत्यजीत रे?
1: हाँ, पाथर पंचली देखी थी। अच्छा। उसके बाद भी और दो तीन फिल्में देखी थी मैंने, तो आई वॉज रियली वेरी थ्रिल्ड और बहुत अच्छा लगा उनके साथ काम करके। और
0: उन्होंने क्या कहा के बारे में, उनको कैसा लगा आपका काम?
1: हाँ, उन्होंने कहा जब हम डिस्कस कर रहे थे सौमित्री चटर्जी और हम, उनके वो फेवरेट एक्टर थे, तो कि इस कैरेक्टर को किसको लिया जाए, क्योंकि कोई प्योर बंगाली की जरूरत नहीं है जो जबान जो बोलती है उसके लिए। तो सबने कोरस में कहा है वही दरहमान, तो मैंने कहा सच? तो बोले आई वाज रियली थ्रिल्ड। और उनका समझाना और शॉट लेना इतना प्रिसाइज होता था, ना वक्त जाया होता था ना नेगेटिव जाया। वो तो कहते थे भाई मेरा नेगेटिव इतना निकलता है उससे कोई चूड़ियां प्लास्टिक की चूड़ियां भी नहीं बन सकती है, क्योंकि आई कांट अफोर्ड, क्योंकि इतने छोटे बजट पे फिल्म बनती है। हम नहीं कह रीटेक्स इतने सारे 20-25 रीटेक हो रहे हैं, या इतने ज्यादा शॉट्स ले लिए उसके बाद निकाल के फेंक दिया। मैं दिमाग में पेपर पे लिख लेता हूँ कि इसकी टाइमिंग इतना ही होगा शॉट, उससे शायद 3-4 फुट ज्यादा एक्स्ट्रा मिलेगा आपको शुरू के लिए या एंड के लिए, वरना नहीं।
2: सेल्यूलॉइड के सितारे, इस कार्यक्रम में हमारे साथ हैं जानी मानी अभिनेत्री वहीदा रहमान, इनसे बातचीत कर रहे हैं कमल शर्मा। सुनिए आगे की बातचीत।
0: दूसरे डायरेक्टर्स आए तो फिर भी कहीं ना कहीं मोल भाव तो हो ही जाता है पैसे को लेकर के। जब उनका ऑफर आया पैसे की क्या बात हुई? पैसे आपने
1: सवाल ही नहीं पैदा हुआ था, वो ऑलरेडी वर्ल्ड के वन ऑफ द बेस्ट 10 डायरेक्टर्स में थे। तो पैसा देखिए, हम पैसे के लिए जरूर करते हैं, आफ्टर ऑल इट्स अ प्रोफेशन, कोई चैरिटी तो नहीं कर रहे। मगर कई दफा जैसे रेशमा शेरा मैंने की, सुनील जी ने कहा था ये 25-30 में बनेगी और आप कहिए, क्योंकि उस वक्त सुखदेव डायरेक्टर थे, सुखदेव या खुद सुनील या मैं, कोई आर्टिस्ट पैसे नहीं लेगा, जब पिक्चर खत्म हो जाएगी तो हम पैसे लेंगे और बिक जाएगी। तो वो उसके इतने मुश्किलात से गुजर रहे थे वो, तो उस फिल्म में मैंने नहीं पैसे लिए रेशमा शेरा में। और जब सत्यजीत ने कहा, मैंने कहा सवाल ही

0: पैदा होता कि मैं आपसे पैसे की बात करूं। कई दफा आर्टिस्ट अपने सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए या बहुत बढ़िया डायरेक्टर के लिए काम करते हैं बिना पैसे के या बहुत कम पैसे, जो डायरेक्टर के मन में आए तो दे दे, तो दे दे, नहीं तो नहीं।
1: आपकी एक फिल्म और है बांग्ला जीवन जे रोको,
0: हाँ वो नहीं ठीक बनी, मैंने हालांकि देखी भी नहीं क्योंकि उसमें बनती रही रुकती रही, उसमें कोई एक्सीडेंट हो गया था तो उसके प्रोड्यूसर डायरेक्टर कुछ अरेस्ट भी हो गए थे, कॉम्प्लिकेशंस थे, तो वो ठीक से मुझे मजा नहीं आया वो फिल्म में काम करके।
1: मनोज कुमार साहब का नाम आया था, मनोज जी का नाम लिया जाता है बड़े ही सफल बड़े टैलेंटेड डायरेक्टर्स में से, जैसे गोल्डी साहब को लोग याद करते हैं तो कहते हैं कि मनोज साहब ये छोटा मुंह बड़ी बात होगी, कहते हैं कि वो एक्टर से बेहतर डायरेक्टर है। आप क्या कहेंगे उनके बारे में, कैसे उनके साथ में काम?
0: नहीं, आई एग्री विथ हिम, वो एग्री विथ हिम, बेटर डायरेक्टर देन एन एक्टर।
1: कोई यादगार घटना है उनके साथ?
0: उनके साथ एक फिल्म बनी थी पत्थर के सनम, तो वो बैठ के उस वक्त क्या होता था कि मोबाइल फोन्स नहीं थे और एसी मेकअप रूम नहीं होते थे ना वैन्स होते थे, तो हम ज्यादातर एक बार सेट पे गए तो सेट पे ही बैठे रहते थे जब तक लंच ब्रेक ना हो या पैकअप ना हो, तो आपस में बैठ के बातें करते थे जब लाइटिंग हो रही हो, तो सब एक्टर्स हम साथ में पिछली शूटिंग कौन सी थी, क्या सीन था, वो डायरेक्टर कैसे हैं, ये बातें करते थे। तो मनोज हमेशा अपनी कहानियां अपने सीन सुनाया करते थे, तो उससे मुझे लगा कि यार लिख तो बहुत अच्छा है। तो पत्थर के सनम के डायरेक्टर को मैंने कहा इन चंद सीन आप इनसे लिखवाया कीजिए, लिखवाइए क्योंकि बहुत अच्छा लिखते हैं। तो बोले अच्छा क्यों, मैंने कहा ये सीन्स अपने फिल्मों के सुना रहे हैं तो उससे लगता है कि बात है इस आदमी में। तो काफी सारे पत्थर के सनम के सीन्स उन्होंने फिर मनोज से लिखवाए, यू नो, तो लाइट सीन्स वगैरह बहुत अच्छे थे।
1: अच्छा वेद जी, फिल्मों में तो गाने पिक्चराइज किए जाते हैं, आपके ऊपर बहुत सारे गाने हैं और वो फिल्में जब उतर भी जाएं सिनेमा हॉल से, लेकिन गाने तो गूंजते रहते हैं, रेडियो से हम आज तक सुना रहे हैं लोगों को,

0: लता जी ने आपके लिए बहुत सारे गाने गाए हैं। लता जी से कोई इंटरेस्टिंग मुलाकात याद है आपको? उन्होंने उनको वो गाना आप पे जब जो पिक्चराइज हुआ उसको देख करके उनको मजा आया होगा, आपको मजा आया होगा वो गाना जो उन्होंने आपके लिए गाया हो?
1: लता जी ने कहा, मुझे बाद में कई डायरेक्टरों ने भी कहा, वो हमेशा पूछा करती थी कौन सा आर्टिस्ट परफॉर्म करने वाला है, तो वो बताते थे कि नूतन या मीना कुमारी हुआ। तो एक बार एक म्यूजिक डायरेक्टर ने पूछा, ये क्या फर्क पड़ता है आपको, गाने से मतलब है, आर्टिस्ट क्यों पूछते हैं? तो उन्होंने कहा, नहीं, मैं जब उनकी फिल्में देखती हूँ या पर्सनली मिलती हूँ, ऑब्जर्व करती हूँ कि वो कैसे बिहेव करते हैं, कैसा बोलते हैं, कि ये मैं उसमें अल्लाप लूँ या इस ढंग से गाऊं, तो क्या वो करेंगे तो उन्हें अच्छा लगेगा कि नहीं। तो वो भी बहुत इंटेलिजेंट आर्टिस्ट हैं, तो वो हमेशा पूछती हैं। तो एक वक्त क्या हुआ, वो उनको चॉकलेट्स का बहुत शौक है, तो बांग्लादेश की वॉर जब हुई तो मैं प्रोग्राम कमेटी में थी, तो मेरा जिम्मा था कि फंड कलेक्ट करने के लिए क्या क्या करना चाहिए। तो मैंने इंडस्ट्री को जमा करके बहुत बड़ा शो किया था और लता जी मान नहीं रही थी। कल्याण जी, आनंद जी भाई जाके बहुत कहा, फिर सुनील नरगिस ने कहा कि लता जी आ जाइए इस शो में, बहुत अच्छा होगा, बहुत बड़ा शो होने वाला है। तो पता नहीं क्यों उन्होंने कहा, नहीं, बहुत वर्षों से मैंने हिंदुस्तान में शो करना छोड़ दिया। तो फिर कल्याण जी भाई से मैंने कहा, चलो एक बार आखिरी बार कोशिश करते हैं। कहीं रिकॉर्डिंग स्टूडियो में उनकी गाने की रिकॉर्डिंग हो रही थी, तो हम पहुंच गए बिना अपॉइंटमेंट के। वो देख के फिर चौंक गए कि ये फिर आ गए। तो बस ब्रेक हुआ तो मैंने कहा, लता जी आपके बगैर शो पूरा नहीं होगा, और किशोरदा भी मान गए हैं, तो वो कहते कि लता के बगैर मुझे नहीं मजा आएगा, ये क्या बात है ये? नहीं, क्योंकि तुम क्यों नहीं मानती, मुझे सुनील ने भी कहा, नरगिस जी ने भी कहा, मैं नहीं करती। पता नहीं क्यों अचानक मेरे दिमाग में एक बात आई जो जबान से निकल गई, जो बहुत उसका फायदा हुआ। मैंने कहा, लता जी क्या है, हिंदुस्तान में सिर्फ दो हीरोइंस हैं। तो वो देखने लगे, बोले दो कौन? मैंने कहा, एक इंदिरा गांधी जी हैं, फिर एक आप हैं। तो वो इतने ऐसे मुंह खुला देखने लगे, और फिर कल्याण जी भाई, आनंद जी भी मुझे देखने लगे, ये क्या बोल रहे हैं? वो बोल के एक सेकंड के लिए सन्नाटा हो। मैंने सोचा गलत कहा कि सही कहा, मेरी समझ में नहीं आया। तो फिर वो मुस्कुराने लगे, तो बोले, अच्छा भाई तुम तो मेरा पीछा ही नहीं छोड़ती हो, अच्छा आ जाऊंगी।
0: कहीं कहीं लड़ियाना पड़ता है, मान में नंबर सब चलते हैं। तो फिर वो आएंगे। तो यहाँ लता जी का कौन सा गाना आप सुनवाना चाहेंगे जो आपको बहुत ज्यादा पसंद है?
1: का हम दोनों का गाना, अल्लाह तेरो नाम, ईश्वर तेरो नाम। मैं जब भी सुनती हूँ चुपचाप खामोशी से, तो मेरा दिल भर आता है, तो मुझे वो बहुत ही अच्छा लगता है गाना। उनके तो खैर वो इतने हैं, मुश्किल है ढूंढना या चुनना।

0: खामोशी जो है, अंदर की जो पीड़ा है, वो जिस तरह से वो अंदर ही अंदर बर्दाश्त कर रही चीजों को वो रुला देती है वो।
1: हाँ।
0: ये मैं समझता हूँ कि एक बहुत ही कठिन रोल है जिसमें आपके पास में संवादों से ज्यादा आपको अपने चेहरे से, अपनी आंखों से बात करनी है। कोई यादगार घटना है उस फिल्म से जुड़ी हुई?
1: तो वो सीन डिफिकल्ट था, हालांकि उसमें डायलॉग्स नहीं थे। जब राजेश खन्ना के साथ, राजेश खन्ना को इससे ज्यादा लगाव हो जाता है, पहले केस में इसको धर्मेंद्र के साथ लगाव होता है, तो वो चले जाते हैं शादी करके जब ठीक हो जाते हैं। तो फिर जब दोबारा ये रिपीटेशन होता है तो डॉक्टर कहते हैं कि हमारे प्रोफेशन में आपको ऐसा लगाव होना नहीं चाहिए, मुश्किल बात है। तब इसको महसूस होता है कि अब ये कैरेक्टर को इससे लगाव हो गया है, अब कैसे बचे। तो वो उसको बड़ा समझाने की कोशिश करती, होता नहीं है, तो वो अपने आप को एक कमरे में बंद कर लेती है। वो बड़ा कठिन सीन था क्योंकि वो दरवाजा ठोक रहा है, पीट रहा है, आवाजें दे रहा है, राधा राधा राधा, और वो कमरे से निकलती नहीं है। कैसे वो अपने आप को कंट्रोल करती है और उसका स्ट्रेन उस पर इतना पड़ता है कि वो देन शी गोज मैड। तो वो बड़ा डिफिकल्ट सीन था। और एक डिफिकल्टी हो रही थी क्योंकि जैसे मैं राजेश को बोट राइड पे ले जाती हूँ, वो गाना गा रहे हैं और मैं उसके साथ हूँ एज ए नर्स, और वो इसको सोचा है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है, मुझे भी, मैं प्यार कर रहा हूँ तो ये भी शायद मुझे प्यार कर रही है। उसमें उस वक्त प्रॉब्लम क्या हुई थी, इट वॉज वेरी कॉमिकल, इट वॉज, मेरे जो एक्सप्रेशन थे सीरियस थे क्योंकि वो महसूस करी ओह ये तो फिर से गड़बड़ हो रही है, अब इसको मेरे से लगाव होने लगा है। वो गाना गा रहे हैं और मैं सोच रही हूँ कि अब कैसे इसको मैं दूर करूँ और कैसे समझाऊं। तो उस वक्त राजेश खन्ना नए नए थे तो वो लिप मूवमेंट नहीं कैच कर पाते थे, और जब ऐसे हम एम्ब्रेस कर रहे हैं तो कैमरा पीछे जाता था, तो मैं राजेश कहते थे वेदर जी प्लीज हेल्प मी, तो मेरे स्टार्टिंग दे दीजिए। अब उनके गाना उनका है तो मैं कहती थी ये शाम कुछ अजीब है, फिर वो कैमरा आ जाता तो मैं फिर चुप उदास चेहरा लेके, बड़ी मुश्किल हुई, बड़ी मुश्किल हुआ, हंसते थे। मैंने कहा राजेश थोड़ा कॉन्सेंट तो कीजिए, तो बोले क्या करूं भूल जाता हूं, तो आप मुझे थोड़ा क्यू दे दिया करें। वो कैमरा पीछे राजेश के फेस पे जाता था, क्यों मैं देती थी, गाना उनका था, तो बड़ी प्रॉब्लम हुई।
0: वही गाना सुनते हैं?
1: हाँ जी, वो बहुत मेरा फेवरेट गाना है।

0: कुछ अजीब। वहीदा जी, असिस्टेंट साहब का जिक्र आया, फिर हेमंदा की वो फिल्म थी, हेमंदा ने गाया भी, संगीत भी दिया और फिल्में भी प्रोड्यूस की, कोहरा और 20 साल बाद, ये दो फिल्में भी उन्हीं की थी। हेमंत साहब की फिल्मों की खासियत ये रही कि संगीत जो है उनका बहुत बढ़िया रहा। उनसे कोई पर्सनल आपकी मुलाकात, कोई ऐसी यादगार मुलाकात हुई?
1: पर्सनल एक बड़ा अजीब सा इंसिडेंट हुआ कि हेमंदा को गुरुदत्त जी की वजह से गाने वगैरह गाते थे, सेट पे आते थे, मिले हैं। तो 20 साल बाद नहीं, कोहरा के वक्त शूटिंग खत्म हो गई तो हम कोई फिल्म देखने गए थे, मैं, मेरी बहनें थी, तो उसी थिएटर में हेमंदा भी थे, उनकी बीवी और भी उनके फैमिली वाले थे। तो जब फिल्म खत्म हुई तो वो माशाल्लाह वो कुछ 6 फुट 4 इंच के थे और मैं ऊपर की सीट पे थी, तो वो मुड़े तो उन्होंने मुझे देखा, तो सुना उन्होंने मुझे नमस्कार किया। और कभी कभी मैं खो जाती थी, मतलब एब्सेंट माइंडेड सी, तो मैंने नहीं जवाब दिया, मैं चली आई। इत्तेफाक से मेरी बहनों ने भी नहीं देखा, नहीं तो वो विश करते, उनको जानते थे। तो उनकी बीवी उनसे बहुत नाराज हुई कि ये क्या बात है, आप प्रोड्यूसर हैं, दूसरी पिक्चर बना रहे हैं, कब से जानती हैं वहीदा, और आपने नमस्कार किया, उन्होंने जवाब नहीं दिया, चली गई। तो हेमंत

0: दानिका नहीं, जितना मैं उनको जानता हूँ मुझे लगता वो वहां थी नहीं। बोले क्या मतलब आपका वहां नहीं थी? वो फिजिकली थी, वो फिजिकली थी, मेंटली नहीं थी, क्योंकि शी इज नॉट अ रूड पर्सन, हो नहीं सकता। बोले अरे इतने लंबे चौड़े आदमी के उनको तो आपको दिखाई नहीं दिए। तो उनने, मेरा तो ख्याल है ऐसे। खैर उन दोनों की बहस हुई तो एक दो महीने के बाद उनकी सेट पे मैं गई तो मुझे पूछने गया, वो फिल्म कैसी लगी आपको फलाने थिएटर में? हाँ मैंने कहा बड़ी अच्छी थी, वो नहीं अच्छा था, ये था वो था, काफी बहस हुई। फिर मैंने सोचा आपको कैसा पता मैंने फिल्म देखी? तो बोले क्योंकि मैं भी वहीं था। ओ रियली? मैंने कहा मैंने नहीं देखा आपको, आपने नहीं देखा ना, मुझे पता था आपने मुझे नहीं देखा। और मजे की तो बात यह है, मैंने कहा क्योंकि मैं ऊंचाई पे थी और कद कम, वो नीचे थे मगर बराबर आई टू आई लेवल ठीक था। तो बोले मैंने आपको नमस्कार किया, आपने सीधे स्ट्रेट देखा और मुड़ के चली गई। तो मेरी बीवी मुझसे बड़ी नाराज हुई, और मुझे पता था कि आप मेंटली नहीं थी, वो पिक्चर के बारे में सोच रही थी कि पता नहीं का। तो बड़ी नाइस ऑफ हिम के वो मिसअंडरस्टैंड नहीं किया उन्होंने।
1: जी, उनकी फिल्म 20 साल बाद की अगर हम बात करें या कोहरा, संगीत दोनों का बहुत बढ़िया है, किस फिल्म का गाना सुनवाएंगे आप?
0: कोहरा का गाना, झूम झूम ढलती रात।

0: पहले जी फिल्मों की खूब बातें हो गई, लेकिन फिल्मों से हटकर के भी आप काम कर रही हैं, और खास तौर से हमें पता चला कि बेसहारा बेघरों जो गरीब बच्चे हैं उनके लिए भी आप अपने सर्विसेज दे रही हैं। उस प्रोजेक्ट के बारे में बताइए, क्या है ये काम?
1: ये एनजीओ है जो प्राइमरी एजुकेशन के लिए शुरू हुआ 10 साल पहले, और 10 साल से चल रहा है और काफी कामयाब हुआ है। और ये जो स्लम्स के बच्चे होते हैं वो स्कूल जाते हैं म्युनिसिपल स्कूल्स फर्स्ट स्टैंडर्ड से, मगर उनका फाउंडेशन नहीं बनता प्राइमरी एजुकेशन के लिए, और वो बेचारे माँ बाप दोनों काम करते हैं तो वो उनकी जिंदगी फाउंडेशन नहीं, क्योंकि चूंकि ठीक होता है तो वो भटक जाते हैं, सड़कों में घूमते रहते कुछ नहीं।

0: तो ये एक फाउंडर हैं निर्मला निकेतन की, शुरू किया। तो अभी धीरे धीरे सारे हिंदुस्तान में इसका शुरू हुआ। इसका नाम है प्रथम। प्रथम मतलब फर्स्ट स्टेप। सो इट इज वेरी नेसेसरी आई फील। तालीम की, एजुकेशन की इतनी ज्यादा जरूरत है हमारे मुल्क में, उससे कई बातें सॉल्व हो सकती हैं। तो कई माँ बाप को पहले जाके समझाना पड़ता है, वो सोचते हैं हाँ म्युनिसिपल स्कूल, पहले तो वो डर जाते हैं कि हम पे नहीं कर सकते, म्युनिसिपल स्कूल तो फ्री है, अब आप लोग आ गए पढ़ाने के लिए, हम नहीं पे कर सकते। हम कहते हैं नहीं, आपको पे करने की जरूरत नहीं है। तो वो मोहल्लों में हम लड़कियों को पिकअप करते हैं टीचर्स, उनको कहानियों से, गानों से उनका दिलचस्पी पैदा करते हैं। मेन मकसद तो बच्चों को पढ़ाना, फिर वो स्कूल जाते हैं। तो ये लड़कियों की जिंदगी बड़ी इंप्रूव हुई है, मगर आगे का जेनरेशन जो पढ़ा लिखा होगा, वो अपने बच्चे या अपने छोटे भाई बहनों को अनपढ़ नहीं रखेंगे, वो भी चाहेंगे कि वो भी जरूर पढ़ें, कि इसका फायदा क्या है।
1: तो वेदा जी, जैसी आपको तृप्ति संतुष्टि मिली अपनी भूमिकाओं को करते हुए फिल्मों में, वैसी संतुष्टि इसमें मिली आपको?
0: हाँ जी।
1: वेदा जी, दिल तो नहीं करता कि आपको छोड़े, आपसे बात करने का और भी मन करता है, और हम अपनी ओर से, विविध भारती के करोड़ों श्रोताओं की ओर से और विविध भारती की ओर से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। नमस्कार।
0: नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया।
2: सेल्यूलॉइड के सितारे, इस कार्यक्रम में जानी मानी अभिनेत्री वहीदा रहमान ने अपने जीवन, अपने करियर, अपने साथियों और न जाने किन किन विषयों पर बातें की। इनसे कमल शर्मा ने बातचीत की। चलते चलते आपको ये बता दें, इस कार्यक्रम को तैयार करने में हमारे तकनीकी सहयोगी थे दिलीप कुलकर्णी, और विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम को प्रस्तुत किया कल्पना शेट्टी ने।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे विविध भारती। ये आकाशवाणी का हिसार केंद्र है, FM बैंड 102.3 MHz पर।

आपका प्यार, आपका इंतजार और ये है आप सबका ख्वाब आकाशवाणी हिसार एफएम बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज पर।

दोस्तों, आज सुबह से मौसम जो खुशगवार हुआ तो अब तक हसीन बना हुआ है। प्री मानसून की फहारें हमारे मन को अभी तक तरोताजा किए हुए हैं और बरखा की बूंदों ने मौसम को सुहावना बना दिया है। ऐसा लगता है कि जैसे गर्मी से तपती हुई धरती को एक सावन का सहारा मिल गया है। और दोस्तों, जब दिन भर की थकान के बाद आपकी शाम खुशगवार लगे तो हमारा मन खुश हो जाता है और दिन भर की थकान को यूं चुटकियों में भूल जाता है। और कहते तो ये भी हैं कि जो संगीत है उसका असर हमारे दिलो दिमाग हमारी जिंदगी पर पड़ता है और वही हमें वो सुकून देता है जो दिन भर की थकान दौड़ धूप से हमारा मन परेशान होता है। और मौसम के साथ साथ यदि संगीत का साथ हो तो बस ऐसा लगता है कि जैसे सारी थकान, तनाव और मन का अवसाद बिल्कुल खत्म हो चुका है। दोस्तों, आप सभी हमारे सभी बहुत प्यारे श्रोता हैं और बड़े मन से हमें ई फरमाइश कार्यक्रम को लेकर अपने संदेश भेज रहे हैं। शुक्रिया आप सबका जो आप हमें इतना प्यार करते हैं। और शुरुआत करते हैं हमारे इन श्रोताओं के साथ, और ये फरमाइश हमें लिख भेजी है जलालाबाद वेस्ट से हैं सुरेश गगनेजा, पूनम विशाल, प्रिया दिशानी, निमित आहुजा, गांव कलाना भादरा हनुमानगढ़ राजस्थान से हैं विक्रम कड़वासरा, सचिन, संतोष, योगेश और प्रधव। तेलंगाना निजामाबाद से हैं शेख अल्लाह बख्श, बेगम राबिया शेख, शेख राहिमुन्ना, दानिश, हासिफ शेख। छत्रपति संभाजी नगर सूर्यवाड़ी औरंगाबाद से हमारे श्रोता हैं प्रकाश बोरगांवकर, सुषमा, प्रांजलि, सोहम, सदानंद और विमच। गांधीग्राम से हैं परवीन बानू गुजराती, कुसुम कंचन। कच्छभुज से हैं शमा बानू, वली कुमारी जाटव, कला बाबू डोमेन, आसमा शिकारी। जेरलोड दिल्ली से हैं लाल बाबू दीवाना, उमाराज, दिव्या भारती। डुमराव से हैं वलीउल्लाह अंसारी। और हमारे अगले श्रोता हैं ग्राम लसूड़िया पाता, तहसील नरसिंहगढ़, जिला राजगढ़, मध्य प्रदेश से गोविंद, वैष्णव, दिव्या, सुमन, कोमल, परी, कृतिका, रमेश चंद्र डांगी। और ये सब सुनना चाहते हैं इस प्यारे से खूबसूरत नगमे को। आइए हम भी सुनते हैं इन सभी के साथ ये नगमा।

दोस्तों, कहते हैं कि सादगी में जो अदा होती है वो किसी दिखावे में नहीं होती, लेकिन आज की दुनिया बहुत ज्यादा दिखावा पसंद दुनिया है। और आप जानते हैं कि दिखावे की उम्र बहुत कम होती है और सादगी की उम्र, टैलेंट की उम्र, यानी कि आपके हुनर की उम्र बहुत ज्यादा होती है। आप में जो हुनर है वो इतना कदरमंद होता है कि उसके कदरदान आपको अपने आप मिल जाएंगे। वो आपकी आंखों के सामने नहीं, बल्कि आपकी पीठ के पीछे आपकी प्रशंसा करेंगे। क्योंकि सादगी में भी एक अजीब सा नूर होता है। जब कोई हुनरमंद अपने काम में मगरूर होता है, शोर नहीं मचाते उनके काम के तरीके, उनकी खामोशी में भी एक गहरा सुर होता है। तो दोस्तों, अब लेते हैं अगली फरमाइश। ये हमारे श्रोता है मुंबई से, अनु बड़जात्या, शमशूल खान और अनुराज बेनारा। ये हमारे अगले श्रोता है एयरपोर्ट रोड, वंदना नगर, इंदौर, मध्य प्रदेश से। नारायण खर्चे, ललिता खर्चे, गणेश, कार्तिक, परी खर्चे, स्वाति, प्रयाग चौधरी। और इन्हीं के साथ ये हमारे श्रोता है सरगुजा मेन पार्ट से, सरिता डोमेन, प्रमीला, आशा, लड्डू। और तख्तपुर छत्तीसगढ़ से हैं रमेश कुमार साहू, मीरा देवी, गंगा देवी और हैं मिश्री देवी साहू। एकता कॉलोनी रोहतक से हैं सीताराम कांगड़ा, बबीता बोत, निखिल कांगड़ा और तन्वी बोत। और अगली फरमाइश हमें भेजी है हमारे श्रोता हैं किशनगंज बिहार से, रविंद्र मोहनदास और आशा देवी। नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से हैं पीएस नभाकर, निर्मला, विशाल। मलकापुर से हैं नारायण इंगले, सोपान तायड़े, आशीष मोहेकर और इनका पूरा परिवार। और ये फरमाइश हमें मिली है गणेशवाड़ी कोल्हापुर से, संभाजी सुतार, चेतन सुतार, वेदिका सुतार की। और ये हमारी श्रोता है परभणी महाराष्ट्र से, सुबेश संघई, महेश।

संघई, प्रगेश और प्रीतेश संघई और इनका पूरा परिवार। पिंगवाला जो गोरा जालंधर पंजाब से हैं, संदीप मक्कड़, ज्योति, मन्नत, भरत और कमल साहनी। अगली फरमाइश हमें मिली है बागपत उत्तर प्रदेश से संजय ढिंगिया, नमन ढिंगिया और अपार ढिंगिया की। ये हमारे श्रोता हैं अनारकली बाजार जगराओं से सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गव्या, भाई सुचा सिंह पाठक और इनके साथ हैं जयपाल यादव। जमानिया गाजीपुर से हैं सुरेश जायसवाल, उर्मिला, दीपक और स्वाति जायसवाल। हमारे अगले श्रोता हैं छत्रपति संभाजी नगर से राजेश साबले पाटिल, राजदीप, राजेश, राशि राजेश और श्रीमती शीतल राजेश। और हमारे अगले श्रोता हैं गांव खरकड़ा चौबीसी से गोलू कांगड़ा, सागर कांगड़ा, अंशिका बोट और इनका पूरा परिवार। मोताला महाराष्ट्र से हैं विजय सुरलकर, रतनमाला, ओम कुमार सुरलकर। राजकोट से हैं संगीत कुमार, वाणी कुमारी और अजीता कुमारी। और आप सब सुनना चाहते हैं इस प्यारे से नगमे को और आपके साथ हम भी सुनेंगे ये गीत।

दोस्तों आज आप सुन रहे हैं कार्यक्रम ई फरमाइश अपनी मेजबान सारिका शर्मा के साथ। दोस्तों आप जानते हैं कि जो सादगी पसंद लोग होते हैं उनके बारे में क्या कहा जाता है, हम बताते हैं आपको। पहनावा सीधा साधा मगर सोच में गहराई होती है उनके, उनके हर हुनर ने एक नई दास्तां बनाई होती है। दिखावे की दुनिया से उन्हें कोई वास्ता नहीं होता, वो तो सच्चे मोती हैं जो चमकते हैं। कोई आम नहीं है वो बड़े खास होते हैं। ये कहा जाता है उन सादगी पसंद लोगों के बारे में जो बड़े हुनरमंद होते हैं, और कभी कभी उन्हें कहा जाता है कि वो बड़े छिपे रुस्तम होते हैं। और आपके बारे में भी हम यही कहेंगे, क्योंकि आप अपने संदेशों में अपने नाम के साथ साथ बहुत अच्छी अच्छी सी बातें हमें लिख कर भेजते हैं जो हमारे दिल को छू लेती हैं। ऐसे ही हमारे श्रोता हैं भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छीपा, कपिल छीपा, ईशान छीपा और पूजा परिहार। और ये हमारे श्रोता हैं गुजरात गांधीग्राम से परवीन सोनी, पूजा पायल और जगदीश जोहरी। जलालाबाद वेस्ट से हैं सुरेश, पूनम, विशाल और उनका पूरा परिवार। और ये हमारे श्रोता हैं बहलोल नगर हनुमानगढ़ से भाई प्रेम सिंह बड़वाल, सुखबीर, लखवीर बड़वाल, रानो, कृष्णा, श्रीमती छिंदो, प्रवीण, शीतल, नवीन रंगीला, निशान, अनमोल, चटकू मटकू। हीरा वाली फाजिल का पंजाब से हैं सुभाष गोदारा, विमला, इंदु, पार्वती और हिमांशु गोदारा। सादुल शहर राजस्थान से हमारे श्रोता हैं राम कुमार रेवाड़ और चंद्रकला रेवाड़। और ये अगली फरमाइश हमें लिख भेजी है हमारे श्रोता हैं आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही और महराज जहां। श्रोताओं आपसे कार्यक्रम के बीच में एक विनती है, रिक्वेस्ट है कि एक बार अपना नाम भेजने के बाद आप फिर से अगर अपना नाम भेजते हैं तो आपका नाम अगर रिपीट हो जाता है तो हमारा समय जो है दूसरे श्रोता के लिए कम पड़ जाएगा। तो अपना कार्यक्रम में एक ही बार नाम आप भेजिए, ये हमारी आपसे विनती है। और हमारे अगले श्रोता हैं जनकपुरी सहारनपुर से जॉन टिकेस्टो, रोजी पल और विलिस टिकेस्टो, पहाड़गंज मुल्तानी ढांडा से हैं अनिल मोहन, उषा और टिल्लू नायक, स्टेशन रोड जमशेदपुर से हमारे श्रोता हैं हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल भाटिया, सोनू और पप्पी भाटिया, डोंगरगांव छत्तीसगढ़ से हैं राष्ट्रपाल गजभैये, राधिका, रजनीश, मनीष, नीतीश, बेबी तनिष्का, तन्मय गजभैये और उनका पूरा परिवार। हनुमानगढ़ फाजिलका से हैं रमन वर्मा।

अमन वर्मा दिव्यांश और डॉक्टर मदन लाल वर्मा। और ये हमारे श्रोता है मोताला बाजार से बबलू, शेख शगीर, शेख वजीर, सोहेल और विजय भाऊ। आप सबकी पसंद पर पेशे खिदमत है ये बहुत ही प्यारा सा नगमा।

जाएंगे, क्योंकि उनमें जो हुनर है वो बहुत आसानी से कहाँ मिलता है। और फिर उनमें एक बात तो और खास होती है कि वो बड़े सादगी पसंद होते हैं। जुबा पर सादगी और ख्यालों में कमाल है, उस हुनरमंद का अंदाज ही सबसे अलग और बेमिसाल है। ऐसा ही कुछ उनके बारे में जब कहा जाता है तो कितना अच्छा लगता है। और ऐसा ही हमारे श्रोता कहते हैं, गोविंदपुरा सीकर राजस्थान से हैं, दातार सिंह शेखावत, संगीता कंवर, तुषार सिंह, रिंकी शेखावत और इनका पूरा परिवार। और ये हमारे अगले श्रोता हैं, खेल बाजार पानीपत से नरेश मल्होत्रा नीटू, लक्ष्य मल्होत्रा, लाडो कोयल, नानक चंद मल्होत्रा, शिवाजी कॉलोनी रोहतक से पीयूष सिक्का, कोयल सिक्का, डुगु भाविक सिक्का। और हमारे अगले श्रोता हैं अनिल घोड़के और इनका पूरा परिवार। और ये फरमाइश इन्होंने लिख भेजी है जहां से वो हैं, छत्रपति संभाजी नगर सूर्यवाड़ी औरंगाबाद से। हमारे अगले श्रोता हैं पाकुड़ झारखंड से उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत, कीसु तासु, अर्णव आनंद, सत्यम, बोड़ा गाछी पश्चिम बंगाल से हैं मुन्ना भगत और गुड्डी भगत। और ये हमारे अगले श्रोता हैं गांव डागर निमनाबाई जिला जींद हरियाणा से जसबीर सिंह इलमाबादी, जतिंदर कौर, गुरुप्रीत सिंह, लवप्रीत कौर और करमजीत कौर। डबवाली हरियाणा से हैं जेके बकोलिया, सुनीता, संजय, अनिल और मीनू। पीपरिया जिला कबीरधाम से कमलकांत गुप्ता, दीपा, रिमझिम गुप्ता और इनका पूरा परिवार। और ये फरमाइश हमें लिख भेजी है हमारे भेजने वाले श्रोता हैं कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय दुबिहार नेवादा जिला गाजीपुर से हैं, प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय और प्रांजल राय। सावतपुर से हैं हमारे श्रोता ऋषि सेन। शेरवानी स्कूल गंज डुंडवारा यूपी से हैं आफ्ताब अंसारी, रियाज अंसारी, मोहम्मद कैफ, अनवर मास्टर, लुबना अंसारी और इनके साथ हैं आलिया अंसारी। और हमें अगली फरमाइश भेजने वाले हमारे श्रोता हैं शांतिनगर खरगोश जिला उज्जैन से असलम खान दुलावत, शफीना, फिरदौस फलक, अफशा और अयान दुलावत। और ये फरमाइश हमें भेजी है जिला मुरादाबाद गांव दुल्हापुर यूपी से मुकेश कश्यप, सोनू सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी और ऋतिक की। और ये हमारे श्रोता है बाजार मारवाड़ बिराड़ा राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, जय नारायण चौहान, तरुण और प्रतीक चौहान। और ये फरमाइश हमें लिख भेजी है दामू चौक मुजफ्फरपुर बिहार से आर्यन राज, रोहित राज, हैप्पी आनंद और पीयूष कुमार। गुमला झारखंड से है एसएम जावेद और शगुफ्ता अंजुम। और ये हमारे श्रोता है गांव फ्रांसी हिसार से राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी और सौरभ डूडी। कस्बा बराड़ा जिला अम्बाला हरियाणा से है रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, आकृति राहुल, ज्योति राहुल, जयप्रकाश, प्रियंका, विजेंद्र कुमार जयजान, छोटी गुड़िया नूर, नमन और गुरकिरत। बिहारी कॉलोनी दिल्ली से है तुलसी मस्कीन, रचयिता मस्कीन, आशीष राजा और है चैतन्या मस्कीन। छत्तीसगढ़ मुंगेली से हैं मोहम्मद इसहाक, हतीजा बेगम, मोहम्मद अशफाक, आफरीन कौसर, मोहम्मद अल्ताफ, नीलोफर फातिमा। छत्तीसगढ़ रायपुर से हैं मोहम्मद इमरान, इशरत परवीन, मोहम्मद हसनैन रजा, गौसिया फातिमा और इनके परिवार के सभी सदस्य। और आप सब सुनना चाहते हैं इस प्यारे से नगमे को।

दोस्तों, कहा जाता है कि जहाँ किसी व्यक्ति में हुनर होता है, टैलेंट होता है, और इसके साथ साथ उनमें सादगी होती है, सौम्यता होती है, तो फिर तो सोने पर सुहागा कहते हैं उस इंसान को। गुरु नहीं उनको अपने बुलंद मकाम का, सादगी ही पहचान है उनके हर काम का। दुनिया की चकाचौंध से और बनावट से वो रहते हैं दूर, और अपने हुनर से सादगी पसंद लोग यूं ही पूरे शहर को चुपचाप अपने अंदाज से महकाते रहते हैं, कुछ यूं ही उनके बारे में कहा जाता है। और ये है हमारे अगले श्रोता, गंज डुंडवारा से हैं शमसुल कमर राही, शाहिन फातिमा, अदनान खान और अनु खान।

और हमारे अगले श्रोता हैं अशोक सिंह, सुनीता सिंह, प्रीति सिंह, अंकिता सिंह, रितु सिंह, संकल्प, कृषिव और गुड़िया वेदा सिंह। और ये इन्होंने कहाँ से भेजा है? हाँ, जबलपुर मध्य प्रदेश से भेजा है इन्होंने फरमाइशी संदेश। और हमारे अगले श्रोता हैं चांद बजा फरीदकोट पंजाब से, अंग्रेज सिंह गेजा, गुरमीत कौर, जगप्रीत सिंह और करमजीत सिंह। और हमारी अगली फरमाइश हमें मिली है लोहारू हरियाणा से हैं बिल्लू सिंह चिंडालिया, लक्ष्मी देवी, सुरेंद्र कुमार, बरखा, योगेंद्र, नरेंद्र और इनके परिवार के सभी सदस्य। गांव जेवरा हिसार से हैं वीरेंद्र भ्याण, सुरेंद्र शमशेर और मनोज भ्याण। बेड़ी मध्य प्रदेश से हमारे श्रोता हैं हुकुम करमकर, सुनीता, हार्दिक, प्राची और तनु करमरकर। और ये फरमाइश हमें मिली है गांव घमंडिया सूरतगढ़ से जगदीश ढुकिया, प्रमीला, ज्योति, शिवम, सरिता, सचिन, अमन, तमन्ना, सायना, विष्णु, ईवा और इनके परिवार के सदस्य। और ये हमारे श्रोता हैं बिट्टू गगनेजा। अगली फरमाइश हमें मिली है हमारी भेजने वाले श्रोता हैं विनोद मुनत, नेहा जैन, दीपक, मयंक, चेतन, नाहटा, जिला उज्जैन, एमपी से हैं ये हमारे श्रोता। और ये अगली फरमाइश हमें मिली है मेरठ कैंट से दिग्दर्शन और कविता गौड़ की। हमारे अगले श्रोता हैं गांव पीपरलोड सरगांव छत्तीसगढ़ से दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति और शिवांश वर्मा और इनके परिवार के सभी सदस्य। और अगली फरमाइश हमें भेजी है धनौरी तेलीवाला उत्तराखंड से हैं निसार सलमानी, नौशाद, बेबी आलिया, आयान बाबू, पदमपुर जिला गंगानगर से मेहर अरोड़ा, कीर्ति, भूमिका और ममता अरोड़ा। आप सब सुनना चाहते हैं ये प्यारा सा गीत।

दोस्तों आप सभी सुन रहे हैं एफएम बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का हिसार केंद्र। और आज ई फरमाइश कार्यक्रम में आप सबकी मेजबान मैं हूं, आप सबके साथ सारिका शर्मा। दोस्तों सादगी की ये खासियत है कि उसे जताने की जरूरत नहीं पड़ती, वो तो बस महसूस की जाती है। जैसे कि आप और हम, अब हमारे एक श्रोता इतनी मासूमियत से लिखते हैं कि उनकी मासूमियत ने हमारे दिल को छू लिया। वो लिखते हैं कि मायूसी के सिवा कुछ हासिल नहीं होता जब प्रोग्राम में मेरा मेल शामिल नहीं होता। लीजिए आपका मेल तो शामिल हो गया है। ये हमारी श्रोता है व्हाइटफील्ड बेंगलुरु से, भारत भूषण अंजू श्रीवास्तव, दिव्येंदु भूषण, संस्कृति और पौरुष। और अगले श्रोता है गांव चौधरीवास हरियाणा से मांगेराम सतोड़ और इनके परिवार के सभी सदस्य। अगले हमारे श्रोता है नंगलखेड़ा फगवाड़ा पंजाब से बालकृष्ण शर्मा, प्रवीण, मोनीश और राहुल शर्मा। सनावत से हैं शेख मूसा मोहसिन, अशोक वर्मा, राजकुमार बोड़ाना। अगली फरमाइश हमें मिली है रिंगनी छत्तीसगढ़ से हैं।

दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा, और ये हमारे श्रोता हैं पत्रोड़ा गंगानगर राजस्थान से मंगल जनागल, श्रीमती रोशनी, अंकुर, इंदु और डॉक्टर सुनील जनागल। अंबागढ़ चौकी छत्तीसगढ़ से हैं रिजवान खान, आयशा सबीहा, अनस और रेहान, और ये हमारे श्रोता हैं पंकज शर्मा, सुधीर नूतन, किरण ठाकुर, सुधीर, संदीप गुगलानी, जगमोहन प्रजापति, प्रतिभा शर्मा, इशप्रीत शर्मा, हरिपाल कौर, आशा गुगलानी, सोनिया और कालका, बिपाशा शर्मा, जग्गी दुआ, और ये सब हैं मॉडल टाउन करनाल से हमारे श्रोता। और अगले हमारे श्रोता हैं जिन्होंने हमें अपनी फरमाइश भेजी है, संजय कॉलोनी खंडवा से अब्दुल गफार डावर, खुशनसीब अब्दुल हक डावर, जियाउल हक डावर, मोहम्मद उमर डावर, राजेंद्र कटारे, भाटापारा छत्तीसगढ़ से हैं सोहन जोशी और पायल जोशी, और ये हमारे श्रोता हैं जिन्होंने हमें अपनी फरमाइश भेजी है। गांव हांडी खेड़ा जिला सिरसा हरियाणा से राधेश्याम शर्मा, इंदिरा शर्मा, सार्थक शर्मा और है नंदिनी शर्मा, मजनू कटीला से है कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर बालूजा, उमंग मलिक और है आकांक्षा मलिक। अगली फरमाइश हमें मिली है फवारा चौक सिरसिला जिला चूरू राजस्थान से संदीप सिंह सोनगरा, सोमल, कार्तिक, प्राची, सचिन चौहान, सब्जी मंडी बुल्डाना से है शबीर हुसैन, शहजाद हुसैन, मुजु बाबा, आयजा अनम, और आप सब सुनना चाहते हैं इस प्यारे से नगमे को।

0: अब टेलीलॉ के माध्यम से न सिर्फ घर बैठे मुफ्त कानूनी सलाह ले सकते हैं बल्कि अनुभवी वकीलों से कोर्ट में कानूनी सहायता भी पा सकते हैं।
1: तो डाउनलोड करें आज ही टेलीलॉ फॉर सिटीजंस मोबाइल ऐप अथवा लॉगिन करें www.tele-law.in या अपने नजदीकी CSC सेंटर से संपर्क करें। न्याय विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: श्रोताओं, कहा जाता है कि हीरा परखने वाले से दिल के दर्द को परखने वाला व्यक्ति ज्यादा महत्वपूर्ण या खास होता है। अगर आपका प्रेम आपके दिल के दर्द को नहीं समझ सकता, नहीं परख सकता, तो उस व्यक्ति ने कभी आपसे प्रेम किया ही नहीं था। और इसीलिए तो कहते हैं कि माना कि सादगी का दौर आज नहीं, पर सादगी से बढ़कर कुछ और भी नहीं। और इतने ही सादा हमारे सारे श्रोता हैं। देखिए कितनी शिद्दत से, कितने प्यार से और कितने ही इकरार से हमसे इस बात का इकरार करते हैं कि वो हमें कितना प्यार करते हैं। ये हमारे श्रोता हैं बसंत कुमार सिन्हा, रेखा देवी शाह, अजय कुमार गुप्ता, रिमी तनुश्री गुप्ता, अन्विका तनुश्री, और ये हैं दमदम एयरपोर्ट कलकत्ता से भेजी है इन्होंने ये फरमाइश। और हमारे अगले श्रोता हैं ऊपरकोट मोहल्ला चौकनेटी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगत परवीन, शाहनवाज अब्बासी, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान अब्बासी, अबान अब्बासी और इनके परिवार के सभी सदस्य। सनावत से हैं शेख मूसा मोहसिन और मनीषा, राजकुमार और आनंदी बेन। और ये हमारे अगले श्रोता हैं नर्मदा पार्क मंगलवेड़ा से मास्टर अलीम पटेल, मुजाहिद पटेल और नदीम पटेल। वंडिंग खेड़ा पंजाब से हैं मिंटू टॉमस, पिंकी लवली और आरती अरोड़ा। मेन बाजार जांडला टाउन से हैं सुरेंद्र संधु, अनीता, रोहित शिखा, रितेश, सोनू अगम और मैक्स। और आप सब सुनना चाहते हैं इस बहुत ही प्यारे से गीत को।

श्रोताओं, आप सबका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि जो आप इतने प्यार से अपने संदेश हमें भेजते हैं। और अगले हफ्ते इस कार्यक्रम में आपके साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अनुमति दीजिए कार्यक्रम ई फरमाइश को यहीं संपन्न करने की, अपनी मेजबान सारिका शर्मा को। एफएम बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी हिसार है। अब से चंद लम्हों के बाद आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, आकाशवाणी दिल्ली से।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए 2 दिन की यात्रा पर फ्रांस के एवियां शहर पहुंच गए हैं। एवियां पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि वे विश्व नेताओं के साथ बातचीत करने और प्रमुख वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श करने के लिए उत्सुक हैं। उन्होंने कहा कि पृथ्वी को अधिक सतत और समृद्ध बनाने के सामूहिक प्रयासों को आगे बढ़ाने के लिए भारत प्रतिबद्ध है। G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी की लगातार ये 7वीं उपस्थिति है और इस मंच पर भारत की 13वीं भागीदारी है। शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी कल अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात करेंगे। इस बीच शिखर सम्मेलन में आज अमेरिका के सहयोगी देशों ने 4 साल से अधिक समय से चल रहे यूक्रेन युद्ध को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एजेंडे में फिर से प्राथमिकता दिलाने के लिए काम किया। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रॉन ने कहा कि वे श्री ट्रंप को यूक्रेन का समर्थन जारी रखने और शांति समझौते तक पहुंचने में मदद के लिए रूस पर दबाव बढ़ाने के लिए मनाने का प्रयास करेंगे। अमरीका द्वारा यूक्रेन को दी जाने वाली सहायता में कटौती के बाद फ्रांस और उसके यूरोपीय सहयोगी यूक्रेन को सैन्य और वित्तीय सहायता प्रदान करने वाले सबसे बड़े देश हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की भी सुबह की कार्य बैठक में जी

0: सेवन नेताओं के साथ शामिल हुए, लेकिन वार्ता जल्दी समाप्त हो गई। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने बताया है कि 21 जून को नीट यूजी पुनः परीक्षा के लिए पिछले 24 घंटों में 10 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने प्रवेश पत्र डाउनलोड किए हैं। इस बीच पारदर्शिता बढ़ाने और पेपर लीक की आशंकाओं को समाप्त करने के लिए सरकार ने 22 जून तक सोशल मीडिया ऐप टेलीग्राम पर ऑनलाइन संदेश भेजने पर रोक लगा दी है। सरकार ने औषधि नियम 1945 में संशोधन अधिसूचित किया है। इसमें गांवों में कफ सिरप की बिक्री पर दी गई छूट वापस ले ली गई है। अब गांवों में कफ सिरप की बिक्री और वितरण केवल विधिवत लाइसेंस प्राप्त फार्मेसियों के माध्यम से ही किया जाएगा। प्रवर्तन निदेशालय वित्त वर्ष 2016-17 और 2017-18 के दौरान येस बैंक के ऋणों के कथित धोखाधड़ीपूर्ण आवंटन के संबंध में मुंबई, खंडाला और नई दिल्ली में 17 स्थानों पर छापेमारी कर रहा है। निदेशालय ने सुरक्षा एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, सुरक्षा रियल्टी लिमिटेड, ख्याति रियल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड, उनके निदेशकों और कर्मचारियों के साथ साथ येस बैंक के पूर्व कर्मचारी के परिसर की तलाशी ली। केरलम के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने आज डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से स्व गणना की प्रक्रिया पूरी करके राज्य में जनगणना 2027 के पहले चरण की शुरुआत की। जनगणना 2027 भारत की पहली पूरी तरह से डिजिटल जनगणना है और ये दुनिया का सबसे बड़ा प्रशासनिक तथा सांख्यिकी कार्य है, जिसे ऐप आधारित पेपरलेस सिस्टम के माध्यम से किया जाएगा। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि दार्जिलिंग में गोरखा समुदाय के दीर्घकाल से लंबित मुद्दों का समाधान भारत के संवैधानिक ढांचे के भीतर किया जाएगा। दार्जिलिंग में कुर्सियोंग में एक जनसभा में उन्होंने कहा कि गोरखालैंड प्रादेशिक प्रशासन में कथित भ्रष्टाचार की जांच की जाएगी और दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ईरान ने कहा है कि अमेरिका के साथ युद्ध समाप्त करने के समझौते के अंतर्गत इसराइल को लेबनान से पीछे हटना होगा। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने कहा कि दक्षिणी लेबनान पर इसराइल का निरंतर कब्जा अमेरिका और ईरान के बीच हुए समझौता ज्ञापन का उल्लंघन है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में अमेरिका में ग्रुप आई के मुकाबले में आज फ्रांस और सेनेगल आमने सामने होंगे। मैच भारतीय समयानुसार रात 12:30 बजे से शुरू होगा। एक अन्य मुकाबले में नॉर्वे का सामना इराक से होगा। ये मैच भारतीय समयानुसार तड़के 3:30 बजे से खेला जाएगा। भारतीय महिला हॉकी टीम एचआईएफ हॉकी नेशंस कप के सेमीफाइनल में पहुंच गई है। पूल ए के अपने दूसरे मैच में भारत ने जापान को हराया। भारत 6 अंकों के साथ पूल ए में शीर्ष पर है। अगला मुकाबला भारत का उरुग्वे से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: एफएम बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का हिसार केंद्र। आइए श्रोताओं, अब आपको जानकारी दे दें आज और कल हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में उनके समय के अनुसार। पहले आज के शेष आकर्षण और उनका समय।

श्रोताओं, आज शाम 6:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम युवा उमंग महारे गांव। आप सुन सकते हैं 7:30 पर, और आज शाम 7 बजे किसान भाई सुनेंगे अपना पसंदीदा कार्यक्रम किसान वाणी। हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम है लोकमंच, आप सुन सकते हैं आज रात 8 बजे। खुला आकाश, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे आज रात 8:30 पर।

संदेश आपके गीत हमारे के तहत आप सुनेंगे व्हाट्सएप बेस्ड कार्यक्रम आज रात 10 बजे। तो ये थी जानकारी आज प्रसारित होने वाले हमारे शेष कार्यक्रमों की, और अब कल के आकर्षण और उनका समय। श्रोताओं, कल हमारी प्रातःकालीन सभा आरंभ होगी 5:55 पर। प्रातः 7:10 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम लोकरंग, और सुप्रभात का समय रहेगा प्रातः 7:40। श्रोताओं, कल प्रातः 10 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम नमस्ते हिसार, और इसी बीच 1:05 पर रिले होंगे प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से। श्रोताओं, कल हमारी सायंकालीन सभा के तहत 5 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम ओल्ड इज गोल्ड के तहत सदाबहार नगमे। कल शाम 6:20 पर आप सुनेंगे ईशवंदना का हमारा कार्यक्रम भक्ति संगीत, और 6:30 पर हमारे श्रोता सुनेंगे कार्यक्रम युवा उमंग।

श्रोताओं कल शाम 7:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम हमारे गांव। कल रात्रि 10 आप सुनेंगे कार्यक्रम व्हाट्सएप के बहाने फिल्मी तराने। तो ये थी जानकारी आज और कल हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में। उनके समय के अनुसार एफएम बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का हिसार केंद्र है। आइए श्रोताओं, अब प्रादेशिक समाचारों के लिए आपको लिए चलते हैं आकाशवाणी चंडीगढ़। प्रतीक्षा के बस चंद लम्हे और हमारे साथ।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप अमन सैनी से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड की 42वीं बैठक में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शहरी नियोजन, पर्यावरण संरक्षण और संरचना एवं सतत विकास से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर चर्चा। 4 नए ग्रीन फील्ड शहर विकसित करने का निर्णय लिया गया। हरियाणा में इस बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में रिकॉर्ड भागीदारी का लक्ष्य रखा गया। हरियाणा विधानसभा परिसर और श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय में योग प्रोटोकॉल प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए। सरकार ने नीट में पारदर्शिता बढ़ाने और पेपर लीक की आशंकाओं को समाप्त करने के लिए 22 जून तक टेलीग्राम एप्लीकेशन पर ऑनलाइन संदेश भेजने पर रोक लगाई और केंद्र सरकार ने गांवों में कफ सिरप की बिक्री पर दी गई छूट वापस ली। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड की 42वीं बैठक हुई। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी इस बैठक में शामिल हुए। बैठक के उपरांत संवाददाताओं से बातचीत में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बताया कि बैठक में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के विकास से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तृत चर्चा हुई। बैठक में तय किया गया, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के क्षेत्रीय दायरे में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा।
1: आज कुछ मुद्दों के ऊपर चर्चा हुई है। एक तो ये निर्णय लिया गया कि जो NCR का एरिया है उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। बैठक में NCR के जो रीजन प्लान है 2041 उस पर भी चर्चा की गई है और उसको फाइनल करने के लिए एक सब कमेटी बनाई गई है जिसमें केंद्र और राज्यों के अधिकारी और सभी राज्यों के सुझावों पर विचार विमर्श कर यह सब कमेटी

0: 15 अगस्त तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।
1: उन्होंने बताया कि बैठक में एनसीआर के भविष्य के विकास, शहरी नियोजन, पर्यावरण संरक्षण, संरचना और सतत विकास से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर गहन चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने बताया कि आज की बैठक में रैपिड रेल ट्रांसिट सिस्टम के साथ साथ 4 नए ग्रीनफील्ड शहर विकसित करने का महत्वपूर्ण निर्णय भी लिया गया। बोर्ड के सभी सदस्य राज्य एक एक नए ग्रीनफील्ड शहर की विकास योजना भेजेंगे। नमो सिटी के नाम से विकसित होने वाले यह शहर आधुनिक, पर्यावरण अनुकूल और आत्मनिर्भर शहरी केंद्र के रूप में विकसित किए जाएंगे। प्रदूषण नियंत्रण को लेकर उन्होंने बताया,
0: पॉल्यूशन कंट्रोल करने के लिए एनसीआर कोर एरिया एक कोर एरिया से बाहर का एरिया है, उसके अंदर अलग अलग वो डेफिनेशन तय हुई है। और जो कोर एरिया है उसके अंदर तो पुराने B6 से नीचे के जो भी हैं उन सबको स्क्रैप करने का और उन सबको बदलने का, और उसके लिए परिवर्तन नाम से एक अलग योजना भी बनाई है कि उसके अंदर हेल्प और उसको इंसेंटिव भी दिया जाएगा।
1: हरियाणा की राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की वित्त आयुक्त डॉक्टर सुमिता मिश्रा ने कहा है कि इस बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में रिकॉर्ड भागीदारी का लक्ष्य रखा गया है। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियों की समीक्षा करते हुए उन्होंने सभी विभागों को राज्य भर में योग कार्यक्रमों के सफल आयोजन के लिए बेहतर तालमेल सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। डॉक्टर मिश्रा ने इस बार के योग दिवस समारोह को एक जन आंदोलन बनाने और स्वास्थ्य व तंदुरुस्ती के प्रति हरियाणा की प्रतिबद्ध को और मजबूत करने के लिए लोगों की भागीदारी बढ़ाने का आह्वान किया। बैठक के बाद डॉक्टर मिश्रा ने बताया कि 18 मई से पूरे हरियाणा में योग गतिविधियां चल रही हैं और इनमें अब तक 20,36,000 से अधिक नागरिकों ने भाग लिया है। इसके अलावा विभिन्न जिलों में आयोजित विभागीय योग कार्यक्रमों में भी 13,00,000 से अधिक लोगों ने भागीदारी की है। हरियाणा विधानसभा परिसर में आज सुबह 12:00 अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में योग प्रोटोकॉल प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, विधानसभा अध्यक्ष हरविंद्र कल्याण, विधायकों, योग आयोग के अध्यक्ष योगाचार्य डॉक्टर जयदीप आर्य, उपाध्यक्ष डॉक्टर रोशन लाल व हरियाणा विधानसभा के अधिकारियों और कर्मचारियों ने योगाभ्यास किया। इस अवसर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से भारत की सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक विरासत योग को पूरे विश्व ने अपनाया है और सभी इससे लाभान्वित भी हो रहे हैं। हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ने अपने संबोधन में कहा कि योग मनुष्य को स्वस्थ नहीं तनाव मुक्त भी रखता है।
2: आज हर व्यक्ति, जो जिम्मेवार व्यक्ति है, जो दायित्ववान व्यक्ति है, उसके ऊपर काम का बोझ बहुत होता है और अन्य कई प्रकार के तनाव भी होते हैं, और खुद को तनाव मुक्त रखने के लिए योग बहुत आवश्यक है। और जैसे माननीय मुख्यमंत्री ने भी इस बात का विशेष रूप से उल्लेख किया है कि कभी कभी वो बीच में अपने व्यस्त कार्यक्रमों में से उठकर 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, तो 5 मिनट के अंदर ही वो एक नई ऊर्जा के साथ वापस अपने काम पर आते हैं।
1: हरियाणा के खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता राज्य मंत्री राजेश नागर ने आज श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय में आयुष विभाग द्वारा आयोजित योग प्रोटोकॉल प्रशिक्षण कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। राज्य मंत्री ने खुद योग कर लोगों को योग के प्रति जागरूक किया। आयुष मंत्रालय की ओर से 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए योग घोषित की गई है। वहीं हरियाणा सरकार द्वारा योग युक्त नशा मुक्त हरियाणा थीम के साथ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। राज्य मंत्री राजेश नागर ने कहा कि योग हमारी प्राचीन धरोहर है। योग तन ही नहीं मन को भी स्वस्थ रखता है।
3: आज 192 कंट्रीज में योग दिवस मनाया जाता है। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि और बहुत गौरव की बात है। आज के टाइम में हमारा लाइफस्टाइल बहुत चेंज हो चुका है, हमारा रहन-सहन, हमारा खान पीन, और जिस तरह से ये दुनिया चेंज हो रही है, सबको स्ट्रेस है, टेंशन है, एंजाइटी है, और बीपी, शुगर तो हर तीसरे आदमी को है, तो उसका एकमात्र इलाज है योग। इससे आप फिट रहते हो मेंटली भी, फिजिकली भी। योग केवल शरीर को स्वस्थ रखने का साधन नहीं है, बल्कि मन को शांत, विचारों को और जीवन को अनुशासित बनाने का माध्यम है।
1: प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे बुलेटिनों और ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। यह समाचार हमारे YouTube चैनल और एक्स हैंडल आकाशवाणी न्यूज चंडीगढ़ पर भी उपलब्ध है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने बताया है कि पारदर्शिता बढ़ाने और पेपर लीक की आशंकाओं को समाप्त करने के लिए सरकार ने 22 जून तक टेलीग्राम एप्लीकेशन पर ऑनलाइन संदेश भेजने पर रोक

0: लगा दी है। एनटीए ने कहा कि यह प्रतिबंध नीट पुनर्परीक्षा के दिन और उसके तुरंत बाद तक लागू रहेगा। एजेंसी ने कहा कि टेलीग्राम को 30 तारीख तक पहले से पोस्ट किए गए संदेशों को संपादित करने की सुविधा को भी बंद करने का निर्देश दिया गया है। मेडिकल कॉलेज में प्रवेश के लिए दोबारा होने वाली नीट परीक्षा के लिए रोहतक जिले में 17 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। 21 जून को यह परीक्षा दोपहर बाद 2 से 5:15 बजे तक ऑफलाइन मोड में होगी। उपायुक्त सचिन गुप्ता ने आज नीट के सुचारू संचालन के लिए प्रबंधों की समीक्षा की। उन्होंने बताया कि प्रश्न पत्र पुलिस सुरक्षा के बीच परीक्षा केंद्रों तक पहुंचाए जाएंगे। यह वाहन बिना रुके संबंधित परीक्षा केंद्र पर पहुंचेंगे। इस दौरान वीडियोग्राफी भी करवाई जाएगी। उपायुक्त ने बताया कि सभी परीक्षा केंद्रों पर जैमर एवं सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। केंद्र सरकार ने औषधि नियम 1945 में संशोधन अधिसूचित किया है। इसमें गांवों में कफ सिरप की बिक्री पर दी गई छूट वापस ले ली गई है। अब गांवों में कफ सिरप की बिक्री और वितरण केवल विधिवत लाइसेंस प्राप्त फार्मेसियों के माध्यम से ही किया जाएगा। यह संशोधन सिरप आधारित औषधियों पर न्याय निगरानी की और सुदृढ़ करने तथा छूट संबंधी व्यवस्था को वर्तमान जन स्वास्थ्य और सुरक्षा आवश्यकताओं के अनुरूप बनाने के उद्देश्य से किया गया है। केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के अवसर पर सूचना जनसंपर्क एवं भाषा विभाग की ओर से आज हिसार में एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस प्रदर्शनी के माध्यम से केंद्र सरकार द्वारा 12 वर्षों में चलाई गई विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई। इस अवसर पर पूर्व नागरिक उड्डयन मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं एवं नीति को आम जन तक पहुंचाया जा रहा है।
1: सरकार ने 12 साल में देश के गौरव को बढ़ाया। देश के विकास के लिए दो चीजों की आवश्यकता होती है, खोई हुई जो आन बान और शान है उसको एस्टेब्लिश करना, उसको रीगेन करना, और विकास के काम। दोनों से ही पता लगता है कि सरकार किस लेवल पर कैसा काम कर रही है। पिछले 12 वर्ष में आदरणीय मोदी जी की सरकार ने, विकास की बात करें, भारतवासी को आत्मनिर्भर बनाने की बात करें, चाहे वो किसान हो, चाहे वो युवा हो, चाहे वो हमारी माँ बहन हो, महिला हो, अनुसूचित जाति के लोग हों, बैकवर्ड सेल के लोग हों, सब को बढ़ाने की बात, उनका सम्मान बढ़ाने की बात की है।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड की 42वीं बैठक में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शहरी नियोजन, पर्यावरण संरक्षण और संरचना एवं सतत विकास से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर चर्चा। 4 नए ग्रीन फील्ड शहर विकसित करने का निर्णय लिया गया। हरियाणा में इस बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में रिकॉर्ड भागीदारी का लक्ष्य रखा गया। हरियाणा विधानसभा परिसर और श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय में योग प्रोटोकॉल प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसी के साथ समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: FM बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी हिसार। आइए श्रोताओं, अब सुनते हैं ईश वंदना का हमारा कार्यक्रम भक्ति संगीत। शुरुआत करते हैं हनुमान चालीसा के साथ।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे ईश वंदना का हमारा कार्यक्रम भक्ति संगीत एफएम बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी का हिसार केंद्र है। आइए श्रोताओं, अब सुनते हैं युवाओं का पसंदीदा कार्यक्रम युवा उमंग।

0: नमस्कार श्रोताओं, ये आकाशवाणी का हिसार केंद्र है। एफएम बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम युवा उमंग। मैं ईशान।
1: मैं पुनीत।
0: आज के कार्यक्रम में हम सुनेंगे विश्व प्रेषण दिवस के बारे में।
1: हमारा दूसरा विषय रहेगा फ्लेक्स फ्यूल।
0: और आखिर में आपके लिए है जानकारी SIR विशेष गहन पुनरीक्षण के बारे में।
1: श्रोताओं, आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो दुनिया भर के करोड़ों परिवारों, खुशियों और सपनों से जुड़ा हुआ है। श्रोताओं, अक्सर हम अपने आसपास देखते हैं कि जिनके घर का कोई सदस्य नौकरी या काम करने के लिए विदेश में रहता है।
0: श्रोताओं, वह व्यक्ति महीनों तक अपने परिवार से दूर रहता है, कई बार तो त्योहार पर घर भी नहीं आता, लेकिन हर महीने अपनी मेहनत की कमाई का एक हिस्सा अपने परिवार के लिए जरूर भेजता है।
1: ईशान, मेरा मानना है कि जो वो भेज रहा है वो केवल एक पैसा नहीं है, बल्कि वह अपने परिवार के लिए प्यार, जिम्मेदारी और उम्मीद भेज रहा है। इसी भावना को सम्मान देने के लिए हर वर्ष 16

0: जून को अंतर्राष्ट्रीय प्रेषण दिवस मनाया जाता है, इंटरनेशनल डे ऑफ रेमिडेंस।
1: तो चलिए अब हम अपने श्रोताओं को प्रेषण शब्द का अर्थ समझाते हैं।
0: जी हाँ ईशान, हम अपने श्रोताओं को बताते हैं कि प्रेषण का अर्थ क्या होता है। प्रेषण या रेमिडेंस वो धनराशि है जो विदेश में काम कर रहा व्यक्ति अपने परिवार की सहायता के लिए अपने देश में भेजता है। और ईशान, आज दुनिया में करोड़ों ऐसे लोग हैं जो अपने घर से दूर रहकर काम कर रहे हैं, और वहां पर जो वो पैसा कमाते हैं वो उनको अपने परिवार के लिए अपने देश में भेजते हैं।
1: तो पुनीत, जब इतना ज्यादा पैसा एक देश से दूसरे देश में जा रहा है, तो इसका इन देशों की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा?
0: जी हाँ ईशान, इस जब कोई व्यक्ति एक देश से दूसरे देश में पैसा भेजता है तो उस देश की अर्थव्यवस्था पर भी उसका प्रभाव दिखाई देता है। और संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट यह बताती है कि दुनिया भर में 20 करोड़ से अधिक ऐसे लोग हैं जो दूसरे देशों में जाकर काम कर रहे हैं, और वो जो धनराशि वहां से भेजते हैं उसका दुनिया भर के 80 करोड़ से अधिक लोगों पर प्रभाव दिखाई देता है। मुख्य बात यह है कि जब एक व्यक्ति दूसरे देश से पैसा भेजता है तो वो जिस देश में पैसा भेज रहा है वहां की सरकार उससे कुछ टैक्स लेती है, जो सरकार की एक तरीके की कमाई होती है, देश के एक विकास में भी सहायक होता है।
1: श्रोताओं, विश्व भर की बातें काफी हुई, अब हम बात करते हैं अपने देश भारत की।
0: और इसके ऊपर प्रधानमंत्री जी ने भी अपनी एक बात कही है, तो वो हम सुनते हैं।
2: भारत दुनिया का पहला देश है जहां विदेश में रहने वाले भारतीय डायस्पोरा के माध्यम से एनुअल रेमिटेंस 100 बिलियन डॉलर को पार कर चुकी है। और खुशी की बात है कि आपका ये योगदान निरंतर बढ़ रहा है।
1: अब हम जानेंगे प्रेषण के मामले में भारत की स्थिति क्या है।
0: जी हाँ ईशान, कि प्रेषण के मामले में अगर देखें तो भारत की स्थिति काफी अच्छी है, क्योंकि भारत दुनिया का सबसे बड़ा प्रेषण वाला देश है, जहां पर दुनिया में सबसे ज्यादा प्रेषण का पैसा भारत के अंदर आता है। भारत के करोड़ों व्यक्ति दूसरे देशों में काम कर रहे हैं, जैसे अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और अन्य खाड़ी देशों में वहां पर काम कर रहे हैं, और वहां का पैसा वो भारत के अंदर भेज रहे हैं।
1: श्रोताओं, वित्त वर्ष 2024-25 के अनुसार भारत को प्रेषण के रूप में 135 बिलियन डॉलर की राशि प्राप्त हुई है, और महाराष्ट्र तथा केरलम सबसे अधिक राजस्व प्राप्त करने वाले राज्य हैं।
0: जी हाँ ईशान, आपने ठीक कहा, चर्चा का विषय यूं ही चलता रहेगा। और अब हम अपने अगले विषय पर बात करने से पहले सुनते हैं एक सदाबहार गीत।

0: श्रोताओं, इस सदाबहार गीत के बाद हम वापस अपनी चर्चा पर लौटते हैं। फ्लेक्स फ्यूल।
1: तो पुनीत, इस समय देश में E85 फ्यूल को लेकर बहुत चर्चा हो रही है। अभी हाल ही में भारत में 5 जून को केंद्रीय पेट्रोलियम गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने दिल्ली में पहले E85 फ्यूल स्टेशन का उद्घाटन किया है, जिससे यह पता चला कि देश की राजधानी में हाई एथेनॉल फ्यूल की अब शुरुआत हो गई है। E85 से पहले सरकार E20 फ्यूल अनिवार्य कर चुकी है।
0: जी हाईशान, आपने बिल्कुल सही कहा कि अब भारत सरकार और पेट्रोलियम मंत्री भी इसके ऊपर ध्यान दे रहे हैं कि E20 और E85 को जो है वो बढ़ावा दिया जा सके।
1: श्रोताओं को जानकारी देनी चाहिए कि E85 और E20 में इस ई का क्या मतलब है।
0: बिल्कुल, क्योंकि हम E20 और E85 काफी बार बोल चुके हैं। ई का अर्थ है एथेनॉल। एथेनॉल है एक तरीके का तरल पदार्थ है, ये मक्के और गन्ने की जो फसल है उससे हमें प्राप्त होता है।
1: इसी के अंतर्गत हम बात कर सकते हैं फ्लेक्स फ्यूल और फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल की। तो पुनीत, हम अभी अपने श्रोताओं को बताना चाहेंगे कि फ्लेक्स फ्यूल क्या है।
0: फ्लेक्स फ्यूल एक तरीके का वैकल्पिक ईंधन है, या कहे कि दूसरे प्रकार का ईंधन है, जिसके अंदर एक सीमित मात्रा में एथेनॉल मिलाया जाता है, जिसको हम E20 या E85 बोलते हैं। E20 का अर्थ है जिसमें 20% जो है वो एथेनॉल है और 80% पेट्रोल है। E85 का मतलब है 85% हमारा एथेनॉल है और 15% हमारा पेट्रोल है। और अभी विशेषकर जो ध्यान दिया जा रहा है वो E85 के ऊपर दिया जा रहा है।
1: तो क्या अब E20 वाली गाड़ियां बेकार हो जाएंगी, या फिर पेट्रोल पंप पे सिर्फ E85 या फ्लेक्स फ्यूल ही मिलेगा?
0: नहीं नहीं ईशान, ऐसा कुछ नहीं होगा कि E20 या E85 आने के बाद केवल वही मिलेगा, क्योंकि इस बदलाव को भी समय लगेगा होने में और धीरे धीरे इसमें बदलाव आएगा। तो अभी इसकी शुरुआत की गई है E20 के रूप में। E85 पर अभी काम किया जा रहा है और E20 जो है वो हमारे ईंधन में अभी मिलना शुरू हो गया है।

0: CRE5 पर काम हो रहा है, तो वर्तमान में जो काम जैसे चल रहा है, जैसे जो गाड़ियां चल रही हैं वो चलती रहेंगी, लेकिन इसको धीरे धीरे अब बढ़ावा दिया जा रहा है।
1: तो आप ये बताइए, अगर हम E85 फ्यूल की गाड़ी में अगर गलती से E20 का ईंधन भर दें तो क्या वह सुरक्षित है? कहीं गाड़ी खराब तो नहीं हो जाएगी?
0: देखिए, ये वही बात हो जाती है कि रोनाल्डो को कहा जाए कि आप विराट कोहली की तरह बैटिंग कीजिए, या विराट कोहली को कहा जाए कि आप रोनाल्डो की तरह फुटबॉल खेलिए। तो इसमें हमें थोड़ा ध्यान रखने की आवश्यकता है। हमारे श्रोताओं को हम बता दें कि E20 जो फ्यूल है वो एक तरीके का अलग है, और E85 है वो एक अलग तरीके का ईंधन है। E20 और E80 में आप फर्क समझ सकते हैं कि 20% इसमें एथेनॉल की मात्रा है, E85 में 85% एथेनॉल की मात्रा है। तो E20 में E85 का ईंधन आप गलती से भी ना डाल लें, क्योंकि इससे गाड़ी का जो इंजन है उसमें कोई दिक्कत आ सकती है, कोई अन्य प्रकार की दिक्कत गाड़ी में आ सकती है। तो इसका आप विशेषकर ध्यान रखें जब भी आप अपनी गाड़ी में ईंधन भरवाएं।
1: श्रोताओं, बड़ा सवाल अभी भी यही है कि नई किस्म की कारों को आने में समय कितना लगेगा? देश भर की सड़कों पर अब करोड़ों गाड़ियां चल रही हैं जो फ्लेक्स फ्यूल फ्रेंडली नहीं है, उन्हें रिप्लेस होने में दशकों का समय लग सकता है। तब तक सरकार और कंपनियां क्या विकल्प समाधान लेकर आएंगी, देखना पड़ेगा।
0: बातचीत का दौर श्रोताओं यूं ही जारी रहेगा। हम अपने अगले विषय पर चर्चा करने से पहले चलते हैं मनोरंजन की ओर और सुनते हैं एक सदाबहार गीत।

मलिक मुसाफिर के मंजिल पटना क्या कदमों से कदमों

0: इस सदाबहार गीत के बाद हम वापस लौटते हैं अपनी चर्चा पर और बात करते हैं स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन या विशेष गहन पुनरीक्षण SIR।
1: पुनीत, आपने कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में जहां करोड़ों वोटर्स हैं, उनका नाम हमेशा सही और अप टू डेट कैसे रखा जाता है?
0: देखिए ईशान, यह कोई छोटी मोटी बात तो है नहीं, या कोई छोटा मोटा काम तो है नहीं कि सभी वोटर्स का या जो मतदाता हैं उनका एक तरीके से डाटा अपने पास रखा जाए और बिल्कुल समय समय पर अपडेट रखा जाए। तो इसी चुनौती से निपटने के लिए चुनाव आयोग और भारत सरकार ने SIR की जो एक प्रक्रिया है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन या विशेष गहन पुनरीक्षण की जो प्रक्रिया है, उसकी शुरुआत की है। इसके अंतर्गत चुनाव आयोग क्या करता है कि सभी वोटर लिस्ट को दोबारा से चेक किया जाता है कि इसके अंदर किसी का नाम है या नहीं है, वो काम करता है। और जो नए नाम इसके अंदर जोड़ने होते हैं, जो पुराने नाम हटाने होते हैं, उनको हटाने का और नए नामों को जोड़ने का काम किया जाता है।
1: जी हाँ, सोचिए एक भी गलत नाम या एक भी असली वोटर का नाम लिस्ट से गायब हो जाए तो चुनाव के नतीजों पर कितना असर पड़ेगा। इसलिए ये जो सटीकता है ना, इसे बनाए रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो चलिए इस प्रक्रिया को थोड़ा और करीब से समझते हैं। पुनीत, ये जो वोटर लिस्ट रिविजन या मतदाता सूची का पुनरीक्षण है, आखिर ये क्या है और यह इतना जरूरी क्यों है?
0: देखिए ईशान, हम अपने श्रोताओं को बता दें, इसको एक समझने का बहुत आसान सा तरीका है कि मान लेते हैं आप किसी बिल्डिंग में रहते हैं, जब आप उस बिल्डिंग से बाहर आते जाते हैं या कोई नया व्यक्ति वहां रहने आता है या कोई वहां से चला जाता है, तो उनका भी एक रिकॉर्ड हम सब रखते हैं। हम अपने घर में भी कौन आया कौन गया उसका भी एक रिकॉर्ड रखते हैं। तो यही एक इसी प्रकार की प्रक्रिया SIR है कि कितने लोगों के नए नाम इसमें जोड़े जाएं, या कितने लोगों के जो इनकी मृत्यु हो चुकी है उनके नाम काटे जाएं, या एक व्यक्ति जो पहले कहीं और रह रहा था, मान लेते हो पटना में रह रहा था, अब वो दिल्ली रहने चला गया है, तो वहां पर उसका नाम जोड़ा जाए और पटना से उसका नाम काट दिया जाए। तो ये किसी प्रकार की प्रक्रिया है कि जहां पर चुनाव आयोग यह देखता है कि किसी व्यक्ति का नाम दोबारा ना आए या जिनकी मृत्यु हो चुकी है उनका नाम वोटर लिस्ट के अंदर न रह जाए। तो यह एक बहुत सरल और आसान प्रक्रिया है, इससे भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। और चुनाव आयोग का और भारत सरकार का हमें इसके अंदर पूर्ण रूप से सहयोग करना है। जो भी जानकारी उनको चाहिए वो सही जानकारी हमें उन्हें प्रदान करनी है।
1: यह सरल और आसान प्रक्रिया के साथ साथ काफी विशेष प्रक्रिया भी है, इसलिए क्योंकि यह खास वजहों से हो रहा है और गहन इसलिए क्योंकि इसमें हर एक नाम की बारीकी से जांच पड़ताल होती है। श्रोताओं, एक रेगुलर रिवीजन और इस विशेष गहन पुनरीक्षण में जमीन आसमान का फर्क है। रेगुलर रिवीजन जो है वो एक धीमी प्रक्रिया है जो लगभग हर साल चलती रहती है, लेकिन एक विशेष पुनरीक्षण एक तेज तर्रार अभियान है जो अक्सर बड़े चुनाव से ठीक पहले एकदम मिशन मोड में चलाया जाता है।
0: जी हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा ईशान। SIR की जो प्रक्रिया है उसको हम कुछ स्टेप्स के माध्यम से समझ लेते हैं ताकि हमारे श्रोताओं को भी समझने में आसानी हो। सबसे पहले इसके अंदर एक ड्राफ्ट लिस्ट जारी की जाती है जो चुनाव आयोग के द्वारा जारी की जाती है। उसके बाद जिनका उसके अंदर नाम होता है वो वहां पर चुनाव आयोग के कार्यालय में जाकर या उससे संबंधित अधिकारी के पास जाकर उसके अंदर अगर उन्हें कोई त्रुटि लगती है, कोई गलती लगती है, तो वो उसे ठीक करवा सकते हैं।
1: तो अब सवाल यह है कि सारी जानकारी एक आम नागरिक के लिए क्यों मायने रखती है? इस पूरी मेहनत का हम सब पर क्या असर पड़ेगा? श्रोताओं, यह हर एलिजिबल नागरिक के लिए एक बहुत बड़ा मौका है। अगर कोई पहली बार वोटर बन रहा है तो यह अपना नाम जुड़वाने का सबसे सही टाइम है। अगर किसी के नाम, पते या किसी और डिटेल में कोई गलती है तो उसे ठीक करने का यह सबसे अच्छा मौका है।
0: श्रोताओं, अब हम इस SIR की पूरी बातचीत के एक सार को समझ लेते हैं।

0: हैं कि जब आप चुनाव आयोग के पास जाकर अपनी कोई जानकारी देंगे तो उसके बाद उसकी ग्राउंड वेरिफिकेशन की जाएगी। चुनाव आयोग से संबंधित कर्मचारी वहां पर आकर उसकी पूरी वेरिफिकेशन करेंगे और उसके बाद एक नया डाटा तैयार किया जाएगा। और ये हमारे लिए महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि एक भरोसेमंद चुनाव या एक निष्पक्ष चुनाव की कल्पना हम तभी कर सकते हैं जब हमारे पास या सरकार के पास एक सही वोटर लिस्ट होगी, सही मतदाता सूची होगी। क्योंकि ये कोई सरकारी कामकाज या सरकारी कार्रवाई नहीं है, हमारे वोट देने के अधिकार को और हमारे मौलिक अधिकारों को सुरक्षित रखने का एक राष्ट्रव्यापी अभियान है। यह सुनिश्चित करना है कि जब आप वोट देने जाएं तो आपकी आवाज को सुना जाए, किसी की भी आवाज को दबाया ना जाए, कोई भी पीछे ना छूटे, हमारे चुनाव आयोग का और भारत सरकार का यह लक्ष्य है। आकाशवाणी की इस खास चर्चा की समाप्ति यही होती है। कैसा लगा आपको यह हमारा कार्यक्रम, आप हमें बता सकते हैं आकाशवाणी के हमारे फेसबुक पेज पर। और आप क्या कुछ नया सुनना चाहते हैं, किस विषय पर आप कोई नई बातचीत करना चाहते हैं या सुनना चाहते हैं, तो आप हमें बता सकते हैं हमारे फेसबुक पेज पर कॉमेंट करके। चर्चा की समाप्ति यही होती है। मैं पुनीत,
1: मैं ईशान।
0: आप सुनते रहिए आकाशवाणी। धन्यवाद।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे युवाओं का पसंदीदा कार्यक्रम युवा उमंग। एफएम बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का हिसार केंद्र।

0: क्या चीज है, तो हम तो ये कहेंगे जो अपने बहन भाई हैं, अगर मान लो शहर की तरफ भागेंगे तो आप गांव तो छोड़ के जाओगे, एक तो देखो गांव की गांव मरोगे, अरे फलाना आदमी बहुत बढ़िया काम कर रहा है, आपने हर आदमी जाना,
1: जनसंख्या
0: जनसंख्या थोड़ी और हर आदमी जाना, आपकी इज्जत बनेगी, फलाना छोरा है ना बहुत बढ़िया काम कर रहा है, वह छोरी है ना अनिता, वह तो इतना बढ़िया काम कर रही है भाई, आम के आम अंगूठी लिए दान, एक तो इज्जत पाओ, दूसरा पीछे कमाओ, और दूसरा अपना घर नहीं छोड़ के जाना, शहर में जाओगे आप किराए भाड़े पे लेके ने भाई कोई ना कोई काम शुरू करोगे, गांव में इज्जत और चैन का जो अपनापन है ना,
1: उसको क्या कर देखे, बड़े बुजुर्ग भी क्या कर दे कि काम कर अपना प्यारा लगे बाहर के,
0: बिल्कुल। अरे भाई देखो जब प्यारे की बात है तो देखो आप ना आप काम करना पड़ेगा,
1: काम तो कर्म है अपना,
0: बिल्कुल। और गीता में भी कहा है कर्म की पूजा है,
1: सही बात,
0: और जब कर्म पूजा है तो वे देखो अपना कर्म यो कहे अपना धर्म यो कहो है,
1: बिल्कुल सही।
0: आप ऐसे स्वरोजगार के योजनाओं को अपने गांव में बिल्कुल निचले स्तर तक लेके जाएं, ताकि आप एक अच्छा रोजगार देके अपने गांव का असली विकास कर सके,
1: और जो भी कार्य करे अपना प्रशिक्षण लेकर करे, ताकि उससे अपन जो है ज्ञान भी मिले और लाभ ज्ञान लाभ दोनों मिले।
0: और अनिता बहन देखो इसमें है ना सबसे ज्यादा अपनी महिलाओं का बड़ा योगदान होता
1: है,
0: क्योंकि महिलाएं घर पर बैठी, जो महिलाएं कई बार तो देखो घरों में पोस्ट ग्रेजुएट ग्रेजुएट पीएचडी तक है ना गाँव में, फिर कई भाई कहेंगे नौकरी को
1: नौकरी को
0: भाई, आप नौकरी की तरफ जाना ही नहीं, आप अपना रोजगार घर पे बैठ के स्वरोजगार जब आप शुरू करेंगे तो आप दूसरों को भी रोजगार देंगे, आपकी इज्जत बढ़ेगी, आपके जेब में दो पैसे आएंगे, साथ में जब आदमी का पैसा हो है ना अनिता, तो आदमी में उमंग
1: पढ़ा लिखा बेकार नहीं जाता, जब आप अपना रोजगार शुरू करांगे तो उससे बहुत ज्यादा फायदा होगा। एक उदाहरण भी बना अभी देखो, नौकरी ना सीना मिली तो देखो उसने अपना काम जो है बहुत अच्छा चला रखा है।
0: अनिता नौकरी सबने नहीं दी जा सकती, 150 करोड़ का देश है, लेकिन हर व्यक्ति अपनी जगह पे बैठ के अगर देश के लेकर तो हम अपने देश
1: आत्मनिर्भर बन सके,
0: आत्मनिर्भर बन सके और देश की जीडीपी में बहुत बड़ा योगदान दे सके, क्योंकि सबसे ज्यादा युवा अगर दुनिया में है ना तो भारत में है, और भारत कि युवाओं को हमने इन चीजों से जोड़ने की जरूरत है, और गांव का जो युवा है ना उसमें कौशल बहुत है, बशर्ते कि वो उस कौशल की तरफ बढ़े एक बार, और एक बार देखा देखी कोई हम काम करेंगे तो हम उसको बहुत आगे ले जा सके हैं। आप दूसरे आपके आसपास के किसी गांव में कोई अच्छा काम कर रहा है वो देख के गांव में आवे, और वो चीजें अपने आगे ने उसको शुरुआती दौर पर काम करेंगे तो दूसरों को हम जोड़ते हुए एक दिन ने एक कड़ी से दो कड़ी, जिस तरह माला का मनका बना के मनकों पे माला बन जाती है, तो उसी तरीके से ना अब एक बहुत बड़ा विकास का जो हमारे देश की विकास की दर है उसको आगे बढ़ाने में हम एक बहुत बड़ा योगदान दे सके, और बातचीत जारी रखेंगे, लेकिन उसके बाद भैया ने एक और मनोरंजन के द्वारा सुनाओगे रागनी।

ओ सुपने आली बात पिया मेरी बिल्कुल साची पाई। अरे बेटा कह के भीख

0: कजे कजे ते मेरे पिया सारा जा छत्तरदारी
1: इब भजन करूं और गुरु की सेवा।

संता का दास हो लिया। अरे सेवा सुकरम में सतपथ का पूरन अभ्यास हो लिया। ओ तेरे बिना धारा नगरी का कति सच्चा नाश हो लिया। अरे जगन्नाथ अपने सतगुरु का अचेला खा।

0: ये तो सुनी रागनी, और बात चल रही थी अपनी स्किल इंडिया के ऊपर, स्वरोजगार कौशल योजनाओं के ऊपर। हम तो ये कहेंगे कि भी जितने भी गांव के युवा साथी हैं वो ज्यादा से ज्यादा स्वरोजगार के ऊपर ध्यान दें, और अगर आप स्वरोजगार गांव में पैदा करेंगे तो उससे आपके गांव का बहुत विकास होगा, साथ साथ में आपका मान बढ़ेगा, सम्मान बढ़ेगा, और जब दो पैसे गांव में आते हैं तो गांव का विकास भी होगा। क्योंकि गांधी जी भी कहा करते हैं, अगर अपने भारत का विकास करना है तो सबसे पहले हमें अपने गांव का विकास करना होगा। तो हम तो यही कहेंगे कि आप स्वरोजगार पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान दें, लेकिन ये कविता घड़ी साया करने लग रही है।
1: कार्यक्रम हमारे गांव का समय समाप्त, अपनी बाण अनिता शर्मा ने
0: और अपने भाई नरेंद्र कौशिक ने, दे इजाजत सारे बाण भैया ने,
1: राम राम।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम मारे गांव। एफएम बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का हिसार केंद्र है। लीजिए श्रोताओं, अब सुनते हैं हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम लोकमंच।

हरियाणवी लोकमंच कार्यक्रम सुननी है सारे बण भाइया ने, आजाद भाई की राम राम। आज टेम की जरूरत है, जल जंगल और जमीन को बचा कर रखना बहुत जरूरी है। इसके लिए सरकार द्वारा भी समय समय पे प्रयास करे जा है। सरकार द्वारा मेरा पानी मेरी विरासत योजना लाई गई है। इस योजना के तहत पानी बचाने के लिए धान की खेती छोड़ने और उसकी जगह दूसरी फसलों की बुआई करने के लिए सरकार प्रोत्साहन राशि दिया करे। इसके अलावा इस योजना के तहत वो क्षेत्र भी शामिल करे जाए जड़े 50 आस पावर से ज्यादा ताकत के ट्यूबवेल का इस्तेमाल करा जाए। राज्य के किसान धान की जगह दूसरी वैकल्पिक फसलें मूंग मक्का अरहर तिल उड़द कपास और सब्जी की खेती कर सके हैं। हरियाणा में बहुत सी ऐसी जगह है जड़े पानी की कमी के कारण धान की जगह दूसरी फसलों की बुआई करनी चाहिए। इस योजना के तहत किसानों को फसल विविधीकरण अपनाने के लिए प्रेरित करा जाए। राज्य सरकार ने जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए मेरा पानी मेरी विरासत योजना को लॉन्च किया है। मेरा पानी मेरी विरासत के तहत किसानों को धान की खेती छोड़ने की कोई परेशानी ना हो, इसके लिए उनको आर्थिक सहायता प्रदान करी जाए। इस योजना में भाग लेने के लिए बहुत से कागजात भी बहुत जरूरी हैं। इसमें खेती योग्य भूमि के कागजात, आधार कार्ड, पहचान पत्र, बैंक अकाउंट पासबुक, पासपोर्ट साइज फोटो और मोबाइल नंबर। मेरा पानी मेरी विरासत योजना को अपनाने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। सरकार का एक प्रयास है, पानी को बचाया जाए।

0: जल है तो कल है, जल ही जीवन है, जल बचाएं जीवन बचाएं। आज इस विषय पे एक विशेष बातचीत करेंगे। आकाशवाणी सार के साथ हैं विलक्षण प्रतिभा के धनी बहुआयामी व्यक्तित्व, सामाजिक सरोकारों से जुड़े श्री वीरेंद्र सिंह काली रावण जी। वीरेंद्र सिंह जी, जहां तक जल बचाने की बात है, सामाजिक संगठन जल बचाने में समाज की क्या भूमिका हो सके?
1: देखिए, वर्तमान समय में हालातों को अगर आजाद दोहन जी अगर हम देखें तो हमें ये भविष्य के संकेत पिछले 6-7 साल से मिल रहे हैं, खासकर हरियाणा को और दक्षिणी हरियाणा को। अगर पिछले 6-7 साल का रिकॉर्ड अगर राजस्थान का देखेंगे तो बहुत एरिया जैसे बीकानेर है, बाड़मेर है, जैसलमेर है, जहां पानी की बड़ी दिक्कत होती थी, और आजकल वहां बाढ़ बरसात के सीजन में आ रही है, और उसका सीधा सीधा असर मैं देख पा रहा हूँ कि हरियाणा में, चाहे वो भिवानी डिस्ट्रिक्ट हो, महेंद्रगढ़ हो, हिसार हो, बरसात बहुत कम इधर होने लग रही है। और हम सामाजिक ताने बाने की इससे अगर जोड़ कर देखें, जब तक सरकार चाहे कितने भी प्रयास क्यों ना कर ले, विभाग संबंधित विभाग कितने भी प्रयास क्यों ना कर ले, कितने भी विज्ञापन आप दीवारों पर ना चस्पा कर लें, लेकिन उससे कोई असर होने वाला इतना नहीं है जब तक आम जन का पूर्ण रूप से सहयोग नहीं होगा।
0: जिस प्रकार से सामाजिक संगठन है, खाप पंचायतें हैं, आप काली रावण खाप से जुड़े रहे हैं, प्रधान भी रहे हैं पहले, तो इस तरह के प्रयास गांव के समूह या खाप पंचायतें भी तो कर सके?
1: बिल्कुल, खाप पंचायतें हो चाहे वो सामाजिक संगठन हो, हम सबको आगे आना होगा। अगर आने वाले जीवन को आप बचाना चाहते हैं तो जल का संरक्षण बहुत ही जरूरी है। आमतौर पर देखा जाता है कि गलियों में पानी चलता रहता है, टोंटी नहीं लगी होती है, नल जो है सीधे रूप से खुले चलते रहते हैं, नालियों में कीचड़ भी होता है, और दूसरी तरफ जैसे भी स्टॉक पानी का होता है, नल पर टूटी ना होने की वजह से वो जो टैंक भरे होते हैं वो बहुत जल्द खत्म हो जाते हैं, उसके 5-7 दिन बाद ही हमें चिल्लाने लग जाते हैं कि विभाग पानी नहीं दे रहा है, जबकि हम जिस समय पानी आता है उसको बेकार बहाने का काम करते हैं, गाड़ियां धोने का काम करते हैं, घर के बाहर पानी डालकर उसका सफाई करने में उसका इस्तेमाल आमतौर पर देखा जा रहा है। तो ऐसी चीजों को एक दूसरे सामाजिक ताने बाने से हमें रोकना होगा और तभी जल संरक्षण संभव हो पाएगा।
0: गांव समूह है, गांव के आम लोग बाग हैं, पंचायतें हैं, खाप पंचायतें हैं, सामाजिक संगठन हैं, वो भी तो एक जन प्रचार कर सके हैं, वे पानी बचाएं।
1: बिल्कुल, मैं तो यही कहूंगा कि प्रत्येक व्यक्ति को, मैं तो खाप पंचायतें सामाजिक संगठन ही नहीं, प्रत्येक नागरिक इसमें सहयोग करेगा और करना चाहिए, तभी बात बनेगी, अन्यथा ये बात बनने वाली नहीं है। जहां किसी भी नागरिक को नल पर टूटी ना लगे, संबंधित व्यक्ति को समझाना होगा, बेकार जल जहां बहाया जा रहा है प्रत्येक व्यक्ति को जागरूक होकर उसको टोकाटाकी करनी होगी, उसको रोकना होगा। इस तरह के प्रयास ये जो इसको, इस मुहिम को सिरे चढ़ा सकते हैं और जल संरक्षण किया जा सकता है और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को बचाया जा सकता है।
0: एक जागरूक सोच, मेरे घर में भी पानी पहुंचे, दूसरे भाई के भी पहुंचे, मैं जितना पानी प्रयोग कर रहा हूं उसको प्राप्त करूं, बाकी पानी अगले भाई के पहुंच जाए। लेकिन लोग बाग ये करें कि वो बिना फ्रूल की टूंटी ला के या पानी का दुरुपयोग करें, तो आने वाली पीढ़ियां अपना भी हिसाब मांगेंगी कि आपने पानी बचाने के प्रयास करे।
1: बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बात कही है। आमतौर पर मैं भी बहुत देखता हूँ, बहुत चीजें इस तरह की सामने आती हैं कि एक व्यक्ति अपना टैंक भर लेता है लेकिन उसके बावजूद भी उसका सब्र नहीं होता है। प्रत्येक घर के अंदर आप एक सर्वे करें और मजबूती के साथ अगर इस पर काम करेंगे, किसी भी एरिया की बात करूं, एक घर के अंदर एक एक नल नहीं, सप्लाई की जो लाइनें हैं प्रत्येक घर के अंदर आपको 2 या 3 लाइनें जुड़ी हुई मिल जाएंगी, 2-2, 3-3 मोटरें चलती हुई मिल जाएंगी, और अपना टैंक भरने के बाद अगर उसकी यहाँ गाड़ी है तो वो गाड़ी धोने का काम उससे करता है, फर्श धोने के पानी पर जो है पानी से धोने का काम करते हैं, तो इस तरह से पानी की बर्बादी की जा रही है, इसे रोकना होगा।
0: घर में पानी की

0: खपत जितनी हो इतना प्रयोग करना चाहिए। खेत के पानी को भी तो बचाना बहुत जरूरी है, जैसे हमें फ्लड का पानी या नाके का पानी लावा, आजकल तो ड्रिप इरिगेशन है, टपका टपका सिंचाई है, उसमें भी तो पानी की बचत करी जा सके।
1: बिल्कुल, उसमें जैसे सरकार सब्सिडी भी दे रही है, और सब्सिडी देने का मतलब यही है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसके प्रति आकर्षित और इस योजना का लाभ उठाएं। जैसे आपने टपका सिंचाई का जिक्र किया, टपका सिंचाई से जहां एक तरह फसल की सिंचाई भी बहुत अच्छे से होती है और पानी की बचत भी बहुत उसमें की जा सकती है, तो खेत यानी किसान भी जो है इसमें सहयोग कर सकते हैं पानी को बचाने में। एक तरह से खुला पानी छोड़ने से और टपका सिंचाई से बहुत फर्क रहता है और बहुत पानी की बचत होती है।
0: जिस प्रकार से शिवानी भिवानी लोहारू तो शाम का इलाका है, पानी की कमा पेशी है, तो इस इलाके में टपका सिंचाई और जो स्प्रिंकलर सिंचाई है, फवारा सिंचाई बड़ी लोकप्रिय है और बहुत अच्छा लोग बाग प्रयास कर रहे हैं, सराहनीय प्रयास कर रहे हैं पानी बचाने की मुहिम में, तो इस तरह के प्रयास सब लोगों ने करने चाहिए।
1: बिल्कुल, अपने टपका सिंचाई और फवारा सिंचाई का जो जिक्र किया, मैं तो ये कहता हूं कि जैसे कि आप भी अपील कर रहे हैं आपके आकाशवाणी केंद्र के माध्यम से और समय समय पर करते रहे होंगे, ये व्यवस्था एक ऐसी है कि प्रत्येक किसान को इसके प्रति जागरूक करके इस योजना से जोड़ा जाना चाहिए, और अगर आने वाली पीढ़ियों को हमें बचाना है तो ये करना ही होगा, अन्यथा हम आने वाले भविष्य को कोई जवाब नहीं दे पाएंगे।
0: इस प्रकार से जल संरक्षण की मुहिम में हर आदमी जुड़े, ग्राम पंचायत, खाप पंचायत, आम लोग बाग। वीरेंद्र सिंह जी, आपके मुखारविंद से संदेश के रूप में क्या कहना चाहेंगे?
1: मैं संदेश यही देना चाहूंगा, चाहे वो खाप पंचायतें हो, चाहे वो सामाजिक संगठन हो, चाहे वो जिम्मेदार आम नागरिक हो, सबको इसको गंभीरता से लेना होगा। गंभीरता से समझते हुए, आने वाले भविष्य के जीवन को समझते हुए, हम सबको मिलकर आगे आना होगा और जल संरक्षण करना होगा, अन्यथा आने वाला भविष्य हमारा सुरक्षित नहीं है।
0: जल बचाएं, कल बचाएं, जल ही जीवन है, इस संदेश को आगे बढ़ाएं। इतने बढ़िया ज्ञान लाभ की जानकारी के लिए विलक्षण प्रतिभा के धनी सामाजिक संस्थाओं से जुड़े व्यक्तित्व श्री वीरेंद्र सिंह कालीरावण जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
0: पानी को हम बना नहीं सकते लेकिन बचा सके हैं। हमारे बुजुर्गों ने पानी को बचाने के लिए कुएं, जोड़, बावड़ियों का इस्तेमाल कराया। जो पानी हमारे बुजुर्गों ने हमारे लिए बचाया, आज उसका अच्छे तरीके से इस्तेमाल हम कर रहे हैं, लेकिन जाने अनजाने में जो लोग भूल कर रहे हैं, आने वाली पीढ़ियां उनसे हिसाब मांगेंगी, क्योंकि जल संरक्षण, पानी का बचाना बहुत जरूरी है। जल ही जीवन है, जल है तो कल है, पानी बचावें, जीवन बचावें।

हेरा कहे लोकेश से वक्त शेष संभालो इब बीतम नारे नारी जू पानी बन मछली तड़फे न्यू तड़फे की दोनी।

हम सब का फर्ज बने है मेरा पानी मेरी विरासत को अपना के पानी के संरक्षण में अच्छी पहल में अपना योगदान दें। हम सब का फर्ज बने है पानी को बचाने में अपना अहम योगदान दें। ड्रिप इरिगेशन, टपका सिंचाई, बूंद बूंद पानी बचा के हम खेती और बागवानी में बहुत अच्छा मुनाफा कमा सके हैं। बदलते टेम के साथ नई सोच नई तकनीक बहुत जरूरी है। अगर आज पानी बचाओगे तो आने वाली पीढ़ियां इस पानी का अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकेंगी। बखत जाग जाओ, बढ़ते ग्लोबल वार्मिंग, बहुत ज्यादा गर्मी बढ़ना एक बहुत बड़े खतरे का संकेत है। क्यों ना हम सब पहल करें, जल जंगल जमीन को बचावें, वातावरण को हरा भरा बनावें, प्रकृति में हरियाली जब भी आओगी देश में खुशहाली।

जन जागरूकता अभियान चला के पानी बचाएंगे तो हमारा प्राकृतिक वातावरण और हमारे संसाधन बचे रहेंगे। इसी के साथ आज का हरियाणवी लोकमंच कार्यक्रम समाप्त करने की अपने भाई आजाद दुवन ने दी अनुमति। सारे बण भैया ने राम राम।

0: कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम
1: जी,
0: ये केवाईसी अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
1: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर केवाईसी अपडेट करवाना चाहिए।
0: पर ये होगा कैसे?
1: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
0: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो
1: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर केवाईसी अपडेट करवा सकते हैं।
0: बस समझ गया।
1: अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
2: आरबीआई कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: सुनो ना।
5: हाँ?
4: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूं।
5: तो रोका किसने है? हाँ?
4: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
5: मुझसे।
4: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
5: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
4: पर उससे मेरा क्या फायदा?
5: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
4: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
5: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700014242।
4: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।
6: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
7: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।

0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग में बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग में बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: संदेशों से पहले आप सुन रहे थे कार्यक्रम लोकमंच एफएम बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज पर। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के हिसार केंद्र से। आइए श्रोताओं, अब सुनते हैं खुला आकाश के तहत कार्यक्रम यादों के झरोखे से। और आज इसके तहत हम आपको बताने जा रहे हैं आमिर खान की फिल्म गजनी के बारे में। आमिर खान की फिल्म गजनी एक बेहतरीन एक्शन थ्रिलर फिल्म थी जो 2008 में रिलीज हुई थी और इसका निर्देशन ए.आर. मुरुगाडोस ने किया था और ये फिल्म इसी नाम की तमिल फिल्म का रीमेक थी। यह बॉलीवुड की पहली फिल्म थी जिसने 100 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर इतिहास रचा था। इस फिल्म में काम करने वाले मुख्य कलाकार थे आमिर खान, असिन, जिया खान और प्रदीप रावत। इस फिल्म का संगीत ए.आर. रहमान ने दिया था और इसके गाने अपने समय में बेहद मशहूर हुए और आज भी बेहद पसंद किए जाते हैं। इस फिल्म की खासियत थी इस फिल्म का एक्शन, रोमांस और सस्पेंस का बेहतरीन मिश्रण दिखाने का तरीका। आइए सुनते हैं इस फिल्म का ये बेहद ही खूबसूरत सा गीत।

फिल्म गजनी की कहानी अपने आप में बहुत ही अलग कहानी थी। इस फिल्म की कहानी में आमिर खान ने संजय सिंघानिया नाम के एक अमीर बिजनेसमैन की भूमिका निभाई है, जो अपनी प्रेमिका कल्पना यानी असिन की हत्या का बदला लेने के लिए निकलता है। एक हमले के दौरान उसके सिर पर चोट लग जाती है, जिसके कारण वो शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस से पीड़ित हो जाता है और उसकी याददाश्त केवल 15 मिनट तक रहती है, यानी कि 15 मिनट बाद वो सब कुछ भूल जाता है। अब इतनी जल्दी सब कुछ भूल जाने के कारण संजय अपने शरीर पर टैटू बनवाता है, नोट्स लिखता है और तस्वीरें खींचता है, ताकि वो अपने मकसद यानी कि अपनी प्रेमिका के हत्यारे गजनी को मारने के मकसद को भूल ना जाए। और अपने शरीर पर नोट्स बनवाकर, तस्वीरें खींचकर और टैटू बनवाकर वो उस इंसान को याद रखता है और अंत में उसे मारकर अपनी प्रेमिका की हत्या का बदला लेता है। और ये सब कुछ इस कहानी में बहुत नए तरीके से और बहुत दिलचस्प तरीके से दिखाया गया, जिसकी वजह से ये फिल्म काफी हिट हुई।

कार्यक्रम यादों के झरोखे से अपनी मेजबान सारिका शर्मा के साथ। ये आकाशवाणी का हिसार केंद्र है एफएम बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, आपसे चंद लम्हों के बाद हम आपको लिए चलेंगे राष्ट्रीय हिंदी समाचारों के लिए और उसके बाद आप सुनेंगे विविध भारती। प्रतीक्षा के बस चंद लम्हे और हमारे साथ।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के एविया में G7 शिखर सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। वे आज रात कनाडा तथा ब्रिटेन के प्रधानमंत्री और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। कल अमेरिका के राष्ट्रपति से मुलाकात होगी। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने चालू खरीफ सीजन की तैयारियों की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने ईस्टर्न फ्रंटियर राइफल्स के पुनरुद्धार और 1000 से अधिक गोरखा युवाओं की भर्ती की घोषणा की। भारत और जापान ने ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी और सतत विकास पहलों पर सहयोग बढ़ाने के लिए पेरिस समझौते के अंतर्गत संयुक्त क्रेडिटिंग तंत्र के लिए नियम अपनाए। ईरान ने कहा अमेरिका के साथ युद्ध विराम समझौते के लिए इसराइल को लेबनान से पीछे हटना होगा। उत्तर भारत में कल बिजली कड़कने और तेज आंधी का अनुमान। और 26वीं सीनियर एशियाई तलवारबाजी चैंपियनशिप के लिए भारतीय टीम की घोषणा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस के एवियॉन में चल रहे G7 शिखर सम्मेलन के उच्च स्तरीय कार्य सत्र में भाग ले रहे हैं। नई साझेदारियां बनाना और अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता का पुनः निर्माण विषय पर आधारित इस सत्र में G7 देशों के नेता, सहयोगी देशों के नेता और विश्व बैंक तथा अफ्रीकी विकास बैंक के वरिष्ठ प्रतिनिधि शामिल हुए हैं। बैठक की शुरुआत फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों द्वारा प्रधानमंत्री मोदी और अन्य भागीदार देशों के नेताओं का औपचारिक स्वागत करने के बाद हुई। शिखर सम्मेलन के बारे में अधिक जानकारी के लिए चलते हैं एवियॉन में मौजूद हमारे संवाददाता अंकित कुमार के पास। अंकित, भारत के लिए सम्मेलन का रणनीतिक महत्व क्या है?
1: जी प्रियंका, देखिए, भारत इस G7 शिखर सम्मेलन को केवल एक प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के साथ संवाद के मंच के रूप में ही नहीं बल्कि ग्लोबल साउथ की आवाज को मजबूती से रखने के अवसर के रूप में भी देख रहा है। भारत की अपेक्षा है कि व्यापार, प्रौद्योगिकी, नवाचार और भरोसेमंद सप्लाई चेन जैसे क्षेत्रों में सहयोग को और बढ़ाया जाए। खासतौर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उभरती तकनीकों के क्षेत्र में भारत की भूमिका लगातार बढ़ रही है और इस दिशा में भारत ठोस साझेदारियों की उम्मीद कर रहा है। इसके साथ ही इस बात की भी उम्मीद है कि भारत विकासशील देशों से जुड़े मुद्दों को भी प्रमुखता से उठाएगा। इनमें सतत विकास, जलवायु, वित्त, ऊर्जा सुरक्षा और समावेशी आर्थिक विकास जैसे विषय शामिल है। भारत लगातार ये कह रहा है कि वैश्विक नीतियों और निर्णयों में विकासशील देशों की चिंताओं को पर्याप्त स्थान मिलना चाहिए। जी प्रियंका,
0: धन्यवाद अंकित इस जानकारी के लिए। शिखर सम्मेलन में भाग लेने के अलावा प्रधानमंत्री मोदी का राजनयिक कार्यक्रम भी व्यस्त है। वे कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की स्टामर और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। आज रात वे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों द्वारा आयोजित भव्य रात्रि भोज में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी की कल अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात होगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के भारत फ्रांस

0: नवाचार वर्ष के साझा दृष्टिकोण ने भारत इनोवेट की आधारशिला रखी, जो भविष्य के लिए एक परिवर्तनकारी मंच बन गया है। श्री गोयल ने ये बात फ्रांस के नीस में भारत इनोवेट के समापन समारोह में कही। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी है। भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड ऑफिसर बनने के लिए एफकैट 2 ऑफ 2026 के आवेदन 20 मई से खुले हैं। विवरण के लिए विजिट करें fcat.edcil.co.in पर।

0: निशुल्क कानूनी सहायता टेलीलॉके ऐप वेबसाइट www.daily-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय कृषि समीक्षा बैठक में चालू खरीफ सीजन के लिए देश भर में की गई तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में उन्होंने कपास उत्पादन बढ़ाने, दालों में आत्मनिर्भरता हासिल करने और कम वर्षा वाले जिलों के लिए अग्रिम आकस्मिक योजनाओं पर विशेष बल दिया। एक रिपोर्ट।
2: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्पष्ट संदेश दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में किसानों के हितों की रक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। बैठक में इस बात पर भी ध्यान केंद्रित किया गया कि फसल के मौसम के दौरान उत्पन्न होने वाली किसी भी प्रतिकूल मौसम स्थिति से कृषि और किसानों की सुरक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम पहले से ही उठाए जाएं। श्री चौहान ने निर्देश दिए कि जिन जिलों में कम वर्षा या असमान वर्षा की संभावना है, वहां पहले से ही पूरी तैयारी की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि ऐसे जिलों की स्पष्ट पहचान की जानी चाहिए और राज्य सरकारों के समन्वय से फसलवार आकस्मिक योजनाएं तैयार की जानी चाहिए, जिससे मौसम संबंधी किसी भी चुनौती की स्थिति में किसानों को तत्काल विकल्प, सलाह और सहायता प्रदान की जा सके। इसके साथ ही उन्होंने इस बात पर विशेष जोर दिया कि जल संरक्षण, नमी प्रबंधन, अंतर फसल खेती और वैकल्पिक फसल पैटर्न पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। सुपर्णा सेकिया के साथ सौम्या शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: इस बीच श्री चौहान ने कहा है कि विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण वीबीजी रामजी की पहली जुलाई को आंध्र प्रदेश में राष्ट्रीय स्तर पर शुरुआत होगी। श्री चौहान ने आज नई दिल्ली में आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण के साथ हुई बैठक के दौरान ये बात कही। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने घोषणा की है कि ऐतिहासिक ईस्टर्न फ्रंटियर राइफल्स का शीघ्र ही पुनरुद्धार किया जाएगा और 1000 से अधिक गोरखा युवाओं को राज्य पुलिस बल में भर्ती किया जाएगा। दार्जिलिंग जिले के करसियोंग में जनसभा को संबोधित करते हुए श्री अधिकारी ने घोषणा की कि राज्य पुलिस बल में भर्ती शीघ्र ही खोली जाएगी, जिससे बड़ी संख्या में गोरखा युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। उन्होंने कहा कि राज्य भर्ती में कम से कम 30% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने आज स्वास्थ्य सेवा, पेयजल, तकनीक, डिजिटल कनेक्टिविटी और सुशासन से जुड़े कई बड़े फैसलों को मंजूरी दी। इसके अंतर्गत नागपुर में हाई एनर्जी मेडिकल साइक्लोट्रॉन प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा। मध्य भारत की ये पहली परियोजना है जिससे अलग अलग बीमारियों की जांच और उपचार बेहतर होने की उम्मीद है। मंत्रिमंडल ने ग्रामीण इलाकों में पीने के पानी की कमी को दूर करने के लिए महाराष्ट्र ग्रामीण पेयजल नीति तथा नवाचार और नई औद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए महाराष्ट्र अनमैन्ड सिस्टम पॉलिसी को मंजूरी दी। महाराष्ट्र में जून के पहले चरण में सामान्य से 26% ही बारिश हुई है। राज्य सरकार ने किसानों को सलाह दी है कि वे जल्दबाजी में बुआई न करें। सरकार ने किसानों से आग्रह किया है कि वे बुआई का काम शुरू करने से पहले बारिश की स्थिति पर ध्यान दें। पेयजल और स्वच्छता विभाग ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जिला अधिकारियों के साथ पेयजल संवाद का आयोजन किया। इसमें वरिष्ठ अधिकारी, जिला अधिकारी, डिप्टी कमिश्नर और राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के जल जीवन मिशन के डायरेक्टर शामिल हुए। इसका उद्देश्य जल के जीवन मिशन 2.0 के लागू होने की रफ्तार बढ़ाने और बेहतरीन तौर तरीकों पर चर्चा करना था। केरलम के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने आज डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से स्वगणना की प्रक्रिया पूरी करके जनगणना 2027 के पहले चरण की शुरुआत की। जनगणना 2027 भारत की पहली पूरी तरह से डिजिटल जनगणना है और ये दुनिया का सबसे बड़ा प्रशासनिक तथा सांख्यिकी कार्य है, जिसे पूरी तरह से ऐप आधारित

0: पेपरलेस सिस्टम के माध्यम से किया जाएगा। सरकार ने सोशल मीडिया पर चल रही उस पोस्ट का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया था कि संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक हो गया है। पत्र सूचना कार्यालय की फैक्ट चेक इकाई ने कहा है कि ये दावा निराधार है। इकाई ने कहा है कि परीक्षा के प्रश्न पत्र देश भर से चयनित संबंधित विषयों के विशेषज्ञों द्वारा तैयार किए जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत के आधार पर भारत में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के नाम से विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज बात आतंकवाद से निपटने के लिए सरकार की शून्य सहिष्णुता नीति की।
1: पिछले वर्ष 6 और 7 मई की मध्य रात्रि को भारतीय सेना द्वारा चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर ने पूरी दुनिया को यह स्पष्ट संदेश दिया कि भारत युद्ध नहीं चाहता, लेकिन आतंकवाद को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर ने यह स्पष्ट किया कि यदि आतंकवाद किसी देश की नीति का हिस्सा बनेगा तो उसका सीधा और सशक्त जवाब दिया जाएगा। इस ऑपरेशन के जरिए भारतीय सेना ने लश्कर ए तैयबा, जैश-ए मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे आतंकवादी संगठनों के ठिकानों को निशाना बनाते हुए पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में स्थित 9 प्रमुख आतंकवादी लॉन्च पैडों को नष्ट कर दिया। इस अभियान में 100 से अधिक आतंकवादी मारे गए। वहीं 9 और 10 मई को भारत ने इतिहास रचते हुए परमाणु हथियार युक्त किसी देश के 11 एयरबेसों पर एक ही अभियान में प्रहार करने वाला पहला राष्ट्र बनने का गौरव प्राप्त किया। इस कार्रवाई के परिणाम स्वरूप पाकिस्तान वायुसेना के लगभग 20% बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में जम्मू कश्मीर में 15वीं कोर के पूर्व कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल केजेएस ढिल्लो ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सरकारी एजेंसी की खुफिया क्षमता और समन्वय की सराहना की।
2: इंडिया फ्रॉम द पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ,
3: भारत ने मजबूत स्थिति में होने के बावजूद जिम्मेदार लोकतंत्र और परमाणु संपन्न देश होने के नाते उनकी इस अपील को स्वीकार कर लिया। इस तरह ऑपरेशन सिंदूर ने आतंकी देश को कड़ा सबक सिखाया कि भारत पर किसी भी आतंकी कृत्य को बख्शा नहीं जाएगा।
2: नो टेररिज्म एक्ट इन इंडिया वुड गो अनपनिश्ड।
1: वहीं 7 पड़ोसी देशों से लगी 15,000 किलोमीटर से अधिक लंबी सीमा की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भारत आज नेशन फर्स्ट के सिद्धांत पर आधारित प्रभावी विदेश नीति का पालन कर रहा है। सिलचर के प्रोफेसर अनूप कुमार डे ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि
4: 263 में से ज्यादातर हिस्सों में इंटरनेशनल जो बॉर्डर है बांग्लादेश के साथ फेंसिंग हो गया है, उसके कारण ना केवल वहां से जो अनुप्रवेश है उसमें रोक लगी है, उसके साथ साथ वहां से जो इल्लीगल ट्रेड्स होता था वो भी बंद हुआ है।
1: नरेंद्र मोदी सरकार आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति को अपनाकर देश की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्लोवाकिया के सर्वोच्च राजकीय सम्मान द ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से सम्मानित किया जाना देश के लिए अत्यंत गौरव की बात है। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि ये देश में प्रधानमंत्री द्वारा किए गए कल्याणकारी कार्यों को मान्यता है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। भारत और जापान ने जलवायु परिवर्तन संबंधी कार्रवाई, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी तथा सतत विकास पहलों पर सहयोग बढ़ाने के लिए पेरिस समझौते के अंतर्गत संयुक्त क्रेडिटिंग तंत्र के कार्यान्वयन नियमों को अपनाया है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अनुसार जेसीएम के लिए पिछले वर्ष दोनों देशों के बीच हस्ताक्षरित सहयोग ज्ञापन के बाद इस वर्ष 8 जून को कार्यान्वयन नियमों को अपनाया गया। ईरान ने कहा है कि अमेरिका के साथ युद्ध समाप्त करने के समझौते के अंतर्गत इसराइल को लेबनान से पीछे हटना होगा। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराकची ने आज कहा कि दक्षिणी लेबनान पर इसराइल का निरंतर कब्जा अमेरिका और ईरान के बीच हुए समझौता ज्ञापन का उल्लंघन है। अमेरिका ने अभी तक ये स्पष्ट नहीं किया है कि लेबनान अंतिम समझौते का हिस्सा है या नहीं। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी है कि अगर वह परमाणु हथियार हासिल करने की कोशिश करता है तो भयानक तबाही मच जाएगी। फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन से इतर कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अस्सानी के साथ द्विपक्षीय बैठक में श्री ट्रंप ने कहा कि प्रस्तावित समझौते में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि

0: ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं होंगे। मौसम विभाग ने कल उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में तेज वर्षा के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले दो दिन में उत्तर पूर्वी भारत, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल के कुछ हिस्सों में भी तेज वर्षा हो सकती है। अगले चार से पांच दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के तेलंगाना, उड़ीसा, झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने का अनुमान है। भारतीय तलवारबाजी संघ ने 26वीं सीनियर एशियाई तलवारबाजी चैंपियनशिप के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। भारत पहली बार इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता की मेजबानी करेगा। 19 से 24 जून तक दिल्ली में आयोजित होने वाली इस प्रतियोगिता में 30 से अधिक देशों के शामिल होने की उम्मीद है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के एवियन में G7 शिखर सम्मेलन के उच्च स्तरीय कार्य सत्र में भाग लिया। वे आज रात कनाडा तथा ब्रिटेन के प्रधानमंत्री और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने ईस्टर्न फ्रंटियर राइफल्स के पुनरुद्धार की घोषणा की। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये विविध भारती है, देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम आपके लिए। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं आशा भोसले और अनवर के गाए गीत से। निदा फासले के लिखे इस गीत की धुन बनाई है खयाम ने। फिल्म का नाम है आहिस्ता आहिस्ता।

0: एक जाने माने पेंटर जो अपने कैनवस और ब्रश से रचते हैं एक जादुई दुनिया, एक सम्मोहक यात्रा।
1: हमारे देश के प्रमुख चित्रकार जगदीश स्वामीनाथन, उन्होंने आदिवासी कला को भी समकालीन कला की तरह रखा था और सारे आदिवासी कलाकारों से भी मिलना जुलना और फिर गांव जाना उसने बहुत मदद करी एक मनुष्य के देखने को समझने में।
0: कुछ बातें जो इतनी दिलचस्प हैं कि आप खो जाएं।
1: मैंने ये सोचना शुरू किया कि मेरे चित्र में ऐसा क्या है जो मनुष्य को संबोधित है।
0: जाने माने पेंटर अखिलेश से एक बातचीत।
1: जितना ज्यादा समय आप अपने काम को देंगे उतना ज्यादा आप उसके बारे में सीख सकते हैं, जान सकते हैं।
0: आज के मेहमान 24 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: अभी आपने किनारा फिल्म में लता मंगेशकर और भूपेंद्र सिंह को सुना। गुलजार के लिखे इस गीत की धुन बनाई थी आर डी बर्मन ने।
1: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
2: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
1: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
0: इस समय आप सुन रहे कार्यक्रम आपके लिए, लीजिए अब सुनिए लव स्टोरी फिल्म का गीत लता मंगेशकर और अमित कुमार की आवाज में। आनंद बख्शी के लिखे इस गीत की धुन बनाई है राहुल देव बर्मन ने।

0: एक जाने माने पेंटर जो अपने कैनवस और ब्रश से रचते हैं एक जादुई दुनिया, एक सम्मोहक यात्रा।
1: हमारे देश के प्रमुख चित्रकार जगदीश स्वामीनाथन, उन्होंने आदिवासी कला को भी समकालीन कला की तरह रखा था और सारे आदिवासी कलाकारों से भी मिलना जुलना और फिर गांव जाना उसने बहुत मदद करी एक मनुष्य के देखने को समझने में।
0: कुछ बातें जो इतनी दिलचस्प हैं कि आप खो जाएं।
1: मैंने ये सोचना शुरू किया कि मेरे चित्र में ऐसा क्या है जो मनुष्य को संबोधित है।
0: जाने माने पेंटर अखिलेश से एक बातचीत।
1: जितना ज्यादा समय आप अपने काम को देंगे उतना ज्यादा आप उसके बारे में सीख सकते हैं, जान सकते हैं।
0: आज के मेहमान 24 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार।
3: लीजिए अब सुनिए जगजीत सिंह और चित्रा सिंह को फिल्म साथ साथ में। कुलदीप सिंह के संगीत निर्देशन में गीत की रचना की है जावेद अख्तर ने।

0: इस गीत के साथ ही आपके लिए कार्यक्रम अब यही समाप्त होता है। आप सुन रहे हैं विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन।
1: यह है विविध भारती।
2: आज के फनकार कार्यक्रम आप सुनेंगे कुछ ही पलों के बाद।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: म्यूजिक थेरेपी कि संगीत से बीमारों का इलाज भी होता था।
0: संगीतकार नौशाद।
1: अब उस्तादों ने कहा है, पंडितों ने लिखा है कि जितने शार्प नोट हैं वो इंसान में चुस्ती पैदा करते हैं। तो जैसे देखे सूरज की पहली किरण फूटती, राग में एक शार्प नोट शुरू होता है, मैं लिखता है मध्यम शार्प लगती है कि अब इंसान को उठना है, मुंह हाथ धोना है, काम काज को। जैसे जैसे सूरज चढ़ता जाएगा एक एक शार्प नोट, जैसे सूर्य अस्त होने लगता है एक एक कोमल स्वर शामिल होना शुरू होता है। तो ये देखिए बड़ी भारी साइंस है। अगर कोई फिल्म में गाना वाना बना लिया, लोगों को पसंद आ गया, तो कोई कमाल नहीं हुआ। ये तो इतना बड़ा साइंस है कि सोचो तो ये लगता है कि नहीं है, हमको तो जरा भी हमारे पास नहीं है।
0: ऐसी अद्भुत यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगी।
2: आज के फनकार।

आज के फनकार कार्यक्रम में आज बातें एक ऐसे गायक, संगीतकार और निर्माता की, जिनके बारे में सलील चौधरी ने कहा था, अगर ईश्वर किसी आवाज में गाते तो वो हेमंत कुमार की आवाज में ही गाते।

0: जी हाँ, आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित है गायक, संगीतकार और निर्माता हेमंत कुमार पर।
1: देखिए वो काली काली बदलिया, जुल्फ की घटा चुरा न ले कहीं, चोरी चोरी आके शोक बिजली।

हेमंत कुमार का जन्म 16 जून 1920 को हुआ था बनारस में। ये जानकर आपको हैरत हो सकती है कि हेमंत कुमार का ताल्लुक बनारस से रहा था। उनके पिता वहां काम किया करते थे। बाद में उनका परिवार कोलकाता चला गया था, लेकिन बनारस से ताल्लुक होने का एक बहुत बड़ा फायदा हेमंत कुमार को किस गाने में मिला, याद है आपको? फिल्म मुनीम जी का ये गाना सुनिए। किस बनारसी अदा के साथ हेमंत कुमार ने इस गाने को

तो मैं कह रहा था कि हेमंत कुमार का जन्म तो भले बनारस में हुआ था, लेकिन उनका परिवार बाद में चला गया कोलकाता। कोलकाता में हेमंत कुमार को संगीत का शौक लगा और वहां उनकी संगीत की शिक्षा दीक्षा चलने लगी। 12वीं की परीक्षा देने के बाद हेमंत कुमार बंगाल टेक्निकल इंस्टीट्यूट जाधवपुर आ गए और इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने लगे। इंजीनियरिंग की पढ़ाई में उनका मन नहीं लगता था, इसलिए वो संगीत की ओर बढ़ गए। हालांकि माता पिता ने इसका घना विरोध किया, लेकिन उन्होंने संगीत की अपनी रुचि को छोड़ा नहीं। बीच में एक दौर ऐसा आया जब उन्होंने लिखने की तरफ भी अपने कदम बढ़ाए। जानी मानी बांग्ला पत्रिका देश में उन्होंने अपनी कहानी प्रकाशित करवाई। सन 1930 के दशक के आखिर में वो संगीत की दुनिया में चले आए। सन 1935 में हेमंत कुमार मुखोपाध्याय ने कोलकाता के आकाशवाणी केंद्र पर अपना पहला बांग्ला गीत रिकॉर्ड करवाया। हेमंत कुमार ने उस्ताद फैयाज खां और फणीभूषण गांगुली से भी संगीत की तालीम ली थी। सन 1937 में हेमंत कुमार का पहला ग्रामोफोन रिकॉर्ड आया कोलंबिया के बैनर तले। इसके बाद हेमंत कुमार की ख्याति बढ़ती चली गई। सन 1941 हेमंत कुमार ने पहली बार फिल्मों में गाया। ये बांग्ला फिल्म थी निमाई संन्यास और इसके संगीतकार थे हरि प्रसन्न दास। हेमंत कुमार ने अपने पहले हिंदी गीत रिकॉर्ड करवाए फिल्म इरादा में सन 1944 में। इस फिल्म के संगीतकार थे पंडित अमरनाथ और गाने लिखे थे अजीज काश्मीरी ने। हेमंत कुमार रवींद्र संगीत के विशेषज्ञ माने जाते थे। सन 1944 में बांग्ला फिल्म प्रिय बंधावी के लिए उन्होंने रवींद्र संगीत रिकॉर्ड किया था पहली बार। बतौर संगीतकार हेमंत कुमार की पहली फिल्म थी अभियात्री। ये बांग्ला फिल्म सन 1947 में आई थी।

1940 के दशक के मध्य में हेमंत कुमार इप्टा में शामिल हो गए और वो जननाट्य करने लगे। यहाँ सलील चौधरी भी उनके साथ शामिल थे। सन 1943 में बंगाल में पड़े अकाल के दौरान जन जागृति का काम किया इप्टा ने, और सन 1947 में हेमंत कुमार ने अपना गैर फिल्मी गीत रिकॉर्ड किया गनेर बंधु, जिसमें संगीत सलील चौधरी का था। हेमंत कुमार इस दौर में बांग्ला फिल्मों में संगीत दे रहे थे। इनमें से कई फिल्मों के निर्देशक हेमेन गुप्ता थे। कुछ समय बाद हेमेन गुप्ता मुंबई फिल्म जगत में पैर जमाने के लिए चले आए और इसके बाद उन्हें मिली फिल्मिस्तान की फिल्म आनंद मठ। फिल्म आनंद मठ का निर्देशन करते समय हेमेन गुप्ता ने कोलकाता से हेमंत कुमार को भी मुंबई बुला लिया। इस तरह से मुंबई में हेमंत कुमार की पहली फिल्म बनी सन 1952 में आई आनंद।

इसी फिल्म में हेमंत कुमार ने लता मंगेशकर की आवाज में रिकॉर्ड किया वंदे मातरम। आनंद मठ ने मुंबई में हेमंत कुमार के पैर जमा दिए। इसके बाद उन्होंने फिल्मिस्तान की फिल्म की

इसी दौरान बतौर प्लेबैक सिंगर हेमंत कुमार की ख्याति बढ़ती चली जा रही थी। देवानंद की फिल्म जाल में सचिन देव बर्मन ने हेमंत कुमार से ये गाना गवाया।

इसके बाद आई घर नंबर 44। फिर देवानंद के लिए हेमंत कुमार ने ये शरारती गीत गाया फिल्म 16 साल के लिए।

50 के दशक तक हेमंत कुमार एक प्रसिद्ध गायक और संगीतकार बन चुके थे। सन 1954 हेमंत कुमार के करियर की नई ऊंचाई फिल्म नागिन। फिल्म नागिन के सभी गाने बेहद लोकप्रिय हुए।

1955 में हेमंत कुमार को मिला सर्वश्रेष्ठ संगीतकार का पहला फिल्म फेयर पुरस्कार फिल्म नागिन के लिए। 1950 के दशक के आखिर में हेमंत कुमार ने अपना बैनर शुरू किया हेमंता बेला प्रोडक्शंस, और इस बैनर के तले उन्होंने बनाई फिल्म नील आकाशेर नीचे। ये फिल्म सन 1959 में आई थी और इसके निर्देशक थे मृणाल सेन। इस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार हासिल हुआ था। इसके तकरीबन 10 साल बाद हेमंत कुमार ने एक नया प्रोडक्शन हाउस खोला। इस बार उन्होंने नाम रखा गीतांजलि प्रोडक्शंस। हिंदी सिनेमा के इतिहास की कुछ बेमिसाल फिल्में दी गीतांजलि ने, जैसे 20 साल बाद, कोहरा, बीवी और मकान, फरार, राहगीर और खामोशी, जिसका गुलजार का लिखा ये गीत दिल की गहराई में उतर जाता है।

हेमंत कुमार के गाने सीधे दिल की गहराइयों में उतरते हैं। उनकी आवाज में एक गंभीरता है, दूसरी तरफ उनकी आवाज में एक शोखी भी नजर आती है। कुछ खास गानों में यूं लगता है जैसे कोई दार्शनिक नदी के किनारे अपना सुर छेड़ रहा हो।

आज भी हेमंत कुमार को सुनने वालों की कमी नहीं है। हेमंतदा की आवाज विविध भारती ही नहीं दुनिया भर के रेडियो चैनलों पर गूंजती है और लोग उनकी आवाज को याद करते हैं, उन्हें नमन करते हैं। हेमंत कुमार बतौर संगीतकार बड़े ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं। यहां हम आपके लिए लेकर आए हैं बतौर संगीतकार उनकी कुछ निराली रचनाएं।

0: फिल्म मिस मैरी साल 1957, किशोर कुमार का ये मजाहिया गाना।
1: गाना न आया, बजाना न आया, दिलबर

0: बनाना।
1: 26 सितंबर 1989, 69 साल की उम्र में कोलकाता में हेमंत कुमार मुखोपाध्याय ने आखिरी सांस ली। रह गई उनकी आवाज, उनका दिया हुआ संगीत और उनकी बनाई

0: आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था गायक, संगीतकार और निर्माता हेमंत कुमार पर। शोध, आलेख और स्वर यूनुस खान, संपादन और प्रस्तुति रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

अभी आप सुन रहे थे विविध भारती एफएम बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी का हिसार केंद्र है।

आपका इंतजार, आपका प्यार, और ये है आप सबका ख्वाब, आकाशवाणी हिसार, एफएम बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, पेशी खिदमत है कार्यक्रम व्हाट्सएप के बहाने फिल्मी तराने, और आज इस कार्यक्रम को लेकर हाजिर हूँ मैं आप सबकी मेजबान सारिका शर्मा। कबूल कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार।

दोस्तों, ऐसा नहीं है कि दिन नहीं निकलता या कभी रात नहीं होती, मगर सब कुछ बड़ा अधूरा सा लगता है जब तक आपसे हमारे दिल की बात नहीं होती। दोस्तों, हम जिन्हें चाहते हैं उनका ख्याल दिन में कई कई बार आता है, लेकिन जिनसे हम गुस्सा हो जाते हैं हमें उनका भी ख्याल आता है। बस फर्क इतना सा है कि प्यार हमारी रूह में बसता है और उसके होने या ना होने से हमें फर्क पड़ता है। और जब आप अपने इतने प्यारे प्यारे संदेशों के साथ हमें याद करते हैं और हमें ये जताते हैं कि आप हमारे कार्यक्रम बड़े दिल से बड़ी शिद्दत के साथ समय निकाल कर सुनते हैं, अपने नाम हमें भेजते हैं, तो हमें यकीन मानिए बहुत अच्छा लगता है। और हम भी ये सोचते हैं कि जब तक आपसे बात ना हो जाए तो वो दिन किस काम का। और सच है दोस्तों, पुकारोगे प्यार से हमें अगर तुम, तो हम भी दौड़े चले आएंगे। आपका दिल ही तो है हमारा आशियाना, इसे छोड़कर हम भी कहाँ जाएंगे। और शुरुआत करते हैं हमारे इन श्रोताओं के साथ।

और ये हमारे पहले श्रोता हैं गांव हिपर सोगा तहसील औसा जिला लातूर से उस्मान शेख फौजी, सारा बानु शेख, बाबा शेख, सिमर शेख और करिश्मा शेख। वंडिंग खेड़ा पंजाब से है मिंटू टॉमस, पिंकी लवली और आरती अरोड़ा। नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से है पीएस नवाकर, निर्मला विशाल, मलकापुर से नारायण इंगले, सोपान तायडे, आशीष मोहेरकर। जिला मुरादाबाद गांव दुल्हापुर यूपी से है मुकेश कश्यप, शीतल, सोनू, सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य सोनी, मोहिनी, ऋतिक और बलबीर सिंह। और ये हमारे श्रोता है खुर्सा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश चंदन और अंकुश अरोड़ा। अग्रोहा से है महेंद्र सिंह हुड्डा, दयावंती हुड्डा, नरेंद्र, अंकिता हुड्डा, सुमु और तानिया हुड्डा। जमशेदपुर झारखंड सुपाही साही गांव से है देवेंद्र तांती, राकेश, प्रकाश, निशा कुमारी, रेशमा, दीपाली कुमारी और देवेंद्र जी। लोकू कॉलोनी लोहारू हरियाणा से बिल्लू सिंह चिंडालिया, लक्ष्मी देवी, सुरेंद्र, बरखा, योगेंद्र, नरेंद्र और इनका परिवार।

गंज डिंडवारा से हैं आफताब अंसारी, रियाज अंसारी, मोहम्मद कैफ, अनवर मास्टर, लुबना अंसारी और आलिया अंसारी। और ये अगली फरमाइश हमें भेजी है, ग्राम पंचायत बठेना पाटन, जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से, बलकरण वर्मा, अंजनी ज्योति, यश प्रयाण, शिवम प्रहलाद और राजेंद्र वर्मा। और श्रोताओं, पेशी खिदमत है ये बहुत ही प्यारा सा गीत आप सबके लिए।

दोस्तों, जो इंसान दिल से लिखता है वो सच लिखता है, और सच बहुत भावुक करने वाला होता है क्योंकि वो इंसान खुद बहुत भावुक इंसान होता है। हाँ, वो जल्द नाराज हो जाता है, गुस्सा करता है, क्योंकि उसे और कुछ कहने का तरीका नहीं आता, क्योंकि वो दिल से बहुत भोला होता है, जैसे कि आप और हम। इसीलिए तो कहते हैं कि तेरी धड़कन से जिंदगी का रिश्ता है मेरा, तो जिंदगी का एक अहम हिस्सा है मेरा। ये मोहब्बत तुझसे सिर्फ लफ्जों की नहीं है, तेरी रूह से रूह तक का रिश्ता है मेरा। बिल्कुल श्रोताओं, आप ही की तरह, और ये हमारे श्रोता है गांव जेवरा हिसार से, वीरेंद्र भयान, सुरेंद्र शमशेर और मनोज भयान। और हमारे अगले श्रोता है संभाजी चौक सिडको न्यू नांदेड़ महाराष्ट्र से, सुधाकर गायकवाड़, विकास, प्रीति, आशा, दीपांजलि, दिशा बागमारे और शशांक बागमारे। सहारनपुर से हमारे श्रोता है आशा नारंग, सोनाली और सुरेश नारंग। अस्तुपुरा जिला मऊ से है मजहर अली अंसारी, रजिया बेगम, मोहम्मद सादिक। गाजीपुर से है आजाद अली अनवर, रिजवाना परवीन। फाजिलका पंजाब से भूषण खेड़ा, विशु लाड़ी खेड़ा, विशाल, शालिनी, टिवानशी खेड़ा और इनका पूरा परिवार। और ये हमारे श्रोता है गांव घमडिया सूरतगढ़ से, जगदीश ढुकिया, प्रमिला, ज्योति शिवम, सरिता सचिन, अमन तमन्ना, सायना, विष्णु, दोहती, ईवा, धनिया। एमएलबी रोड ग्वालियर से है सुरेश खुराना, पप्पी, किरण खुराना, लव्या अरब और एस के पप्पी। पांडरकवाड़ा से हैं अनिल बुरांडे, उषा बुरांडे, अनुश्री बुरांडे, धनुश्री। बलहा शहर से हैं सूरज लौंडे, प्राची, एकलव्य। आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से हमारे श्रोता हैं ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, मेराज जहां। आइए श्रोताओं, सुनते हैं आपकी पसंद पर ये प्यारा सा नगमा।

श्रोताओं, आप सब सुन रहे हैं व्हाट्सएप के बहाने फिल्मी तराने आकाशवाणी के हिसार केंद्र से एफएम बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज पर। और आज आप सबके साथ मैं हूं आपकी मेजबान सारिका शर्मा। दोस्तों, लोग भले ही हमारे नाम से हमें जानते हैं, लेकिन पहचानते वो हमें हमारे स्वभाव से हैं, और ये सबसे बड़ी हकीकत है जिंदगी की। जैसे अभी आप सबके व्हाट्सएप संदेश हमें मिल रहे हैं, तो आप जो लिखते हैं उससे पता चलता है कि आप दिल के कितने साफ हैं, कितने पाकीज़ा हैं और कितना प्यार करते हैं इस कार्यक्रम से। और यही तो वजह है कि जब आप हमें अपने संदेश नहीं भेजते हैं तो हम भी उदास हो जाते हैं, बिल्कुल इस तरह की, बहुत उदास है दिल तेरे चुप हो जाने से, हो सके तो बात कर किसी बहाने से, तो लाख खफा है पर इंतहा तो देख, कोई टूट गया है तेरे चुप हो जाने से। तो दोस्तों, हम और आप ऐसा कभी नहीं करेंगे। आप हमें संदेश भेजेंगे, अपने मनपसंद बात लिखेंगे, हम उसे जरूर शामिल करेंगे। ये हमारे श्रोता हैं लदावली जिला मुरादाबाद से अजीत कसाना, माया देवी, ऋतिक और आदित्य। पदमपुर जिला श्रीगंगानगर राजस्थान से मेहर अरोड़ा, ममता, कीर्ति और भूमिका अरोड़ा। पटियाली रोड गंजनवारा से हैं आमिर हुसैन, बेगम तैयबा शेख, फौजिया शेख, अहिल हुसैन अरहान और इनका परिवार। गांव जाखोद राजस्थान से शंभुदयाल खटक, विमला देवी, अमरजीत, सुंदरलाल, योगेश, दीपक और कुमारी पूजा खटक। मोहाली पंजाब से हैं बब्बल मल्होत्रा और ओम प्रकाश मल्होत्रा। छोटी बलिया मुंबई कर्जत से हैं अहमद भाई फूलवाले, दुखना सदर जूही इकबाल, इमरान अहमद फूलवाले। कापस हेड़ा बॉर्डर नई दिल्ली से आसमा नसरीन बागवान, आसमा परी राबिया और आशु अहमद फूलवाले। और ये हमारे श्रोता हैं जैन मंदिर वाली गली कुरावली से राशिद हुसैन अंसारी, नसरीन, नौरीन, आसना और मोहम्मद कैफ अंसारी। मोहल्ला हलवाइयान शेरकोट जिला बिजनौर से मोहम्मद वकार फरीदी, मोहम्मद इकबाल, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू भैया, साजदा रानी और हिना कौसर। मलियाना सदना मेरठ से हैं अनिल जैन, जैन साहिब संयम जैन, मुस्कान जैन और मास्टर जीवियम जैन। छत्रपति संभाजी नगर महाराष्ट्र से हैं अनिल कुमार घोड़के, वैशाली अनिल, प्राजक्ता घोड़के, वैष्णवी, गायत्री और योगेश घोड़के। भोपालगढ़ राजस्थान से हैं धर्मेंद्र छीपा, कपिल छीपा, ईशान और पूजा परिहार। रिंगनी छत्तीसगढ़ से हैं दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा। चंडीगढ़ सिटी से हैं सतीश अनेजा और बिमला अनेजा। मोहल्ला फतेहगढ़ लुधियाना पंजाब से विनोदपुरी, वीपी रंजू, अशोकपुरी, सुशील, बीकेपुरी, कैलाश, नीलम, रमा, पालीपुरी, सुनील पाठक, वीकेपुरी और विनोदपुरी। और श्रोताओं, आप सुनते हैं ये प्यारा सा गीत आप सबके लिए।

दोस्तों, हारे दिल तो उन्हीं को सुनाया जाता है जो सुनना चाहते हैं या जिनके पास दिल होता है, वरना अपना गम सबको बताना भी एक तमाशा लगता है। प्यार करना आसान है, उसको निभाना बहुत मुश्किल है। एक इंसान को पूरी शिद्दत से कबूल करना, उसकी कमी उसकी खूबियों के साथ उसके पहलू में खड़े होना, यही मोहब्बत है। वरना मोहब्बत नहीं, ये दिखावा है। कहते हैं कि कौन कहता है कि संवरने से मोहब्बत, या कहना चाहिए खूबसूरती बढ़ती है। यदि दिलों में चाहत हो तो चेहरे यूं भी निखर जाते हैं। और बिल्कुल जैसे कि आपके नामों को पढ़कर तो हमारे दिल यूं ही निखर जाते हैं। देखिए, हमारे श्रोता हैं जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम, विशाल, प्रिया दिशानी और निमित आहुजा। गंज डिंडवारा से नाजमा बेगम, यासीन, तैमूर और कलीम अंसारी। और ये हमारे श्रोता हैं कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय दुबिहा नेवादा जिला गाजीपुर से, प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी और प्रांजल राय। सांगली जिले के जत शहर से हैं अल्ताफ हुसरे, सैफुल्ला सबाहत, किरत हुजरे और रेहान शेख। महोबा बुंदेलखंड यूपी से हैं नरसिंह राजपूत, शत्रुघ्न सिंह, गौरव सिंह, जानवी राजपूत और दर्श राजपूत। दादरी गेट भिवानी से हमारे श्रोता हैं कृष्ण मेहरा, कोमल मेहरा, किरण, कपिल और कुणाल मेहरा। मनाली हिमाचल से हैं हर्ष, विनय, विनीत और रोजस। चंडीगढ़ से शेफाली, शेफी, डेविस, विमला और सतीश। पद्मा टॉकीज नेपानगर एमपी से हैं सुदर्शन शाह, पल्लवी, प्रखर, कुशल, नीति, सुरभि।

अश्विन बंगलाबेन और राजेंद्र जी शाह। गांव ठुइया जिला फतेहाबाद हरियाणा से गगन सोर दीपक राकेश और मैना देवी। मजनू कटीला से है कमल बालूजा मधु सागर बालूजा और सतना एमपी से उमंग मलिक आकांक्षा और माही मलिक। जनकपुरी सहारनपुर से है जॉन डिकेस्टो रोजी डिकेस्टो पाल और विलिस डिकेस्टो। और ये हमारे श्रोता हैं। सादुल शहर राजस्थान से रामकुमार रेवाड़ और चंद्रकला रेवाड़। और ये अगला हमें भेजा है संदेश दाऊद सराय सहारनपुर से अनवर साबरी शर्नो साबरी मुदस्सिर साबरी मुजक्किल और जरीफ अंसारी। बावड़ी गेट भिवानी से रोशन पचरेवाल उमेश योगेश कुलदीप उपेंद्र युवान बारा और इनका पूरा परिवार। और आप सबके लिए पेश खिदमत है ये बहुत प्यारा सा गीत।

जाना मुझे न बुलाना के मार कताना जमाना कल नहीं आना मुझे न बुलाना के मार कताना जमाना।

0: दोस्तों आप सुन रहे हैं व्हाट्सएप के बहाने फिल्मी तराने अपनी मेजबान सारिका शर्मा के साथ, और इस समय आप सुन रहे हैं एफएम बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का हिसार केंद्र। दोस्तों, प्यार किया नहीं जाता, ये हो जाता है और दिल भी खो जाता है। इश्क की राह पर चलना आसान नहीं होता। इश्क करने वालों को एक इंसान से ही नहीं इश्क होता, बल्कि उस इंसान की पसंद नापसंद, उसकी गली, उसके शहर, उसके हर अंदाज से प्यार हो जाता है, फिदा हो जाता है वो उस पर। तो फिर वही तो ये कह सकता है कि मुझे उनके शहर की हर सुबह शाम अच्छी लगती है, मुझे उनका हर अंदाज अच्छा लगता है। वो तो ये भी कहता है कि ये मत पूछो कि तुम कैसे लगते हो, तुम तो मेरी जान हो, सीधा दिल पे लगते हो। और ये भी हमारे श्रोता हैं जो हमेशा दिल से हमें अपने संदेश भेजते हैं। एकता कॉलोनी रोहतक से हैं सीताराम कांगड़ा, बबीता बोत, निखिल, तन्वी बोत और अंकित कांगड़ा। रेलवे कॉलोनी हनुमानगढ़ जंक्शन से हैं जगमाल सिंह डागला, हैप्पी डागला, जेएस नायक और शोभा नायक। और हमारे अगले श्रोता है किशोर नगर अमरावती से हीरामन शेंडे, शीला देवी और सिद्धार्थ गोंडाने। जिला मुरादाबाद गांव दुल्हापुर यूपी से है मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, इरफान, इसरार और नरगिस खातून। गांव कुम्हार खेड़ा सहारनपुर से है सैयद मसरूर, शायना हसन, अक्सा, नाजिया, आफिया, इब्राहिम, अद्दाम, सदाम और आदिब। गांव नथाना पंजाब से हैं हरजिंदर छिंदा, जसवीर जस्सी, सीता और गीता। और ये हमारे श्रोता हैं सादुल शहर से ओम प्रकाश चौहान, शिव प्रकाश, मनु प्रकाश और वेद प्रकाश चौहान। महाराष्ट्र हिंगोली से हैं शाहजी बोडके, नंदा बोडके और हनुमान बोडके। बठिंडा रोड डबवाली से राजेंद्र नारंग, अंजू और मोहित नारंग। और ये संदेश हमें भेजा है यादव मोहल्ला सनावद एमपी से दिलीप मालाकर, योगेश और सुनीता और मुस्कान मालाकर। आप सबके लिए हम चुन कर लाए हैं ये गीत।
1: पल भर के लिए कोई हमें

दोस्तों, हमारी और आपकी जिंदगी धूप छांव का खेल है, क्योंकि जीवन में सभी के दुखों का आना और दुखी हो जाना ये सब चलता रहता है। पर आप जानते हैं कि दुख का आना और दुखी हो जाना ये दो अलग बातें हैं। ऐसा कोई दुख बना ही नहीं जो बिना सुख के आए, और ऐसा कोई सुख नहीं बिना जो बिना दुख के आए। ये दोनों एक साथ ही आते हैं। इनकी समझ का नाम ही इनकी मुक्ति है। और एक शब्द है स्पेस, इसका सीधा अर्थ होता है कि जगह बनाइए। हमारी भावनाओं में, हमारे विचार में एक स्पेस रखिए। वो इसलिए दोस्तों कि जिंदगी

खुशी पाने के लिए इस स्पेस का होना बहुत जरूरी है, हमारी भावनाओं में, हमारे विचारों में स्पेस होना चाहिए और हमारी सोच में इतनी तब्दीली हमें करनी चाहिए कि हम हमेशा कुएं के मेंढक बनकर रहें, ये जरूरी नहीं, क्योंकि ऐसा होने पर हम किसी दूसरे के लिए बोझ बन सकते हैं। इसीलिए विचारों में ताजगी और खुलापन होना चाहिए, बंदिश नहीं होनी चाहिए। वो कहते हैं ना कि तकदीर में नहीं तेरी मोहब्बत, फिर भी मैं तुमको चाहूंगा, तुझे पाने को मैं तकदीर लिखने वाले से भी लड़ जाऊंगा। और ये बातें केवल बातें नहीं होती हैं, लेकिन दोस्तों जो आप हमें लिखकर भेजते हैं वो दिल से लिखकर भेजते हैं, वो भी सबसे असरदार होता है। ये हमारे श्रोता है रघुनाथ परा, जिला श्री गंगानगर, राजस्थान से, लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हिना, हर्षित और खुशी गोस्वामी, गांव लोहगढ़ ठाकुरा वाला से है स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजदीप सिंह, गुरनूर सिंह, गुरलाल सिंह और अविराज सिंह, गांव व डाकघर निम्नाबाई, जिला जींद, हरियाणा से जसबीर सिंह अरोड़ा, जतिंदर कौर, गुरुप्रीत सिंह, लवप्रीत कौर और करमजीत कौर, गांधी चौक बाड़मेर, राजस्थान से बबलेश पवार, डैनी पवार, मनीष पवार, राम देवरा से हैं दिनेश चौहान, डांगरी से बाबूराम जयपाल, खलीफों की बावड़ी से खुदा बख्श खलीफा। और ये हमारे श्रोता हैं आर्य नगर कोहका भिलाई छत्तीसगढ़ से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल, आप सबके लिए पेशे खिदमत है ये बहुत प्यारा सा गीत।

दोस्तों, अक्सर हम जब किसी की परख करते हैं तो उसे परखते परखते हम कई बार उसे खो देते हैं। पता है क्यों? क्योंकि उसकी वजह से हमें उसकी सच्चाई पता चल जाती है। और ये तो जिंदगी इंसान की होती है, क्योंकि इंसान हमें वक्त पड़ने पर ही अपनी असली औकात दिखाता है। और उसके बारे में जब हमें पता चलता है तो हमें कभी भी उदास नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये वक्त फिर लौट कर आता है, इतिहास फिर अपने आप को जरूर दोहराता है, क्योंकि जिंदगी का यही उसूल है कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। और इतिहास जब हमेशा अपने आप को दोहराता है तो कोई बच कहाँ पाता है। इसीलिए तो कहते हैं कि मासूम लोग जो होते हैं, जो आप जैसे और हम जैसे होते हैं, उनके लबों पर हमेशा मोहब्बत का सरमाया रहता है। इश्क तुझसे मेरे यार रहने दे, दिल की तड़प बेशुमार रहने दे, आज आज बस चाहत की बात कर। आगे वक्त के लिए ये तकरार अब रहने दे। दोस्तों, आप सब हमें लगातार अपने संदेश भेज रहे हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है जब आप हमें याद करते हैं। और ये हमारे श्रोता हैं, श्रोताओं आप दोबारा से अपने नाम भेजते हैं, आपसे रिक्वेस्ट है कि फिर से अपने नाम नहीं भेजिए, क्योंकि एक ही कार्यक्रम में आपका नाम एक बार शामिल हो चुका है। अगर हम दोबारा आपका नाम लेते हैं तो किसी और का नाम खो जाएगा। गांव फ्रांसी हिसार से हैं राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार, पुष्पेंद्र कुमार डूडी। चौटाला हरियाणा से दारा पंडित, संजय शर्मा और प्रियंका शर्मा। और ये हमारे श्रोता हैं जो फिर से हमें अपने नाम भेज रहे हैं। तो गांव उगाला, जिला अंबाला, हरियाणा से हमारे श्रोता हैं राजेंद्र कुमार, बलकीत कौर, आरती रानी, राघव, हरमन और इनके परिवार के सभी सदस्य। रिंगनी से हैं जानवी शर्मा, प्रियंका शर्मा। भिलाई से हैं बेगम अनुश्री वली, प्रमिला वली, कापस हिड़ा, छोटी बलिया से असमान सारी, जूही परियंसारी, उमरखेड़ से सिराज खान और मिराज खान। खंडवा से हैं दुर्गा प्रसाद सैनी, अनीता, गौरव, ईशान, कार्तिक सैनी, ठाकुर भवानी सिंह बैंस, रिया रोहन, अंगद ठाकुर। जामोद से हैं अमोल मानकर, शोभा मानकर और दीपाली श्लोक मानकर। हमारे अगले श्रोता हैं गांव पनिहार चक हिसार से विनोद टेलर, साहिल दहिया, कोमल, कृष्णा, ममता, कान्हा लड्डू, आरती और ज्योति। ग्राम नागर कोहरा, जिला राजनांद गांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जामुन देवी साहू, प्रेम पूजा, दुष्यंत प्रांजल, समीक्षा बेबी, आराध्या साहू। तेलंगाना भोंगिर से फजान लल्ला, फरहान लल्ला, मोहम्मद बुरहानुद्दीन, समायरा, आजमीन और गुड़िया। किशनगंज बिहार से रविंद्र मोहनदास, आशा देवी, राघव कुमार, भानुप्रिया, बरखा सुमन, देवश्री, मेघराशि, कीर्ति और भारती। सरगुजा मीनपाट से है रुबीना थापा, सोनम, फातिमा, रेशमा थापा, आदिबा और आसमा थापा। सुराना मोहल्ला बीकानेर से नरेंद्र सुराना, कांतिलाल, शरद, मयंक और विमल अभाणी। शिव मंदिर हकीकतपुरा मऊ से मुन्ना भाई स्वर्णकार, पिंकी स्वर्णकार, आर्यन, कृष्णा और पीहू। आइए श्रोताओं, आपके लिए सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

0: मैं माँ बनने वाली हूँ, बस यही चाहती हूँ कि मेरा बच्चा स्वस्थ हो।
1: स्वस्थ बच्चे के लिए गर्भावस्था में HIV और सिफिलिस की जांच करवाना बहुत जरूरी है।
2: क्या ये जांच उपलब्ध है?
3: जी हाँ, सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में HIV और सिफिलिस की जांच तथा उपचार निःशुल्क उपलब्ध है। समय पर जांच और उपचार से माँ और बच्चे दोनों को सुरक्षित रखा जा सकता है।
4: याद रखें, HIV और सिफिलिस का समय पर पता लगने से संक्रमण को बच्चे तक पहुँचने से रोका जा सकता है।
5: श्रोताओं, संदेश से पहले आप सुन रहे थे व्हाट्सएप के बहाने फिल्मी तराने अपनी मेजबान सारिका शर्मा के साथ। ये आकाशवाणी हिसार है FM बैंड 102.3 MHz पर। आइए अब हिंदी समाचारों के लिए आपको लिए चलते हैं आकाशवाणी दिल्ली।

0: नई समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज फ्रांस के एविया में G7 शिखर सम्मेलन के एक उच्च स्तरीय कार्य सत्र को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि बदलती वैश्विक परिस्थितियों में अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी के लिए विश्वास सबसे महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत हमेशा मानवता पहले के सिद्धांत पर चलता है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, मिशन लाइफ और एक पेड़ माँ के नाम जैसे भारत के प्रयासों का उल्लेख किया। श्री मोदी ने कहा कि भारत की सोच वसुधैव कुटुंबकम यानी विश्व एक परिवार है पर आधारित है। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक आपदाओं के समय भारत हमेशा जरूरतमंद देशों की सहायता के लिए आगे रहा है। प्रधानमंत्री ने वैश्विक शांति और स्थिरता के लिए संवाद, कूटनीति तथा अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के सम्मान पर जोर दिया। शिखर सम्मेलन में भाग लेने के अलावा प्रधानमंत्री मोदी का व्यस्त राजनयिक कार्यक्रम भी है। वो कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। आज रात वे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों द्वारा आयोजित भव्य रात्रि भोज में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी की कल अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात होगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के भारत फ्रांस नवाचार वर्ष के साझा दृष्टिकोण ने भारत इनोवेट्स की आधारशिला रखी, जो भविष्य के लिए एक परिवर्तनकारी मंच बन गया है। श्री गोयल ने ये बात फ्रांस के नीस में भारत इनोवेट्स के समापन समारोह में कही। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में उच्च स्तरीय कृषि समीक्षा बैठक में चालू खरीफ सीजन के लिए देश भर में की गई तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में उन्होंने कपास उत्पादन बढ़ाने, दालों में आत्मनिर्भरता हासिल करने और कम वर्षा वाले जिलों के लिए अग्रिम आकस्मिक योजनाओं पर विशेष बल दिया। श्री चौहान ने कहा कि विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण VBG रामजी की 1 जुलाई को आंध्र प्रदेश में राष्ट्रीय स्तर पर शुरुआत होगी। श्री चौहान ने आज नई दिल्ली में आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण के साथ हुई बैठक के दौरान ये बात कही। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने घोषणा की है कि ऐतिहासिक ईस्टर्न फ्रंटियर राइफल्स का शीघ्र ही पुनरुद्धार किया जाएगा और 1000 से अधिक गोरखा युवाओं को राज्य पुलिस बल में भर्ती किया जाएगा। दार्जिलिंग जिले के कुर्सियोंग में एक जनसभा को संबोधित करते हुए श्री अधिकारी ने घोषणा की कि राज्य पुलिस बल में भर्ती शीघ्र ही खोली जाएगी, जिससे बड़ी संख्या में गोरखा युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। उन्होंने कहा कि राज्य भर्ती में कम से कम 30% सीट महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र पुलिस की कानून प्रवर्तन क्षमताओं को बढ़ाने और उभरती सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए 733 करोड़ रुपए से अधिक की आधुनिकीकरण योजना को मंजूरी दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि ये परियोजना संयुक्त वित्त पोषण मॉडल के माध्यम से लागू की जाएगी। इसमें केंद्र सरकार कुल लागत का 60% और राज्य सरकार 40% वहन करेगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने नीट परीक्षा से पहले अभिभावकों और उम्मीदवारों को जालसाजों से सावधान रहने का आग्रह किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में एनटीए ने कहा कि टेलीग्राम चैनल के माध्यम से जालसाज पुनर्परीक्षा का प्रश्न पत्र साझा करने का दावा करके रुपयों की मांग कर रहे हैं। एनटीए ने स्पष्ट किया है कि पुनर्परीक्षा का कोई प्रश्न पत्र लीक नहीं हुआ है। स्विट्जरलैंड के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि अमेरिका और ईरान के बीच समझौते पर हस्ताक्षर शुक्रवार को लुसेन शहर के पास स्थित बर्गेनस्टॉक रिजॉर्ट में किए जाएंगे। मंत्रालय ने कहा कि वो दोनों देशों के साथ इस संभावित समझौते पर हस्ताक्षर के संबंध में लगातार संपर्क में है, जिसकी घोषणा अमरीकी और ईरानी अधिकारियों ने सप्ताहांत में की थी। मौसम विभाग ने कल पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र और सिक्किम में तेज वर्षा के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी।

0: हम आकाशवाणी के हिसार केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज पर। आइए श्रोताओं, अब विशेष कार्यक्रम के लिए आपको लिए चलते हैं आकाशवाणी दिल्ली प्रतीक्षा की बस चंदपल। और
1: मंत्री भूपेंद्र यादव के साथ विशेष साक्षात्कार, साक्षात्कार कर रही हैं अनुभा रोहतगी।
2: नमस्कार। वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार देश के नेतृत्व की जिम्मेदारी संभाली थी। तब से अब तक इन 12 सालों में भारत में कई बड़े बदलाव हुए हैं और हर क्षेत्र में अनगिनत उपलब्धियां हासिल की गई हैं। आकाशवाणी की इस विशेष श्रृंखला 12 साल विश्वास के जनकल्याण के में आज हम पर्यावरण के क्षेत्र में हुई उपलब्धियों के बारे में बात कर रहे हैं और ये हमारा सौभाग्य है कि इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हैं केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव। मंत्री जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
3: धन्यवाद।
2: भूपेंद्र जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने हाल ही में 12 वर्ष पूरे किए हैं। इस पूरी यात्रा में, इन 12 सालों में आप किन बदलावों को सबसे ज्यादा परिवर्तनकारी मानते हैं जिन्होंने भारत में गुड गवर्नेंस की एक नई परिभाषा गढ़ी है?
3: आपने जो शुरुआत में दो शब्द कहे थे
2: जी,
3: विश्वास और जनकल्याण
2: जी,
3: मुझे लगता है 12 साल की कहानी विश्वास और जनकल्याण की है। विश्वास इस बात का कि सरकार ऊपर से जो 100 रुपये भेजेगी वो जनधन खाते में पूरा 100 रुपया जाएगा, ये पहली बार हुआ है। वरना खुद देश के प्रधानमंत्री कहा करते थे कि हम 100 रुपया भेजते हैं 85 रुपया गायब हो जाता है। विश्वास इस बात का कि सरकार जिस प्रोजेक्ट का शिलान्यास करेगी उसका उद्घाटन भी यही सरकार करेगी। 12 साल पहले जब प्रधानमंत्री जी आए और उन्होंने एक प्रगति नाम का कार्य शुरू किया तो कई सौ समय से पड़े हुए प्रोजेक्ट नहीं पूरे हुए
2: जी।
3: मध्य प्रदेश बुंदेलखंड में केन बेतवा प्रधानमंत्री जी के समय में पूरा हुआ, राजस्थान में ERCP प्रधानमंत्री जी के समय में प्रारंभ हुआ, या आपके ऊपर पुल बनाने का विषय हो या गुवाहाटी के पुल बनाने का विषय हो। तो दूसरा विश्वास कि सरकार जिसका उद्घाटन करेगी उसको जनता को समर्पित भी करेगी। तीसरा जो लोगों का विश्वास है कि भारत का आत्मसम्मान और गौरव दुनिया में बड़ा है। फिर ऐसा जब अच्छा समय होता है तो आपकी परीक्षा भी ली जाती है।
2: बिल्कुल।
3: तो दुनिया में जब कोरोना की महामारी का संकट आया तो इस बात का विश्वास कि हम अपनी दवाई भी खुद ढूंढ सकते हैं और अपना रास्ता भी खुद तय कर सकते हैं। फिर भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बनी तो इस बात का विश्वास कि हम जिस रास्ते पे चले हैं वह रास्ता विकसित भारत की ओर जा रहा है। और दूसरा जो शब्द आपने कल्याण कहा था, कल्याण
2: जी,
3: गरीब कल्याण, 25 करोड़ से ज्यादा लोगों को गरीबी के खाते से निकाला, 80 करोड़ लोगों को समय पर राशन पहुंचाने का काम किया, किसानों को सम्मान निधि देने का काम किया। और कल्याण के इस कार्य में जो कभी लोहिया जी 60 के दशक में कहा करते थे कि पानी और पखाना, ये भारत के महिलाओं की इतनी बड़ी त्रासदी रही है कि उनको मीलों दूर से पानी लाना पड़ता है और अपनी इज्जत को बचाने के लिए अपने नेचुरल क्रिया को रोकना पड़ता है, घर घर शौचालय बनाने जैसा छोटा लेकिन एक लंबा कार्य, और जल जीवन मिशन को पहुंचाना। और इसलिए विश्वास और जनकल्याण ये 12 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व और सफलता को बता रहा है।
2: भूपेंद्र जी, जलवायु संरक्षण के प्रयास के क्षेत्र में भारत एक बहुत बड़ी वैश्विक आवाज बनकर उभरा है, प्रधानमंत्री मोदी खुद भी इसके बहुत बड़े पक्षधर हैं, तो आपके मुताबिक भारत ने विकास की अपनी जरूरतों और पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारी के बीच संतुलन कैसे बनाया है?
3: विषय यह उठता है कि हम वैश्विक आवाज किसकी बने? हम वैश्विक आवाज ग्लोबल साउथ की बने
2: जी।
3: तो जलवायु परिवर्तन के संकट की असमानता और असंतुलन क्या है? जलवायु परिवर्तन संकट की असमानता ये है कि जो विकसित देश हैं उन्होंने अपने स्पेस से ज्यादा धरती का कार्बन स्पेस घेरा हुआ है, और आज अगर वो पर्यावरणीय विषयों में विकासशील देशों को कुछ निर्देशित करना चाहते हैं तो पहले उनको जो उनका हिस्टोरिकल रॉन्ग है वो देना पड़ेगा
2: जी।
3: और भारत ने इसलिए अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में ग्लोबल साउथ की आवाज को प्रखरता के साथ उठाया है, लेकिन हमने ग्लोबल साउथ की आवाज को केवल लड़ने के लिए नहीं उठाया। प्रधानमंत्री जी हमेशा हमें निर्देशित करते हैं कि भारत दुनिया की जलवायु परिवर्तन वार्ताओं में समाधान का मार्ग प्रशस्त करे, समस्या ना बने
2: जी।
3: और इसलिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्लाइमेट एक्शन प्रोग्राम, चाहे

0: कोलेशन फॉर डिजास्टर रेजिलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर जो है अकाल, सूखे और बाढ़ के कारण होने वाले दुष्परिणामों के कारण दुनिया में कैपेसिटी बिल्डिंग और नॉलेज शेयरिंग का विषय है, चाहे इंटरनेशनल सोलर अलायंस एक वैकल्पिक ऊर्जा जिसको नवकरणीय ऊर्जा कहते हैं उसका विषय हो, चाहे जो कार्बन एमिशन जिन इंडस्ट्रीज से निकलता है उनके ट्रांसफॉर्मेशन के लिए लीडरशिप फॉर इंडस्ट्रियल ट्रांसफॉर्मेशन जैसा विषय हो, और चाहे बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस जैसा विषय हो, तो भारत ने दुनिया में ग्लोबल साउथ की आवाज बनकर के उनके हकों की बात करी है, क्लाइमेट एक्शन प्रोग्राम का हिस्सा बनकर और उसका नेतृत्व करके समाधान, नॉलेज शेयरिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग का विषय अपनाया है, और मिशन लाइफ और एक पेड़ मां के नाम जैसे अभियान चलाकर ये समस्या हम सबकी समस्या है और अपनी अंतरचेतना को जगाकर अपना व्यक्तिगत योगदान क्या दे सकते हैं उसमें एक बड़ी भूमिका प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में निभाने का कार्य किया है।
1: आपने अभी जो कुछ पॉइंट्स कहे हैं, बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन की बात की, आपने नेट जीरो एमिशंस की बात की, इन पर एक एक करके हम चर्चा करेंगे, पर उससे पहले मेरा आपसे एक सवाल है कि प्रदूषण आज एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है, खासकर की दिल्ली जैसे महानगरों में, और ये जो है वो हमारे पर्यावरण पर बहुत इसका बुरा असर पड़ रहा है। सरकार अपनी तरफ से इसके लिए कई प्रयास कर रही है, जैसे भी हमने हाल ही में देखा कि यूनियन कैबिनेट ने दिल्ली एनसीआर में पुराने ट्रकों और बसों को फेज आउट करने के लिए एक स्कीम जो है अप्रूव की है, साथ ही इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ईवीज को बहुत बड़े पैमाने पर प्रमोट किया जा रहा है, आप खुद भी ईवी में ट्रैवल करते हैं, तो इन प्रयासों को आप कैसे देखते हैं?
0: नहीं, ये सकारात्मक प्रयास है, जनसंख्या के बढ़ते हुए दबाव, भौगोलिक परिस्थिति के कारण पर्टिकुलर समय में दिल्ली में वातावरण में प्रदूषण फैलता है जी। अभी तो आपको अच्छा लगा होगा कि मई तो हमारा क्लीनेस डे रहा है, अखबारों में भी आया है, लेकिन जहां पर मनुष्य आधारित गतिविधियां होती हैं वहां PM 2.5 और PM 10, ये दो जो तत्व है, मतलब PM 2.5 में कार्बन, ओजोन, बाकी जो गैसेस निकलती हैं उद्योगों से, व्हीकल से, और PM 10 में जो डस्ट पार्टिकल होते हैं उसके कारण ये प्रदूषण फैलता है। और जब मौसम में ऐसी स्थिति आती है, विशेष रूप से दिल्ली में जब हवाएं चलनी बंद होती है और सर्दी होती है, और सर्दी भी हो हवा भी ना चले, तो वो जो वायु में जो तत्व है इसको एयर पार्टिकल कहते हैं, वो जम जाता है, और जमने के कारण वो एक वातावरण का जो AQI है उसको खराब करता है। तो इसका उपाय विभिन्न क्षेत्रों में है, व्हीकल पॉल्यूशन के स्तर पर क्लीन और फ्यूल की बात कही गई है, पुराने व्हीकल्स को समाप्त किया गया है, स्मार्ट ट्रैफिकिंग की ओर सरकार का ध्यान गया है, दिल्ली से कमर्शियल व्हीकल के लिए ईस्टर्न और वेस्टर्न पैरेलल एक हाईवे बना करके बड़ा ट्रैफिक वहां से निकालने की बात की गई है, मेट्रो का विस्तार करके सार्वजनिक परिवहन को मजबूत करने का काम किया गया है, इंडस्ट्री के मॉनिटरिंग के लिए हर इंडस्ट्री में OCM लगाने की बात की गई है, और उसके साथ ही साथ जो ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो अनधिकृत क्षेत्र में है उनको सख्ती से बंद करने की बात की गई है, उसके साथ ही दिल्ली के ग्रीनिंग के अभियान को चलाया गया है, डस्ट के लिए जो मैकेनाइज मशीन की जो सफाई है उसके लिए लगभग 100 से ज्यादा मशीनें मंगाई गई हैं, फिर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का काम किया है, फिर आर्टिकल जो P10 है इसका बड़ा कारण डस्ट है, तो कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलिशन के लिए साइट्स को बनाने का काम किया गया है। इन सारे विषयों को करते हुए आज शाम को ही कृषि मंत्रालय में हमारी बैठक है कि पराली के बारे में अभी से प्रबंधन के विषयों के लिए बाकी राज्यों से बात करने की बात की गई है। दिल्ली के आसपास जो कॉरपोरेशंस हैं, चाहे गाजियाबाद हो, नोएडा हो, फरीदाबाद हो, सोनीपत हो, मानेसर हो, गुड़गावा हो या फिर अलवर हो, वहां के जो हमारे कॉरपोरेशंस हैं उनको अपना एडवांस में प्लानिंग बनाने को कहा है, व्हीकल पॉल्यूशन, इंडस्ट्री पॉल्यूशन, डस्ट कंट्रोल, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, इन सब विषयों में एक अच्छे तरीके की नीति बनाने की बात की गई है, और पब्लिक के सहयोग के लिए भी इस कार्य को आगे बढ़ाया जा रहा है
1: जी। प्रधानमंत्री का एक संकल्प है भारत को विकसित भारत बनाना 2047 तक, इस विजन में सतत विकास यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक महत्वपूर्ण पिलर है, तो भारत को विकसित भारत बनाने की दिशा में आपकी मिनिस्ट्री यानी कि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मिनिस्ट्री जो है, मैं कहूंगी कि सबसे अहम है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे?
0: सबसे पहले तो सतत विकास का अर्थ है कि विकास की धारा निरंतर चलती रहे, इसमें इम्बैलेंस ना है, कंटिन्यूटी।

0: प्योर कंसिस्टेंसी रहे। लेकिन हम धरती से जो संसाधन निकालते हैं उन संसाधनों का हमें वापस से पुनः उपयोग करना चाहिए, इसलिए हमारा मंत्रालय जो है सर्कुलर इकोनॉमी पे बल देता है। सर्कुलर इकोनॉमी में चाहे आपका इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट से निकलने वाला पदार्थ हो, चाहे यूज्ड ऑयल से निकलने वाला पदार्थ हो, चाहे फ्लाई ऐश जो होती हैं उनके साथ बेकार फ्लाई ऐश का विषय हो, और ऐसे अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्र जो कि हम पहले क्या करते थे, मेक टेक एंड वेस्ट, वो क्या करते थे। अब जो सर्कुलर इकोनॉमी है वो एक नए कंसेप्ट को लेकर चलती है, रिसाइकल रीयूज एंड रिप्रोड्यूस, है ना। तो उसके लिए रेगुलेशन के लिए हमारे मंत्रालय ने रेगुलेटरी मिनिस्ट्री के नाते सारे रूल्स के फ्रेमिंग करने का काम किया। दूसरा, जो एक लंबे समय से इंडस्ट्री में बात की जा रही थी कि भाई आप इंडस्ट्री चला रहे हैं, आपकी मॉनिटरिंग कौन करेगा, तो जैसे आपको अपना अकाउंट्स का ऑडिट देना पड़ता है, अब एनवायरमेंट ऑडिट की भी बात करी है और उनके ऑडिटर वो ऑडिट देंगे, ताकि हम जैसे आजकल रोज सुबह उठकर अपना इंसुलिन नाप लेते हैं ना कि हमारा आज कितना इंसुलिन है, हमारा आज कितना बीपी है, तो ये जो पर्यावरण का प्रदूषण भी एक किस्म का डायबिटीज ही है, इसके लिए अपना आपको एनवायरमेंट ऑडिट कराना चाहिए। और हमारे मंत्रालय ने रिफॉर्म्स के मानकों को काफी सरल करने का काम किया है, ताकि लोग नियम कठिन होने के कारण नियम को तोड़ते हैं। नियम जब सरल होते हैं और कॉन्शियसनेस होती है, उसके प्रति अवेयरनेस होती है, तो लोग उसको अपनाने का काम करते हैं। तो सर्कुलर इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी का उपयोग, बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन, देश के इको सेंसिटिव जोन का संवर्धन, देश में जो एंडेंजर्ड स्पीशीज है उनका प्रोटेक्शन, एक पेड़ माँ के नाम अभियान चलाकर धरती को हरा भरा बनाने का विषय, उसमें पब्लिक पार्टिसिपेशन और कॉरपोरेट पार्टिसिपेशन को लेने के लिए ग्रीन क्रेडिट फंड जैसा प्रोग्राम, कैंपा के माध्यम से ग्रीन इंडिया मिशन पे कार्य, बायोडायवर्सिटी संरक्षण के लिए गांव गांव में बायोडायवर्सिटी रजिस्टर बनाने का कार्य, इन सब विषयों को लेकर के हम कार्य कर रहे हैं।
1: शुरू में आपने बात की इंटरनेशनल सोलर अलायंस की, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2015 में फ्रांस के साथ मिलकर इसकी शुरुआत की थी और ये आज दुनिया की सबसे बड़ी क्लाइमेट इनिशिएटिव्स में से एक है। तो वैश्विक जलवायु संरक्षण के प्रयास और भारत की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा को मजबूत करने में इस तरह के पहल के बारे में आप क्या कहेंगे?
0: ऐसा है कि दुनिया भर में ये कहा जाता है कि भाई आप दुनिया में अगर आपको कार्बन एमिशन कम करना है तो आपको फॉसिल फ्यूल जो है वो कम उपयोग करना पड़ेगा। भारत ने जो अपने एनडीसी टारगेट दिए थे उसमें हमने कहा था कि हमारी जो ऊर्जा की कैपेसिटी है उसका 50% हम रिन्यूएबल एनर्जी से प्राप्त करेंगे, और रिन्यूएबल एनर्जी से हमने ये प्राप्त करने के लिए सोलर के क्षेत्र को हमने आगे बढ़ाने का काम किया। भारत ने सोलर के क्षेत्र में अपने 53% जो है ग्रोथ किया है। मैं जब G20 में केपटाउन में गया था तो UNFCCC के माध्यम से एक प्रेजेंटेशन किया गया था जिसमें उन्होंने कहा था कि पेरिस एग्रीमेंट के 10 साल बाद दुनिया में कहां पर नया और अच्छा नवाचार हुआ, और उसमें भारत की इस बात की प्रशंसा की गई कि भारत ने दुनिया को सोलर क्षेत्र में अपनी उपलब्धि से बताया है कि जिसको रिन्यूएबल एनर्जी या नवीनकरणीय ऊर्जा कहते हैं उसमें भारत ने अच्छा कार्य किया है। और अभी तो जो इरना की जो रिपोर्ट आई है इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी की, वो भी ये बताता है कि भारत दूसरे नंबर पे पहुंचा है। तो हम भी मानते हैं कि कार्बन एमिशन कम होना चाहिए, रिन्यूएबल के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहिए, और इसलिए जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाया है जिसका अब तो हेडक्वार्टर भी गुड़गांव है। एक समय होता था कि अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के हेडक्वार्टर हमें दुनिया के दूसरे देशों में दिखते थे। 12 साल में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उपलब्धि हुई है तो इस प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन और उनके हेडक्वार्टर भी अब भारत में बनने लगे हैं। और रिन्यूएबल के क्षेत्र में भारत ने विशेष रूप से सोलर के क्षेत्र में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 12 साल में एक अच्छे मुकाम को हासिल किया है।
1: अगले सवाल के लिए मैं आपसे कुछ आंकड़े शेयर करना चाहूंगी कि इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक देश में फॉरेस्ट और ट्री कवर यानी कि वन क्षेत्र और वृक्षों का दायरा बढ़कर कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 25.17% हो गया है और पिछली रिपोर्ट की तुलना में इसमें लगभग 1425 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है, और साथ ही फॉरेस्ट कार्बन स्टॉक जो है उसमें भी 8 करोड़ 10 लाख टन से अधिक की बढ़ोतरी हुई है। बहुत बड़े बड़े आंकड़े हैं, लेकिन अगर हम इसको समग्र रूप में देखें और अगर हम पर्यावरण की सुरक्षा और के रूप में देखें, तो इन उपलब्धियों के पीछे आप कौन सी प्रमुख नीतियों और पहल की बात मानते हैं कि कौन सी पहल और उपलब्धियां रही हैं?
0: ऐसा है कि सतत विकास के साथ समग्र

0: काज भी होना चाहिए
1: जी।
0: और नेचर का ये नियम होता है कि जहां प्योरेस्ट नेचर होती है वहां पर जो अपेक्स प्रेडेटर है वो सर्वाइव करते हैं।
1: जी।
0: नेचर जो है उसमें जैसे एक छोटा माइक्रो जो स्पीशीज है उससे लेकर और जो अपेक्स प्रेडेटर है, तो इसमें 7 बिग कैट्स हैं। तो भारत ने पिछले 12 साल

0: प्रोडक्शन किया है। तो हमने ये जो फॉरेस्ट कवर बढ़ा है, ये इस बात को दर्शाता है कि हमने अपने यहाँ ये अभियान चला करके वो नेचर के बैलेंस को बनाने का काम किया है। यही कारण है कि आप ये देखोगे कि 2014 के पहले कांग्रेस के समय में ये इको सेंसिटिव जोन का नोटिफिकेशन ही नहीं करते थे, पड़ा रहता था मामला। अभी अगर 2014 से और 2026 12 साल में देखेंगे तो उनकी संख्या बढ़कर 391 हो गई है, प्रोटेक्शन एरियाज की संख्या बढ़कर 509 हो गई है, जो टाइगर रिजर्व्स हैं उनकी संख्या 47 थी वो बढ़कर के 58 हो गई है, जो एलिफेंट रिजर्व है उनकी संख्या बढ़कर के 33 हो गई है, जो हमारी एंडेंजर्ड स्पीशीज हैं चाहे एलिफेंट हो, टाइगर हो, लॉयन हो, डॉल्फिन हो, पहली बार डॉल्फिन का एस्टीमेशन किया गया, मोर देन 6500 डॉल्फिन का हमने एस्टीमेशन किया है, उसके साथ ही साथ घड़ियाल हो, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड हो, तो ये सारी एंडेंजर्ड स्पीशीज को बचाने का, इनके प्रोटेक्शन का, प्रिजर्वेशन का काम हम लोग कर रहे हैं। लेकिन उसके साथ ही साथ जो हमारी लोकल ट्राइब्स हैं उनके जो राइट्स हैं उसके लिए भी हम पूरी तरीके से काम कर रहे हैं। मोदी जी के नेतृत्व में सबसे ज्यादा फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत पट्टों के वितरण का कार्य किया गया है। ये इस बात को पूरी तरीके से दर्शाने का काम करते हैं कि हम अपने इकोलॉजी के क्षेत्र को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं।
1: आपने डॉल्फिन्स की बात की तो नमामि गंगे मिशन की बात करना जाहिर हो जाता है। तो जब नमामि गंगे कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी तो उसका मकसद था गंगा को स्वच्छ करना, लेकिन समय के साथ ये बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन के एक बहुत बड़े और अहम मॉडल के रूप में उभरा है। हाल ही में अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में भी इसका मेंशन किया था। उन्होंने कहा कि नमामि गंगे मिशन के तहत देश की पहली डॉल्फिन रेस्क्यू एम्बुलेंस द्वारा एक गंगा डॉल्फिन के सफल बचाव किया गया, और उन्होंने इसे आशा की किरण बताया और कहा कि गंगा डॉल्फिन की रक्षा गंगा के पूरे इकोसिस्टम की रक्षा है। तो नदी की स्वच्छता से लेकर उसके बायोडायवर्सिटी और इकोसिस्टम के संरक्षण तक की इस यात्रा के बारे में आप क्या कहेंगे, और नमामि गंगे मिशन की सफलता को आप किस तरह देखते हैं, कितनी इम्पोर्टेंट है ये?
0: देखिए, सरकार ने तो अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट भी फाइल किया है कि जो गंगा का जो अपर एरिया है जहां ओरिजिनल गंगा बनने की शुरुआत होती है उनकी ट्रिब्यूटरी पे अब कोई फर्दर और कंस्ट्रक्शन नहीं होगा। हम ये मानते हैं कि गंगा की सेंटिटी, गंगा के जल की शुद्धता, ये तो हमारा लक्ष्य रहा ही है, और इसलिए नमामि गंगे मिशन को आगे बढ़ाने के लिए सरकार पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। और प्रोजेक्ट डॉल्फिन को भी हम इसीलिए चला रहे हैं क्योंकि जैसे मैंने कहा ना कि धरती पे भी अपेक्स प्रेडेटर तभी रहता है जब बाकी जो माइक्रो से लेकर के और मैक्रो सब सारा जो सिस्टम नेचर का सुरक्षित होता है, सेम डॉल्फिन के बारे में भी है। और इसलिए हमने डॉल्फिन मित्र बनाने का भी काम किया। सबसे बड़ी बात है कि हमारा जो एक संस्थान है ICFR, उसने अभी एक पिछले तीन चार साल से एक रिपोर्ट पे हम काम कर रहे हैं कि हमारे नदियों के किनारे जो पेड़ लगाने के विषय हैं उस पर उन्होंने एक पूरी DPR तैयार करी है, और हम नदियों के किनारे भी वृक्षों के संरक्षण को लेकर के काम कर रहे हैं। मैं कुछ दिनों पहले जो पीलीभीत से ऊपर एक जगह है कतरनिया घाट, वहाँ पे सबसे अच्छी डॉल्फिन साइटिंग भी है, और हमारे घड़ियाल के लिए भी मैं गया था। तो ये वाटर कंजर्वेशन के लिए काम कर रहे हैं। और जो अमृत सरोवर तो प्रधानमंत्री जी के हृदय के बड़ा नज़दीक है, अगर आप एटलस भी देखेंगे तो जो छोटे सरोवर हैं उनकी संख्या में वृद्धि हुई है, लेकिन बड़े सरोवर भी, जो बड़ी झीलें भी हैं उनके प्रति जागरूकता के लिए हमको रामसर साइट का दर्जा दिला रहे हैं। और 2014 में जहां देश में 24 रामसर साइट्स थी, अब उनकी संख्या बढ़कर 100 हो गई।
1: मंत्री जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया था एक पेड़ माँ के नाम अभियान, आपने भी बात की, और वो आज एक जन आंदोलन बन गया है, इसे भी हम सब जानते हैं। तो सरकारी आंकड़ों के मुताबिक इस अभियान के तहत 140 करोड़ से ज्यादा पौधे लगाए जा चुके हैं। बेशक ये संख्या बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन हम इसे सिर्फ संख्या के नजरिए से ना देखें तो जन भागीदारी, एफॉरेस्टेशन और पर्यावरण जागरूकता के संदर्भ में इसके प्रभाव को आप कैसे देखते हैं?
0: मैं हमेशा अपने अधिकारियों को कहता हूं कि देखिए, जो हरित क्षेत्र का विस्तार है ये कोई प्रोडक्ट नहीं है, ये पैशन का विषय है
1: जी।
0: और ये नेचर के साथ आपके कंपैशन का विषय है। अगर आपके साथ नेचर के साथ अगर आपका भाव होगा तो आप लगाओगे। पेड़ लगाना ये फोटो खिंचाने के लिए नहीं होना चाहिए, पेड़ लगाना ये प्रकृति को बचाने के लिए होना चाहिए। और

0: एक पेड़ माँ के नाम अभियान जब प्रधानमंत्री जी ने शुरू भी किया था, तो प्रधानमंत्री जी का एक संदेश था और जिसको हम लोगों तक पहुंचाते हैं कि हमारे पे दो लोगों का बहुत एहसान है, एक हमारी माँ का जिसने हमें जन्म दिया और दूसरा धरती माँ का जिसने हमारा भरण पोषण किया, और इसके प्रति कृतज्ञता अर्पित करने का यही तरीका है कि हम वहां पर एक पेड़ कम से कम माँ के
1: जी
0: नाम लगाएं। देखिए, आप बहुत बड़ी किसी भी बड़े ब्रांड की गाड़ी खरीद सकती हैं, लेकिन वो गाड़ी ऑक्सीजन नहीं दे सकती। आप 10 मंजिल का मकान बना सकते हैं, लेकिन वो चिड़िया के लिए एक दाना नहीं बना सकता है
1: बिल्कुल
0: ना, पक्षियों को छांव नहीं दे सकता। तो पेड़ तो नैसर्गिक रूप से प्रकृति का दिया हुआ उपहार होता है। और मैं कई बार ये भी कहता हूं कि केवल पेड़ लगाना मतलब हॉर्टिकल्चर का विषय हो जाता है।
1: जी
0: जब हम वन की बात करते हैं, हम इकोलॉजी की बात करते हैं, तो पेड़ लगाना मतलब वुडलैंड तैयार करना। लेकिन जितना वुडलैंड का महत्व होता है, उतना ही वेटलैंड का महत्व होता है
1: बिल्कुल
0: पक्षियों के लिए,
1: जी
0: और उतना ही ग्रासलैंड का महत्व होता है। और ग्रासलैंड का जो हमारा एक बड़ा स्पीशीज था चीता, वो तो भारत से एक्सटिंक्ट हो गया था। तो प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमने चीते के भी ट्रांसलोकेशन का कार्य किया है। तो एक पेड़ माँ का नाम अभियान प्रधानमंत्री जी का इस धरती की हरियाली से जुड़ने का अभियान है, और धरती की हरियाली वुडलैंड, ग्रासलैंड और वेटलैंड तीनों
1: जी
0: बायोडायवर्सिटी के समान रूप से संरक्षण में होगी, और हम तीनों के लिए कार्य कर रहे हैं।
1: भारत आज दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है और अक्सर ऐसा माना जाता है कि विकास और पर्यावरण संरक्षण एक दूसरे के विपरीत हैं, दोनों एक साथ नहीं चल सकते हैं। ऐसे में जब हरित विकास भारत की स्ट्रैटेजी का एक महत्वपूर्ण स्तंभ बन गया है, तब सरकार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार आर्थिक प्रगति, औद्योगिक विकास और इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के बीच संतुलन कैसे सुनिश्चित कर रही है?
0: देखो, विकास तभी समृद्ध होता है जब नेचर समृद्ध होता है। मान लो आप पानी से बिजली बनाते हो,
1: जी
0: पानी नहीं होगा तो बिजली कहां से बनाओगे? आप कोयले से बिजली बनाते हो, कोयला ही नहीं होगा तो बिजली कहां से बनाओगे?
1: जी
0: दुनिया की कौन सी ऐसी दवाई है जिसका लास्ट सोर्स नेचर ना होता हो? आप फैक्ट्री में ब्रेड बना सकते हो, लेकिन गेहूं तो पैदा नहीं कर सकते हो। कोई ऐसी फैक्ट्री थोड़ी होती है कि जिसमें गेहूं बनता है। गेहूं से आटा बनता है, लेकिन वो तो नेचर से आता है।
1: बिल्कुल
0: तो हमारा फूड, हमारा एनर्जी रिसोर्स, हमारी औषधि, ये तो नेचर से आती है। तो नेचर सुरक्षित और संरक्षित होगी तो विकास भी होगा।
1: जी
0: आप एक बात बताइए
1: जी
0: कि जैसे आप सड़क बना रहे हैं या आप मकान बना रहे हैं, तो मकान में जो भी चीज लगा रहे हैं आप, दरवाजा है तो लकड़ी तो नेचर से आती है, ये कहां से आती है?
1: जी
0: तो विकास भी तभी होगा जब हम संसाधनों का बुद्धिमता तरीके से उपयोग करेंगे। सर्कुलर इकोनॉमी क्या है?
1: जी
0: कि कितना लंबे समय तक आप धरती को से खोद खोद कर केवल खनिज का उपयोग करोगे? कभी तो ऐसा समय आएगा कि इस खनिज का पुनर्उपयोग करने का काम आप करोगे। तो मेरा मानना है, जिसको आजकल कहते हैं नेचर बेस्ड सॉल्यूशन,
1: जी
0: नेचर बेस्ड सॉल्यूशन, नेचर बेस्ड लाइफ स्टाइल, और नेचर के साथ विकास करने का काम हम लोग करेंगे। और इसलिए इकोलॉजी और इकोनॉमी ये एक दूसरे की विरोधी नहीं है, ये एक दूसरे के पूरक है।
1: जी हम बात कर रहे थे शुरू में नेट जीरो एमिशंस की, तो जो भारत ने वर्ष 2070 तक कार्बन उत्सर्जन को शून्य तक लाने की यानी कि नेट जीरो एमिशंस के लक्ष्य सहित कई महत्वाकांक्षी क्लाइमेट गोल्स को निर्धारित किया है खुद के लिए, सो इस दिशा में अब तक कौन सी महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल हुई हैं और आगे के क्या हमारे लक्ष्य हैं?
0: देखो, जो रिन्यूएबल एनर्जी में हमारी क्षमता है, ये नेट जीरो के है।
1: जी
0: जो ग्रीन सिटीज की बात है, ये नेट जीरो की है। जो मेट्रो का विस्तार है, ये नेट जीरो के लिए है। जो ईवी का विस्तार है, वो नेट जीरो के लिए है। जो ग्रीन हाइड्रोजन नए एनर्जी रिसोर्स को ढूंढ रहा है, वो नेट जीरो के लिए है। जो बायोफ्यूल अलायंस कर रहे हैं, वो नेट जीरो के लिए है। जो सोलार की कैपेसिटी को बढ़ा रहे हैं, वो नेट जीरो के लिए है। नेट जीरो का अर्थ है कि हम एक ऐसे अर्थव्यवस्था के मुकाम पे पहुंचे जो कार्बन एमिशन और कार्बन उत्सर्जन कम हो, हमारी जीवन शैली और हमारे विकास का आधार पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली हो। और
1: जी
0: इसलिए जैसा आपने बताया कि 1477 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र बड़ा है, तो वो नेट जीरो के लिए है।
1: पर्यावरण लक्ष्यों को हासिल करने के लिए सरकार अपनी तरफ से पूरा काम कर रही है, लेकिन इसके साथ ही जो हम जब पर्यावरण की बात

0: करते हैं, उसकी सुरक्षा की बात करते हैं, तो उसमें इंडस्ट्री का, कॉरपोरेट जगत का कितना इंपॉर्टेंट आप एक रोल देखते हैं?
1: अभी हमने ग्रीन क्रेडिट फंड में कॉरपोरेट को लगाया है, उनके जो ESG है वो भी है। कॉरपोरेट जगत में बात होती है, भारत में कॉरपोरेट जगत में एक उत्साह का भाव बना है कि वो ग्रीन ट्रांजिशन की ओर जाए, अपनी इंडस्ट्री को ज्यादा एनवायरमेंट फ्रेंडली बनाए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि विकास ऐसा होना चाहिए जो लंबे समय तक चले और धरती को बचाने के लिए हो। इसलिए कई बार ये कहते हैं ना कि ये ग्रह हमें अपने पूर्वजों से उत्तराधिकार में नहीं मिला है, अपने बच्चों से उधार में मिला है
0: जी।
1: तो ये हरा भरा ग्रह छोड़ के जाए
0: जी।
1: वरना एक दिन, जैसे आप ये कहते हैं ना कि मनुष्य ये सोचता है कि मंगल पे कभी जीवन था, तो ऐसा नहीं हो कि दूसरे ग्रह के लोग कहें कि पृथ्वी पे भी कभी जीवन, था।
0: क्योंकि आपने बच्चों की बात की, तो आखिरी सवाल मेरा आपसे यही है कि आम नागरिक और आज खासकर की जो देश के युवा हैं, जो देश का भविष्य है, वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के इस अभियान में क्या योगदान दे सकते हैं, उनके लिए आपका क्या संदेश है?
1: पहला तो एक फिर माँ के नाम अभियान से जुड़े, और दूसरा प्रधानमंत्री जी ने मिशन लाइफ में जो आयाम दिए हैं, सेव फूड, सेव वाटर, सेव एनर्जी, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, बैन ऑफ सिंगल यूज प्लास्टिक, हेल्दी लाइफ स्टाइल, ऐसे विषयों पे ज्यादा से ज्यादा काम करें, इसको अपनी जीवन पद्धति पे अपनाएं, तो मिशन लाइफ को अपना जीवन का आधार बनाएं, एक पेड़ माँ के नाम लगाएं और ग्रीन टेक्नोलॉजी के विकास में अपना योगदान करें।
0: मंत्री जी, आप आकाशवाणी के स्टूडियो में आए और पर्यावरण के क्षेत्र में पिछले 12 साल में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में हुई उपलब्धियों के बारे में और लक्ष्यों के बारे में बातचीत की, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
1: आकाशवाणी में बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव के साथ विशेष साक्षात्कार। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी दिल्ली से विशेष कार्यक्रम। ये आकाशवाणी का हिसार केंद्र है, एफएम बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज पर। इस समय रात्रि के 11:39 और 15 सेकंड हुए हैं। अब हमारी आज की ये प्रसारण सभा यहीं संपन्न होती है। कल हमारी प्रातःकालीन सभा में 5:55 पर आपसे होगी फिर मुलाकात। तब तक के लिए हमें दीजिए अनुमति। शुभ रात्रि। जय हिंद।